0: से हिरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर एक, ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर दो, और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
1: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
2: चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
3: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कूदाया फिर बच्चों को कूदाया सात लोगों को हमने ऊपर से कूदाया।
0: वीडियो नंबर तीन, और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
4: कैसे मर रहे हैं।
0: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
3: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी सात मैंने निकाली है नीचे से,
5: सात
3: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
6: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
0: वीडियो नंबर चार, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
7: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
4: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा?
5: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
4: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, क्योंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे
5: अंदर? आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस 4th फ्लोर पे ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
4: दिखाइए 4th फ्लोर
5: से लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
8: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
0: हादसे की वजह नंबर 1, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर 2, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर 3, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। MCD की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन MCD के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर 4, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी NOC और MCD से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन MCD ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने B&B के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया, और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, MCD और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है।
9: दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
10: आराम, आराम,
11: मेरा घर है।
10: हाँ, आराम,
11: घर है।
10: ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर, करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिलीभगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, किस लिए यहाँ पर?
9: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल खोलते रहे।
10: तस्वीर दिखाई जाती है एक एक के, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
12: घर है इनका, पर्सनल घर है,
10: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
9: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
10: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक का उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया, क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
9: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, ना ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और ना ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
13: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक, एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
9: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिली भगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है। उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
11: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दे, ताकि उनकी एक चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहे।
9: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा?
12: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी। जो भी उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई लग रहा
14: लापरवाही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
12: विद इन वीक।
15: देखिए, ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
12: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था। ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीजें।
15: अच्छा, ये बताएं कि एंट्री एग्जिट को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
12: नहीं, अब वो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
15: अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
12: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
9: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों? पहले रोकथाम क्यों नहीं?
13: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे?

0: शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपवायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटत, बऱ्याच वेळेस वाटत, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी?
2: ऐसी कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संघ के जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्य बाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, मी काली म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण?
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवसेनेचे ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी?
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की दोन्ही शिवसेना एकत्र यावं,
5: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
11: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: पति का रत्न पीला पुखराज कितना महत्वपूर्ण है? क्या पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है? क्या पीला पुखराज पहनने से आदमी के ध्यान और आध्यात्म में लाभ होता है? क्या है पीले पुखराज को धारण करने के लाभ और हानि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Employers don't hire diplomas, they hire skills. That's why every WGU technology degree is built to prove what you can do. You'll earn industry-recognized certifications at no extra cost, work through hands-on projects mapped to real roles, and build a portfolio that shows your ability. Flexible pacing means you can move through coursework as soon as you show you've mastered it. And when you finish, you'll have a degree plus credentials employers recognize. Because in tech, ability matters, and WGU helps you show it. Learn more at wgu.edu.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

होटल अग्निकांड से दिल्ली दहली अब तक 21 टूरिस्टों की मौत, 58 झुलसे। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना, अमित शाह ने कहा दिल दहलाने वाली त्रासदी। पश्चिम बंगाल में ममता को बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतुव्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी विधायकों के साथ होने का दावा। प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नवंबर में आएगी आखिरी खेप। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा परमाणु हथियार न रखने की शर्त ईरान ने मानी, वीकेंड में हो सकता है समझौता, जल्द खामनेई से होगी मुलाकात।

हमेशा देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार से। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। आईसीयू में धुआं भरने से 10 से अधिक मरीजों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर का यह इलाका आईसीयू में धुआं भरने से 10 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में आग लगी, उसके बाद आईसीयू में धुआं भरा और ये मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल है। हालांकि 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। 3 बजे सुबह लगभग आग लगी। ये ब्रह्मपुरा का इलाका है। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों ने वहां मुहिम चलाई और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगते ही अफरा तफरी मची। आईसीयू वार्ड में आग लगी जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं भरा और अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 10 मरीजों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, राहत बचाव अभियान चलाया गया। अन्य वार्ड में सभी मरीजों को भी बाहर निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और 3 बजे सुबह ये घटना हुई है। 20 से अधिक मरीजों को रेस्क्यू किया गया लेकिन 10 लोगों की मौत। आईसीयू में धुआं भरा जिसके बाद अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है लेकिन इस घटना में 10 से अधिक मरीजों की

0: 10 से अधिक मरीजों की मौत हुई है, 20 मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। सुबह 3 बजे कुछ प्राथमिक तस्वीरें भी अब तक सामने आई हैं और उसके बाद किस तरह से राहत बचाव कार्य अभियान चलाया गया है प्रसाद अस्पताल में। और बेहद गंभीर बड़ा हादसा, अस्पताल में आग, आईसीयू तक फैलना और उसके बाद 10 मरीजों की धुएं से दम घुटकर मौत हो जाना, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है व्यवस्थाओं पे। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में, प्रसाद अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पर आईसीयू में आग लगी, आग धीरे धीरे पूरे परिसर में फैल जाती है और उसके बाद दम घुटकर 20 मरीजों को जो वहां से निकाला जाता है और 10 मरीजों की मौत हो जाती है। और उसके बाद अब राहत बचाव कार्य अभियान अभी भी चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को देखा जा रहा है कि क्या यहां किसी और के होने की संभावना है। मौके पर जो परिजन मौजूद थे उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीयू में उनके परिवारजन भर्ती थे जिनमें कईयों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन सब ने शव तक उपलब्ध नहीं कराया है और घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी भी फरार हो गए। उधर फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची है तो आईसीयू पूरी तरह धुएं से भरा हुआ था और अधिकांश कर्मचारी मौके से गायब थे, ये भी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है। 20 से अधिक मरीजों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, अस्पताल के दूसरे वार्ड में भी जो मरीज भर्ती थे उन्हें भी वहां से निकाला गया, भेजा गया। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है, प्रशासन अब इस मामले की जांच में भी जुटा है। अभी हालांकि इस पर और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा जो फिलहाल 10 है, अस्पताल में आग लगी, 10 लोगों की मौत हुई। अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या अभी और मरीज अंदर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आग सुबह के 3 बजे लगी है ऐसे में पूरी संभावना है कि शुरुआती 3 घंटों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वहां से निकाल लिया जाए। ये प्रसाद हॉस्पिटल है, ब्रह्मपुरा का इलाका है मुजफ्फरपुर के, और जब आग लगी है तो उसके बाद ये भी देखना, क्योंकि आईसीयू के पास का इलाका बेहद संवेदनशील और आईसीयू के मरीजों को निकालना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, कई वेंटिलेटर पर होते हैं, दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वहां धुआं भरता आग लगती है तो उन मरीजों को निकालना सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य होता है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, जानकारी यह भी बता रही है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो अस्पताल में कोई भी नहीं था, शुरुआती वजह पता लग पाई है और अब तक इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?
1: देखिए आशुतोष, घटना है तकरीबन सुबह 3 बजे की है, जब मुजफ्फरपुर का एक बड़ा अस्पताल है ये प्रसाद अस्पताल, उसके आईसीयू वाले वार्ड में जो है वो आग लग गई, धुआं धुआं भर गया और उसके बाद आनंद फानंद में लोगों को जब जानकारी मिली तो फिर फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि आईसीयू में ये आग लगी थी, पूरा धुआं से भर गया था, तो बहुत सारे मरीज जो है वो निकलने में नाकामयाब रहे और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन कम से कम 10 लोगों की जो है मरीजों की इसमें मौत हो गई है और तकरीबन 20 मरीजों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बात वही है कि जो पूरे प्रशासन वहां, जब प्रशासन पहुंचा तो अस्पताल में जो भी लोग उस वक्त काम कर रहे थे सब वहां से गायब हो गए, फरार हो गए और अभी फिलहाल जो है पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है और घायलों को इलाज, जो घायल हुए मरीज उनको अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच होनी बाकी है, क्योंकि अभी जांच अभी शुरू हुई है और लेकिन दर्दनाक घटना हुई है मुजफ्फरपुर में आज सुबह सुबह तड़के 3 बजे जब एक अस्पताल में आग लगी और इसमें कम से कम 10 लोगों की मरीजों की मौत हो गई है। आशुतोष,
0: ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रारंभिक तौर पर कुछ तस्वीरें भी वहां पर आने लगी हैं, राहत बचाव कार्य चलाया गया है, जो मरीज दूसरे वार्ड में थे उन्हें भी निकाला गया है, उन्हें भी सुरक्षित भेजा गया, लेकिन आप सोचिए कि आईसीयू में अग्निकांड के बाद धुआं भरा।

0: मरीजों की यहां पर मौत हुई है। तो रोहित, अभी राहत बचाव कार्य पूरी तरह खत्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है? तो कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय बिहार से, मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगी, धुएं की घटना हुई और उस धुएं की घटना के बाद दम घुटने से 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा मरीजों को वहां से निकाला गया है। कई अभी भी घायल हैं, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया इलाज के लिए। उनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब राहत बचाव कार्य, देखिए फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची है, बिहार पुलिस की टीम अंदर पहुंची है। हालांकि आग लगने के प्राथमिक कारणों का पता अभी नहीं चल पाया और ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही होगी। क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है या किसी टेक्निकल विंग में, चूंकि अस्पताल है, बहुत सारी मशीनरी होती है, क्या किसी टेक्निकल विंग में फायर की घटना हुई है, किसी लापरवाही से यह घटना हुई है। लेकिन सबसे दर्द भरा, ये आईसीयू में आग लगती है और दम घुटने से 10 लोगों की मौत हो जाती है। 20 मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आईसीयू की वार्ड में आग की लपटें उठी, जिसके बाद पूरा अस्पताल परिसर आग के लपटों में घिरता चला गया, धीरे धीरे धुआं भरता चला गया और उसके बाद यह हादसा जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिसके बाद आईसीयू से सबसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आईसीयू में समय रहते मरीजों को निकालना, लेकिन चूंकि वहां पर ज्यादातर मरीज आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं, ऐसे में उन्हें इवैक्यूएट कराना मुश्किल होता। और इसके पहले जब तक की तैयारियां की जाएं, जानकारी ये भी बता रही है कि पूरे वार्ड में धुआं भर गया था और धुएं भरने के चक्कर में उन मरीजों को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो गया था और उसी के बाद 10 मरीजों के फिलहाल मौत की खबर आ रही है और बाकियों को वहां से कोशिश की गई बाहर निकालने की। अब मौके पर जो
1: सूचना मिली, क्या स्थिति?
2: 3:55 में हम लोगों को सूचना मिला तो एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी पारापारी, हम लोगों को रिक्शा से 8 गाड़ी आई यहाँ आए। तो आईसीयू में जो 5वां तला पर आईसीयू है उसमें हम लोग पहुँचे, वहाँ पर बताया गया कि 5वां तला पर आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था। तो धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेथ बॉडी को निकाला।
1: कितना अनुमान है लोगों
2: की? 20 आदमी कम से कम, 15 से 20 व्यक्ति, 15-20 व्यक्ति को निकाला गया है, जिसमें 5 से 7 व्यक्ति जिंदा निकाला गया है।
1: अच्छा, रेस्क्यू में आग का कारण क्या लग रहा है?
2: शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
1: अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए?
2: अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सर नहीं मिल रहा है ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है। हम लोग गिनती नहीं किए, हम लोग को भी पटना में रिपोर्ट देना है कितना कैजुअलिटी, कितना मरे हुए हैं, कितना बचे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेट हम लोग जल्दीबाजी में निकालने के फेरा में गिनती नहीं कर सके।
1: रेस्क्यू
2: हो गया है, एक बार अंतिम हम लोग सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई आग नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं फंसा।
1: अग्निशमन पदाधिकारी रामविलास पांडे थे, जिनकी टीम सुबह 3 बजे से लगी हुई है और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया।
0: आंकड़ा बढ़ भी सकता है, फायर ऑफिसर को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि 15 से 20 लोगों को निकाला गया था, जिसमें 5 से 6 जिंदा हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। रोहित, अभी जो फायर ऑफिसर का हम बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 15 से 20 लोगों को हमने निकाला, उनमें से 5 से 6 जिंदा थे, यानी मरने वालों का आंकड़ा 10 से कहीं ज्यादा है।
3: बिल्कुल, देखिए जो क्योंकि घटना जो है आईसीयू वार्ड में लगी है, तो जाहिर सी बात है मरीजों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जो आईसीयू में एडमिट होते हैं या जिनका इलाज चलता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो मरीज हैं जो वहां से निकलने में कामयाब नहीं रह पाए और 10 की संख्या बताई जा रही है जिनकी दम घुटने से धुआं के कारण मौत हो गई है। लेकिन जो भी 15 से 20 मरीज जो है जिनको किसी तरीके से निकाला गया है, उसमें से भी कितने जीवित हैं इसको लेकर भी थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो फायर ऑफिसर ही बता रहे थे और प्रशासन की तरफ से जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 लोगों को उन लोगों ने देखा है जीवित, लेकिन क्या बाकी की हालत क्या है, बाकी 13, 14 या 15 जो मरीज हैं जिनको बाहर निकाला गया है उनकी हालत क्या है, किस स्थिति में है, क्या वो उनका इलाज चल रहा है फिलहाल एक नजदीकी अस्पताल में, तो हालत क्या गंभीर बनी हुई है क्या है, तो इसको लेकर एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कहीं मौत का आंकड़ा और ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल 10 जो है मरीजों की मौत जो है वो लगभग पुष्टि उसकी हो चुकी है और फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और किन कारणों से ये आग लगी है इसकी भी जांच जो है वो शुरू हो गई है।
0: नहीं, अभी अभी जो फायर ऑफिसर थे वो ये कह रहे थे कि ये संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, और गर्मियों के मौसम में आम तापमान

0: पड़ता है के इलाकों में तो शॉर्ट सर्किट बढ़ती है। देखिए मौके पर इस समय वहां के जो एसपी हैं वो पहुंचे हैं, डीएम पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रसाद अस्पताल के पास, क्योंकि इस मामले के बाद जांच भी शुरू हुई है। 10 मरीजों की मौत की खबर आ चुकी है और इसके बारे में ज्यादा क्या संख्या बढ़ सकती है उसके बारे में भी हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के वो भी अस्पताल पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए। कई सारे परिजन हैं वो शिकायत कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं कि अस्पताल में जब आग की घटना हुई समय वहां कोई मौजूद नहीं था और राहत बचाव कार्य के जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है तब वो वहां पर पहुंची है। रोहित, कई सारे परिजनों ये भी कह रहे हैं कि जब आग लगी उस समय वहां कोई मौजूद भी नहीं था, यानी अगर प्राथमिक तौर पर अगर किसी की मौजूदगी होती, लोग मदद करते, तो संभवतः जो त्रासदी है उसे कुछ कम किया जा सकता था।
1: बिल्कुल, देखिए ये गंभीर बात है कि अस्पताल में अगर उस वक्त कर्मी थे, सुबह के 3 बज रहे थे, कोई अगर वार्ड बॉय, कोई डॉक्टर, कोई नर्स जो उस समय ऑन ड्यूटी रहा होगा, तो उनको भी जैसे ही पता चला कि ये घटना घटी है, आग लगने की घटना घटी है, तो वो भी मौके से वहाँ फरार हो गए। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है, तो इसलिए जो है कहा जा सकता है कि जो घटना घटी है उसमें मौत का आंकड़ा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कोई मौके पर जो है मदद पहुंचाने वाला जो है तत्काल वहां पे मौजूद नहीं था। परिजनों का भी इस तरीके का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है और फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है मामले की, लेकिन अभी भी जो है अस्पताल के जितने भी लोग थे वो अस्पताल छोड़कर जो है वो गायब हो गए हैं जब से ये सुबह 3 बजे घटना जो है घटी है।
0: और ये आपराधिक, इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस से कम नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अस्पताल के लोग होते कम से कम प्राथमिक तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते थे, क्रिटिकल इलाकों पे आग बुझाने की कोशिश कर सकते थे, आईसीयू को बचाया जा सकता था। ये तो बिल्कुल आपराधिक है कि आपके अस्पताल में मरीज आया अपना जीवन बचाने के लिए और आग की घटना हुई सबसे पहले आप भाग गए दौड़ के।
1: बिल्कुल आपराधिक ये कृत्य तो बिल्कुल है कहा जाएगा, क्योंकि आग की घटना घटी है तो अगर वहाँ डॉक्टर मौजूद है, अगर कोई नाइट शिफ्ट में रहा होगा, नर्स रहे होंगे, वार्ड बॉय रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अस्पताल है, 2-4 ही लोग रहे होंगे उस वक्त अस्पताल में, अच्छे खासे मतलब दर्जन दो दर्जन लोग जरूर अस्पताल में उस वक्त मौजूद रहे होंगे, तो इस तरीके की घटना घटी और उसके बाद वो खुद अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, मरीजों को उसी हालत में उन लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि आईसीयू में थे, तो जाहिर सी बात है मरीजों की हालत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही होगी, तो ऐसे में ये तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी जो है उन्होंने वो वहां से फरार हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपराधिक कृत्य है और संवेदनहीनता भी दिखाता है कि घटना होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए पहले भागे और मरीजों को अपने ऊपर ही छोड़ दिया कि जो होना है होगा, और इसी कारण से जो हम देख रहे हैं कि इस मामले में, इस आग की घटना में 10 लोगों की जो है 10 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि जब वहां पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तकरीबन 15 से 20 मरीजों को आईसीयू वार्ड से निकाला गया है, लेकिन उनमें से भी कितनों की हालत बताया जा रहा है कि गंभीर बनी हुई है, क्योंकि स्थिति उनकी पहले से ही गंभीर थी, आईसीयू में वो लोग, उनका इलाज चल रहा था, तो और फायर ऑफिसर ने बताया कि 5-6 लोगों को उन लोगों ने जीवित निकाला है, बाकी की क्या हालत है, 14-15 मरीज और हैं, उनकी हालत कितनी क्रिटिकल है इस पर भी जब है ध्यान नजर बनी हुई है।
0: जी, और कुछ तस्वीरें भी आ रही है रोहित, हम वो भी देख रहे हैं, बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं जिन मरीजों को आईसीयू से निकाला गया था या बाकियों को सुरक्षित इलाकों में, मरीजों की चीख पुकार सुनाई दे रही और जो तस्वीरें हैं वो बेहद विचलित करने वाले। रोहित, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर आपको जो फायर अधिकारी हैं, अग्निशमन अधिकारी हैं, एक बार सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद।
2: सूचना मिली क्या स्थिति?
3: 3:55 में हम लोग को सूचना मिला तो एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी, पारापारी, हम लोग करीब 7-8 गाड़ी आई यहाँ आए, तो जैसे आईसीयू में जो 5वां तालाब आईसीयू है उसमें हम लोग पहुँचे, वहाँ पर बताया गया कि 5वां तालाब आग लगी हुई है, तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था, तो धुआं से बहुत लोग एकदम घुट के आदमी मर गया था, करीब करीब हम लोग 15-20 आदमी के निकाले हैं जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेथ बॉडी को निकाला।
4: कितना अनुमान है लोगों
3: की? 20 आदमी कम से कम, 15-20 व्यक्ति, हाँ 15-20 व्यक्ति को निकाला गया है जिसमें 5-7 व्यक्ति जिंदा निकाला गया है।
4: अच्छा, रेस्क्यू में आग का कारण क्या लग रहा है?
3: शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
4: अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए?
3: अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सब नहीं मिल रहा है, ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है, हम लोग गिनती नहीं किए, हम लोग को भी पटना में रिपोर्ट देना है कितना कैजुअल्टी, कितना मरे हुए हैं, कितना बचे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेट हम लोग जल्दीबाजी में निकालने के फेरा में गिनती नहीं कर सके। हाँ, रेस्क्यू हो गया है, एक बार अंतिम हम लोग सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई आग नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं फंसा।
5: अग्निशमन पर अधिकारी रामविलास पांडे थे जिनकी टीम सुबह 3 बजे से लगी हुई है और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया।
0: तो कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है रोहित वो बेहद गंभीर है। फायर अधिकारी भी कह रहे हैं कि अस्पताल का कोई वहां उनसे बात करने के लिए भी नहीं है, ये बता सकता है। कई बार ब्लूप्रिंट देना होता है, ये जानना जरूरी होता है कि किस मंजिल पर किस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये लापरवाही से कम नहीं है और ऊपर से शॉर्ट सर्किट की घटनाएं अक्सर गर्मी के महीने में बहुत ज्यादा होती हैं, उसे माना भी जा सकता है, लेकिन अस्पताल में इसकी संभावना नहीं होती। आपको तैयारी करनी होती है, आपको पता होता है आप कितना कूलिंग चला रहे हैं, आपके पास कितनी मशीनरी है, और उसी हिसाब से तैयारी होती है कि शॉर्ट सर्किट की घटना ना होने पाए। और ऊपर से जब आग लगती है, जो मरीज वहां पर आए हैं उनके तीमारदार आए हैं, आप भाग जाते हैं वहां पर, फायर ब्रिगेड के लोग वहां मदद के लिए आए हैं और वहां वो कह रहे हैं कि यहां कोई है ही नहीं, हमें बताएगा कौन।
1: बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटना जो हम बता रहे हैं लगातार कि उस वक्त जब घटना घटी सुबह 3 बजे तो उस वक्त अस्पताल में डॉक्टर थे, नर्स थे, कर्मचारी भी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये घटना घटी है उसके बाद सभी के सभी जो अस्पताल कर्मी थे, डॉक्टर या नर्स जो है, वो सब वहां से फरार हो गए। और जैसा कि ये फायर ऑफिसर भी वही जानकारी दे रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब वो कोई फायर ऑफिसर आएगा, टीम आएगी, तो उसको जानकारी तो मिलनी चाहिए कि भाई कौन से तल्ले पे आईसीयू है, कौन से तल्ले पर कोई जनरल वार्ड है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ आग लगी है, लेकिन वैसा बताने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि डर के मारे सारे लोग जो है वहां से फरार हो गए थे। और जो अग्निशमन टीम है, फायर की टीम जो है ब्रिगेड की, उनको जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तरीके से कहें तो उन लोगों ने सराहनीय काम किया कि कम से कम जल्द घंटे भर के अंदर उन लोगों ने जो है वो आग पर काबू पा लिया और जो मरीज जो फंसे हुए थे आईसीयू वार्ड में उनको।
0: ठीक है रोहित, आपको जरा रोक रहे, एक बार आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस समय हालात कैसे हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया है।
5: उनके ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि शव को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं। अब अस्पताल देखते हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आई हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो है काफ़ी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें अगले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। परिजन परेशान हैं। और
6: कौन को देखने आए हैं?
5: बहन को देखने आए।
6: हमारी बहन भर्ती थी इसमें।
5: अच्छा,
6: एक्सपायर कर गई।
5: हाँ, सौ वगैरह मिला।
6: हाँ, हमारे बहनों ही हैं यहाँ पर, फोन किए थे। हाँ,
5: तो आप देखते हैं मरीज के परिजन हैं जो आ रहे हैं और अस्पताल के बाहर अपने अपने मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। अग्निशमन के तमाम टीम, 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है, मरीज के परिजन काफी परेशान हैं और अहले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है। आप देखते हैं अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है।
0: तो हमारे सहयोगी मणिभूषण की रिपोर्ट आप देख रहे थे उसी अस्पताल पर जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। राहत बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है। फायर अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि एक बार से दोबारा से वहां पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। अस्पताल में दम घुटने से उन 10 लोगों की मौत हुई। रोहित, आंकड़ा जो है मणिभूषण की हम रिपोर्ट देख रहे थे कि आंकड़ा एक दर्जन से ज्यादा भी हो सकता है। यानी जाहिर अभी तो प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले सर्च ऑपरेशन दोबारा कर लिया जाए, देख लें कि कहीं कोई और बरामद किया जा सकता है वहां से।
1: बिल्कुल, देखिए आईसीयू में वार्ड में ये आग लगने की घटना घटी थी तो वहां से अभी आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसा कि अग्निशमन अधिकारी भी बता रहे थे कि और एक बार वो लोग देख लेना चाहते हैं कि कहीं कोई और मरीज तो फंसा हुआ नहीं है, लेकिन सब जो बाकी जो कम से कम 15 से 20 मरीजों को जो वहां से निकाला गया है उनकी हालत भी देखिए गंभीर बनी हुई है। 4 से 5 तो जीवित स्थिति में थे, लेकिन अब बाकी लोगों का क्या है हालत ये इस पर देखना होगा क्योंकि नजदीकी अस्पतालों में सबको जो है वो शिफ्ट किया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। और देखिए हो सकता है प्राथमिक जो प्रारंभिक जांच होती है तो उसमें ये शॉर्ट सर्किट की वजह जो है अमूमन सामने आती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये घटना घटी है। तो अब ये पूरी तरीके से डिटेल जांच होगी तो पता चलेगा कि आग किन कारणों से लगा था, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के कर्मी छोड़कर भागे हैं वो बेहद कह सकते हैं अपराधी के साथ साथ घोर लापरवाही भी है। ये आप किसी की जान बचाने के पेशे में आप यहाँ आए हुए मतलब काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर ऐसी बड़ी घटना घटती है तो खुद अपनी जान बचाने के लिए आप वहाँ से फरार हो जाते हैं, और जब फायर की टीम आती है तो उनको बताने वाला भी कोई नहीं है कि भाई कहाँ आग लगी है, कैसे वहाँ पर आप पहुँचेंगे, क्या तरीका हो सकता है, प्लान क्या है, और मतलब किस तरीके का ब्लू प्रिंट है उसका अस्पताल का। तो जाहिर सी बात है अग्निशमन टीम को भी काफी मतलब मशक्कत करनी पड़ी, और ये घोर लापरवाही और आपराधिक कृत्य है। अब सारे लोग जो है वहां से फरार हो चुके हैं, कोई भी वहां मौजूद नहीं है अस्पताल में, तो अब जांच जब शुरू होगी तो कारण पता चलेगा। और बताया जा रहा है कि अस्पताल जो है प्रसाद हॉस्पिटल एक शहर के बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ का ये अस्पताल है, तो अब उनसे भी जांच की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या क्या वहां पर मेजर्स लिए गए थे। अस्पताल तो चल रहा था, शहर का एक बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, तो क्या वहां पर सारे जो नॉर्म्स है सारे कुछ जो एसओपी होता है उसको फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था।
0: मान मिले रोहित की कागजों पर सारे नियम का पालन हो रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी जिन कर्मचारियों के पास ये बुनियादी दक्षता थी कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते थे, गाइड कह सकते थे, बता सकते थे फायर ब्रिगेड को ताकि समय रहते ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, वही मैदान छोड़ करके भाग गए। आपको सुनवाते कुछ पीड़ितों की बात की, आखिर वो इस समय मौका वारदात पर है, उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ हुआ।
7: क्या 3 बजे में
8: 4 बजे
7: चार बजे के लगभग में लगा है आग।
8: गायब
7: के लिए परसेंट क्या हुआ, परसेंट
8: ये ना जला हुआ है,
7: बेड से जला हुआ है, उसमें जहाँ
8: भूखा है सर, मेरा 5 गो स्टाफ लेके आपको 5 गो स्टाफ पुलिस लेके गए है, मेरा पेशेंट जरा हुआ।
0: तो तमाम सारे जो परिजन हैं उनके अंदर भी नाराजगी है कि समय रहते मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था, और उस पर से सबसे बड़ी बात कि जब फायर विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि प्रवेश कहां से करेंगे, निकासी कहां से होगी, किन रास्तों से ऊपर जाएंगे, सीढ़ियां कहां से हैं, और इमरजेंसी इंतजाम क्या है। रोहित ये बताइए, क्या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी है कि अब इसमें वो कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
1: देखिए अब ये घटना घट गई है तो जाहिर सी बात है इस मामले में जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसके बाद इसको लेकर जो है वो जांच भी शुरू होगी, लेकिन प्राथमिक जो मतलब कह सकते हैं जो जरूरत थी और जो था वो कि मरीजों को जो है आईसीयू वार्ड में उनको सुरक्षित निकाला जा सके, जो लोग जो है जीवित बचे हुए हैं, तो वो प्रक्रिया जो है वो काम तो पूरा हो चुका है, आईसीयू वार्ड को पूरी तरीके से खाली कराया जा चुका है और आईसीयू वार्ड भी पूरी तरीके से आग की भेंट चढ़ चुका है, सब कुछ वहां पर जलकर उस आईसीयू वार्ड में जो है वो खाक हो चुका है। तो 10 मरीजों की मौत की खबर जो है वो आ रही है, बाकी मौत का आंकड़ा जो है आशंका है कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है जिनकी स्थिति बहुत गंभीर थी उनको निकाला गया है, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन जांच जब होगी तो जांच में ही सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से ये अस्पताल चल रहा था इतने वर्षों से। तकरीबन बताया जा रहा है कि 13-14 साल पहले जो है ये अस्पताल 2015 के आसपास जो है बताया जा रहा है 10 साल पहले ये अस्पताल जो है वो बना था, शहर का बड़ा एक अस्पताल है और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है उनका ये अस्पताल है, और जांच में पता चलेगा कि क्या कारण थे, कैसे घटना घटी है, पूछताछ होगी, जो लोग वहां फरार थे हो गए थे डॉक्टर्स नर्स कर्मचारी उनसे भी जो है संपर्क साधा जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी कि किन वजहों से किन कारणों से ये पूरी घटना जो है वो घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर नर्स जो वहाँ मौजूद होंगे नाइट शिफ्ट में उनकी लापरवाही उनकी जरूर इसमें नजर आ रही है, जो घटना होने के वक्त जो है वो मौके से वहां से फरार हो गए।
0: और इसीलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, खासकर तब जब इस तरह के अग्निकांड होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी होता है कि जो पहली टीम आई है रिस्पांस टीम आई है उसे ये मदद मिल सके, अस्पताल का ब्लूप्रिंट पता चल सके, ये पता हो कि यहां से निकासी कहां है, ये पता हो कि आखिर यहां से मुख्य द्वार कहां पर है। हमारे सहयोगी मणिभूषण जो इस समय उसी जगह पर है घटनास्थल से, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
5: के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि शव को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं, अब अस्पताल देखते हैं। अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आई हुई है जो रेस्क्यू कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं स्थानीय लोग जुटे हुए हैं रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो है काफ़ी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें अगले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। परिजन परेशान हैं और
9: कौन को देखने आए हैं?
5: बहन को देखने आए,
9: हमारी बहन भर्ती थी इसमें।
5: अच्छा,
9: एक्सपायर कर गई।
5: एक्सपायर कर गई।
9: हाँ,
5: सौ वगैरह मिला
6: हाँ मैडम, हमारे बहनो है यहाँ पर, फोन किए थे। हाँ,
5: तो आप देखते हैं मरीज के परिजन हैं जो आ रहे हैं और अस्पताल के बाहर अपने अपने मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। अग्निशमन के तमाम टीम, 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है, मरीज के परिजन काफी परेशान हैं और अहले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है। आप देखते हैं अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है और तमाम जो लोग हैं, स्थानीय थाना के भी कई पदाधिकारी आए हुए हैं। क्या स्थिति है, क्या सूचना मिली आप लोगों को?
10: वही कि आग लग गया है।
5: आग लग गया जी। कितने लोगों की मौत की जानकारी?
10: अभी अब काम हो गया।
5: ब्रह्मपुरा थाना के
10: जी जी।
5: तो ब्रह्मपुरा थाना के दरोगा हैं जो पहुंचे मौके पर, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखते हैं काफी परेशान और अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। अग्निशमन पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है कि आईसीयू में भर्ती 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया जो विभिन्न अस्पतालों में गए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। 10 लोगों की मौत की तो अग्निशमन पदाधिकारी ने पुष्टि भी की है। वहीं मरीज के जो परिजन है वो काफी बेहाल और परेशान है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। 3 बजे घटना, 4 बजे अग्निशमन पदाधिकारी पूरी यूनिट के साथ पहुंचे और आग को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो काफी बढ़ सकता है। आज की स्थिति काफी बेहाल है क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग की बात बताई जा रही है और आईसीयू में ज्यादातर सीरियस मरीज ही भर्ती रहते हैं, तो वहां से निकलना और भागना उनके लिए मुश्किल था। तो जितने लोग थे उनकी हालत काफी गंभीर हो गई है। 1 दर्जन मौत की बात बताई जा रही है। प्रशासन थोड़ी देर में क्लियर करेगी, लेकिन फिलहाल जो सदर प्रसाद हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति है काफी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम मरीज के जो परिजन है वो काफी परेशान है और लोग घबराए हुए हैं कि उनके मरीज का क्या हुआ। कई लोग हमसे मिले जो बताए कि उनके परिजन की मरीज की मौत हो चुकी है और काफी परेशान है।
0: तो मुजफ्फरपुर में एक बड़ा अग्निकांड हुआ है, फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और इस पूरे घटना में, इस अस्पताल में जो आग लगी है इसमें 7 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आईसीयू में धुआं भरने से अब तक 7 मरीजों की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा कर दी गई है। एक भीषण अग्निकांड और सबसे बड़ी लापरवाही अस्पताल के लोगों की, आग लगते ही सबसे पहले जान बचाने वाले ही मैदान छोड़कर भाग गए। 20 मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। रोहित, अब जो प्रशासन की ओर से जानकारी आ रही है उसमें 7 मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, 3 बजे आग लगने की घटना, और अब यह भी बताया जा रहा है कि राहत बचाव कार्य पूरा किया जा चुका है।
1: देखिए, आग की घटना पर तो काबू पा लिया गया है। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ही जो है वो आग को जो है वो काबू पाया गया है और तमाम जितने भी मरीज आईसीयू वार्ड में उस वक्त थे, जो जिनकी हालत मतलब गंभीर बनी हुई थी, और उनको किसी तरीके से वहां निकाला गया है और आसपास के दूसरे अस्पतालों में उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो सुबह से ही खबरें आ रही थी कि तो तकरीबन 10 लोगों की मौत की खबर है और अब तो प्रशासन ने भी जो है तकरीबन 7 मौतों की जो है वो पुष्टि कर दी है। तो ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि जो लोग जिनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर बनी हुई थी, जो तब घुटने से हो सकता है उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हुई हो, उनमें से किसी की मौत हो जाती है। इस बात की आशंका है कि कहीं उनकी भी हालत ना गंभीर ज्यादा हो गई तो उनकी भी मृत्यु हो सकती है, मौत का आंकड़ा हो सकता है कहीं बढ़ ना जाए। लेकिन फिलहाल अभी 7 मरीजों की मौत की जो है प्रशासन ने पुष्टि कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि जो मरीज जिनको निकाला गया है, हो सकता है कि अगर उनको स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हो और धुएं के कारण जो उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई होगी तो आशंका है कि मौत का आंकड़ा इस पूरे मामले में बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है और अब जांच जो है चल रही है और फायर की टीम भी जो है उन्होंने भी एक बार आखिरी बार जो है पूरे वार्ड को चेक कर लिया है कि भाई कोई बचा तो नहीं है और अब पूरी प्रक्रिया जो है वो अब जांच की प्रक्रिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामले में कहीं ना कहीं अब FIR तो दर्ज कराया ही जाएगा और उसके बाद जो है डिटेल जांच की जाएगी।
0: नहीं, आप कह रहे हैं कि चूंकि जांच और लगभग शुरू हो गई होगी, FIR की प्रक्रिया आगे होगी, अस्पताल के संचालक, उनके प्रशासन जो लोग हैं, क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए, उनका कुछ कहना है? क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही तो दिखाई दे रही है, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा आपने अस्पताल में उसके लिए प्रॉपर तैयारियां नहीं की थी जानते हुए कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, आपके जो लोग थे, बेसिक ट्रेनिंग होती है अस्पतालों में, सिविल डिफेंस की, इन सब की बेसिक ट्रेनिंग होती है कि आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर उठाएं और कम से कम इतना स्प्रे करने के बच जाए। यहां तो मैदान आप भागी गए अपने मरीजों को छोड़ करके, जो बेचारे आईसीयू में जो हिल भी नहीं सकते, जो संभवतः कुछ कई हो ऐसे होंगे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, आप उनको मरने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं।
1: बिल्कुल, परिजनों की तरफ से ही आरोप लगाए गए हैं और गंभीर आरोप है, बता रहे बार बार ये आपराधिक घटना है, अकृत भी है साथ साथ घोर लापरवाही भी है। जिनके पास आप जान बचाने के लिए जाते हैं वही अगर आपको छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे, अस्पताल कोई गंभीर स्थिति में क्यों जाएगा। तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जब घटना घटी तो अस्पताल के कर्मी वहां से आखिर फरार क्यों हो गए, और अब जो इस अस्पताल के जो संचालक हैं बताया जा रहा है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं प्रसिद्ध वहां के, उनका ये अस्पताल है तो उनसे भी अब संपर्क साधने की कोशिश जो है की जा रही है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किन कारणों से है, कैसी बड़ी घटना घटी, क्या सारे प्रोसीजर सारे नॉर्म सारे जो कागजात दस्तावेज जो होता है सबका परमिशन था नहीं था, ये सब तमाम चीजें जो है जांच का विषय होती है। जैसे कल हम लोगों ने दिल्ली की वाली घटना में भी देखा था कि फायर का एनओसी नहीं लिया हुआ था, तो बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां भी जो है वो सामने आती रहे जब जांच शुरू होती है। तो अब इस अस्पताल को लेकर भी जो है वो अब जांच की जाएगी कि जो अस्पताल चल रहा था पिछले 10-12 सालों से मुजफ्फरपुर शहर में वहां पर किस तरीके से चल रहा था। जाहिर सी बात है इन सब चीजों को जो है अभी फिलहाल खंगाला जाएगा और पूछताछ जो है की जाएगी
0: और पुलिस इस मामले की एक बार जांच करेगी। तब तक इस समय घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत एक बार सर्च और अभियान दोबारा चलाया जाता है इन संभावनाओं को देखते हुए कि 5 मंजिला इस इमारत में कहीं किसी कोने पर कोई या तो मरीज हो सकता है उसके तीमारदार हैं या कहीं अस्पताल का कोई स्टाफ तो नहीं है। जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही है वो बेहद विचलित करने वाली है। आप समझिए कि आग लगने की ऐसी घटना होती है जहां पर फायर की टीम पहुंचती है लेकिन उन्हें ये बताने वाला वहां कोई नहीं मिलता है कि इस रास्ते अंदर जा सकते हैं, 5वीं मंजिल पर आईसीयू हो है, कूलिंग प्लांट इस तरफ है, इसके टेक्निकल इलेक्ट्रिकल प्लांट इस तरफ हैं, और आप देखिए कि कैसे इस देश में जिंदगी सबसे सस्ती होती है। 24 घंटे में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। आज सुबह मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगती है, लेकिन कल सुबह क्या हुआ था, देश की राजधानी दिल्ली में आग लगती है, एक इमारत जहां पर कमर्शियल होटल चल रहा था वो भी अनियमितताओं से भरा हुआ, वहां आग लगती है। वहां मरने वालों का आंकड़ा 21 होता है, बिहार में मरने वालों का आंकड़ा अब तक 7 की पुष्टि हो चुकी है। जिंदगी इतनी सस्ती है कि हर जगह आग से, मानिए कि इमारतें जो हैं वो लाक्षागृह बन जाती हैं। वहां पर एक होटल, ये देखिए, आग के हवाले हो गया और स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचते हैं मदद करने के लिए। लोग खिड़की तोड़ करके जान बचा कर निकलते हैं क्योंकि क्षमता 6 की होती है, कमरे 26 चलते हैं और इसीलिए ना तो वेंटिलेशन होता है ना एग्जिट प्लांट होता है।
2: सूचना मिली क्या स्थिति?
3: 3:55 में हम लोग को सूचना मिला तो एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी पारापारी, हम लोग करीब 7 से 8 गाड़ी आई, यहाँ आए तो जैसे आईसीयू में जो 5वां तला पर आईसीयू है उसमें हम लोग पहुँचे, वहाँ पर बताया गया कि 5वां तला पर आग लगी हुई है। तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था, तो धुआं से बहुत लोग एकदम घुट कर आदमी मर गया था। करीब करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेथ बॉडी को निकाला।
2: कितना अनुमान है लोगों
3: की? 20 आदमी कम से कम, 15 से 20 व्यक्ति, हाँ 15-20 व्यक्ति को निकाला गया है जिसमें 5 से 7 व्यक्ति जिंदा निकाला गया है।
2: अच्छा, रेस्क्यू में आग का कारण क्या लग रहा है?
3: शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
2: अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए?
3: अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सब नहीं मिल रहा है, ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है। हम लोग गिनती नहीं किए, हम लोग को भी पटना में रिपोर्ट देना है कितना कैजुअलिटी, कितना मरे हुए हैं, कितना बचे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेट हम लोग जल्दीबाजी में निकालने के फेरा में गिनती नहीं कर सके। हाँ, रेस्क्यू हो गया है, एक बार अंतिम हम लोग सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई आग नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं फंसा।
11: अग्निशमन पर अधिकारी रामविलास पांडे थे जिनकी टीम सुबह 3 बजे से लगी हुई है और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया।
0: तो राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, इवैक्यूएशन ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार और से सर्च अभियान चलाया जाएगा। 20 मरीजों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, 7 के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जांच अलग शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं, एक बिहार की राजधानी से बेहद करीब अस्पताल में, 24 घंटे पहले हमने देश की राजधानी में देखा था। ये अग्निकांड होने की सबसे बड़ी जो वजह नजर आती है वो है लापरवाही, अनियमितताएं। अभी भी जो फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट से हुई होगी। अस्पतालों में इस तरह की गुंजाइश नहीं होती है, खासकर ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक होते हैं, आपने इमारत खड़ी कर दी है, ये गुंजाइश हमेशा रहती है कि यहां लापरवाही होगी। तो आप ये देखते हैं आपका कूलिंग प्लांट कहां है, आपका बिजली का लोड कितना है और इन सब जगहों पर वो व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या वाकई सब किसी को परवाह नहीं है नियमों की?
1: बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके का मतलब कोई इमारत खड़ी की जाती है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है कि आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से जो है उसको आपको एनओसी लेना पड़ता है, चाहे फायर डिपार्टमेंट होता है, बिजली विभाग से होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सिविल। तो ऐसे में जो अब आग की घटना को हम अगर ले लें तो जाहिर सी बात है कल जिस तरीके से दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली के माफ कीजिएगा होटल में एक आग लगी और आज मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगी है, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें अब सवालों के घेरे में है कि क्या अस्पताल जो ये चल रहा था उसमें तमाम चीजें जो है, सारे जो नॉर्म्स है, जारी प्रक्रियाएं हैं, वो क्या पूरी की गई थी और क्या एनओसी जो भी चाहिए फायर डिपार्टमेंट का वो सब कुछ वहां था या नहीं था। लेकिन एक ये भी चीज आती है कि अगर फायर डिपार्टमेंट से अगर एनओसी लिया भी गया होगा तो देखिए मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा देंगे अस्पताल में और उसको कोई फिर उसको वहां बदलेगा नहीं वक्त वक्त रहते हुए, तो ये सब तमाम चीजें जो है लापरवाही के ही दायरे में जो है ये आती है क्योंकि बहुत बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर भी हो जाता है फिर किसी काम का नहीं होता।
0: और यही तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसे हम औचक निरीक्षण कहते हैं ना, फायर ब्रिगेड की ये जिम्मेदारी की आप लाइसेंस देकर चुप नहीं रह सकते, औचक निरीक्षण का अधिकार है और ये दायित्व है और उसी के साथ साथ ये जिम्मेदारी है। जब मौसम विभाग ये कह रहा है तापमान बढ़ रहा है, आंधी तूफान आता है, मौसम का असर आपके हर तकनीक हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि समय रहते जाएं वहां पर चेक करें। हमारे सहयोगी मणिभूषण की एक बार रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि शव को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं। अब अस्पताल देखते हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आई हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो है काफी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें अगले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। परिजन परेशान हैं और
6: कौन बहन को देखने आए हैं?
5: बहन को देखने आए,
6: हमारी बहन भर्ती थी इसमें।
5: अच्छा,
6: एक्सपायर कर गई।
5: एक्सपायर कर गई,
6: हाँ।
5: सौ वगैरह मिला?
6: हाँ, मैडम हमारे बहनों ही हैं यहाँ पर, फोन किए थे। हाँ,
5: तो आप देखते हैं मरीज के परिजन हैं जो आ रहे हैं और अस्पताल के बाहर अपने अपने मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। अग्निशमन के तमाम टीम, 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है, मरीज के परिजन काफी परेशान हैं और अहले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है। आप देखते अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है और तमाम जो लोग हैं, स्थानीय थाना के भी कई पदाधिकारी आए हुए हैं। क्या स्थिति है, क्या सूचना मिली आप लोगों को?
10: वही कि आग लग गया है।
5: आग लग गया जी। कितने लोगों की मौत की जानकारी?
10: अभी अब काम हो गया।
5: ब्रह्मपुरा थाना के
10: जी।
5: तो ब्रह्मपुरा थाना के दरोगा हैं जो पहुंचे मौके पर, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखते हैं काफी परेशान और अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। अग्निशमन पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है कि आईसीयू में भर्ती 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया जो विभिन्न अस्पतालों में गए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। 10 लोगों की मौत की तो अग्निशमन पदाधिकारी ने पुष्टि भी की है। वहीं मरीज के जो परिजन है वो काफी बेहाल और परेशान है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो चुके हैं। 3 बजे घटना, 4 बजे अग्निशमन पदाधिकारी पूरी यूनिट के साथ पहुंचे और आग को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो काफी बढ़ सकता है। आज की स्थिति काफी बेहाल है क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग की बात बताई जा रही है और आईसीयू में ज्यादातर सीरियस मरीज ही भर्ती रहते हैं, तो वहां से निकलना और भागना उनके लिए मुश्किल था। तो जितने लोग थे उनकी हालत काफी गंभीर हो गई है। एक दर्जन मौत की बात बताई जा रही है। प्रशासन थोड़ी देर में क्लियर करेगी, लेकिन फिलहाल जो सदर प्रसाद हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति है काफी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम मरीज के जो परिजन है वह काफी परेशान है और लोग घबराए हुए हैं कि उनके मरीज का क्या हुआ। कई लोग हमसे मिले जो बताए कि उनके परिजन की मरीज की मौत हो चुकी है और काफी परेशान है। मुझे
0: तो रेस्क्यू गए कई मरीजों की हालत भी गंभीर है। मुजफ्फरपुर का ये अस्पताल है, प्रसाद अस्पताल, जहां पर सुबह आग लगी। 3:30 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिलती है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जाता है जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार सर्च अभियान दोबारा चलाया जाएगा। लेकिन इन दो तस्वीरों से आप समझिए कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए जाते हैं, सुविधाएं बनाई जाती हैं, हर वो चीज तैयार होती है, लेकिन क्या उसकी कीमत इंसान की जान होती है, क्योंकि वजह आती है लापरवाही। 24 घंटे में आग की दो बड़ी वारदात, दो इमारतें जो लाक्षाग्रह में तब्दील हुई। 24 घंटे पहले दिल्ली का मालवीय नगर, एक होटल में आग लगती है, 21 लोगों की मौत हो जाती है। 24 घंटे बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगती है, एक अस्पताल में आग लग जाती है, अस्पताल का आईसीयू वार्ड आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। 7 लोगों की मौत की तो अब तक पुष्टि हो चुकी है। चूंकि आग आईसीयू वार्ड में लगी थी, ऐसे में संख्या बढ़ भी सकती है। अब 24 घंटे पहले मदद के लिए लोग सामने आते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब आग की घटना हुई, मदद करने वाले ही मैदान छोड़कर भाग गए। तो 24 घंटे पहले दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ, अब उसमें कार्यवाही शुरू होती है, और जब कार्यवाही शुरू होती है तो मुख्य आरोपी लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत से गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज, उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। आज लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। होटल में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 58 टूरिस्ट झुलस गए, कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने होटल अग्निकांड के मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल और रेस्टोरेंट सहित तमाम संस्थानों में चेक इन अभियान के आदेश जारी किए हैं। मालवीय नगर में 18 संपत्तियां भी चिन्हित कर ली गई हैं, जिन पर अब सीलिंग की तलवार लटक रही है। और इन सब जांच के बीच लवकेश कुमार, वो आरोपी दरअसल जिसका वो होटल था, गलत तरीके से होटल चला रहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के जिस होटल में आग लगी, आग लगने के बाद फरार लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत से दबोचा, उसे कोर्ट में आज पेश किया जाएगा।
12: इक्कीस लोगों को मौत की आग में झोंकने वाले फ्लोरिश स्टे B&B के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल में लगी आग के बाद लवकेश और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो पाए। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। अग्निकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को मालवीय नगर के इस होटल में 21 टूरिस्ट जिंदा जल गए, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। LG ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। एक महीने तक चलने वाला ये अभियान आज से शुरू हो रहा है।
13: आज तक की मुहिम का असर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि LG ने साफ साफ ये कहा है कि उन होटल्स को, रेस्टोरेंट को जिसको NOC नहीं है, उनको सील किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर ये कदम होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके कंजेस्टेड इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर होटल रेस्टोरेंट ओपन कर लिए जाते हैं।
0: कोई इमारत गैर कानूनी तरीके से चल रही थी, दिल्ली में कहा जाता है बिना दिल्ली पुलिस और नगर निगम की मंजूरी, उनकी जानकारी की, ये सब नहीं हो सकता। जिस तरह अग्निकांड हुआ है वो वाकई खौफनाक और दिल दहलाने वाला है। सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गढ़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है। गिरफ्तारी होती है होटल के मालिक की, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? जिन्होंने अनुमति दी, जिन्होंने लापरवाही की, ये नहीं देखा कि यहां पर गलत तरीके से एक पूरा होटल चल रहा है, जो कभी भी एक वारदात में तब्दील हो सकता है, कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, उन पर कार्रवाई कब होगी?
14: दिल्ली का अग्निकांड, कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल?
15: कैसे मर रहे हैं?
16: आग बहुत भयंकर थी।
17: इतना पहने कौन था कि करें क्या?
14: इक्कीस लोग जिंदा जल गए, होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
18: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
19: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
14: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, मच गई चीख पुकार।
20: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
14: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग, 21 मौतों का गुनहगार कौन? देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग, चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर एक, ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर दो, और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
0: दिल्ली के इस लाक्षाग्रह में मारे गए ज्यादातर लोग वो विदेशी थे जो भारत आते हैं इलाज करवाने, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बार उन्हें मौत मिलेगी। दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं है बल्कि सरकारी अंधेर गर्दी का वो साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गई। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी, भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थे कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
14: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
15: आराम, मेरा घर है। ये पुलिस है। अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है। यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है। आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिलीभगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
14: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की पोल खोलते रहे।
15: तस्वीर दिखाई जाती है एक एक के, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
21: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका।
15: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
14: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
15: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं, आसपास के लोगों को जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
14: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, ना ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और ना ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
0: मार्च में दिल्ली के पालम में अग्निकांड होता है, मई में विवेक विहार में अग्निकांड होता है और जून में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड होता है। रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
14: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अस्पताल में रात 3 बजे हड़कंप आईसी वार्ड में लगी आग। डीएम ने अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही के आरोप। दिल्ली अग्निकांड के मुख्य आरोपी लवकेश कुमार को किया गया गिरफ्तार। लुकआउट नोटिस जारी कर की गई थी घेराबंदी। मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। नियम तोड़ने वाले होटल रेस्टोरेंट पर सीलिंग की तलवार। होटल अग्निकांड से दहली दिल्ली। अब तक 21 टूरिस्टों की मौत। 58 झुलसे। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमित शाह ने कहा दिल दहलाने वाली त्रासदी। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतुव्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता। विपक्ष 60 टीएमसी विधायकों के साथ होने का दावा। प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा परमाणु हथियार न रखने की शर्त ईरान ने मानी। वीकेंड में हो सकता है समझौता। जल्द खामनेई से भी होगी मुलाकात।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के रत्न के बारे में जिसका नाम है पीला पुखराज। पीला पुखराज पहनने के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किनको धारण करना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है।

करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए आज हम बात कर रहे हैं पीला पुखराज नाम के रत्न की। पीला पुखराज होता क्या है और इसकी विशेषता क्या है? पीला पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न है। ये बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए धारण किया जाता है। पीला पुखराज जब आप पहनते हैं तो इसका प्रभाव काफी तेज होता है और काफी लंबे समय तक पीले पुखराज का प्रभाव बना रहता है। लेकिन पीला पुखराज बहुत तीव्र और गंभीर प्रभाव वाला रत्न है, इसीलिए बिना सलाह के पीला पुखराज मत पहनिए, क्योंकि अगर आप बिना सलाह के पीला पुखराज पहनेंगे तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। पीले पुखराज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

का व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं। करियर की समस्या हल होगी। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब अगर आप पुखराज धारण करते हैं और पुखराज आपको सूट करे, आपको फायदा पहुंचाए, तो किस किस तरह के फायदे होते हैं? पुखराज धारण करने से मन में गंभीरता आती है, मन की चंचलता दूर होती है। पुखराज आपके मोह को दूर करता है और जीवन में वैराग्य को मजबूत करता है। पुखराज धारण करने से ज्ञान की प्राप्ति आसान होती है और ये आपके ध्यान में एकाग्रता में आपकी सहायता करता है। जब आप पुखराज धारण करते हैं तो ये पति पत्नी के संबंधों को बेहतर बनाता है, ये वैवाहिक जीवन को दुरुस्त करता है। और सबसे बड़ा फायदा, अगर आपको पुखराज फायदा पहुंचाए तो ये आपको बदनामी से बचाता है, अपयश से बचाता है और जीवन के भटकाव से रक्षा करता है। अगर जीवन में कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना आने वाली है या जीवन में कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना घटने वाली है तो ये आकस्मिक घटना

अपनी पुखराज अगर आपको फायदा करे तो ये मन को सोच को पवित्र बनाता है और जीवन में आने वाले संकटों से आपको बचा लेता है। पीले पुखराज पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफल।

हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुनीता तिवारी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 6 अप्रैल 2002, जन्म का समय दोपहर के 3:55, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो करियर में सफल हो सकेगी। सुनीता जी, अगर आपकी पुत्री प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करे, तो आपकी पुत्री को प्रशासनिक सेवा में सफलता अवश्य मिलेगी। और अभी से उनको तैयारी करने को कहिए, 2027-28 का समय बहुत अच्छा है। इस समय में प्रशासनिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इनकी एकाग्रता बेहतर हो, इनका करियर बेहतर हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके

बनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर आप बिना सोचे विचारे, बिना जानकारी के पीला पुखराज पहन लें तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कैसा नुकसान हो सकता है? पीला पुखराज अगर नुकसान करे तो जीवन में नीरसता आ जाती है, जीवन बड़ा बोझिल सा, बड़ा उदास सा लगने लगता है। पुखराज धारण करने से कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति अहंकारी बन सकता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार अपने ज्ञान को, अपनी योग्यता को लेकर आ सकता है। पुखराज धारण करने से ऐसा माना जाता है कि मोटापा बढ़ने की संभावना होती है, और पुखराज धारण करने से पेट गड़बड़ हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर फैटी हो सकता है, और हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को लीवर की दिक्कत है या जिनका पेट हमेशा खराब रहता है, पेट कभी ठीक नहीं रहता, ऐसे लोगों को पीला पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। पीला पुखराज किसको पहनना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि कौन से लोग पीला पुखराज पहन सकते हैं और किन लोगों को पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन सकते हैं। लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन सकते हैं। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले पीला पुखराज धारण ना करें। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लोग विशेष दशाओं में पुखराज पहन सकते हैं। एक बात याद रखिए कि लग्न के अलावा किसी ग्रह को काउंटर करना है, जैसे शुक्र को काउंटर करना है, तो पीला पुखराज पहनना अच्छा होगा। या किसी विशेष तरीके की दशा चलने पर अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। यानी लग्न के अलावा ज्योतिषी की सलाह लेकर भी आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। अगर आप पीला पुखराज धारण करते हैं तो पीले पुखराज के साथ मोती पहनना बहुत अच्छा होता है। पुखराज के साथ गोमेद कदापि धारण नहीं करना चाहिए। पीले पुखराज के साथ गोमेद धारण करने से आप गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। देखिए, आप अगर पीला पुखराज पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में बृहस्पति की डिग्री के हिसाब से और उसकी स्थिति के हिसाब से आप उसका वजन डिसाइड कर सकते हैं। लगभग 6-7 रत्ती का जैसी कुंडली में डिग्री हो बृहस्पति की। और पीला पुखराज सोने में पहना जाता है। सोना अफोर्ड ना कर पाए तो पीतल में पहन सकते हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इसको पहना जाता है बृहस्पतिवार की प्रातः। धारण करने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें, उसमें कम से कम 1 घंटा अंगूठी को डुबाए रखें, उसके बाद निकाल कर भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लेते हुए तर्जनी उंगली में बृहस्पति वार को प्रातः अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमान।

समस्याएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

तो होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीला पुखराज धारण करने से मोटापा बढ़ता है। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर को प्रभावित करता है, शरीर पर असर डालता है, अगर ऐसे लोग पीला पुखराज पहने तो उनका मोटापा बढ़ेगा। हर व्यक्ति का मोटापा पीला पुखराज पहनने से नहीं बढ़ता। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर पर असर डालता है, अगर ऐसे लोग पीला पुखराज पहने तब उनका मोटापा बढ़ सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। और नंबर 9, काम की रुकावट दूर होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर का आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:07 तक। इस समय में भगवान विष्णु यानी श्री हरि की कपूर से आरती करें। आपके जीवन में पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न फणीन्द्रनाथ ने हमें लिखा है और फणीन्द्रनाथ हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 26 नवंबर 1965 का जन्म है। सुबह के 7 बजे, जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। फणीन्द्र जी कह रहे हैं कि काफी समय से अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, पुराना मकान बेच चुके हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, तो कब तक नया मकान बनेगा, कब तक सफलता मिलेगी? फणीन्द्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नए मकान बनने का आरंभ इस समय कर सकते हैं। अगर जून या जुलाई के समय में अभी
आप नए मकान बनवाने का आरंभ करें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। बिल्कुल सही समय आपका आ चुका है। मंगल की वजह से नया मकान बनने में अड़चन आ रही है, तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो अपने साथ एक पीला रुमाल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो केसर का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीली मिठाई खाकर

शुभ होगा। मकर राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो आज कोई नया काम शुरू मत करिएगा। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का और पीले फल का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में भीषण आग लगी। आईसीयू में धुआं भरने से 3 मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू। घटना की सूचना मिलते अग्निशमन विभाग के करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आईसीयू और अन्य वार्डों में फंसे मरीजों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा। एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा और मौतों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में है अब दिल्ली सरकार। आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में भी पेशी होनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल होंगे। ये विशेष टीम आज से पूरे दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, बहुत जल्दी सीलिंग की कार्यवाही संभव है। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी के आरोप हैं। जल्द ही सख्त कार्यवाही हो सकती है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, कई विदेशी नागरिकों की जान गई है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अस्पताल में कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ी बैठक भी बुलाई। अग्निकांड मजिस्ट्रेट की जांच के बाद आदेश दिए, सभी सुरक्षा मानकों की भी जांच होगी। दिल्ली अग्निकांड में होटल के फरार मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ एके मलिक ने बात करते हुए कहा कि इलाके में किसी भी होटल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। उपराज्यपाल ने सभी होटलों और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। दिल्ली अग्निकांड के एक्शन में दिल्ली सरकार भी अब एक्शन में दिखाई दे रही है। ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। आज कई इलाकों में सीलिंग की कार्यवाही भी की जा सकती है। दिल्ली के मेयर प्रवेश भाई ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपी जाए और मामले की पूरी जांच की जाए। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अग्निकांड पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत ने बयान दिया कि हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, 8 घायल अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने संवेदना जताई। अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून कामकाज पर सवाल उठाए। घटना को लेकर के आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेखा सरकार में पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी अस्पताल पर भर्ती परिजन अपने मिलने आए थे। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के संपर्क में है विदेश मंत्रालय और सभी जरूरी मदद दी जा रही है। साल 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर, आज कट्टरडूमा कोर्ट में फैसला आ सकता है। लाल किला धमाके मामले की एनआईए की चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। 7500 पेज की एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालते ही कई बड़े फैसलों की घोषणा की। सबसे बड़ा फैसला बेंगलुरु की खराब सड़कों को लेकर किया गया। योगेश कुमार ने कहा कि आईटी हब की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करने का भी ऐलान किया गया है। बैठक के गांव में भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का फैसला लिया गया। सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए भी देगी। बेंगलुरु में अनधिकृत निर्माणों और नियमों का उल्लंघन कर बनी इमारतों को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया। 2500 स्क्वायर फीट तक की संपत्तियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की भी घोषणा की गई है। कर्नाटक की नई सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्दी 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बागी गुट के नेता ऋता प्रताप बनर्जी को स्पीकर नेता विपक्ष बना दिया है। नेता विपक्ष कमरे की चाबी भी सौंपी गई। ऋता प्रताप बनर्जी ने 60 टीएमसी विधायकों के साथ का दावा किया, कहा हमारा गुट असली तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी का मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस में खलबली पर ममता बनर्जी के घर बड़ी बैठक हुई। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। ममता के करीबी भी टीएमसी की इस मीटिंग में शामिल हुए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद और ममता के खास डोला सेन का बयान, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता और आम आदमी दीदी के साथ है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हैं, उनके घर ईडी की टीम पहुंचे। प्राइमरी टीचर स्कैम के मामले में 15 जून को पेश होने का समन जारी किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, कोई भी नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार की व्यवस्थाओं पर पकड़ कमजोर पड़ रही है, उनके अनुसार एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देशी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई स्कीम। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 में चौथी स्क्वाड्रन शामिल हुई। राजस्थान में इसकी तैनाती हो सकती है, नवंबर में आएगी S-400 की आखिरी खेप। बिहार सरकार की बड़ी पहल, सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में ईवी कार शामिल की गई, पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत ये पहल हुई। नोएडा के साथ उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में अब ई बसें चलेंगी, 1,725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान हो जाएगा सफर। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों को मिली अब सौगात, सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से एनसीआर जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया, जल्द ही नो पीयूसीसी नो फ्यूल व्यवस्था लागू करेगी सरकार। टीएमसी पंचायत प्रमुख के घर पर सड़े अंडों से हमला किया गया, कूच बिहार में विरोध प्रदर्शन के बीच घटना से राजनीतिक माहौल गर्माया। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, छात्रों ने उठाई कई मांगे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाया। अमृतसर में हेरोइन और पिस्टल बरामद की गई, पुलिस की कार्रवाई में तस्करी नेटवर्क पर बड़ी चोट हुई, अब मामले की जांच जारी है। आयुष्मान घोटाले का भंडाफोड़ किया गया, एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को दबोचा, फर्जीवाड़े के बड़े रैकेट का खुलासा, कई और गिरफ्तारियों की भी संभावना। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, स्टेशन परिसर में हंगामे से अफरा तफरी मची, मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई, मांगों को लेकर के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, प्रशासन पर इससे दबाव बढ़ा है। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान हैं, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बिहार के कटिहार में धू-धू करके जल गई बाइक, हड़कंप मचा, बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी मची, कारणों की जांच जारी है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर के दौरान गोली चली, पुलिस ने कार्रवाई तेज की, नवसारी में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, विवाद ने उग्र रूप लिया। सिवनी में छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड। उड़ीसा में अवैध खनन कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला हुआ, माइनिंग विभाग की टीम को निशाना बनाया गया। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गर्माया, बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच जारी। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर के विवाद बढ़ा, चालकों प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को परेशानी। गाजीपुर एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इराज राजा का बड़ा बयान, पुलिस कार्रवाई को लेकर के कई अहम जानकारियां साझा की, मामले की जांच जारी है। नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, बवाल मचा, उड़ीसा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, मामले की जांच शुरू। नोएडा में दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। पति पत्नी के बीच एक खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला हुआ, भोपाल में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, दोनों घायल हुए। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभराकर गिर गया, सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा टला, घटना से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। बागपत में बुलडोजर चलाया गया, अवैध निर्माण पर कार्यवाही हुई, प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बांदा में बुलडोजर चलाया गया, प्रशासन की बड़ी कार्यवाही हुई, अवैध निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा, इलाके में हड़कंप। महिसागर से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवक का वीडियो चर्चा का विषय बन गया। पत्नी की बेरहमी से पिटाई पर पति की मौत हो गई। छतरपुर में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फ्रेशर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर इसका असर होगा। सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पूछताछ जारी है। श्रेयस अय्यर को अब T20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्य कुमार यादव को लेकर के जल्द होगा फैसला। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट सलाह करेगी। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में होगा। मुकाबला 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेव। फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकुब बेंसिक से होगा मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर हुआ है। 25वीं वरीयता प्राप्त श्राइडर ने नंबर 1 रैंक सबालिंका को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। बीसीसीआई ने जारी किया अक्टूबर नवंबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल। इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे, 2 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। 22 अक्टूबर से होगी T20 सीरीज की शुरुआत, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल। नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दी मुलाकात, दी मात। कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने इतिहास रच दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब बेंसिक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे। चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। फिल्म डॉन 3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह को राहत मिली है। माम सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद फाइस ने फैसला यूटर्न ले लिया है। रणवीर सिंह से अब पाबंदी हटा दी गई है। मणिपुरी फिल्म बूम ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम। न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरदचंद्र का प्री टीजर जारी किया गया। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पाथेर दाबी के शताब्दी को समर्पित है यह फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान फिर धमाल मचाएगी। 25 साल बाद 12 जून को फिर बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। स्पेशल ट्रेलर फिल्म का जारी किया गया। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे। सिर्फ करीबी लोग इसमें शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ी बात कही है। कहा अभी ईरान में जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि ईरान ने सहमति दी है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। ईरानी सेना का कुवैत के हवाई अड्डे पर भीषण ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ है। एयरपोर्ट परिसर को बड़ा नुकसान हुआ। एक शख्स की मौत हो गई है। 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गजा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया। कहा गजा पट्टी के 70% हिस्से पर कब्जा करने की योजना नहीं है। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्लान बनाया। नए प्रस्ताव के अनुसार इन देशों के प्रोडक्ट पर लगेगा 10 से 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ। यूक्रेनी सेना ने रूसी नियंत्रण वाले डोनेस के इलाके पर भीषण हमला किया। 8 लोगों की मौत हुई, 11 लोग इसमें घायल हो गए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा 1000 किलोमीटर दूर मौजूद तेल टर्मिनल को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। यूक्रेन के कीव पहुंचे नेटो प्रमुख मार्क रूट। युद्ध में मारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात। अमेरिकी कंपनी गूगल को यूरोपीय यूनियन ने बड़ी चोट पहुंचाई है। अब ईयू की संसद में गूगल की जगह फ्रांसीसी सर्च इंजन क्वांट का उपयोग किया जाएगा। पुर्तगाल में प्रस्तावित श्रम सुधारों के विरोध में कर्मचारियों ने देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल की। परिवहन, स्कूलों, अस्पतालों समेत अधिकांश सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई। जापान की राजधानी टोक्यो में भारी बारिश के साथ चल रही तेज हवाएं, बड़े पैमाने पर सड़क यातायात प्रभावित। सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई, ट्रेन सेवाएं निलंबित हुई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
4: Tune in's How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
8: नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: आगे आगे, करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
15: In association with
16: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
18: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
19: Hint, bade aaram se.
20: Vimal, bolo zuba kesri.
21: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
22: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
23: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में पिछले दिनों 3 कत्ल हुए। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, कातिल असद ढेर हो गया। लखनऊ में संदीप सिंह की हत्या हुई, दिनेश यादव गिरफ्तार हो गया। गाजीपुर में विनीत सिंह की हत्या हो गई, 5 दिन में गिरफ्तारी तक नहीं हुई। अब इन कत्लों के जुर्म और गुनहगारों की जाति मजहब पर चल रही राजनीति की बुनियाद देखिए। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या करने वाले आरोपी असद की मौत हो गई। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, कई संदिग्ध हिरासत में हैं, बाकियों की तलाश है। हत्याकांड के चक्कर में पूरे मोहल्ले की पैमाइश होने लगी है, आसमान से निगरानी तक हो रही है और अब कार्रवाई की चपेट में अवैध मदरसे तक आ गए हैं।
1: प्रशासन ने सीलिंग की है, आप ये देखिए, ताला लगा करके यहाँ पे मोहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस चिपकाया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से कि इस मदरसे से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो 1 सप्ताह के भीतर पेश किया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये जो मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पे लिखा है।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई करके मुस्लिम आरोपित का एनकाउंटर कर डाला, लेकिन 5 दिन पहले गाजीपुर में हुई होटल व्यवसायी की हत्या के केस में 1 आरोपित तक नहीं पकड़ा गया।
2: मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि दरारियां कम करिए, बुलडोजरों को पत्ते पर मत लीजिए, ये तो सर्दी की पराकाष्ठा है, घर में गरज से रहते हैं।
0: गाजीपुर के होटल व्यवसायी ने जान को खतरे की शिकायत पुलिस से कई बार की थी, लेकिन ना तो खतरा टाला गया और ना सुरक्षा मिली। हालांकि सीएम योगी इन दिनों हर सभा कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं।
3: माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं, हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: यूपी में माफिया के खात्मे के दावे के बावजूद जुर्म का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा और इन्हीं जुर्मों के हवाले से सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन यूपी में हो रहे अपराधों की खबरें और मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब ऐसा ही समाजवादी सवाल जब लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या को लेकर भी उठाए गए, लेकिन इस हत्याकांड में जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आरोपी दिनेश यादव नाम का शख्स है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है और इसी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने शूटर मुहैया कराने वाले दिनेश यादव के ड्राइवर मुबीन को भी गिरफ्तार किया। अब ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव 27 तारीख से लखनऊ में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे और पकड़ा गया आरोपित यादव है और दूसरा मुस्लिम। ओपी राजभर ने एक और तस्वीर डालकर उसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे जमीन विवाद है, जिसमें 5 लाख की सुपारी देकर बकरीद वाले दिन संदीप सिंह की हत्या करा दी गई। लखनऊ से आशीष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बहुत चुल मच रहा, कसम से आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
5: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
4: अधूरा प्यार ही
5: तो मैं दुनिया के यार ठीक है मत दुराओ
6: बिजुरी आई गए।
5: हाँ हाँ, थोड़ा और थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ,
6: यह अब ही नसिया पाया भैया।
4: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
6: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
4: हाँ यही खुजा जोर से।

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग। रात करीब 3 बजे आईसीयू वार्ड में भरा धुआं। डीएम ने अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। कई मरीजों की हालत गंभीर। दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप। अब तक 21 मौत, 50 से ज्यादा घायल। होटल में फायर एनओसी की होगी जांच। एलजी ने दिए निर्देश। शाह बोले, दिल दहला देने वाली त्रासदी।

0: स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा परमाणु हथियार ना रखने की शर्त ईरान ने मानी, वीकेंड में हो सकता है समझौता, जल्द खामेनेई से होगी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे और अब वक्त हो चुका है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में आज खबर देश के दो बड़े अग्निकांड की आपको बताएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में कैसे आग लगी है, दिखाएंगे मुजफ्फरपुर में आईसीयू में मौत के तांडव का दिल दहला देने वाला दृश्य। खबर दिल्ली की भी होगी जहां आग में हुई 21 लोगों की मौत के बाद क्या हो रहा है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है, वहीं होटल की आग में कैसे खत्म हो गया है पूरा परिवार आपको बताएंगे। खबर होटल मालिक की गिरफ्तारी और बाकी गुनहगारों की भी आपको बताएंगे। साथ ही बात प्रशासन की अनदेखी और उठते सवालों की भी होगी। साथ ही दिखाएंगे कि अब दिल्ली हादसे के बाद आज क्या एक्शन होने वाला है। वही खबर सियासत की भी बताएंगे कि कैसे बिखर गई है टीएमसी। बड़ी खबर का रुख करते हैं सीधा, दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड की खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से जो सामने आ रही है, जहां पर एक हॉस्पिटल में तड़के आग लग गई, अस्पताल में आग लगी, हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुआ। डीएम ने हादसे में अभी तक 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की है, करीब 20 मरीजों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, आरोप है कि आग लगने के बाद जो अस्पताल का स्टाफ था जिन्हें मरीजों को बचाना चाहिए था वो मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकले। अभी तक शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने के बाद हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो वहां से भाग निकला, जबकि उन्हें मरीजों को बचाना चाहिए था। आईसीयू वार्ड में कई मरीज भर्ती थे और आईसीयू वार्ड में ही ये आग लगी है। ऐसे में पूरे अस्पताल में हाहाकार मच गया, 20 मरीजों का रेस्क्यू किया गया है। तो आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, मरीजों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि कुछ मरीजों के बारे में जानकारी तक नहीं मिल पा रही है।
2: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में रात 3 बजे हड़कंप मच गया, आईसीयू वार्ड कब आग की लपटों में घिर गया किसी को पता ही नहीं चला। लापरवाही की हद उस वक्त पार हो गई जब दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो आईसीयू वार्ड धुआं धुआं हो चुका था। आरोप है कि डॉक्टर और कर्मचारी सभी मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकले।
3: आईसीयू में जो पांचवा तालाब आईसीयू है उसमें हम लोग पहुंचे, वहां पर बताया गया कि पांचवा तालाब आग लगी हुई है, तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था, धुआं से बहुत लोग दम घुट कर आदमी मर गया था। करीब करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेथ बॉडी को निकाला।
2: आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 20 मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में अचानक भड़की इस आग की वजह शुरुआती तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा उन्होंने लिया। डीएम ने हादसे में 3 मौत की पुष्टि भी की है।
4: आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे, 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं लगभग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका 100 गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है?
5: देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनसे जो मेरी बात हुई है या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं।
4: कुछ लोग बाहर भी थे जिनका 100 बाहर था,
5: 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर एक दो
4: ऑप्शन बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया जिनकी स्थिति काफी मैंने
5: जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए हैं, 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूंकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है तो 13 थे या 15 थे वो हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। उसमें 3 जो है वो डेथ्स कन्फर्म हुई है, अन्य जो मरीज है उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है उनके परिजनों के द्वारा द्वारा, यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर वो उनको भी चोटें आई हैं और वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, वो भी किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। तो हम लोग सारा डेटा जो है कन्फर्म कर रहे हैं कि कितनी डेथ्स हुई हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 3 बॉडी जो है वो हम लोगों के सामने में यहाँ दिखी है।
0: हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, मुजफ्फरपुर के डीएम के मुताबिक अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लगभग कितने मरीजों को बचाया जा चुका है, क्या है ताजा अपडेट बताइएगा।
6: देखिए पूजा, ये घटना जब सुबह तकरीबन 4 बजे घटी थी, उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम जो वहां पहले ही पहुंच गई थी, तो 1-1.5 घंटे के बाद जो है आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन आईसीयू में जितने भी मरीज भर्ती थे उनको जो है पहले तो वहां से निकाला गया है। और क्योंकि ये आईसीयू में ये आग लगी थी, पूरा धुआं धुआं हो चुका था आईसीयू, तो आईसीयू में आमतौर पर बहुत गंभीर जो बीमारी से ग्रस्त लोग होते हैं, मरीज होते हैं, वही उसमें होते हैं। तो जब पूरी वहां पर फायर की टीम वहां पर पहुंची तो उन लोगों ने दावा किया कि 15 से 20 मरीजों को उन्होंने निकाला है, और उनके हिसाब से कम जो है 8 से 10 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। हालांकि अब जो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं उन्होंने फिलहाल अभी 3 ही मौत की पुष्टि की है, और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं भी जिनके परिजनों से बात हो रही है और परिजनों का आरोप है कि उन्हें अपने मरीज मिल नहीं रहे हैं। तो इसमें अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि आईसीयू में पहले से भर्ती थे ये तमाम मरीज, अब दूसरे अस्पतालों में इनको शिफ्ट किया गया है, तो मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस बात की आशंका है। लेकिन फिलहाल 3 मौतों की पुष्टि की गई है और फिलहाल अब पूरे मामले की जांच चल रही है।
0: रोहित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए हादसे की खबर के बाद बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में हुए मार्मिक अग्निकांड की खबर, दरअसल कल हुए हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और इस हादसे के मुख्य आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को बीती रात पुलिस ने साकेत से गिरफ्तार कर लिया है। अब आज उसकी पेशी है। इस अग्निकांड के बाद जांच में खुलासा हुआ है कि होटल में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग झुलस गए, कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने होटल अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। एलजी ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल और रेस्टोरेंट सहित तमाम संस्थानों में चेकिंग अभियान के आदेश जारी किए हैं। मालवीय नगर में 18 संपत्तियां चिन्हित की गई है जिन पर सीलिंग की तलवार अब लटक रही है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। आज फिलहाल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी क्योंकि हो चुकी है, ऐसे में आज उसकी पेशी होने वाली है। लवकेश की गिरफ्तारी दिल्ली अग्निकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर हुई। तब जो होटल में आग लगी उसके बाद 21 टूरिस्ट की मौत भी हो गई है जो विदेशी नागरिक वहां पर मौजूद थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है वो आपको दे देते हैं। गैर इरादतन हत्या का ये आरोप है। होटल अग्निकांड में FIR दर्ज हुई, उसके बाद लवकेश को गिरफ्तार किया गया और ये आपको बता रहे हैं अब जब गिरफ्तारी के बाद जब लवकेश को पेश किया जाएगा तो ऐसे में कुल जो कल मौत हुई वो 21 हुई, मृतकों में 12 विदेशी नागरिक है। रेस्क्यू के दौरान 40 लोगों को बचा लिया गया है। इस होटल में लगभग 6 कमरों की इजाजत दी गई थी लेकिन उसके बाद भी इस होटल में लगभग 20 से ज्यादा कमरे बनाए गए। तो नाम लवकेश बजाज जिसकी गिरफ्तारी कल हो चुकी है और आज इसकी पेशी होने वाली है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या ताजा जानकारी आ रही है, आज लवकेश की पेशी होगी, ऐसे में मालवीय नगर में और भी जो होटल है और क्या उन पर भी अब तलवार

0: बजाज को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल मालिक लवकेश बजाज हादसे से पहले वहां से गुजरा भी था, हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था और वहीं से वो गुजरा, उसके बाद वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हो चुकी है, आज उसकी पेशी होगी। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लवकेश के बारे में बताइएगा, आज लवकेश बजाज की पेशी होने वाली है, क्या कुछ धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है?
1: पूजा, देखिए कल भी आज तक ने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से लवकेश बजाज की जो प्रॉपर्टी है वो जिस होटल में आग लगा वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और किस तरह से अलग अलग बायलॉज की उल्लंघन हुआ था। 6 कमरों की परमिशन आपको दी जाती है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो कैटेगरी होता है दिल्ली सरकार का उसके तहत, और आप वहां से 20 से ज्यादा लगभग 26 कमरे चला रहे थे, तो ये सीधे पहले ही बायलॉज का उल्लंघन है। दूसरा, फायर एग्जिट उस होटल के अंदर नहीं था, अगर फायर एग्जिट होता तो जो लोग आपको तस्वीरों में विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं कांच तोड़कर खिड़कियां तोड़कर ऊपर से कूद रहे हैं नीचे अपनी जान बचाने के लिए, वैसी स्थिति नहीं होती। जिस अग्रवाल परिवार की मैं बात कर रहा था वहां बुजुर्ग के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऊपर से नीचे भाग कर आए सीढ़ियों के द्वारा बाहर निकलने के लिए, लेकिन आग का स्रोत वहीं था, स्मोक वहीं से निकल रहा था तो लोग फंसे गए। तो ये साफ निकल के आ रहा है कि कोई फायर एग्जिट नहीं था। इसके साथ साथ क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर रखे गए थे, ये एंगल का भी जांच होना है। तो सीधे सीधे ये 3 एंगल तो आपको दिख ही रहा है। फिलहाल गैर इरादतन हत्या की बात कल कही जा रही थी, लेकिन धाराएं इस तरह के FIR में जो है रिवाइज की जाती हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अब 24 घंटे बीतने को चले हैं, तो पुलिस ने भी पुख्ता तौर पर अभी जो इनिशियल रूप में आप देखेंगे वो बायलॉज में उल्लंघन जो है उसको ऐड करते हुए फिर कार्रवाई आगे शुरू करेंगे।
0: अमित, लवकेश उस वक्त मौके पर ही मौजूद था, जो जानकारी सामने आ रही है आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। वहीं दिल्ली के होटल में भीषण आग ने 21 लोगों की जिंदगी छीन ली और इस पूरे मामले में खुलासा हुआ कि वहां कई लापरवाही बरती गई थी जिसकी वजह से यह हादसा बहुत बड़ा हो गया।
2: जो होटल दहक उठा वहां कई नियम तोड़े गए, कानून का मजाक बनाया गया। आग के बाद तफ्तीश तेज हुई, खुलासा हुआ कि इस होटल में जहां 6 कमरे बनाने की इजाजत थी वहां 25 कमरे बना दिए गए थे। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इस होटल को फायर का NOC नहीं मिला था, मतलब ये कि बगैर सुरक्षा मानकों को पूरा किए ये होटल चलाया जा रहा था। तीसरी अहम बात ये कि होटल में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, यानी हादसे की सूरत में जान बचाकर होटल से निकल पाना बेहद मुश्किल था। चौथा खुलासा, होटल के कमरों में खिड़कियां बेहद छोटी थी, वेंटिलेशन का ख्याल तक नहीं रखा गया था। होटल के बेसमेंट में ग्रिल लगा हुआ था जो बंद पड़ा था, इस वजह से जो लोग अंदर फंसे वो लाचार हो गए। सबसे बड़ी बात ये कि इतनी लापरवाही बरते जाने के बाद भी होटल पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी और किसी ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज, अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो होटल में जिस वक्त आग लगी उस वक्त की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग वहां पर मौजूद थे जहां 6 कमरे बनाने की इजाजत दी गई, वहीं 20 से ज्यादा कमरे बनाए गए, तो इससे ही आप समझे कि कितनी ज्यादा तादाद में वहां पर लोग होंगे, विदेशी नागरिक भी वहां पर थे। ये तस्वीरें देखिए, मालवीय नगर के होटल की आग लगने के बाद की तस्वीरें, सब कुछ जलकर राख हो गया है। तो दिल्ली में कल हुए होटल के अग्निकांड में गुरुग्राम का एक परिवार खत्म हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय गुरुग्राम के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने परिवार वालों के साथ होटल के अंदर ही मौजूद थे। विवेक अग्रवाल के साथ उनके 7 घरवाले और रिश्तेदार भी वहां हादसे का शिकार हो गए। हंसता खेलता पूरा परिवार होटल में हादसे का शिकार हो गया। अब गुरुग्राम में उनके मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि विवेक अग्रवाल बेहद ही मिलनसार शख्स थे।

0: देखिए ऐसा है कि हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे माहौल।
1: करते क्या थे सर?
0: सभी पड़ोसी ये सीए थे
1: और फैमिली इनकी वाइफ जो है वो क्या
0: इनकी
1: करते थे,
0: वाइफ
1: बच्चे क्या
0: पहले
1: कर रहे थे?
0: बिजनेस करती थी, बच्चे पढ़ते थे दोनों और वाइफ अब जो है ना बच्चों की पढ़ाई की वजह से घर पे ही बच्चों को संभाल रही थी।
2: तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति धन्य ही थे वो और सबसे मिलनसार। और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूंगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी तक। ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ होगी।
3: तो होटल में आग लगने के बाद से फरार लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत से धर दबोचा और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
4: इक्कीस लोगों को मौत की आग में झोंकने वाले फ्लोरिश स्टे B&B के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल में लगी आग के बाद लवकेश और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो पाए। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। अग्निकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को मालवीय नगर के इस होटल में 21 टूरिस्ट जिंदा जल गए जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। LG ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान आज से शुरू हो रहा है।
5: आज तक की मुहिम का असर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि LG ने साफ साफ ये कहा है कि उन होटल्स को, रेस्टोरेंट को जिसको NOC नहीं है उनको सील किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर ये कदम होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके कंजेस्टेड इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर होटल रेस्टोरेंट ओपन कर लिए जाते हैं।
3: तो बेहद संकरी गली में मौजूद इस होटल में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, खिड़कियां सील थी। खुद दमकल विभाग मानता है कि ऐसी इमारतें बेहद ही खतरनाक होती हैं, लेकिन NOC के नाम पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली के फ्लोरिश स्टे B&B अग्निकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब होटल आग की लपटों में घिरा था, अंदर चीख पुकार मची थी।
6: फायर ब्रिगेड लेकिन अभी तक नहीं आया, इतना करप्ट सिस्टम है कि अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया है।
4: ये वीडियो सुबह करीब 9 बजे का है। आग लगने के कुछ ही मिनट में होटल तंदूर बन गया। होटल की मेन एंट्री पर आग लगी थी, दूसरा कोई एग्जिट नहीं था। कमरों की खिड़कियां पूरी तरह से सील थी।
7: इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
4: किसी भी इमारत के लिए फायर NOC की जिम्मेदारी दमकल विभाग की होती है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि संबंधित विभागों से उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी मिली ही नहीं।
7: ये एक B&B कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की NOC के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी आया।
4: सवाल ये कि क्या इस बार भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होने वाली है या असल गुनाहगारों के नाम सामने आएंगे।
5: लोकेश की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है, फायर डिपार्टमेंट की, MCD की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। सवाल यही है कि क्या कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर लोकेश के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ दिन में उसको जमानत मिली जानी है। बहुत मुमकिन हुआ तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी, या फिर जो जिम्मेदार, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा।
3: मालवीय नगर के जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां की संकरी गलियों में बिजली के तार के खतरनाक जाल बिछे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन तार से जमकर चिंगारियां निकली। बिजली विभाग को अब जांच की याद आई है।
4: होटल में लगी भीषण आग ने लापरवाही और भ्रष्टाचार की कई परतें खोल कर रख दी हैं, और ये तस्वीरें उसकी जीती जागती गवाह हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, जब होटल धू धू कर जल रहा था, अंदर टूरिस्ट एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे और बाहर उन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त बिजली के तारों से निकल रही चिंगारियां बिजली विभाग की काहिलियत की कहानी बयां कर रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बिजली विभाग नींद से जागा। आनन फानन में कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जांच की गई और बताया गया कि सभी होटलों में मीटर अनसेफ जगहों पर लगे हैं।
8: मीटर चेक कर रहे हैं सर, मीटर सही जगह में लगा है या गलत जगह में लगा है, गेट पे लगा है, बाहर लगा है, वो चेक कर रहे हैं।
9: क्या आपने पाया है
8: यहाँ पर? अनसेफ जगह में लगा हुआ है, गेट के आगे लगा हुआ है। अच्छा। तो ये ठीक नहीं है।
9: अच्छा, सारे होटल्स को आपने चेक किया?
8: हाँ, अभी 6-7 होटल को चेक कर लिया सर।
9: सब में क्या स्थिति है?
8: वही स्थिति है, अनसेफ की है, सेफ नहीं। हाँ बिल्कुल।
9: ये आज आप जागे हैं, इससे पहले क्यों नहीं जागे जब हादसा हुआ?
8: ये तो हमारे बड़े अफसर बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे।
4: कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल मीटर, इंस्टॉलेशन का काम बिजली विभाग का है, लेकिन अब उसी बिजली विभाग के कर्मचारी ये चेक कर रहे हैं कि मीटर सही जगह पर लगे हैं या नहीं।
9: ये मीटर जो है वो दरअसल होटल के बाहर लगे होने चाहिए थे, इस वॉल पे लगे होने चाहिए थे या इसके बाहर होने चाहिए थे, लेकिन ये मीटर अंदर लगे हुए हैं, जो कि ज्यादातर इस तमाम होटल में इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी लापरवाही भी अगर कहा जाए तो बिजली विभाग की भी है, जो इस तरीके से नियमों की अनदेखी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जब हादसे होते हैं उसके बाद, हादसों के बाद तमाम प्रशासन जो है वो जागता है। कैमरा पर्सन मनीष विदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
3: तो होटल में भीषण आग और 21 मौत के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ दिल्ली सरकार सख्त एक्शन का दावा कर रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि पिछली घटनाओं से क्या सबक लिया है।
4: मालवीय नगर होटल अग्निकांड की आग सरकार तक पहुंची तो मंत्री और अधिकारी सभी एक्शन में आ गए। खुद आशीष सूद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से पूछताछ की और कड़े एक्शन का वादा किया। अब दिल्ली सरकार उन संस्थानों पर नकेल कसने का दावा कर रही है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिन पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज MCD, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग की टीम एक साथ जांच के लिए निकलेंगे।
10: हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
4: दिल्ली में 702 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर अब सरकार एक्शन की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा सरकार हर अग्निकांड के बाद ऐसी ही बातें करती है, लेकिन 21 मौत पर जवाबदेही तय करनी होगी।
11: फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी।
4: दिल्ली के मालवीय नगर की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। अब इस मामले में सियासत गरमाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
3: रुकते इस वक्त की एक बड़ी खबर का, पश्चिम बंगाल से, जहां पर NIA की टीम एक TMC नेता शौकत मोहल्ला के खिलाफ छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी बीते चुनाव में बमबारी की घटना को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि NIA के अधिकारी TMC नेता के घर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। भांगर में बमबारी हुई थी, उसी को लेकर छापा मारा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावों के दौरान जो बमबारी की घटना सामने आई थी उसको लेकर रेड की गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
3: यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
12: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद
15: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप, अब तक 21 मौत, 50 से ज्यादा घायल। होटल्स में फायर एनओसी की होगी जांच, एलजी ने दिए निर्देश। शाह बोले, दिल दहला देने वाली त्रासदी। ममता के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के रितमव्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष, 7 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा परमाणु हथियार ना रखने की शर्त ईरान ने मानी, वीकेंड में हो सकता है समझौता, जल्द खामेनेई से होगी मुलाकात।

वक्त तो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुजफ्फरपुर में जहां पर एक अस्पताल में आग लग गई और हादसे में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये पूरा हादसा हुआ। डीएम ने हादसे में अभी तक 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। करीब 20 मरीजों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आरोप है कि आग लगने के बाद जो अस्पताल का स्टाफ था वो मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकला। आग लगने के बाद का एक ये वीडियो भी सामने आया है। आईसीयू के बाहर का ये वीडियो है। अस्पताल के अंदर हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। लगभग 3 बजे ये आग लगी है। तो तस्वीर आप देखिए, आईसीयू वार्ड की तस्वीर। पूरा आईसीयू वार्ड जलकर खाक हो गया है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी और लगभग 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया 9:00।

0: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने के कारण 3 मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आईसीयू और अन्य वार्ड में फंसे मरीजों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी, प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और मौत की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। टीम आज से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी संभावना लग रही है। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी के आरोप, जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि, कई विदेशी नागरिक की भी गई है जान, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक शामिल, अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक। हादसे पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सभी सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के फरार मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर नोटिस। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ मलिक का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला। उपराज्यपाल ने सभी होटल्स और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच अभियान चलाने का दिया आदेश। अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज हो सकती है कई इलाकों के सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश, 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवारों को मिलेगा 2 लाख मुआवजा। आग हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान सामने आया, हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, 8 घायल अभी भी वेंटिलेटर पर। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर सवाल उठाते नजर आए। घटना को लेकर आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रेखा सरकार में पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही अग्रवाल परिवार को 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन से आए थे मिलने। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के संपर्क में है विदेश मंत्रालय और दी जा रही है सभी जरूरी मदद। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर, आज कड़कड़डूमा कोर्ट सुनाएगा फैसला। लाल किला धमाका मामले में एनआईए की चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस में सुनवाई, 7500 पेज की एनआईए ने दाखिल की थी चार्जशीट। कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार ने पद संभालते ही कई बड़े फैसलों की घोषणा की। सबसे बड़ा फैसला बेंगलुरु की खराब सड़कों को लेकर लिया गया। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आईटी हब की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करने का भी ऐलान। बैठक में गांव में भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का फैसला लिया गया, सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए देगी। बेंगलुरु में अनधिकृत निर्माणों और नियमों का उल्लंघन कर बनी इमारतों को लेकर भी बड़ा बयान, 2500 वर्ग फुट तक संपत्तियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा। नई सरकार ने रोजगार को भी प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा एक बड़ा झटका, बागी गुट के नेता रितम्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, सौंपी गई नेता विपक्ष के कमरे की चाबी। रितम्रता बनर्जी ने 7 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा किया, कहा कि हमारा गुट असली तृणमूल, ममता बनर्जी का लेते रहेंगे मार्गदर्शन। टीएमसी में खलबली पर ममता बनर्जी के घर बड़ी बैठक हुई, अभिषेक बनर्जी भी मौजूद, ममता के करीबी भी मीटिंग में शामिल। टीएमसी की राज्यसभा सांसद और ममता की खास डोलासेन का बयान सामने आया, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता और आम आदमी दीदी के साथ। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किल, घर पहुंची ईडी की टीम, प्राइमरी टीचर स्कैम का मामला 15 जून को पेश होने का समन जारी। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता।
1: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया।
0: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की व्यवस्था पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। उनके अनुसार एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी कई स्कीम। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज फायर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन। राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नवंबर में आएगी आखिरी खेप। बिहार सरकार की बड़ी पहल, सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में ईवी कार शामिल, पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत हुई पहल। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1,725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों में मिली सौगात, सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से NCR जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, जल्द नो PUCC नो फ्यूल व्यवस्था लागू करेगी सरकार। टीएमसी पंचायत प्रमुख के घर पर सड़े हुए अंडों से हमला किया गया, कूचबिहार में विरोध प्रदर्शन के बीच घटना से राजनीतिक माहौल गर्माया। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ NSUI का जोरदार प्रदर्शन, छात्रों ने उठाई कई मांगे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाया। अमृतसर में हेरोइन और पिस्टल बरामद की गई, पुलिस की कार्रवाई में तस्करी नेटवर्क पर बड़ी चोट, जांच जारी। आयुष्मान घोटाले का भंडाफोड़, STF ने मुख्य आरोपी दबोचा फर्जीवाड़े के बड़े रैकेट का खुलासा किया, कई और गिरफ्तारियों की संभावना। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, स्टेशन परिसर में हंगामे से अफरा तफरी मची, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, मांगों को लेकर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत। कटिहार में धू धू कर जली बाइक, मचा हड़कंप, बीच सड़क पर आग लगने से मची अफरा तफरी, कारणों की जांच जारी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। नवसारी में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, विवाद ने लिया उग्र रूप, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। सिवनी में छेड़छाड़ की वारदात CCTV में कैद हुई, आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पुलिस ने जांच तेज की। ओडिशा में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला, माइनिंग विभाग की टीम को निशाना बनाया गया, कई लोग जांच के घेरे में। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया, बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच जारी। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ा, चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को हुई परेशानी। गाजीपुर एनकाउंटर पर SP डॉक्टर इराज राजा का बड़ा बयान, पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की गई, जांच जारी। नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, मचा बवाल, ओडिशा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, जांच शुरू। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला, भोपाल में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों घायल। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभराकर गिरा, सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा टला, घटना से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। बागपत में चला बुलडोजर, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों पर हड़कंप मचा, कई ढांचे ध्वस्त। बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचा हड़कंप। महिसागर का खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवक का वीडियो चर्चा का विषय बना। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत, छतरपुर में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पुलिस जांच में जुटी। पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फ्रेशर्स समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर। सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पूछताछ जारी। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत की T20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्य कुमार यादव को लेकर जल्द होगा एक फैसला, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट, न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला, 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जर्मनी के जेवरेव, फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकोब मेंसिक से होगा मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर, 25वीं वरीयता प्राप्त श्राइडर ने नंबर 1 रैंक सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराया। BCCI ने जारी किया अक्टूबर नवंबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल, इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। 22 अक्टूबर से होगी T20 सीरीज की शुरुआत, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल। नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन की उनको मात दी। कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास। फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे। चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फिल्म डॉन 3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह को मिली राहत। सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद FWICE ने लिया यू टर्न। रणवीर सिंह से हटाई पाबंदी। मणिपुरी फिल्म बूम ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम। न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक सुजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्री टीजर जारी हुआ। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पाथेर दाबी की शताब्दी को समर्पित है ये फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान फिर से मचाएगी धमाल। 25 साल बाद 12 जून को फिर से बड़े पर्दे पर होगी री रिलीज। स्पेशल ट्रेलर जारी। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से करेंगे शादी। सिर्फ करीबी लोग होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी बात कही। कहा अभी ईरान में जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं। साथ ही ये भी कहा कि ईरान ने दी है सहमति, कभी नहीं रखेगा परमाणु हथियार। ईरानी सेना का कुवैत के हवाई अड्डे पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला। एयरपोर्ट परिसर को हुआ बड़ा नुकसान। एक शख्स की मौत, 60 से अधिक लोग घायल। गाजा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर कब्जा करने की नहीं योजना।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

होगा व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमान।

बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के

समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जगह दिल्ली, ये वही धमाका है जिसका बारूद पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हुआ। प्लान था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दिल्ली और मुंबई को दहलाना। हमलावर तैयार थे, गोला बारूद तैयार था, हमले की तारीख और जगह तय थी, लेकिन ISI और दाऊद की नापाक साजिश पर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पानी फेर दिया। वरना कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए एक बार फिर देश को दहलाने की खतरनाक साजिश रची थी। दाऊद और ISI की साजिश का बड़ा खुलासा। ISI के इशारे पर दिल्ली मुंबई को दहलाना था। दाऊद ने मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपा था जिम्मा। मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद आ चुके थे। दाऊद इब्राहिम का प्लान दिल्ली मुंबई। देश के दुश्मन नंबर एक दाऊद की नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल चंद हफ्तों पहले IB के कान कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने दाऊद के इसी व्हाइट हाउस पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने खड़े कर दिए। वजह थी डॉन दाऊद के व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ साथ ISI अफसरों की बढ़ी आवाजाही। दाऊद के घर पर बढ़ी हलचल पर नजर रखी गई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक 5 सितारा होटल से भारत में मौजूद कुछ लोगों को लगातार कॉल की गई। जानकारी को आगे बढ़ाया गया तो चौंकाने वाली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी। होटल से आ रही कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद सैयद मुदस्सर हुसैन कर रहा था। जैसे ही सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सलीम की मूवमेंट को ट्रैक किया गया तो ISI और दाऊद की डी कंपनी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। दिल्ली स्पेशल सेल ने कराची के टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद दाऊद के शार्प शूटर रहे मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम देने निकले 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आतंकियों की लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश का विजय उर्फ शूटर, झारखंड का नीतीश पासवान, महाराष्ट्र का तौकीर रिजवान, अहमद शेख और साजिद, पंजाब का हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह और नेपाल का आंग कामी लामा शामिल हैं। आतंकियों के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल को NSG की मदद लेनी पड़ी।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अस्पताल में आग से हड़कंप, रात करीब 3 बजे आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि, कई मरीजों की हालत गंभीर। दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, होटल के पास नहीं था फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह बनाए 25 कमरे। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप, अब तक 21 की मौत, 50 से ज्यादा घायल, होटल में फायर एनओसी की होगी जांच, एलजी ने दिए निर्देश, शाह बोले दिल दिलाने वाली त्रासदी। ममता के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष, 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी भी 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन आज प्रमुख तौर पर बात करेंगे उस लापरवाही की जिसने 21 लोगों की जान ले ली। दिल्ली का होटल अग्निकांड प्रमुख तौर से इस बुलेटिन में शामिल होगा। जान लेने वाले फ्लोरिस स्टे का मालिक गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन उसकी लापरवाही पर आंख मूंदने वालों पर एक्शन कब होगा, बुलेटिन में इस पर होगी बात। होटल में अग्निकांड में उजड़ गया गुरुग्राम का एक पूरा परिवार। उस अग्रवाल परिवार के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके 8 सदस्य इस अग्निकांड में मारे गए। साथ ही आपको दिखाएंगे आग की लपटों के बीच जिंदगी की जंग की तस्वीर, कुछ लोगों ने कैसे बचाई अपनी जान। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि पंचकुला से आ रही है, जहां एक शख्स पर 2 शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की है। जानकारी के मुताबिक रतन लुबना नाम के शख्स पर फायरिंग हुई है, जो एक निगम पार्षद का देवर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर रोहित गुदारा के शूटर्स ने हमला किया है। ये शूटआउट के वक्त की तस्वीरें जिसमें निगम पार्षद देवर पर यह हमला किया गया है, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। बीच सड़क पर पूरी वारदात और सरेआम फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत है। पंचकुला की घटना है और गैंगस्टर रोहित कमल जी संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। कमल जी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं?
1: देखिए, ये पूरा मामला है वो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है और उसमें एक शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है और 2 शूटर्स उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। और रतन लुबना नाम का ये शख्स बताया जा रहा है जिसके ऊपर फायरिंग की गई है, और एक निगम पार्षद है उनका देवर बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा खासतौर पर, यहाँ पे हमने देखा है कि टारगेटेड अटैक्स होना, किलिंग्स होना और खासतौर पर गैंगस्टर्स का बोलबाला होना अपने आप में कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गया है पूरे इलाके में ये बताता है। और अगर आप देखें जो गैंगस्टर्स हैं जो पहले कहीं यूपी या दिल्ली में ऑपरेट करते थे, अब काफी हद तक हरियाणा और पंजाब में आ चुके हैं। चंडीगढ़ में भी इस तरह से काफी इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन सरेआम जिस तरह से गोलियों से कोशिश की गई है उसको टारगेट करने की और वो भागते हुए जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहा है। पुलिस इसकी जांच में लगी है और ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग है, इनके ये शूटर्स हैं जिन्होंने ये हमला किया है।
0: ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कैसे ये हमला किया गया। अंधाधुंध फायरिंग की गई इस पूरे इलाके में, निगम पार्षद देवर पर यह हमला किया गया। हालांकि इसके पीछे अभी वजह साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है इस इलाके में सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गैंगस्टर्स अंधाधुंध फायरिंग करते हैं बेखौफ होकर। और अब बात दिल्ली अग्निकांड की। बात दिल्ली की, जहां से इतना बड़ा देश सब कुछ देखता है, यहां की घटनाओं को, देश की संसद यहीं पर मौजूद है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत है, जहां पुलिस की सबसे स्मार्ट टीम मौजूद है। उस दिल्ली में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर एक होटल चल रहा था जिसमें आग लगी, जलकर 12 विदेशियों समेत 21 लोगों की जान चली गई। आखिर 21 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ होटल मालिक की गिरफ्तारी काफी है? क्या उन विभागों और अधिकारियों पर एक्शन नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से लवकेश बजाज नियमों की धज्जियां उड़ाकर होटल चलाता रहा? होटल मालिक लवकेश बजाज को कल देर शाम के आलिशान कोठी से गिरफ्तार किया गया। अग्निकांड के वक्त लवकेश वहीं मौजूद था, लेकिन आग लगते ही वो कहां वहां ठहरे लोगों को बचाने की जगह भाग गया। उसने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि डर के चलते वो मौके से भाग गया। अपने घर भी नहीं गया और सड़क पर घूमता रहा। उसने खुलासा किया उसने 3 साल पहले आलूवालिया नाम की एक पार्टी से बिल्डिंग ली थी, उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था। पूछताछ में उसने दावा किया कि उसने एयरबीएनबी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट टूरिस्ट हेल्थ रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी। दिल्ली पुलिस इस दावों की जांच करवा रही, आज करीब 2:15 के आसपास उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
2: पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश एस्टेट बीएनबी होटल का मालिक लवकेश बजाज है। लवकेश की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने सघन अभियान चलाया था, भागकर बचने ना पाए इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया, हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशनों तक अलर्ट जारी किया गया था। कई ठिकानों पर छापे के बाद आखिरकार देर शाम पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लवकेश के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।
3: आलिशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है, D140 और

0: कार्यवाहियों पर आंख मूंदे रहने वाले दिल्ली सरकार के तमाम विभाग भी।
1: लॉकेस की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है, फायर डिपार्टमेंट की, एमसीडी की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। सवाल यही है कि क्या कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर लॉकेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कुछ दिन में उसको जमानत मिली जानी है। बहुत मुमकिन हुआ तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी, या फिर जो जिम्मेदार जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा।
0: अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होटल मालिक से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने कहा है कि 2022 में उसने ये बिल्डिंग ली थी, पहले किराए पर कमरा दे रहा था, बाद में होटल खोला। आरोपी ने यह भी कबूला है कि बिल्डिंग के लिए फायर की एनओसी कभी नहीं ली गई। ये बताया गया कि होटल वो अकेला चला रहा था, उसका कोई पार्टनर नहीं है। होटल का पूरा काम जय मिश्रा को सौंप रखा था। जय मिश्रा लवकेश बजाज का अकाउंटेंट है, जय मिश्रा का रोल वेरीफाई कर रही है, ज्यादा दस्तावेज इसी के नाम पर है। सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से थे, केवल 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन 25 कमरे का होटल खोला गया। जय मिश्रा की तलाश पुलिस कर रही है और मालिक के तीनों होटल्स के दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, अब क्या डिटेल्स सामने आ रही है? देखिए, सरसरी तौर पर तो सब कुछ मालूम चल गया है, कौन मालिक था, कौन चला रहा था, लेकिन ये एक घटना अपने आप में अकेली नहीं है। अगर उस पूरे इलाके को देखा जाए तो कई ऐसे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल्स चल रहे हैं, कई जगह पर अनैतिक तरीके से 6 की जगह 25 कमरे बनाए गए होंगे। उन पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये दिल्ली में सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम से कम आग से और लापरवाही से लोगों की जान ना जाए।
3: नया देखिए, मेरे ठीक पीछे वो बिल्डिंग है जो असल में कल शमशान घाट बना, अग्निकांड हुआ, लोग यहाँ से खिड़कियां तोड़ तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों की मौत हुई, ज्यादातर कल जब डॉक्टर्स से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर बुद्धि राजा हैं, मैक्स साकेत के डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि फ्यूम्स की वजह से, स्मोक की वजह से जान गई है। आग की लपटें तो ज्यादातर मामले में पहुंची ही नहीं, समझिए कि निकलने का रास्ता नहीं था, फायर एग्जिट नहीं था, इसकी वजह से हालात बने। और 18 लोग जो जिनकी मौत जिन्हें डिक्लेयर डेड किया गया था मैक्स साकेत में, उनमें से ज्यादातर ऐसे केसेस थे, 21 लोगों की जान गई है, एक ही परिवार के 8 लोग, अग्रवाल परिवार जो गुरुग्राम का है। तो सवाल यही है कि फायर एग्जिट क्यों नहीं, और जिस जगह पर एक बार मैं रोहित को कहूंगा कि वो लोकेशन भी दिखाए, ये मैक्स साकेत की तरफ सड़क जाती है, मेन रोड है बिल्कुल, जहां पुलिस ने अभी बैरिकेड लगा रखा है। और अगर कल कोई एक्सक्यूज कोई दे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी इसलिए नहीं पहुंच पाई, पाइपलाइन इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि गलियां सकरी थी, तो कम से कम इस मामले में तो ये बात सच नहीं निकलेगी। मुश्किल से 200 मीटर अगर आप यहां से गाड़ी लगाकर फायर ब्रिगेड को का पाइप आगे ले जाते हैं तो पानी पहुंचने में या गाड़ियां पहुंचने में यहां कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। तो जो स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, रेस्पॉन्स सिस्टम स्लो था, तो वो सवाल भी क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, ये सवाल बना हुआ है। लवकेश के ऊपर तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है। मिश्रा जो है उसके रोल के ऊपर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आप सही सवाल कर रही थी कि इस पूरे लेन में जो होटल्स हैं अब उनका क्या होगा, वहां फिलहाल आपको ताला दिखाई देगा, होटल मालिकों ने ताला बंद कर दिया है। जो लोग रुके हुए थे, चाहे वो मैक्स साकेत में इलाज करा रहे हों, आसपास के मेडिकल फैसिलिटीज में इलाज करा रहे हों, वो सारे लोगों को कह दिया गया कि आप चले जाइए फिलहाल के लिए, तो खुद से ताला बंद कर लिया है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है, आप नेहा, उपहार से लेकर करोल बाग और करोल बाग से लेकर पालम, पालम अब हौजरानी, जब भी इस तरह की घटना होती है तो एमसीडी एक्शन मोड में आती है, फायर एनओसी चेक किया जाता है, फायर एग्जिट चेक किया जाता है, और फिर दिल्ली सो जाती है जब तक अगली घटना हौजरानी जैसी ना हो जाए। तो कुल मिलाकर आज फिर संभवतः ये बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डिंगों की जांच होगी, कुछ पे ताले जड़े जाएंगे, कहीं फायर एनओसी चेक किया जाएगा, गाज गिरेगी कई सारे होटल मालिकों पे। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच कब आएगा, दिल्ली और दिल्ली वाले इस बात का इंतजार करते रहेंगे। नेहा,
2: लौटूंगी मैं आपके पास। अंशुल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, क्या पुलिस की कार्रवाई कल से लेकर अब तक हुई है, जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या आप देख पा रहे हैं?
4: तमाम लोग अभी जो है यहां पर पहुंचे थे, जिनके के रिश्तेदार परिजन
5: जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, अभी मैं होटल फ्लरिश इन के बाहर खड़ा हूँ। ये होटल भी लवकेश बजाज का ही है और अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में

0: दिखाऊं, ये बिल्कुल जहां घटना हुई है वहां से 100 मीटर दूर ये होटल है। और अगर आप इस होटल को देखें तो इसमें अंदर से जो कड़ी बांध करके ताला मार दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि अंदर कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। जो लोग बाहर थे उनके सामान अभी भी अंदर है, उनको सामान तक नहीं दिया जा रहा। और अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो इस होटल में भी उसी तरीके का एक बेसमेंट है, बेसमेंट में कमरे हैं और फिर ये ऊपर जाने का रास्ता है। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है कि किसी तरह का भी फायर एनओसी यहां पे इस जगह को मिला होगा। लेकिन उसके बाद भी पूरे धड़ल्ले से जो ये होटल है, ये होटल भी लवकेश बजाज द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में एक के बाद एक ऐसे होटल्स हैं। ये होटल वीनस इन है मेरे सामने, ये होटल भी बंद कर दिया गया है। जो लोग अंदर रह रहे थे उन लोगों को बोला गया है कि आप यहां से खाली कर दें। और एक के बाद एक जो होटल ओनर्स हैं अब अपने होटल के बोर्ड भी यहां से हटाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर पुलिस की या प्रशासन की नजर पड़ गई तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उन पर एक बार फिर से एक्शन ले सकता है, जिसके वजह से वो अब अपने होटल को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है, आप यहाँ देखें, ये सामने मैक्स हॉस्पिटल है, बिल्कुल सड़क के उस तरफ मैक्स हॉस्पिटल है और सड़क के सामने यहाँ पर लोग जो अपने पेशेंट्स के साथ आते हैं यहाँ पर रहते हैं, रुकते हैं। होटल के कमरे करीब 2,500-3,000 रुपए में यहाँ पे लोगों को मिल जाते हैं, जिसके वजह से एक ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है पेशेंट्स के लिए और उनके परिवारों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन इस पूरे लेन में जितने भी दूर दूर तक जितने भी होटल हैं, हर होटल पे इस वक्त ताला लगा है। जो लोग अंदर है उनको अंदर ही रखा, बंदी बनाकर रखा हुआ है, उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे। और जो लोग उस वक्त हॉस्पिटल में थे
1: बने रहे हमारे साथ। इस बीच आपको दिल्ली अग्निकांड की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जब आग लगी तो मौत से बचने के लिए किस तरह से जद्दोजहद में वहां पर लोग फंस गए, कई लोगों ने किस तरह से कूद कर अपनी जान बचाई।
2: तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, खौफनाक मंजर विचलित कर देने वाला है। आग की लपटों और दम घोटने वाले धुएं से घिरे लोगों की इन तस्वीरों को देखिए, कोई खिड़की से लटका हुआ है तो कोई पाइप से। इन लोगों को देखिए, मौत साक्षात सामने दिख रही है, निकलने का रास्ता नहीं है। मन में यही सवाल है कि ऊपर से कूदें या ना कूदें। मंजर कितना डरावना था वो इस महिला की आवाज से महसूस कीजिए, जो पास कहीं से वीडियो बना रही थी। जिंदगी और मौत की इस जंग के बीच दमकल कर्मियों और रेस्क्यू टीम से पहले दिल्ली के कई जांबाज पहुंच चुके थे, जिन्होंने सड़क पर गद्दे बिछा दिए ताकि जो लोग ऊपर से कूदें उन्हें कोई गंभीर चोट ना आए। नीचे से लोगों ने हौसला बढ़ाया तो ऊपर से एक एक कर कई लोगों ने छलांग लगाई। एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई, और गली में बिछे गद्दों की वजह से ही माँ और उसके बच्चे की जान बच गई। दिल्ली के मालवीय नगर में धधकते होटल की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा था, दूसरी तरफ एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा था।
3: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
4: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
5: हमने यहाँ रसाई गद्दे से गद्दे उठाए, सारे डाले ऊपर से बच्चों को, नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया, फिर बच्चों को कुदाया, 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
6: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे कि खुदवाने ऊपर से, फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
2: ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में कल सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। वहीं बेसमेंट से 6 से भी ज्यादा लोगों को निकाला गया।
7: ये बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: वीडियो में आप देख सकते हैं कि अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
1: और दिल्ली में कल हुए होटल अग्निकांड में गुरुग्राम का एक परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय गुरुग्राम के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने परिवार वालों के साथ एक होटल के अंदर मौजूद थे। उनके साथ साथ घर वाले और रिश्तेदार भी वहां हादसे का शिकार हो गए।

0: गुरुग्राम की इस कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कोठी है सीए विवेक अग्रवाल की। दिल्ली के होटल की आग में विवेक अग्रवाल समेत परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विवेक अग्रवाल के 80 साल के पिता राधेश्याम अग्रवाल मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। गुरुग्राम से आने जाने में परेशानी से बचने के लिए परिवार के लोग इस होटल में रुके थे। अपनी मां प्रेमलता अग्रवाल, पत्नी तर्जनी, बेटी जीविशा उर्फ एंजल, वारिया उर्फ पर्ल के साथ रुके थे। होटल की आग में चारों की जान चली गई। यही नहीं, होटल में विवेक के ननिहाल पक्ष से 3 लोग राजस्थान से पहुंचे थे, उनकी भी अग्निकांड में मौत हो गई।
1: विवेक अग्रवाल जी एक कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए, और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: पड़ोसी सदमे में है। यकीन नहीं हो रहा कि खुश मिजाज मिलनसार अग्रवाल परिवार अब उनके बीच नहीं रहा।
2: बहुत ही अच्छे व्यक्ति धन्य थे और सबसे मिलनसार, और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा।
3: मैं पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं, और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे।
0: दिल्ली के अग्निकांड में कुल 21 लोगों की जान गई, जिनमें 12 विदेशी और 9 भारतीय हैं। इन 9 भारतीयों में 8 लोग गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के थे। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: तो क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि कुछ लोग लापरवाही करते हैं और निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कल दिल्ली में अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर से अग्निकांड की खबर आई। यहां के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
5: हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है, और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहां पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहां पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहां पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी किसी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है, और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है, और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं, ये तमाम चीजें जो है जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक।
4: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आग के कारणों का कब तक पता चलेगा, किस पर लापरवाही का एक्शन लिया जाएगा, और अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में?
5: नेहा देखिए जो प्रथम दृश्या जो बात सामने आ रही है, जो डीएम से भी हमारी बात हुई थी कि आईसीयू वार्ड में कोने में एक मॉनिटर रखा हुआ था, अमूमन जो देखते हैं आप उसमें, उस मॉनिटर में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद अचानक से जो एसी है वहां पर, एसी में भी जो है वो ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से जो आग और ज्यादा फैल गया, पूरे आईसीयू में जो है वो धुआं धुआं हो गया था जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। और चार लोगों की फिलहाल इसमें जो है मरीजों की मृत्यु हो गई है और बाकी तकरीबन बताया जा रहा है दर्जन भर से ज्यादा मरीज जो आईसीयू वार्ड में थे जिनकी हालत पहले से ही गंभीर बनी हुई थी उन्हें आसपास के अस्पतालों में जो है वो भर्ती कराया गया। लेकिन फिलहाल हम इस वक्त प्रसाद अस्पताल पे ही मौजूद हैं और देखिए कार्रवाई के नाम पर अभी फिलहाल ये कहा गया है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हाँ, परिजनों की तरफ से जो है वो शिकायत जरूर जो है वो मिली है प्रशासन को, पुलिस को, और उसके बाद जांच टीम बना दी गई है, 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जांच की रिपोर्ट आएगी बताया जा रहा है, उसके बाद ही जो है सुनिश्चित किया जाएगा आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या FIR होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं उसका मामला जरूर सामने आ रहा है क्योंकि जो फायर ऑफिसर भी सुबह सुबह यहाँ आए थे आग बुझाने के लिए उनका भी कहना
4: है। घायलों की हालत अब कैसी है? यहाँ पर कर्मचारी नहीं मिल रहा, घायलों की हालत कैसी है?
5: देखिए जो खबर अभी आ रही है कि जो घायल अन्य अस्पतालों में जिन्हें भर्ती कराया गया था उसमें से एक और घायल और उस मरीज की जो है मृत्यु हो गई है। हालांकि आंकड़ा जो है वो 5 तक जा चुका है, हालांकि प्रशासन अभी 4 की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है क्योंकि पहले से ही सब लोग क्रिटिकल कंडीशन में थे आईसीयू में जो कोई भर्ती होता है, और उसके बाद ये घटना जब घट जाती है आगजनी की घटना, तो जाहिर सी बात है हालत जो है सबकी गंभीर बनी हुई है। नेहा
4: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

के अस्पताल में आग से हड़कंप। रात करीब 3 बजे आईसीयू वार्ड में भरा धुआं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि। कई मरीजों की हालत गंभीर। दिल्ली होटल अग्निकांड के मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए। दिल्ली में आग से 4 तरफा हड़कंप। 21 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। होटल में फायर एनओसी की होगी जांच। एलजी ने दिए निर्देश। शाह बोले, दिल दलाने वाली त्रासदी।

0: टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा परमाणु हथियार न रखने की शर्त ईरान ने मानी, वीकेंड में हो सकता है समझौता, जल्द खामनेई से होगी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: पंचकुला में एक शख्स पर दो शूटर्स की अंधाधुंध फायरिंग, सूत्रों के अनुसार रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स द्वारा हमला किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से चार मरीजों की गई जान, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू। मौके पर मौजूद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये मुआवजे का ऐलान। मालवीय नगर के फ्लोरस होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट कमेटी का गठन, इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। 3 माह से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई संभव। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी के आरोप, जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में 21 की मौत, कई विदेशी नागरिकों की गई जान, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वाले 12 विदेशी नागरिक शामिल, अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक। हादसे पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सभी सुरक्षा मानकों की होगी जांच। होटल के फरार मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर नोटिस। आज तक दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ एके मलिक का खुलासा, इलाके में किसी होटल को एनओसी नहीं। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला, उपराज्यपाल ने सभी होटल्स और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच अभियान चलाने का दिया आदेश। अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज हो सकता है कई इलाकों में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश, 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर संवेदना जताई, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। आग हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान, हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए, 8 घायल हैं जो अब वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर उठा रही है सवाल। घटना को लेकर आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, रेखा सरकार में पिछली घटनाओं का जिक्र किया गया। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की गई जान, सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन से आए थे मिलने। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के संपर्क में, विदेश मंत्रालय दी जा रही है सभी जरूरी मदद। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड की सुनवाई अंतिम पड़ाव पर आज, कड़कड़डूमा कोर्ट सुनाएगा फैसला। लाल किला धमाका मामले में एनआईए की चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, 7,500 पेज की एनआईए ने दाखिल की थी चार्जशीट। कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार ने पद संभालते कई बड़े फैसलों की घोषणा की, सबसे बड़ा फैसला बेंगलुरु की खराब सड़कों को लेकर लिया गया। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, आईटी आपकी सड़कों को बेहतर बनाने के 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करने का ऐलान। बैठक में गांव में भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का फैसला, सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए देगी। बेंगलुरु में अनधिकृत निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर बनी इमारतों को लेकर बड़ा ऐलान, 2500 वर्ग फुट तक संपत्तियों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा। नई सरकार ने रोजगार को दी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में जल्द 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बंगाल में ममता बैनर्जी को लगा बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, सौंपी गई नेता विपक्ष के कमरे की चाबी। ऋतव्रत ने 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का किया दावा, कहा हमारा गुट असली तृणमूल, ममता बैनर्जी का लेते रहेंगे मार्गदर्शन। टीएमसी में खलबली पर ममता बैनर्जी के घर बड़ी बैठक, अभिषेक बैनर्जी मौजूद, ममता के करीबी मीटिंग में शामिल। टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता की खास, जोला सेन का बयान, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता और आम आदमी दीदी के साथ। सीएमडी सांसद अभिषेक बैनर्जी की बड़ी मुश्किल, घर पहुंची ईडी की टीम। प्राइमरी टीचर्स कैंप का मामला 15 जून को पेश होने का समन जारी। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, कोई नहीं रोक सकता।
2: सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा।
0: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार की व्यवस्था पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। उनके अनुसार एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देशी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए कई स्कीम्स। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन। राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नंबर्स में आएगी आखिरी खेप। बिहार सरकार की बड़ी पहल, सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में ईवी कार शामिल, पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत हुई पहल। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1,725 नई बसों का संचालन किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों को मिली सौगात, सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी मंजूर। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से NCR जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, जल्द नो PUCC नो फ्यूल व्यवस्था लागू होगी। पीएमसी पंचायत प्रमुख के घर पर सड़े अंडों से हमला, कुछ बिहार में विरोध प्रदर्शन के बीच घटना से राजनीतिक माहौल गर्माया। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ NSUI का जोरदार प्रदर्शन, छात्रों ने उठाई कई मांगे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाया। अमृतसर में हेरोइन और पिस्टल बरामद, पुलिस की कार्रवाई में तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, जांच जारी। आयुष्मान घोटाले का भंडाफोड़, STF ने मुख्य आरोपी दबोचा, फर्जीवाड़े के बड़े रैकेट का खुलासा, कई और गिरफ्तारियों की संभावना। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, स्टेशन परिसर में हंगामे से अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, मांगों को लेकर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, प्रशासन पर बढ़ा दबाव। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत। कटिहार में दूधू का जली बाइक, मचार कम, बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी, कारणों की जांच जारी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। नवसारी में दो गुट के बीच जमकर मारपीट, विवाद ने लिया उग्र रूप, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। MP के सिवनी में छेड़छाड़ की वारदात, CCTV में कैद, आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस ने जांच की तेज। ओडिशा में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान टीम पर हमला, माइनिंग विभाग की टीम को निशाना बनाया गया, कई लोग जांच के घेरे में। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया, यूपी के बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच जारी। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ा, चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों की बड़ी परेशानी। यूपी के गाजीपुर एनकाउंटर पर SP डॉक्टर इराज राजा का बड़ा बयान, पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की, जांच जारी। नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, मचा बवाल, ओडिशा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, जांच शुरू। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क का किया खुलासा। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला, भोपाल में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों घायल। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभराकर गिरा, यूपी के सिद्धार्थनगर में टला बड़ा हादसा, घटना से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल। यूपी के बागपत में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती, अतिक्रमणियों में हड़कंप, कई ढांचे ध्वस्त। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचाड़ कम। गुजरात के महीसागर का खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवक का वीडियो चर्चा का विषय बना। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत। MP के छतरपुर में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फ्रेशर्स समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर। गुजरात के सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पूछताछ जारी। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत की T20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्य कुमार यादव की जगह को लेकर जल्द होगा फैसला, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून में से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे जर्मनी के जेरेव, फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकोब मेंसिक से होगा मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर, 25वीं वरीयता प्राप्त श्राइडर ने नंबर 1 रैंक सावालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराया। बीसीसीआई ने जारी किया अक्टूबर नवंबर में होने वाले टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल। इस दौरे में 5 टी20, 5 वनडे, 2 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। 22 अक्टूबर से होगी टी20 सीरीज की शुरुआत, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा, रमेश बाबू का कमाल। नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने दी मात। कतर के तेसीम मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास, फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब मेंसिक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे। चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी को पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में मिली जगह। फिल्म डॉन 3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह को मिली राहत। सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद FWIC ने लिया यू टर्न, रणवीर सिंह ने हटाई पाबंदी। मणिपुरी फिल्म बूंग में दुनिया भर में रोशन किया देश का नाम। न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र की प्री टीजर जारी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पाथे दाबी की शताब्दी को समर्पित है फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान फिर मचाएगी धमाल। 25 साल बाद 12 जून को बड़े पर्दे पर होगा धमाल। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में गर्लफ्रेंड गौरी स्ट्रीट से करेंगे शादी, सिर्फ करीबी लोग होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कही बड़ी बात, कहा ईरान में जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा ईरान ने दी सहमति, कभी नहीं रखेगा परमाणु हथियार। ईरानी सेना का कुवैत के हवाई अड्डे पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला, एयरपोर्ट परिसर को नुकसान, एक शख्स की मौत, 7 से ज्यादा घायल। कुवैत ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो, एक के बाद एक कुल 3 ईरानी हमलों में दहला कुवैत। वीडियो में एयरपोर्ट पर भीषण ब्लास्ट की घातक तस्वीरें आई सामने। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्लान बनाया। नए प्रस्ताव के अनुसार इस देश के प्रोडक्ट पर लगेगा 10 से लेकर 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ। यूक्रेनी सेना ने रूसी नियंत्रण वाले डोनेट्स्क इलाके पर किया भीषण हमला, 8 की मौत, 11 घायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा 1000 किलोमीटर तक तेल टर्मिनल को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। यूक्रेन के कीव पहुंचे नाटो प्रमुख मार्क रूट, युद्ध में मारे सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। अमेरिकी कंपनी गूगल को यूरोपीय यूनियन ने दी बड़ी चोट, अब ईयू की संसद में गूगल की जगह फ्रांसीसी सर्च इंजन क्वांट का होगा उपयोग। पुर्तगाल में प्रस्तावित श्रम सुधार के विरोध में कर्मचारियों ने की देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल। परिवहन, स्कूल और अस्पताल समेत अधिकांश सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित। जापान की राजधानी टोक्यो में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं, बड़े पैमाने पर सड़क यातायात प्रभावित, सैकड़ों उड़ानें रद्द, ट्रेन सेवाएं निलंबित।

0: और अब खबर पंचकुला से, जहां एक शख्स पर दो शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक रतन लुबना नाम के शख्स पर यह फायरिंग की गई, जो एक निगम पार्षद का दीवर है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने हमला किया। देर तक ये फायरिंग कई राउंड्स की गई, जिसकी आवाजें आप सुन सकते हैं। इस वीडियो में देखा भी जा सकता है किस तरीके से हमलावर भाग रहे हैं। और पंचकुला का ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये शख्स जिस पर गोलियां दागी गई, वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और पश्चिम बंगाल से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां एनआईए की टीम एक टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी बीते चुनाव में भांगर में हुई बमबारी की घटना को लेकर है। बताया जा रहा है कि एनआईए के अधिकारी टीएमसी नेता के घर पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। छापेमारी हो रही है कि कहीं इस घटना के पीछे इनका हाथ है, उसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। काफी देर से कार्य बीते चुनाव में भांगर में हुई बमबारी की घटना को लेकर है। बताया जा रहा है कि एनआईए के अधिकारी टीएमसी नेता के घर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। छापेमारी हो रही है कि कहीं इस घटना के पीछे इनका हाथ है, उसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। काफी देर से कार्रवाई हो रही है। चुनाव के दौरान बमबारी की घटना को लेकर ये रेड डाली जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के गोपालपुर में टीएमसी पंचायत प्रमुख गीता बर्मन के घर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग करते हुए घर पर सड़े अंडे और पानी की बोतलें फेंकी। तोड़फोड़ की कोशिश का भी आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद पंचायत सेवाएं प्रभावित हुई और कई लोगों के नाम जॉब कार्ड सूची से हटा दिए गए। गीता बर्मन ने आरोपों को खारिज कर जानलेवा हमला इसे बताया। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और बात अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन की, वहां पर अचानक अफरा तफरी तब मच गई जब कोलकाता से जम्मू तवी जा रही ट्रेन का एक यात्री कैंट रेलवे स्टेशन के मोदहा क्रॉसिंग के पास ट्रेन की बोगी की छत पर चढ़कर हंगामा करने लगा। युवक हाई टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार के बीच छत पर चढ़ गया, वहां पर दौड़ता रहा। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सांसें ये देखकर थम गई। इस दौरान करीब 45 मिनट तक ट्रेन सेवा बाधित रही। उसके एक साथी ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर फोन कर सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल ट्रेन को रुकवाने के साथ ओएचई लाइन की विद्युत आपूर्ति बंद करनी पड़ी। काफी समझाने बुझाने के बाद मोदहा रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां के सिवनी में स्कूल के शिक्षक पर 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना 29 मई की है, जब बखारी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने स्कूल गई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद शिक्षक ने छात्रा को कमरे के अंदर बुलाया और पूरक शिक्षा परीक्षा का प्रश्न पत्र बताने की बात कही, लेकिन छात्रा डरकर चली गई और अपने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बात सूरत की, जहां पर हिट एंड रन और ड्रिंक एंड ड्राइव का सनसनीखेज मामला सामने आया। शराब के नशे में धुत एक चालक ने अपनी तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार से सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू कार ने के बाद एक तीन वाहनों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके पर आरोपी चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। बात मथुरा की, जहां पर हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां डीजल भरवाने के बाद एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट लगी थार में बैठे युवक बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक काले रंग की थार धननगर फिलिंग स्टेशन पर पहुंची। थार में कई युवक सवार थे। सामान्य ग्राहकों की तरह वाहन में डीजल फुल कराने के बाद पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उनसे कहा कि थार की टंकी भर गई है और डीजल भरने के बाद जैसे ही कर्मचारी ने टंकी का ढक्कन बंद किया और रुपए लेने की तैयारी की तभी चालक ने अचानक वाहन दौड़ा दिया। वक्त छोड़े से ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो।
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट,
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ।
3: हाँ यही यही यही खुजा जोर से।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में पिछले दिनों तीन कत्ल हुए। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, कातिल असद ढेर हो गया। लखनऊ में संदीप सिंह की हत्या हुई, दिनेश यादव गिरफ्तार हो गया। गाजीपुर में विनीत सिंह की हत्या हो गई, 5 दिन में गिरफ्तारी तक नहीं हुई। अब इन कत्लों के जुर्म और गुनहगारों की जाति मजहब पर चल रही राजनीति की बुनियाद देखिए। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या करने वाले आरोपी असद की मौत हो गई। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, कई संदिग्ध हिरासत में हैं, बाकियों की तलाश है। हत्याकांड के चक्कर में पूरे मोहल्ले की पैमाइश होने लगी है, आसमान से निगरानी तक हो रही है और अब कार्रवाई की चपेट में अवैध मदरसे तक आ गए हैं।
1: प्रशासन ने सीलिंग की है, आप ये देखिए, ताला लगा करके यहाँ पे मोहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस चिपकाया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से कि इस मदरसे से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो 1 सप्ताह के भीतर पेश किया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये जो मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पे लिखा है।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई करके मुस्लिम आरोपित का एनकाउंटर कर डाला, लेकिन 5 दिन पहले गाजीपुर में हुई होटल व्यवसायी की हत्या के केस में 1 आरोपित तक नहीं पकड़ा गया।
2: मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि दरारियां कम करिए, बुलडोजरों को पत्ते पर मत दीजिए, ये तो सर्दी के पराकाष्ठा है।
0: गाजीपुर के होटल व्यवसायी ने जान को खतरे की शिकायत पुलिस से कई बार की थी, लेकिन ना तो खतरा टाला गया और ना सुरक्षा मिली। हालांकि सीएम योगी इन दिनों हर सभा कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं।
3: माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं, हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: यूपी में माफिया के खात्मे के दावे के बावजूद जुर्म का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा और इन्हीं जुर्मों के हवाले से सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन यूपी में हो रहे अपराधों की खबरें और मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब ऐसा ही समाजवादी सवाल जब लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या को लेकर भी उठाए गए, लेकिन इस हत्याकांड में जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आरोपी दिनेश यादव नाम का शख्स है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है और इसी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने शूटर मुहैया कराने वाले दिनेश यादव के ड्राइवर मुबीन को भी गिरफ्तार किया। अब ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव 27 तारीख से लखनऊ में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे और पकड़ा गया आरोपित यादव है और दूसरा मुस्लिम। ओपी राजभर ने एक और तस्वीर डालकर उसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे जमीन विवाद है, जिसमें 5 लाख की सुपारी देकर बकरीद वाले दिन संदीप सिंह की हत्या करा दी गई। लखनऊ से आशीष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: दिल्ली होटल के बाद अब मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग से हड़कंप। रात करीब 3 बजे आईसीयू वार्ड में भरा धुआं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि। कई मरीजों की हालत गंभीर। दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप। अब तक 21 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। होटलों में फायर एनओसी की होगी जांच। एलजी ने दिए निर्देश। शाह बोले, दिल दहला देने वाली त्रासदी। ममता के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर। बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष। 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत। सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Sokudo,
1: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशली इस्तवाल। सुबह के 10 बज गए हैं, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले ये जानिए कि आज सुबह क्या है खास। होटल, अस्पताल, किसकी लापरवाही से लगी आग? बात करेंगे दिल्ली अग्निकांड की, जिसमें होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगी है और वहां भी 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में होटल जला और मुजफ्फरपुर में अस्पताल। क्या है लापरवाही का आलम और क्या है सिस्टम का हाल, ये पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। देश की राजधानी में आग की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। 21 लोग इस आग की वजह से मारे गए हैं, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। जान बचाने के लिए कई लोग होटल की छत पर चढ़ गए थे, कुछ लोग खिड़कियों से बालकनियों से कूद गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। जैसा कि हर बार होता है, इस अग्निकांड के बाद भी दिल्ली सरकार जाग गई है या फिर जागने का दिखावा तो कर ही रही है। अब दिल्ली के होटल और रेस्तरां सबकी सेफ्टी की जांच की जा रही है। अगर ये जांच पहले हो जाती तो 21 लोगों को झुलस कर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। खैर, मालवीय नगर जहां ये घटना हुई है वहां की 72 इमारतों को चिन्हित भी कर लिया गया है। मतलब सब कुछ होगा, लेकिन सब होगा घटना के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करते हैं। होटल मालिक जिसका नाम है लवकेश बजाज, उसने कल रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है, जिसमें पता चला है कि लवकेश घटना के वक्त होटल गया था। उसने देखा कि उसका होटल जल रहा है, लेकिन वो वहां रुका नहीं, वहां से फौरन भाग खड़ा हुआ। लवकेश बजाज उसने बताया कि डर के मारे वो घर भी नहीं गया, सड़कों पे ही घूमता रहा, कहीं नहीं गया, सड़कों पर घूमता रहा। पूछताछ में आरोपी लवकेश ने यह भी बताया कि उसने 2022 में ये बिल्डिंग ली थी, पहले किराए पर कमरा दे रहा था, बाद में उसने पूरा का पूरा होटल खोल दिया। आरोपी ने कबूला कि बिल्डिंग के लिए फायर की NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसने कभी भी नहीं ली। देश की राजधानी में ये सब चल रहा था, बिना फायर NOC के चल रहा था। और ताज्जुब ये कि किसी भी सरकारी तंत्र को पता तक नहीं चला और ये होटल चलता रहा और अंत में इसमें मौत हुई है अग्निकांड में 21 लोगों की। तो कौन है इनका जवाब दे? क्या सिर्फ ये शख्स? और चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकुश सिंह का, जो कि इस वक्त अंशुल सिंह का, जो कि इस वक्त मौजूद है उसी इलाके में जहां ये पूरा अग्निकांड हुआ है, यानी कि हौज रानी का इलाका मालवीय नगर में पड़ता है। अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ यही एक होटल नहीं था इस लवकेश का, वहां पे और भी होटल थे, उसके साथ ही वहां दूसरे भी कई होटल चल रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या वहां ग्राउंड में आपको कोई कार्रवाई किसी भी एजेंसी की होती हुई नजर आ रही है आज?
1: जी, आज सुबह से तो किसी भी तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। बस ये दिख रहा है कि जो होटल मालिक हैं, जो इलीगल होटल चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने होटल के नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं हौज रानी इलाके में हूँ और अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन आप इस इलाके में भी देखिए कि किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज जो एक के बाद एक है वो यहाँ चल रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उन्होंने बिल्डिंगें चिन्हित कर ली हैं, जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये कितनी बिल्डिंगें हैं, क्या सबके अगेंस्ट एक्शन लेंगे क्या? आप अगर यहाँ तस्वीरों में देखें तो ये सारे रेसिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन इन सब में आप देखें तो इन सब में इलीगल बेसमेंट चल रहे हैं। MCD के नियमों के अनुसार बेसमेंट में किसी भी तरह का कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पूरे इलाके में, हौज रानी इलाके में की बात करें तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ऐसे बेसमेंट बने हुए हैं जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है और आए दिन यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। मैं आपको और दिखाऊंगा इस पूरे इलाके में, अगर आप देखें ये गलियां इतनी संकरी हैं कि अगर यहां कोई हादसा हो गया तो पुलिस प्रशासन यहां पहुंच भी नहीं सकता, यहाँ पे फायर की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती। आप देखिए कितने बड़े बड़े बेसमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। क्या यहाँ की लोकल पुलिस को इसके बारे में नहीं पता? क्या एमसीडी को इसके बारे में नहीं पता कि ये सारे जो बेसमेंट है ये किस तरीके से चल रहे हैं? ये देखिए, ये एक और बड़ा होटल है। इस होटल ने भी अपना नाम अब छुपा लिया है, कहीं भी इस होटल का नाम नहीं देखा जा सकता। बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं, होटल अंदर से ही लॉक किया हुआ है। लेकिन इस होटल में भी आप देखें, ये बेसमेंट है, इस यहाँ बेसमेंट में फिर से कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। तो एक के बाद एक इस पूरे इलाके में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं, सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी तरीके से गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो एक संगठित तरीके से चलाई जा रही है, जहां लोकल पुलिस बीट ऑफिसर को तो पता ही होगा, इसके अलावा एमसीडी के अफसरों को भी पता होगा। और

0: वहां पे, देखा भी इसने, लेकिन वहां से भाग खड़ा हुआ क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा था, अपने ऊपर जो कार्रवाई होने वाली थी उससे बचना चाह रहा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पता चल रहा है कि होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस उसकी पेशी करेगी। देर रात उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ पूछताछ भी की गई है। बड़ी खबर यह है कि उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, क्या जानकारी है इस पेशी के बारे में?
1: देखिए, लगातार पूछताछ हो रही है। कल यही मालवीय नगर थाने में अरेस्ट करने के बाद सीधे लवकेश बजाज को लेकर आया गया और उसके बाद उससे पूरी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से ये होटल चल रहा था और जिस तरीके से बाकी होटल चल रहे हैं, तो उनको नियमों को ताक पे रखा गया है। जब मैं इसके एक दूसरे होटल में गया था और इस तरीके से चल रहे वहां होटल में गया था अंजलि, तो देखा कि वहां पर ऑर्डर की कॉपी बाकायदा फ्रेम करके इन लोगों ने रिसेप्शन पे रखा था। और जब उस ऑर्डर की कॉपी को मैंने देखा तो उसमें साफ लिखा था कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत ये जो परमिशन है वो मिली है। 6 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे 3 और फर्स्ट फ्लोर पर 3, यानी टोटल 6 कमरे और 2 फ्लोर। लेकिन वहां पर आप देखिए, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5, यानी 6 मंजिला पूरी पूरी इमारत बना के रख दी गई है और 25 कमरे वहां पर बनाए गए हैं। अब आप सोचिए, कल एक गनीमत ये थी अंजलि कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, जिस होटल में आग लगी फ्लरिश इस्टे में, वो कॉर्नर की प्रॉपर्टी थी, इसलिए कम से कम शीशा तोड़ के कुछ लोग कूद कर अपनी जान बचा लिए। लेकिन जिन होटल्स में हम गए, जिनकी आप अगर फ्रंट देखेंगे, तो मैं अगर यहां दिखाऊं तो आप सोचिए, इतना सिर्फ फ्रंट यहाँ से अगर लोहे की गेट से आप देखिए, 12 से 15 फीट, करीब 10 से 12 फीट का फ्रंट है और पीछे डीप आप देखेंगे तो तकरीबन 50 फीट से 60 फीट अंदर तक डीप है। अब दोनों तरफ अगर बिल्डिंग है तो वहां पर अगर ऐसी किसी बिल्डिंग में हादसा हो तो एक शख्स वहां से बचना मुश्किल हो जाता। आप सोचिए, 40 लोग थे अंदर, कॉर्नर की बिल्डिंग थी, इसलिए 20 लोगों ने कूद कर या दूसरे तरीके से जान बचा ली। बाकी अगर किसी बिल्डिंग में हादसा हो तो जान बचाना मुश्किल है, सब में बेसमेंट है। अब क्या ये सिर्फ होटल मालिक की जिम्मेदारी, उसकी अकेले के करप्शन है क्या जानकारी?
0: बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत चल रहा था, ये कोई होटल नहीं था, इसके पास सही लाइसेंस भी नहीं था। तो आपको अब तक इस घटना से जुड़े जो 10 बड़े अपडेट आए हैं वो बता देते हैं। तो दिल्ली अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, ये अभी ऑफिशियल आंकड़ा है। दिल्ली में फायर सेफ्टी और NOC की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 72 ऐसी इमारतें उसी इलाके की हैं जिनको चेक किया जाएगा। दिल्ली में असुरक्षित प्रतिष्ठान सील किए जाएंगे, ये अभी सरकार और प्रशासन कह रहा है, लेकिन देखना आगे है। फ्लरिश होटल के मालिक लवकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लवकेश के प्रबंधन में 3 पार्टनर हैं, इनके पास कई होटल हैं, तो क्या कार्रवाई उन पर भी होगी? फ्लरिश होटल को सिर्फ 6 कमरे चलाने की अनुमति थी, तो फिर ये 25 कमरे कहां से चल रहे थे? क्योंकि वहां थे 25 कमरे जिनमें लोग रह रहे थे। फ्लरिश होटल के पास फायर की NOC थी ही नहीं, ये साफ बताया गया है। होटल के नीचे एक रेस्तरां भी चल रहा था, वो भी बेसमेंट में, जिसकी बिल्कुल अनुमति नहीं थी और वहां ही पहले आग लगी थी। होटल के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता था, यानी कि साफ तौर पर जितने भी फायर रूल्स हैं उन्हें तोड़ा गया था। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। खबर यह है कि क्या दिल्ली में इस अग्निकांड को टाला जा सकता था? इस पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 6 महीने पहले ही बात जब गोवा के होटल में अग्निकांड की हुई थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, ये जनहित याचिका थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया था। 7 जनवरी को अधिकारियों को राजधानी भर के सारे होटल, रेस्तरां और अन्य गेस्ट हाउस में हो रही फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर चिंताओं को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, नजरअंदाज किया गया। MCD, फायर ब्रिगेड और संबंधित विभागों, NDMC, दिल्ली के मुख्य सचिव को भी बताया गया था कि ये एक्शन लीजिए, लेकिन नहीं किया गया। तो चलिए आपको यह आदेश दिखा देते हैं जो दिल्ली के सबसे उच्चतम न्यायालय की तरफ से आया था, दिल्ली की का हाई कोर्ट। क्या था यह आदेश और क्यों नहीं माना, तो देखिए 6 दिसंबर 2025 को

0: ये जनहित याचिका लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि गोवा में जो हादसा हुआ था एक रोमियो लेन नाम के क्लब के अंदर, उसके बाद हाई कोर्ट में एमसीडी, फायर ब्रिगेड, इन सबको आदेश जारी किए गए थे। इनसे कहा गया था कि फायर सेफ्टी का जो भी एक्शन है उसका एक प्लान बनाया जाए, दिल्ली को सुरक्षित किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया, इसमें मुख्य सचिव को गया, एनडीएमसी को गया, एमसीडी को गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट के प्रशासन को कई बार रिमाइंडर भी दिए गए। आखिरी रिमाइंडर 5 मई 2026, सोचिए 5 मई को दिया गया था। एमसीडी और फायर ब्रिगेड उदासीन बने रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या आदेश आया है कोर्ट से। 6 दिसंबर 2025 की इस याचिका को लेकर के सब आराम से बैठे रहे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उस वक्त एक्शन ले लिया गया होता, 5 मई को जब आखिरी बार उन्हें चेताया गया था, कोई एक्शन ले लिया गया होता तो शायद ये 21 लोग बच गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आदेश था सभी एजेंसियों के नाम पे था, सरकार में सचिव, एनडीएमसी, एमसीडी, फायर सर्विसेज, कोई बचे ही नहीं है, इनमें से किसी को भी कोई खबर लेने की सुध नहीं हुई।
1: हाँ बिल्कुल, ये कहना सही नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन तो लेते रहे, लेकिन अपनी जेब भरने के एक्शन लेते रहे, भ्रष्टाचार के साथ अपने काम करने का एक्शन लेते रहे। वो सिर्फ अपने मतलब इससे पता चलता है कि कोर्ट के आदेश की इन लोगों की निगाह में कदर क्या है। कोर्ट के आदेश पर पांव रखते हुए ये आगे निकल गए अपने भ्रष्टाचार की यात्रा पर, और अभी तक ना तो किसी बड़े बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि हम उन भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेंगे और उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इसकी ये कहने की हिम्मत किसी भी बड़े नेता ने नहीं दिखाई है। अभी तक ये सारी चीजें यही चल रही है कि हमें बड़ा अफसोस है और हादसा हो गया और हमें इसकी, लेकिन मैंने वही गौर किया, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है। और आम आदमी पार्टी जिसका 10 साल शासन रहा, वो 1.5 साल का हिसाब मांग रही है, और 1.5 साल वाली पार्टी 10 साल का हिसाब मांग रही है, लेकिन किसी को भी इसमें ये पड़ी नहीं है। अभी फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एमसीडी और एनडीएमसी, ये सब इस पर बात करने से बच रहे हैं कि आगे वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को भी इसमें करना पड़ेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अर्पित भार्गव से हमारी बात हुई, जो इस मामले में याचिका करता है, उन्होंने कहा है कि हमने कई बार इस आदेश के कंप्लायंस के लिए कई बार उनको रिमाइंडर दिए हैं, लेकिन किसी पर कोई, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। सब अपने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत ना तो दिल्ली सरकार ने दिखाई, ना एमसीडी ने दिखाई, ना एनडीएमसी, ना दिल्ली पुलिस ने। जब कोई लेंटर लगाता है, कोई भी अपनी छत ढालता है, अवैध या वैध, पुलिस वालों को तुरंत खबर होती है, वो आकर अपना हफ्ता वसूल जाते हैं, वो पैसे लेकर जाते हैं।
0: बिल्कुल, बीट कांस्टेबल से लेकर वहां पर एमसीडी हो या एनडीएमसी, सबको इसकी जानकारी रहती है। और बता दें, दिल्ली में 700 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बीएनबी स्कीम के तहत चल रही हैं, तो जानकारी सिर्फ 72 की नहीं, 700 की ली जानी चाहिए। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, दिल्ली के इस खौफनाक अग्निकांड के बाद सरकार और सिस्टम की नींद अब खुल गई है। अब हर होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान वगैरह की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। कोचिंग संस्थान में भी हमने देखा था कैसे पानी भर गया था और लोगों की मौत हुई थी। अब पता चल रहा है कि फायर सेफ्टी या अन्य नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।
2: पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश एस्टे बीएंडबी होटल का मालिक लवकेश बजाज है। लवकेश की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने सघन अभियान चलाया था। भागकर बचने ना पाए, इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशनों तक अलर्ट जारी किया गया था। कई ठिकानों पर छापे के बाद आखिरकार देर शाम पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लवकेश के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।
3: आलिशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140, और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए।
2: अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। एक महीने तक चलने वाला ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। अग्निकांड के दौरान के जो वीडियो और चश्मदीद के बयान सामने आए हैं, उसमें भयंकर लापरवाही की बात सामने आई है। आरोप है कि दमकलकर्मी मौके पर काफी देर से पहुंचे थे।
4: फायर ब्रिगेड लेकिन अभी तक नहीं आया, इतना करप्ट सिस्टम है कि अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया है।
2: ये वीडियो सुबह करीब 9 बजे का है। आग लगने के कुछ ही मिनट में होटल तंदूर बन गया। होटल की मेन एंट्री पर आग लगी थी, दूसरा कोई एग्जिट नहीं था। कमरों की खिड़कियां पूरी तरह से सील थी।
5: इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता।
2: खिड़कियां सील थी, निकास का दूसरा रास्ता नहीं था। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बने थे। आखिर ये सब देखना किसका काम था? सवाल ये है कि 21 मौतों का गुनहगार सिर्फ लवकेश बजाज है या फिर उसकी लापरवाहियों पर आंख मूंदे रहने वाले दिल्ली सरकार के तमाम विभाग भी।
3: लोकेश की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है, फायर डिपार्टमेंट की, एमसीडी की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। सवाल यही है कि क्या कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर लोकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ दिन में उसको जमानत मिली जानी है। बहुत मुमकिन हुआ तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी या फिर जो जिम्मेदार, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा।
2: अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
0: और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, सीधा रुख करते हैं उसका। सोचिए, देश की राजधानी में ये सब चल रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन अब जब आग लगी है तो सब जाग गए हैं। तुरंत 72 इमारतों को चिन्हित भी कर लिया गया है। सोचिए, पता सबको है, बस घटना का इंतजार होता रहता है कि घटना होगी फिर खाना पूर्ति करेंगे। एलजी ने बैठक भी कर दी है जिसके बाद तय किया गया है कि होटल, रेस्तरां, कोचिंग, नर्सिंग होम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इन सब का ऑडिट किया जाएगा और जहां गड़बड़ी मिलेगी उसे सील किया जाएगा। तो ये बड़ी बात कही जा रही है कि सील किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो बिहार से आ रही है, मुजफ्फरपुर में जा रही है कि सील किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो बिहार से आ रही है, मुजफ्फरपुर में आग लगी है जहां एक अस्पताल में आग की खबर आई और 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुआ। डीएम ने हादसे में अभी तक 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। करीब 20 मरीजों को रेस्क्यू किया गया है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह का। रोहित, क्या पता चल रहा है इस आग के बारे में अभी?
6: देखिए अंजलि, पूरी घटना की जो है वो जांच चल रही है। इस वक्त हम प्रसाद अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं जहां पर आज सुबह तड़के 4 बजे ये आगजनी की घटना घटी और अभी फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी, डीएम, एसएसपी सब लोग जो है वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं और जांच चल रही है। एफएसएल की टीम भी आकर वो 5वें तल्ले पर जो है उसने पूरा सब कुछ सील कर दिया है, क्योंकि आईसीयू जो है वो 5वें तल्ले पर ही जो था वहां पे, और वहीं पर पूरे तल्ले को सील करके वहां पे एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर रही है। और प्रथम दृश्य जो बात सामने आई है कि आईसीयू वार्ड के कोने में एक मॉनिटर।
0: जी रोहित, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लगातार हम आते रहेंगे ताजा हाल जानने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. 4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
10: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
11: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
13: Sokudo.
14: बहुत टायर्ड हो गई।
15: Take it, take it, date, not bites.
16: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
15: लायन डेट नट बाइट्स.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: फॉरेस्ट स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जॉइंट कमेटी का गठन भी किया गया। इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। टीम आज से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई संभव। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी का आरोप। जल्द ही हो सकती है सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत, कई विदेशी नागरिकों की भी जान गई। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक शामिल। अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक। हादसे पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक। अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सभी सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस पूछताछ में किए कई खुलासे। आशक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ एके मलिक का खुलासा। इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला। उपराज्यपाल ने सभी होटल्स और नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच अभियान चलाने का दिया आदेश। अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी। आज हो सकती है कई इलाकों में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश। 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। आग हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान। हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, 8 घायल अभी भी वेंटिलेटर पर। दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताई संवेदना। अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर उठा रहे हैं सवाल। औजानी में ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा। इलाके की अधिकांश इमारतों के बेसमेंट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जा रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही अग्रवाल परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन को मिलने आए थे। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। दूतावासों से संपर्क में है विदेश मंत्रालय और दी जा रही है सभी जरूरी मदद। होटल मालिक लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा। वो डर के चलते मौके से हो गया था फरार। लोकेश बजाज ने कहा वो घर भी नहीं गया और सड़कों पर ही घूमता रहा। पूछताछ में मालिक का खुलासा। 3 साल पहले आलूवालिया नाम की एक पार्टी से ली थी ये बिल्डिंग। आरोपी की पुलिस 3 से 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। आरोपी ने कबूला बिल्डिंग के लिए कभी नहीं ली गई फायर की एनओसी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी कार्रवाई का खौफ। हौजरानी के होटल्स पर लटके ताले। मालवीय नगर और हौजरानी मार्केट में विदेशी पर्यटक सामान लेकर ठहरने की जगह तलाशते हुए नजर आए। दिल्ली रेस्तरां अग्निकांड में रेस्तरां की बॉडी सीटीआई ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। फायर सेफ्टी के लिए 8 सूत्री गाइडलाइन की मांग। दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के 24 घंटे बीत चुके हैं। एक दिन पहले इस वक्त मालवीय नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते 21 मौतों की पुष्टि हो गई। इसमें 12 विदेशी नागरिक भी थे जिन्होंने जान गंवा दी। एक दिन पहले इस वक्त मालवीय नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते 21 मौतों की पुष्टि हो गई। इसमें 12 विदेशी नागरिक भी थे जिन्होंने जान गंवा दी। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल जिम्मेदार प्रशासन से है, सवाल सरकार से है, आखिर ऐसे अवैध तरीके से बनाए गए होटल कैसे बेरोक टोक चल रहा था जो 21 लोगों के लिए शमशान बन गया।
1: सावधान, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन आपको देखना जरूरी है क्योंकि 21 लोगों की जान विचलित कर देने वाली सरकारी व्यवस्था ने ले ली है। धुएं के बीच शीशा फोड़कर खिड़की से सीढ़ी पर आकर जान बचाती एक लड़की, कैमरा ऊपर घूमता है, दो खिड़कियों पर दो से तीन लोग टंगे हुए आग के बीच अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। कैमरा दाएं जाता है, सामने शीशा फोड़कर मदद की गुहार लगाती एक विदेशी महिला लटकी हुई दिखती है। कैमरा फिर दूसरी तरफ गया, सीढ़ी से एक शख्स किसी तरह एक बुजुर्ग को धुएं के बीच से निकालते बचाते दिखता। इसी खिड़की से एक और लड़की को बचाया जाता है। इस बीच अचानक आग की लपटों के साथ धुआं निकलता है, शीशा तोड़कर निकलता एक विदेशी नागरिक सामने टंगा हुआ नजर आता है। सच में क्या ऊपर वाले के ही भरोसे आम आदमी को छोड़ दिया गया, वरना कोई सोच सकता है कि देश की राजधानी में बिना इजाजत नियम तोड़कर सरकारी नींद बेहोशी और सरकारी सिस्टम की कुंभकर्णी नींद के कारण चलते होटल के भीतर से लोगों को यूं आग लगने पर कूद कर बचना होगा। एक शख्स कूदता कुछ ही देर में यहां से दूसरा आदमी भी छलांग लगा देता। मौत की आग से कूदते ऐसे आम लोग जिन्हें लगा होगा कि जिस दिल्ली से पूरे देश के लिए नियम कायदे कानून बनकर चलते हैं, कम से कम वहाँ तो उनको फॉलो कराया जाता होगा, लेकिन नहीं। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगती है तो बचने के लिए 6 मंजिला होटल की अलग अलग मंजिलों से आम आदमी कूदता रहा। जिनके लिए नेता वादा करते हैं कि जिता दो तो फूल बिछा देंगे रास्ते में, उनके लिए आग लगने पर स्थानीय लोग किसी तरह गद्दा बिछा कर कहते रहे बचना है तो कूदो, और लोग कूदते रहे क्योंकि नीचे से बिजली के तारों में उठता शोला डराता रहा। देश में प्रति व्यक्ति आय में तीसरे नंबर पर रहने वाले राज्य दिल्ली में पता चला कि सरकारी विभागों के भरोसे जीवन बचने के पायदान पर बहुत नीचे दिल्ली है, जहां आग की लपटें होटल को घेरती हैं और लोग ऊपर तक जान बचाने का रास्ता खोजते नजर आते हैं। 21 जिंदगी इस इमारत में जलकर खाक हो गई, जिस इमारत से आग के शोलों और दम घोट देने वाले धुएं के बीच लोग कूद कूद कर बचने की कोशिश करते रहे।
2: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
3: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
2: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
3: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
2: फोर्थ फ्लोर
3: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे
2: देखिए
3: ये खिड़की, देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे, ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके।
1: फिर थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँचती है।
4: पूरा हो गया, आग लग गया, अच्छे तरीके से तब आया है, इतने लोग मर गए तब।
1: जो कूदे वो बचे, जो नहीं कूद पाए यूं लाश बनकर चद्दर में समेट कर बाहर लाए गए। इस सवाल को जिंदा करके क्या जीवित रहना है तो सरकार से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में आग भड़की वो अवैध था, जिस होटल में आग लगी वो अवैध था, एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही था, न एमसीडी का एनओसी था, न फायर विभाग का एनओसी था, न ही खाद्य विभाग की एनओसी थी। बिना एनओसी होटल से लेकर रेस्टोरेंट चलता रहा। मानो सरकार और सरकारी विभागों ने तय कर लिया कि जनता की जान जाए तो जाए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: तो सरकार की लापरवाही है और जिसका होटल था उसका लालच है। जिस होटल में आग लगी वो लवकेश बजाज नाम के होटल कारोबारी का है, और कल घटना के बाद अपने होटल में फंसे लोगों को बचाने की बजाय वो वहां से फरार हो गया, वो दिल्ली में घूमता रहा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा उसने पुलिस के सामने। तो पुलिस के सामने उसने ये बात मानी है कि हादसे के वक्त वो मौके से गुजरा था और वहां रुका नहीं, वो वहां से फरार हो गया, निकल गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उसे डर लगा इसलिए वो मौके से भाग गया। लेकिन वो अपने घर नहीं गया, वो यूं ही सड़कों में घूमता रहा क्योंकि उसे डर लग रहा था। बीती रात दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उसने यह माना कि उसके पास एनओसी नहीं थी, होटल वो अकेले ही चला रहा था, उसका कोई पार्टनर नहीं था। जय मिश्रा नाम का एक शख्स था जिसे उसने ये होटल चलाने के लिए सौंपा था, वो उसका अकाउंटेंट था। तो ये कुछ बड़े खुलासे हैं जो इस शख्स ने पुलिस के सामने किए हैं।
1: बजाज D140 साकेत दिल्ली, जिसके घर को खोज कर खबरदार करने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंच चुके हैं।
2: लोकेश बजाज जी कहाँ है इस वक्त?
5: इस वक्त नहीं, उधर ही होगा सर।
2: कहाँ पे?
5: सुबह ही निकले हैं होटल के तरफ।
2: अच्छा, जरा एक सेकंड गेट खोलिएगा
5: सर, एक मिनट मैम को
2: बुलाइए। बुलाइए बुलाइए बुलाइए।
1: दिल्ली की आग का गुनहगार नंबर एक लवकेश बजाज है, जिसका पहला गुनाह है 6 कमरे वाले होटल का लाइसेंस लेकर 25 कमरे का होटल चलाना। गुनाह नंबर 2, बिना नक्शा पास कराए होटल बनाकर चलाते रहे। गुनाह नंबर 3, अवैध रूप से होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलवाना। गुनाह नंबर 4, आग से बचाव की जगह आग लगने पर मरने देने वाली कुव्यवस्था रचना। गुनाह नंबर 5, बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट गेट एक ही होना, यानी बचने का कोई रास्ता ना छोड़ना। गुनाह नंबर 6, जो एक नहीं बल्कि दिल्ली में मौत की आग का न्योता देते कई होटल का मालिक। आज तक संवाददाता पहले इस गुनहगार नंबर 1 के घर तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद इसको तलाशते 2 पुलिस वाले यहां दिखते हैं। मानो इसे खोजने से ज्यादा ये देखने आए हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं। जो लोकेश बजाज जनता को 2,000 से 3,000 रुपए में प्रतिदिन कमरा देता था, उसने ऐसा होटल बनाया कि आग लगने पर उनका बचना नामुमकिन हो जाए। लेकिन इसका खुद का आलीशान घर देखिए, 3 मंजिल का घर, करोड़ों का घर अपने लिए बनवाकर जनता को ऐसे होटल में रखता था जहां सब कुछ अवैध था।
2: मालवीय नगर में होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के कसूरवारों में से एक लोकेश बजाज के घर पर आज तक की टीम पहुंची हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एक आलीशान कोठी है जिसमें बजाज फैमिली रहती है और इसी एक फ्लोर पर लोकेश बजाज रहता है। करोड़पति लोकेश बजाज के कई होटल हैं मालवीय नगर में। जिस होटल में आग लगी उसके आसपास 2 होटल हैं, दोनों ही गैर कानूनी तरीके से बिना एनओसी के चलाए जा रहे हैं। लोकेश बजाज आग लगने के बाद से कहां अंडरग्राउंड हो गया, ये जांच का विषय है।
1: लोकेश बजाज ने बड़ा खेल किया। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत जांच पड़ताल के बाद जिन लोगों को मंजूरी दी गई, उसमें फ्लोरिश स्टे नाम का होटल भी है जो मकान नंबर 269C2 हौजरानी मालवीय नगर में जय मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। सिल्वर कैटेगरी में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नंबर 2181 वाली इस फैसिलिटी में 6 कमरों को 2 मई 2027 तक गेस्ट हाउस चलाने की इजाजत मिली।
6: हम फ्लरिश्ते के टेरेस में हैं। ये सामने अगर देखें, ये मैक्स हॉस्पिटल ये आपके सामने है, आपको यहाँ से बल्कि इमरजेंसी की एंट्री सब कुछ यहीं से दिख जाएगा। सो बेसिकली ये सामने की तरफ जो है ये आपका साकेत के अपार्टमेंट है।
1: दूसरों के नाम पर लाइसेंस लेकर होटल चलवाता लोकेश बजाज पकड़ा जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर किस किस को इसने पैसा खिलाकर सरकार और सिस्टम में ऐसा सेट किया जिसके बाद सब चुप्पी साधे रहे और होटल अवैध रूप से चलता रहा।
0: और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मौके पर अब एमसीडी की टीम पहुंच चुकी है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है जहां पर कल ये अग्निकांड हुआ था। फ्लरिश तेज हौजरानी मालवीय नगर इलाके में ये हादसा हुआ था, वहां अब एमसीडी की टीम पहुंच चुकी है। क्या जांच करेगी जब ये पूरा कांड हो चुका है उसके बाद, ये देखना है।
4: जिस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट में कल आग लगी, किस लोगों की जान गई, अब वहां पे एमसीडी के अधिकारी आपको दिखाई देंगे। फोन पे फोटो लेते हुए, बिल्डिंग का एनालिसिस करते हुए कि कैसे संभवतः लाइसेंस मिला होगा, ये सारे सवाल बने हुए हैं और आपको अधिकारी इस वक्त दिखाई देंगे। एमसीडी के अधिकारी हैं जो ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या वायलेशन, बायलॉज का वायलेशन संभवतः हुआ होगा। तस्वीरें ली जा रही हैं, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये अधिकारी पहले काम करते होते तो संभवतः कल जिन 21 लोगों की जान गई है उनकी जान बच जाती।
0: पता, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: Sokudo.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: अब देश में जल संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर। कभी सूखे तालाब और बारिश के पानी को बहते हुए देखने वाला भारत अब जल संरक्षण की एक नई मिसाल गढ़ रहा है। पीएम मोदी के कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी के आह्वान ने ऐसा जन आंदोलन का रूप लिया है कि देश ने महज 21 महीनों में करीब 1.5 करोड़ जल संचय संरचनाएं खड़ी कर दी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज तक बताया कि 6 सितंबर 2024 को शुरू हुए जल संचय जन भागीदारी अभियान ने 31 मई 2026 तक बड़ी सफलता हासिल की है। पहले चरण में 31 मई 2025 तक 27 लाख से ज्यादा संरचनाएं बनी थी, जिनमें करीब 2.4 अरब घन मीटर यानी BCM अतिरिक्त जल संग्रहण क्षमता विकसित हुई। अब इन जल संचय संरचनाओं की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ को पार कर चुकी है। उम्मीद है कि इस मॉनसून में देश पहले से कहीं अधिक वर्षा के पानी को सहज पाएगा।
5: पाटिल साहब, आपके मंत्रालय ने जल संचय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था और एक टारगेट लिया था, क्या वो फैसला था और क्या टारगेट है, क्या वो अचीव हो पाया?
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को सूरत के एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए, और साथ में ये भी कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने पानी में सहयोग करना चाहिए। उसका परिणाम यह आया, जो मोदी साहब का आह्वान था तो करीब जो सूरत में राजस्थान के लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, उन्होंने राजस्थान में अपने अपने क्षेत्र में करीब 40,000 स्ट्रक्चर बना दिए। जीटो जो जैन समाज का एक संस्था है, उन्होंने भी 100 करोड़ रुपया खर्च करने का टारगेट रखा है। अभी तक उन्होंने 25 करोड़ रुपया वो राजस्थान में खर्च किया है, बाकी वो गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 25-25 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। अपने आप में जैसे एक दामजी एंकर जो कंपनी है, दामजी एंकर वाला, वो बॉम्बे में है मगर वह मूल कच्छ का है। उन्होंने एक भूखी नदी को डेवलप करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया वहां लगाकर वो काम कर रहे हैं।
4: वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: कराची में आतंक का कंट्रोल रूम। दाऊद के हाथ में था रिमोट कंट्रोल। चार हैंडलर, 9 आतंकी और 5 शहर। दाऊद के आतंकियों का कबूलनामा। एक बार फिर कराची के क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस एक्टिव हो चुका है, मतलब साफ है कि आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी फिर से सक्रिय हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसकी साजिश दिल्ली और मुंबई में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दाऊद के टेरर मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर सबसे पहले कुख्यात शूटर विजय डॉन को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक और आरोपी को दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों सीधे पाकिस्तान में बैठे दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर रहा विजय शूटर। जांच आगे बढ़ी तो मुजाफा और यावर खान के नाम भी सामने आए। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल और कई वाइटल इंस्टॉलेशन। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली और मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी के वीडियो बरामद हुए हैं। इसमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और कई बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। दिल्ली की कई रणनीतिक लोकेशनों के वीडियो बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि मुन्ना झिंगाड़ा ने उन्हें आतंकी हमले के लिए भर्ती किया था। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से वो चैट मिली है जिसमें मुन्ना झिंगाड़ा से लेन देन की बात हो रही है।
1: माशा अल्लाह करके आना काम, नेपाल के रास्ते तुम्हें वापस दुबई बुला लेंगे।
2: बड़े साहब ड्रग्स दो, पहले हमें 20 लाख रुपए चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: कम रात करीब 3 बजे आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि, कई मरीजों की हालत गंभीर।
1: दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए।
0: दिल्ली में आग से 4 तरफा हड़कंप, अब तक 21 की गई जान, 50 से ज्यादा घायल। होटल्स में फायर एनओसी की होगी जांच, एलजी ने दिए निर्देश। शाह बोले, दिल दिलाने वाली त्रासदी।
1: ममता बैनर्जी के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष। 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस।
0: विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत, सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट दी मंजूरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शतकाश तक पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
1: मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में हुई भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में होगी पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन भी किया गया, इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। टीम आज से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी, मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई संभव। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी के आरोप, जल्द ही हो सकती है सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत, कई विदेशी नागरिकों की भी गई जान, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक शामिल, अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक। हादसे पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सभी सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस पूछताछ में किए कई खुलासे। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ ए के मलिक का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला, उपराज्यपाल ने सभी होटल्स और नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच अभियान चलाने का आदेश दिया।
0: अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज हो सकती है कई लाखों की सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश, 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। आज हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान, हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, 8 घायल वेंटिलेटर पर। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर उठाए सवाल। और जानी में ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा है, इलाके की अधिकांश इमारतों में बेसमेंट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एके अग्रवाल परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन से आए थे मिलने। विदेशी नागरिकों की मौत में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के संपर्क में विदेश मंत्रालय, दी जा रही है जरूरी संभव मदद। होटल मालिक लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा, वो डर के चलते मौके से फरार हो गया था। लवकेश बजाज ने कहा वो घर भी नहीं गया और सड़क पर घूमता रहा।
1: पूछताछ में मालिक का खुलासा, 3 साल पहले आलूवालिया नाम की पार्टी से ली थी ये बिल्डिंग। आरोपी की पुलिस 3 से 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी, आरोपी ने कबूला, बिल्डिंग में नहीं था कोई फायर एनओसी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी कार्रवाई का खौफ, हौजरानी के होटल्स पर लटके ताले। मालवीय नगर और हौजरानी मार्केट में विदेशी पर्यटक सामान लेकर ठहरने की जगह तलाशते नजर आए। दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड में सीटीआई रेस्टोरेंट बॉडी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, फायर सेफ्टी के लिए 8 सूत्रीय गाइडलाइन की मांग। पंचकुला में एक शख्स पर 2 शूटर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, सूत्रों के अनुसार रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स द्वारा हमला किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग।

0: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से 4 मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता करने का ऐलान।
1: बिजनौर से आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाने का दावा। बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद ने 3 दिवसीय पहले चरण की यात्रा का आगाज किया, बहुजन एकता पर जोर। बिजनौर से अभियान शुरू करते हुए चंद्रशेखर बोले, सम्मानजनक सीटें मिलने पर किसी भी दल से गठबंधन संभव। मुरादाबाद के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहली बड़ी चुनावी रैली। मुरादाबाद में विजय संकल्प महारैली के जरिए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश करेंगे। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इंटर कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं की भारी जुटान, रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। बिजनौर से निकली एएसपी यात्रा में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, मुफ्त शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे। उत्तर प्रदेश में यात्रा के दौरान पदोन्नति में आरक्षण और अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग उठेगी। लखनऊ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की संभावित तारीख मांगी। लखनऊ में हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया।
0: लखनऊ में पंचायत चुनाव मामले पर सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने, मंत्री ने विपक्ष पर विकास रोकने का आरोप लगाया। संभल में कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर दंगा पीड़ित परिवार को 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित होगी। चेरखा सराय संभल में प्रशासन 1978 दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार को जमीन सौंपेगा। संभल में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वर्षों से विस्थापित परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती एवं पुनति बोर्ड ने कई गिरोहों और अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी जारी की। कानपुर में ब्राह्मण चेहरे एक सुर में बोले, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, वहीं होंगे पार्टी का चेहरा। कानपुर में ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का दावा, सनातन के लिए सरकार के कामों ने ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ। कानपुर में कई ब्राह्मणों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर असंतोष जताया, कहा इस बार विकल्प तलाशने पर विचार। कन्नौज में शंकराचार्य का योगी सरकार पर सवाल, आरोपी असद के एनकाउंटर पर बोले, जांच और न्याय की जगह मुठभेड़ समाधान नहीं, कानून के तहत सजा जरूरी। एफएसएसएआई की साहिबाबाद गाजियाबाद में छापेमारी, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त, जांच के लिए 10 नमूने भेजे गए।
1: अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, मांगों को लेकर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, प्रशासन पर बढ़ा दबाव। नैनीताल में भीषण जाम से परेशान लोग, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत। कटिहार में धू कर चली बाइक, मचा कम बीच, सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। नवसारी में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, विवाद ने लिया उग्र रूप, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाला मोर्चा। एमपी के सिवनी में 6-4 की वारदात, सीसी में कैद, आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस ने जांच तेज की। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया, यूपी के बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ा, चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को परेशानी। गाजीपुर में एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इराज राजा का बयान, कहा पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की, जांच जारी।
0: नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, मचा बवाल। ओडिशा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने से मारपीट का आरोप, जांच शुरू। नोएडा में 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी का नेटवर्क और उसका खुलासा किया और भंडाफोड़ किया। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला, भोपाल में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप और दोनों घायल। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभराकर गिरा, यूपी के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा टला, घटना से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल। यूपी के बागपत में चला बुलडोजर, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप, कई ढांचे ध्वस्त। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात के महीसागर का खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवक का वीडियो चर्चा का विषय बना। पति की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत, एमपी के छतरपुर में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फ्रेशर्स समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर। गुजरात के सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पूछताछ जारी।
1: श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत के T20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्य कुमार यादव को लेकर जल्द होगा फैसला, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट, न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला, 13 जून से वनडे सीरीज का आगाज। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेव, फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकोब मेंसिक से होगा मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर, 25वीं वरीयता प्राप्त चाइना ने

0: कहना चाहे कि आज फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल की याकूब मेन से पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में, चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में बनाई जगह।
1: फिल्म डॉन 3 विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह को मिली राहत। कई सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद FWICE ने लिया यू टर्न, रणवीर सिंह से हटाई पाबंदी। मणिपुरी फिल्म बूंग ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम। न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्री टीजर जारी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पाथेर दाबी की शताब्दी को समर्पित है ये फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान फिर मचाएगी धमाल। 25 साल बाद 12 जून को फिर बड़े पर्दे पर होगी रिलीज, स्पेशल ट्रेलर जारी। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में गर्लफ्रेंड गौरी के साथ करेंगे शादी, सिर्फ करीबी लोग होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कही बड़ी बात, कहा अभी ईरान में जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं। साथ ही कहा ईरान ने दी सहमति, कभी नहीं रखेगा परमाणु हथियार। ईरानी सेना का कुवैत के हवाई अड्डे पर भीषण ड्रोन और मिसाइल का हमला, एयरपोर्ट परिसर को हुआ बड़ा नुकसान, एक शख्स की मौत, 60 से अधिक लोग घायल। कुवैत ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो, एक के बाद एक कुल 3 ईरानी हमलों से दहला कुवैत। वीडियो में एयरपोर्ट पर भीषण ब्लास्ट की घातक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का बनाया प्लान। नए प्रस्ताव के अनुसार इन देशों के प्रोडक्ट्स पर लगेगा 10 से लेकर 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ। यूक्रेनी सेना ने रूसी नियंत्रण वाले डोनेस्क इलाके पर किया भीषण हमला, 8 लोगों की हुई मौत, 11 लोग घायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा 1,000 किलोमीटर दूर मौजूद तेल टर्मिनल को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। यूक्रेन के कीव पहुंचे नेटो प्रमुख मार्क रूट, युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। अमेरिकी कंपनी गूगल को यूरोपीय यूनियन ने दी बड़ी चोट, अब ईयू की संसद में गूगल की जगह फ्रांसीसी सर्च इंजन क्वांट का होगा उपयोग। पुर्तगाल में प्रस्तावित श्रम सुधारों के विरोध में कर्मचारियों ने की देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल। परिवहन, स्कूलों और अस्पतालों समेत अधिकांश सार्वजनिक सेवाएं हुई प्रभावित। जापान की राजधानी टोक्यो में भारी बारिश के साथ चल रही है तेज हवाएं, बड़े पैमाने पर सड़क यातायात प्रभावित, सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई, ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित।

0: और बात दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की करेंगे। मालवीय नगर की घटना के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से होटल चलाने वालों में खौफ है, क्योंकि दिल्ली के सबसे मशहूर हौस खास इलाके में कई होटल्स ने बैनर पोस्टर लगाए थे, कई होटल्स ने अब ये काम बंद कर दिया है।
1: आपको बता दें कि दिल्ली में बीएनबी स्कीम के तहत कई होटल चलते हैं, लाइसेंस कम कमरों का होता है, लेकिन इस तरह से बड़े बड़े इमारतें बना दी जाती हैं, होटल चलाए जाते हैं। और इस पर अब खबर आ रही है कि अवैध तरीके से ये जो होटल चल रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो सकती है, सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है, इनकी ऑडिट हो सकता है। ये अब दिल्ली सरकार के आदेशों के तहत, एलजी के आदेशों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली अग्निकांड के बाद जागी है एमसीडी। एमसीडी की एक टीम हादसे वाली जगह में अब पहुंच गई है और एमसीडी की टीम अब वहां मुआयना कर रही है, जांच कर रही है, हौसदानी इलाके की जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ यह हादसा।
0: एमसीडी की टीम जांच के बाद सीलिंग की कार्रवाई कर सकती है। आसपास के होटल्स पर भी जांच की जा रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि इनके पास फायर एनओसी नहीं है, तमाम अन्य जो जरूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, परमिशंस होती हैं, वो ली भी गई हैं नहीं, क्योंकि कई ऐसे अंजलि एग्जिट्स नहीं बनाए जाते हैं। खासतौर पर ये जो अग्निकांड हुआ था, इसमें बेसमेंट में एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से काफी लोग वहीं पर फंस गए थे। जो एक इकलौता एग्जिट था, वहां पर ताला लगा हुआ था। अब आपको अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: जिस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट में कल आग लगी, किस लोगों की जान गई, अब वहां पे एमसीडी के अधिकारी आपको दिखाई देंगे। फोन पे फोटो लेते हुए, बिल्डिंग का एनालिसिस करते हुए कि कैसे संभवतः लाइसेंस मिला होगा, ये सारे सवाल बने हुए हैं। और

0: आपको अधिकारी इस वक्त दिखाई देंगे, एमसीडी के अधिकारी हैं जो ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या वायलेशंस, बायलॉज का वायलेशन संभवतः हुआ होगा। तस्वीरें ली जा रही हैं, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये अधिकारी पहले काम करते होते तो संभवतः कल जिन 21 लोगों की जान गई है उनकी जान बच जाती।
1: दिल्ली होटल अग्निकांड को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि बीएनबी की जो दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट है उसमें 88 नंबर पर लवकेश बजाज के होटल फ्रॉडिश स्टे का नाम है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में इसका लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से लिया गया। जय मिश्रा के नाम से होटल के बाकी बिल आते थे। लवकेश ने जय मिश्रा को होटल का पूरा जिम्मा और काम सौंपा हुआ था। जय मिश्रा लवकेश के अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं।
2: तो बड़ी खबर यह आ रही है कि लवकेश मिश्रा जो मालिक था उसने नाम किसी और का इस्तेमाल किया था। जय मिश्रा जो उसका अकाउंटेंट था उसी के नाम पे लाइसेंस, उसी के नाम पे तमाम परमिशन, लेकिन वो भी कम, वो भी खामियों से भरी हुई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लवकेश बजाज सामने रखता था दूसरे शख्स को जिसका नाम था जय मिश्रा। तो दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक, एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा भी या नहीं?
3: जिम्मेदार नंबर एक बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज, जिम्मेदार नंबर दो बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा, जिम्मेदार नंबर तीन एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार, जिम्मेदार नंबर चार मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार, जिम्मेदार नंबर पांच एमसीडी के जेई आशीष रॉय, जिम्मेदार नंबर छह डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा, जिम्मेदार नंबर सात मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिलीभगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है। उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
4: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इंटेक्शन लिया जाए। एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दे हुआ आपने उनका दे, ताकि उनकी एक चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपने करते रहे।
3: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी, बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा।
5: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी, जो भी उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई लग रहा
6: लापरवाही। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
5: विद इन वीक, विद इन वीक।
7: ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
5: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीजें।
7: अच्छा ये बताएं कि एंट्री एक्टिव को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
5: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
7: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
5: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है एमसीडी, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
3: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों? पहले रोकथाम क्यों नहीं?
2: और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
9: इन एसोसिएशन विद भारत।
10: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
11: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.
12: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: In association with
10: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
11: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
12: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
9: हिंड बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
13: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
14: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
8: देश की संसद से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर धू धू कर जलती ये इमारत नहीं, ये वो बिल्डिंग है जो बताती है कि जनता की जान को आग में झोंक देने का खुल्लम खुल्ला लाइसेंस देने वाला खेल देश की राजधानी में चलती दिल्ली की सरकार, सरकारी विभाग और विभाग के अफसर करते हैं। जहां दिल्ली की विधानसभा से केवल 24 किलोमीटर दूर चादरों में लपेटकर उन नागरिकों को ले जाया जा रहा है जिन्हें भरोसा होता है कि कम से कम सरकारों के दावे भारत की राजधानी में तो दम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली के मालवीय नगर से सटे हौजरानी गांव में 6 मंजिला इमारत में ऐसी आग लगी, चंद मिनट के भीतर मौत का आंकड़ा 20 के पार पहुंच जाता है। ये तस्वीर विचलित कर देती है, लेकिन देखना आपको जरूरी। जहां जलती हुई इमारत से जान बचाने को लोग ऊपर से नीचे उन गद्दों पर आखिरी बार कूदते रहे जो गद्दे स्थानीय लोगों ने बचाने के लिए रखे। मौत की आग से जिंदगी बचाने की ये छलांग शर्मनाक धब्बा है उस सरकार के दावों के लिए जहां जनता की जान की फिक्र किसी को नहीं थी। फिक्र अगर सरकार को होती तो जरा इस चेहरे को देखिए। आशीष सूद दिल्ली के एक गृह मंत्री, लाल रंग के चमचमाते सुरक्षा हेलमेट पहनकर घटना स्थल पर पहुंचे। इनके साथ खड़े अधिकारियों को देखिए, इनके सिर पर वो हेलमेट जो शायद पहले कभी ये लोग लगाकर ग्राउंड पर निकले तक नहीं होंगे। निकले होते तो इनके हेलमेट इतने चमचमाते नहीं। लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का झक सफेद कुर्ता और अधिकारियों की पैंट शर्ट की क्रीज तक जहां मुड़ी नहीं दिखती, ये तस्वीर बताती है कि जनता की जान जाने के बाद ही नींद इन लोगों की टूटती है जिन्हें सिंगल, डबल और ट्रिपल इंजन की ताकत जनता ने दे दी। सुनिए अब जरा मंत्री आशीष सूद की बात को। अब जो कबूलनामा मंत्री सुन रहे हैं वही सच है, ऐसा सच जहां भारत की राजधानी में दिल्ली की सरकार और सरकारी विभाग ने ये हालात कर दिए कि आम आदमी लपटों में घिरा रहा। आप कहेंगे कैसे सरकार की गलती है, तो सुन लीजिए। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जिसने बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत गेस्ट हाउस चलाने का लाइसेंस दिया, नियम के तहत यहाँ 6 कमरे होने थे लेकिन 25 कमरे बनाकर चलते रहे। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा है जिनके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर जूनियर असिस्टेंट तक 11 लोग काम करते हैं लेकिन सब सोते रहे और 6 कमरे की जगह 25 कमरे बनाकर चलता गेस्ट हाउस आग का गोला बनकर मौत बांध देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिपल इंजन तो MCD तक में BJP का राज है। MCD के AE और JE सब सोते रहे क्योंकि पता चला इस बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। सोता रहा दिल्ली का फायर विभाग जिसने कभी ये देखा ही नहीं कि NOC ली गई है या नहीं ली गई। सोती रही दिल्ली की पुलिस क्योंकि बिना NOC के रेस्टोरेंट तक यहाँ इसी बिल्डिंग में चलता रहा।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कई मरीजों की हालत गंभीर। ममता बैनर्जी के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष, 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत, सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: चौबीस घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा बवंडर आ गया कि ममता बैनर्जी विधायकों का समर्थन गवा बैठी, बागी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया और अब खतरा टीएमसी के हाथ से निकलने का है।
2: बागियों की असली कोशिश सांसदों को तोड़ने की होगी, पार्टी का नाम और सिंबल हासिल करने की होगी। बड़ी खबर यह है कि ममता बैनर्जी को बागी चीफ एडवाइजर का पद ऑफर कर जले पर नमक भी छिड़क रहे हैं और लगता है कि यह लड़ाई महाराष्ट्र की तर्ज पर आगे बढ़ने वाली है, यानी कि सिंबल और पार्टी का नाम अपने पास लाने की कोशिश करेंगे बागी और पूरे कानूनी तौर से।
0: ममता बैनर्जी को टीएमसी के बागियों का यह प्रस्ताव आया है कि वो मांग दर्शन करें, चीफ एडवाइजर बन जाएं। जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा अंजलि कि ममता बैनर्जी आगे क्या करती हैं।
3: किसे पता था 5429 दिन सत्ता में रहने के बाद ममता बैनर्जी अर्श से फर्श पर गिरेंगी। बंगाल की जनता उन पर यूं अविश्वास जताएगी कि तिनका तिनका ताकत बिखरती जाएगी। विधायकों का संख्या बल सिर्फ 80 पर सिमट कर रह जाएगा और सिर्फ एक महीने के भीतर ममता बैनर्जी को बगावत की ऐसी आग झेलनी पड़ेगी कि पार्टी के हाथ से फिसलने का खतरा मंडराने लगे। पहले सुनिए बागियों के नेता ऋतव्रत बैनर्जी की ये सलाह जो उन्होंने ममता बैनर्जी को दी है।
4: আমি আবার বলছি, আমি माननीय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারবো, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে ভোট যখন ভোট হবে, আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াকআউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করবো, কিন্তু এই অবস্থা হবে না যে ওয়াকআউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো, এটা এই রাজনীতি আমরা করব না।
3: कल तक ये चेहरे ममता बैनर्जी के आसरे थे, इनकी राजनीति ममता बैनर्जी के नाम से चलती थी, इनके पद ममता के मोहताज थे। लेकिन कल और आज में फर्क होता है। कल ममता सत्ता के शीर्ष पर थी, आज वो अलग थलग खड़ी हैं। इनके बनाए चेहरे अब उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। ममता के सामने अब अपनी ही पार्टी को सुरक्षित बचा लेने का सवाल है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद और दफ्तर पर बागियों का कब्जा हो चुका है और ममता बैनर्जी हाथ मलती रह गई और कुछ नहीं कर सकी।
5: You snatched everything from me, but you cannot snatch my morals. I will never bow down my head.
3: कल जो कुछ हुआ ममता की राह में कांटे बिछाने की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तृणमूल पर कब्जा किसका होगा, असली तृणमूल कौन सी है। इसका जवाब ये है कि विधायक दल और सियासी दल अलग अलग होते हैं। स्पीकर सिर्फ विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं। राजनीतिक दल के तौर पर टीएमसी पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। दूसरा सवाल यह है कि तृणमूल पर इस टूट के बाद किसका कब्जा रहेगा। मौजूदा हालात में चुनाव आयोग के फैसले तक ममता बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी, वो अपनी मर्जी से पार्टी में फेरबदल कर पाएंगी। एक सवाल ये भी है कि क्या बागी गुट को तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल सकता है, जैसी मांग उनकी तरफ से स्पीकर से की गई है। जवाब ये है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बागी गुट का दावा तब मजबूत होगा जब 80 में से 60 विधायकों की तरह 19 से 20 लोकसभा सांसद भी बागियों से जा मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अगर फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरह हुआ तो फिर ये अहम हो जाएगा कि किसके पास ज्यादा विधायक, सांसद और संगठन का समर्थन है। मतलब तृणमूल कांग्रेस तभी ममता के हाथ से जाएगी जब विधायकों की तरह सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी बड़े पैमाने पर बगावत करते हैं।
6: अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: अब एक बात साफ हो रही है कि जिस अभिषेक बैनर्जी को ममता बैनर्जी विरासत सौंपने की तैयारी कर रही थी, वही अभिषेक पार्टी में असंतोष की असली वजह रहे। बागियों को सबसे ज्यादा आक्रोश अभिषेक बैनर्जी को लेकर है।
7: ये पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा डितोब्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन अब घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, एक सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट चोट चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
2: हमने एक और बागी विधायक जावेद खान से बात की और उनका भी कहना है कि इस हालात के जिम्मेदार अभिषेक बैनर्जी ही हैं।
8: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बैनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
9: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
8: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
9: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
8: हमने अभिषेक बैनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो कद्दावर।
9: हम सुनिए ना, हम अभिषेक बैनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बैनर्जी के साथ दल किया है। ममता बैनर्जी आज भी हमारी नेत्री है, हम उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एडवाइजर होके हम लोगों चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।
0: उधर ममता के समर्थक विधायक ये कह रहे हैं कि विधानसभा में कल जो कुछ हुआ वो गलत और असंवैधानिक है।
10: कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस खत्म नहीं हो गया।
11: एकदम नहीं, कभी नहीं, खत्म हो नहीं सकते। हम लोग तो तृणमूल है ना, वी आर डाउन ट्रोडन, वी आर बोर्न ऑन द ग्रास, सो हाउ कैन वी गो।
10: तो ममता बनर्जी का रवैया क्या है, मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, क्या बोला उन्होंने?
11: ममता बनर्जी का कुछ मैसेज तो नहीं आया, ममता बनर्जी का कुछ मीटिंग भी नहीं था, हम लोग रोज आते हैं मिलने के लिए, आया है।
10: लेकिन उनका रिएक्शन तो रहा होगा, इतना बड़ा कांड हो गया।
11: हम लोग को दूसरा प्रोग्राम बना रहा था, हम लोग प्रोग्राम बना रहा था, हम लोग कैसे जाएंगे क्या करेंगे।
10: क्या वो गुस्से में है, क्या उनको दुख है?
11: नहीं, नहीं, बड़ी खुशी में है, हंसी मजाक चल रहा था हम लोग का, गप चल रहा था, पुराना दिन का कहानी चल रहा था, चाय वे पी रहा था।
10: तो जो लोग जा रहे हैं क्या उनका उनके लिए क्या मैसेज है, कि उनको जाने देंगे?
11: हाँ जाने, जाइए जाइए, अगर गंदा जंजाल डेब्रीज घर में रहेगा उसका बगल में सोना संभव नहीं है।
10: तो दरवाजा खोल दिया है?
11: दरवाजा खोला, अब जाइए, हम लोग साफा कर लेंगे, हम लोग स्वीपर बुलाकर सफा कर लेंगे, नहीं तो हम लोग अपना हाथों से सफा कर लेंगे।
10: लेकिन पार्टी और सिंबल ममता बनर्जी के पास रहेगा?
11: पार्टी पहले भी था, पार्टी अभी भी है।
2: और इस मामले में हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता। तपस, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से नेता बोल रहे हैं, बात को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं सबके सामने, लेकिन अंदर खाने से आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, अभी ये जो ऑफर उनके पास आ गया एडवाइजर का, उसके बारे में क्या सोच रही हैं?
12: जी देखिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस कितना भी डाउनप्ले करने की कोशिश करे, लेकिन ये समस्या ऐसा है जिससे निकलने का शायद उपाय अभी तक ममता बनर्जी ढूंढ नहीं निकाल पाई है, क्योंकि एक तरफ उन्हें चुनना है पार्टी, दूसरे छोर पर उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी। दोनों कद्दावर नेताओं को हमने सुना, जावेद अहमद खान और साथ में मदन मित्रा, ये दोनों ही ममता बनर्जी के साथ शुरू के दिनों से थे। जावेद खान ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में जिस तरीके से पार्टी का रवैया रहा है पिछले कुछ सालों में, उससे वो लोग नाखुश है और अभिषेक बैनर्जी को वो नहीं पहचानते। दूसरे छोड़ो, मदन मित्रा कहते कि हम हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आगे जाकर इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या इसकी जो बागडोर है वो पूरी तरीके से ऋतुव्रतों के पास चला जाएगा या फिर ममता बनर्जी इसे लेकर जाएंगे। अभी तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर कि कई सारे जो सांसद है वो भी जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस से। बीजेपी का दावा है कि कई सारे ऐसे सांसद है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नए खेमे से खबर है कि कई सारे सांसद ऐसे हैं जो पार्टी से नाखुश है, और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पार्टी को लीड कर रहे थे उससे वो लोग नाखुश है। तो इस समय अगर ये पार्लियामेंट्री दल भी अगर टूटना शुरू होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। ऐसे में ममता बनर्जी का क्या रवैया होगा, क्या किस तरीके से वो डील करेंगे देखना होगा। अभी हमारे पास खबर आई है कि स्नेहाशीष चक्रवर्ती, एक और बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के जो इस बार हार चुके हैं, हालांकि उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे और सक्रिय राजनीति से वो संन्यास लेंगे। यानी एक के बाद एक जो ममता के करीबी है वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने ऑप्शंस बहुत कम है, या उनको भतीजे को चुनना है या फिर उनके पार्टी को बचाना है।
0: तापस, यहां पर सवाल यह भी है कि ममता का अब राजनीतिक भविष्य क्या है? अब एक सिरे से उनको नई पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जो उनके साथ समर्थन में जुड़ गए हैं उनको कैसे वो दिलासा दिलाएंगे कि आने वाले निकटतम भविष्य में टीएमसी क्या प्रभाव रखेगी, क्योंकि पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। पहले तो आपने सत्ता खो दी, उसके बाद आपके विधायक बागी हो गए, सब तरफ से आपको हार मिल रही है।
12: जी बिल्कुल, देखिए पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई है। चाहे आप तिनके की सहारा लेकर उस पार्टी को बचाने की कोशिश करें, लेकिन पार्टी बिखर चुकी है और इस पार्टी को एकजुट रखना अभी बहुत बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए। हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ी और टॉल लीडर मानी जाती है, लेकिन ऐसी जो स्थिति है जहां पर एमपीज नाखुश है, जहां पे एमएलए उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो भी 60 एमएलए उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी को बचाना, क्योंकि देखिए कल जो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने साफ तौर पर कहा था कि वो ममता बनर्जी को एडवाइजरी रोल में चाहते हैं, वो चाहते कि ममता बनर्जी उनका मार्गदर्शन करे। लेकिन ममता बनर्जी को हमेशा से ही पार्टी का सुप्रीमो माना जाता था और उन्हीं का जुबानी, उन्हीं का हर फैसला सराखों पर लिया जाता था। वहां एक शख्स को वहां से अगर एडवाइजरी रोल पर लाया जाता है तो आप समझ सकते हैं
2: कि बहुत बड़ा सवाल है कि अब ममता आगे क्या करेंगे। लेकिन अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो बिहार से आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से यह खबर है, जहां एक हॉस्पिटल से 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुआ है, आग लगी है। डीएम ने हादसे में अभी तक 5 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। करीब 20 मरीजों को रेस्क्यू भी किया गया है। परिजनों का वहां पर रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकला था।
0: बेहद दर्दनाक की घटना, आईसीयू में जलकर 5 लोग की मृत्यु हो गई है। 3 बजे आग लगी शॉर्ट सर्किट से, जिसके बाद वहां पर मदद करने के बजाय वहां का स्टाफ भाग गया।
2: खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, बिहार के 5 लोगों की मौत आग की वजह से। कहा यह जा रहा है एक मॉनिटर में शॉर्ट सर्किट हुआ।
0: वही मुजफ्फरपुर की घटना पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे उनके साथ मौजूद। इतने बड़े हादसे पर दोनों चुप्पी साध गए। अब सवाल किस पर उठाया जाए, अस्पताल प्रशासन पर स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए, जवाब देने से कन्नी काट गए। लेकिन बिहार में ये इकलौता मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें अस्पताल की लापरवाही सामने आती है। किस तरीके से आईसीयू बेड्स को सुरक्षित नहीं माना जा सकता।
2: हादसे के बाद सबसे पहले आज तक की टीम प्रसाद अस्पताल पहुंची। हमारे सहयोगी रोहित सिंह वहां मौजूद हैं और बता रहे हैं कि जब आग ने जिंदगी ली ली तो प्रशासन एक्शन में आया।
13: हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जो मरीज वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहां पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहां पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहां पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है लेकिन उनकी में भी से भी किसी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं, ये तमाम चीजें जो है जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक।
0: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, सवाल किससे पूछा जाए? निशांत कुमार से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन में अभी फिलहाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं होगा, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? 5 जाने ऐसे ही चली गई या फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
13: देखिए, जाहिर सी बात है निशांत कुमार से सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साथ गए, कुछ नहीं बोले। जबकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बनाया गया है, अब पहली बार वो मंत्री बने हैं, वो अभी तक न विधायक हैं न एमएलसी हैं, कुछ नहीं है, तो उस पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि भाई कैसे बिल्कुल एक नए नवेले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, इतना बड़ा विभाग दे दिया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे हैं तो चलिए स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, दिल्ली चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी जब घटना घटती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा 4 था जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है। मौत का आंकड़ा जो है बढ़कर 5 हो चुका है। और अब सरकार ने क्या किया है, प्रशासन ने क्या किया है, एक कमेटी बना दी है, 5 सदस्य कमेटी है। अब ये कमेटी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो है अपना एक रिपोर्ट देगी।
2: जी बिल्कुल रोहित, और इस रिपोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन क्या रिएक्शन आते हैं इस पर भी नजर है। अब वापस लौटते हैं दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली अग्निकांड के घायलों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी थी, उन्होंने मुलाकात भी की है। साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में जाकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जानने की कोशिश की है। एक दिन बाद 24 घंटे गुजर जाने के बाद पहुंची वो।
0: सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ये जो कर्टसी विजिट मुख्यमंत्री ने करी है ये तो कल भी की जा सकती थी और सवालों पर भी चुप्पी साध गई, तो जवाब कौन देगा? कब बीएनबी स्कीम बंद होगी?
14: देखें नया, आज मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल जो है वो पहुंची थी और तमाम जो घायल थे उनके परिजनों से मुलाकात करी। हालांकि ये मुलाकात जो है वो 24 घंटे बाद ही, क्योंकि कल ये पूरा हादसा हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक जो है वो मुख्यमंत्री कई सारे काम जो है इस पूरे मामले को लेकर के नजर बना के रखी हुई थी, लेकिन आज वो उन परिजनों से मिलने के लिए पहुंची है। लेकिन अब बात होती है बीएनबी पॉलिसी को लेकर के, जिसके ऊपर सबसे बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि 6 कमरों की इजाजत बीएनबी पॉलिसी के तहत है लेकिन 25-25 कमरे जो है वो यहाँ पर चल रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनकी तरफ से साफ तौर पर एक बयान आया, उनके साफ तौर पर कहा कि ये जो पॉलिसी थी वो उसको 1 महीने पहले ही विड्रॉल कर लिया गया था। पॉलिसी का जो न्यू ड्राफ्ट था उसको 26 मई को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया गया है, यानी कि ये जो पॉलिसी थी पहले ही विड्रॉल जो है वो कर ली गई थी। लेकिन अब सवाल जरूर उठ रहा है कि इस तरीके की पॉलिसी जब ये 2024 के अंदर लोगों को लाइसेंस दिया गया था, क्या उसके बाद से क्या जो नोडल ऑफिसर्स है जिनकी जिम्मेदारी थी इसको चेक करने की, क्या उन्होंने चेक नहीं किया जब यह हादसा हुआ? उसके बाद ही जो है वो पूरे मामले पर सरकार संजीदा जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर कल दिल्ली की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की लगभग 2 से 2.5 घंटे जो है वो उनके आवास पर बैठक चली, उसमें ज्वाइंट कमेटी का एक गठन जो है वो किया गया है जिसमें इलाके के जो डीएम है, इसके अलावा अगर बात की जाए एमसीडी और दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के लोग जो है वो कमेटी जो बनाई गई है उसका सर्वे दिल्ली के आशीष सूद को बनाया गया ताकि वो इंस्पेक्शन करे। दिल्ली के मालवीय नगर की अगर बात करें तो नेहम तकरीबन 18 ऐसी यूनिट है जहां पर इनलीगल तरीके से ये बेड एंड जो ब्रेकफास्ट के जो रेस्टोरेंट्स है और होटल जो है वो चल रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई जो है वो होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि पूरी दिल्ली में चाहे वो करौलबाग एरिया हो, चाहे वो दिल्ली का हौसकाज इलाका हो, चाहे पर जहां पर इस तरीके के इनलीगल तरीके से रेस्टोरेंट, होटल और बेड एंड ब्रेकफास्ट के कॉन्सेप्ट के साथ होटल चल रहे हैं उन पर अब सख्त कार्रवाई।
0: बड़ी खबर आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से दिल्ली के अग्निकांड में आग लगी थी। होटल अग्निकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि शॉर्ट सर्किट से होटल में आग लगी थी।
2: बड़ी खबर यह आ रही है कि मालवीय नगर होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे और दोनों किचन के अंदर एलपीजी के सिलेंडर भी रखे हुए थे, लेकिन एलपीजी सिलेंडर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, यह वजह नहीं है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आग इतनी तब फैलती है जब इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ हो। तो ये फोरेंसिक जांच की गई है बिल्डिंग की और अब पुलिस कहती है कि मामला शायद शॉर्ट सर्किट का है।
0: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
17: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
19: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
20: Oh, ouch.
19: However you make money work, we can work with that.
21: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
22: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
23: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
22: Big 12 Radio.
24: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
22: and
24: down.
22: And talk sports.
25: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
22: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में पिछले दिनों तीन कत्ल हुए। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, कातिल असद ढेर हो गया। लखनऊ में संदीप सिंह की हत्या हुई, दिनेश यादव गिरफ्तार हो गया। गाजीपुर में विनीत सिंह की हत्या हो गई, 5 दिन में गिरफ्तारी तक नहीं हुई। अब इन कत्लों के जुर्म और गुनहगारों की जाति मजहब पर चल रही राजनीति की बुनियाद देखिए। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या करने वाले आरोपी असद की मौत हो गई, 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, कई संदिग्ध हिरासत में हैं, बाकियों की तलाश है। हत्याकांड के चक्कर में पूरे मोहल्ले की पैमाइश होने लगी है, आसमान से निगरानी तक हो रही है और अब कार्रवाई की चपेट में अवैध मदरसे तक आ गए हैं।
1: प्रशासन ने सीलिंग की है, आप ये देखिए, ताला लगा करके यहाँ पे मोहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस चिपकाया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से कि इस मदरसे से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो 1 सप्ताह के भीतर पेश किया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये जो मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पे लिखा है।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई करके मुस्लिम आरोपित का एनकाउंटर कर डाला, लेकिन 5 दिन पहले गाजीपुर में हुई होटल व्यवसायी की हत्या के केस में 1 आरोपित तक नहीं पकड़ा गया।
2: मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दरारियां कम करिए, बुलडोजरों को पत्ते पर मत लीजिए, ये तो सर्दी के पराकाष्ठा है।
0: गाजीपुर के होटल व्यवसायी ने जान को खतरे की शिकायत पुलिस से कई बार की थी, लेकिन ना तो खतरा टाला गया और ना सुरक्षा मिली। हालांकि सीएम योगी इन दिनों हर सभा कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं।
3: माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं, हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: यूपी में माफिया के खात्मे के दावे के बावजूद जुर्म का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा और इन्हीं जुर्मों के हवाले से सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन यूपी में हो रहे अपराधों की खबरें और मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब ऐसा ही समाजवादी सवाल जब लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या को लेकर भी उठाए गए, लेकिन इस हत्याकांड में जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आरोपी दिनेश यादव नाम का शख्स है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है और इसी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने शूटर मुहैया कराने वाले दिनेश यादव के ड्राइवर मुबीन को भी गिरफ्तार किया। अब ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव 27 तारीख से लखनऊ में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे और पकड़ा गया आरोपित यादव है और दूसरा मुस्लिम। ओपी राजभर ने एक और तस्वीर डालकर उसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे जमीन विवाद है, जिसमें 5 लाख की सुपारी देकर बकरीद वाले दिन संदीप सिंह की हत्या करा दी गई। लखनऊ से आशीष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए थे। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप। अब तक 21 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद होटल में एनओसी की जांच करने के लिए पहुंची एमसीडी की टीम। एलजी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में चला अस्पताल, आईसीयू वार्ड में भरा धुआं। अब तक 5 लोगों की मौत। लपटें उठी तो मरीजों को छोड़कर भागे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता के हाथ से छूटी पार्टी की अब बागडोर। बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता। विपक्ष 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत। सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 21 लोगों की जान लेने वाले दिल्ली होटल अग्निकांड की जांच जारी है। होटल मालिक लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने खुलासा किया कि वो उधर से गुजर कर जा रहा था तो उसने आग देखी और आग को देख कर डर कर चलता बना। भागकर वो अपने घर पर नहीं गया, सड़कों पर घूमता रहा। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो 3 साल पहले होटल वाली उसने बिल्डिंग ली थी। आरोपी ने कबूल किया है कि बिल्डिंग के लिए फायर की एनओसी कभी नहीं ली गई, कभी भी नहीं। वो होटल भी अकेले ही चला रहा था, ये भी उसने खुलासा किया। उसका कोई पार्टनर नहीं था। उसने होटल का पूरा काम जय मिश्रा को सौंपा था। जय मिश्रा का रोल वेरीफाई किया जा रहा है। ज्यादातर दस्तावेज इसी के नाम पर हैं। सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से थे। आज लगभग 2 बजे कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा।
3: लोकेश बजाज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने होटल की फायर एनओसी कभी ली ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पूछताछ में लोकेश बजाज ने खुलासा किया कि इस होटल की देखरेख उसका अकाउंटेंट जय मिश्रा ही करता है। लाइसेंस भी जय मिश्रा के नाम पर ही है। इतना ही नहीं, आग लगने के बाद लोकेश बजाज इस होटल के आसपास आया, कुछ देर रुका, उसके बाद मौके से फरार हो गया और सड़कों पर वो लगातार घूम रहा था।
0: और अब अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। हत्याकांड में 21 लोगों की मौत पर दिल्ली सरकार अब एक्शन में दिख रही है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए। घायलों से मुलाकात उन्होंने की। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। सभी होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट और दूसरे संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए गए। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान अब आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान तब शुरू हो रहा है जब 21 लोगों की जान चली गई है। यह अभियान पहले भी शुरू हो सकता था। यह सक्रियता पहले भी हो सकती थी। ये जो सख्ती है पहले भी हो सकती थी, लेकिन 21 मौतों की बात हो रही है।
4: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अंदर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद सुपरविजन करेंगे, जिसमें डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे, जो कि दिल्ली के तमाम इलाकों में इनलीगल तरीके से चल रहे होटल रेस्टोरेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर सख्त एक्शन भी होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद की माने तो दिल्ली के अंदर मालवीय नगर इलाके में 18 ऐसी यूनिट है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिन पर जल्द ही एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में 702 ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के कॉन्सेप्ट के साथ जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनके लाइसेंस की भी जांच जो है वो अब दिल्ली सरकार की एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो करेगी। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर फायर को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त एक्शन और उसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से इनलीगल तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी।
0: जिस फ्लरिश स्टे बीएनबी होटल के अग्निकांड में किस लोगों की मौत हुई है वहां पर गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। होटल ने फायर एनओसी ली ही नहीं थी, 6 कमरों की इजाजत लेकर 25 कमरे बना दिए गए थे। आने और जाने का रास्ता भी एक था, जिसकी वजह से आग भड़कने के बाद लोग वहां से भाग ही नहीं पाए।
5: यही वो होटल है फ्लरिश इन, हमारे ठीक पीछे आपको दिखेगा कैसे फ्लोर दर फ्लोर यहाँ पे वायलेशंस ही वायलेशंस किए गए। होटल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत बनाया गया था, 6 कमरों की इजाजत थी लेकिन 25 कमरे यहाँ पर चलाए जा रहे थे। कोई वेंटिलेशन पॉइंट नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से इस होटल को कंस्ट्रक्ट किया गया उससे आग और इमरजेंसी के हालात में हालात और भी बुरे हो सकते थे, और वो सारे डर सच साबित हुए 3 जून को जब 21 जाने गई बेसमेंट में यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी वो नहीं था इस होटल के पास, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था इस होटल के पास, और साथ ही साथ जब आपके पास फायर एनओसी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो एक्सटिंग्विशर्स होंगे क्या इस बिल्डिंग के अंदर? ये सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि बीते सालों में एमसीडी से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियों ने इस तरह के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर की होती तो 21 जाने संभवतः बच सकती थी। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: तो जिस फ्लरिश इन होटल में ये 21 लोगों की मौत हुई वहां पर आज कैसा मंजर है, हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं।
6: हादसे के अगले दिन अब मौके पर तमाम एजेंसियां आ रही हैं। बीएससीएस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की गई मीटर्स की। इसके अलावा एमसीडी की टीम पहुंची और देखा गया कहां कहां पर नियमों की धज्जी उड़ाई गई। दूसरी एजेंसियां भी मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और समझने की कोशिश की कि आग की शुरुआत कहां से हुई। इसके अलावा अगर हम आसपास के दूसरे होटल्स की बात करें तो वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जगहों पर तो रिसेप्शन है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जहां तक बात की जाए घायलों की तो 3 अलग-अलग अस्पताल में घायलों के इलाज जारी हैं। लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो नजर बना के रखे हैं कि घायलों को उचित और समय पर इलाज मिले। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली में कल हुए होटल में अग्निकांड में गुरुग्राम का पूरा परिवार खत्म हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय गुरुवार गुरुग्राम के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने परिवार वालों के साथ उस होटल के भीतर मौजूद थे। विवेक अग्रवाल के पिता का मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनकी देखभाल के लिए विवेक अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस फ्लरिश स्टे में ठहरे थे। उनके साथ उनके ननिहाल के 3 अन्य रिश्तेदार भी थे। अग्निकांड में सबकी मौत हो गई।
7: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में अग्निकांड की कीमत गुरुग्राम के एक परिवार को चुकानी पड़ी है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाला एक परिवार विवेक अग्रवाल अपने पूरी फैमिली के साथ, मां के साथ, बीवी के साथ, दोनों बेटियों के साथ मैक्स अस्पताल में पहुंचे थे। दरअसल मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में विवेक अग्रवाल के पिता एडमिट हैं। लंग्स की प्रॉब्लम के चलते उन्हें वहां पे भर्ती कराया गया था, जिनकी देखरेख के लिए अपने परिवार के साथ अक्सर विवेक अग्रवाल और उनकी बीवी आते जाते रहते थे। इसी दौरान उस होटल में यह पूरा परिवार रुका था इनसे मिलने के लिए, यानी विवेक अग्रवाल के पिता से मिलने के लिए भी उनके मौसा मौसी और मामा भी पहुंचे थे जो कि उस होटल में रुके थे और कल हुए दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इन तमाम 8 लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पे कुछ लोगों की झुलसने से मौत हुई तो कुछ लोगों की दम घुटने से मौत का मामला सामने आया था।
0: वो मंजर दिल दहला देने वाला था। होटल से आग की लपटें उठ रही थी, धुएं का गुबार छाया हुआ था, लोग होटल के ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए थे। पूरा मंजर बता रहे आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
8: मालवीय नगर अग्निकांड का दृश्य देख करके लोग सहम जाते हैं, लोगों की रूह कांप जा रही थी। सबसे पहले आज तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, हमने जो देखा कि किस तरीके से लोग खिड़कियों पर लटके हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फायर ब्रिगेड जब नहीं पहुंची तो उससे पहले जो गांव के लोग यानी कि हौज रानी खास उस इलाके के लोग थे उन्होंने जाकर के फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पर काम किया। एंट्री और एग्जिट एक ही रास्ता था क्योंकि दूसरा एग्जिट रास्ता नहीं बना हुआ था, इस वजह से इतनी ज्यादा कैजुअल्टी हो गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने आज तक को जानकारी दिया कि किस तरीके से लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों पर लटके हुए थे, बालकनी तक पहुंचाए, यहां तक कि शीशे तोड़ करके लोग एक सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और उनको सांसें नहीं मिल रही थी।
0: दिल्ली अग्निकांड में जहां पुलिस और सरकारी महकमे पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं आम लोग असली हीरो बनकर सामने आए। बगैर जान के परवाह किए आम लोगों ने दिल्ली में फंसे हुए लोगों की सबसे पहले मदद की।
9: मालवीय नगर की त्रासदी और बड़ी हो जाती अगर सही समय पर मदद के लिए वहां के स्थानीय लोग नहीं आए। जैसे ही आग के लपटे बढ़ी, चीख पुकार मची, सबसे पहले लोग पहुंचे, अपने घरों से बिस्तर लाए, गद्दे जमीन पर फेंके और लोगों से कहा कि खिड़की से कूदे, कोई तीसरी मंजिल से कूदा, कोई चौथे मंजिल से कूदा। हर किसी ने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए, क्योंकि आग फैल रही थी, होटल के भीतर घुसना मुश्किल था और ऐसे में वही स्थानीय लोग सबसे पहले मददगार बनकर सामने आए, जब तक कि पुलिस और फायर विभाग की टीमें नहीं पहुंच गई। यही वजह थी कि मरने वालों की संख्या 21 पर सिमट गई, वरना यह आंकड़ा और होता अगर सही समय पर वो बचे हुए लोग खिड़की के रास्ते, छतों के रास्ते कूद कर नहीं निकलते। लोगों ने साहस का परिचय दिया, वहां पर गद्दे बिछाए, उनसे कहा कि हम नीचे हैं, हिम्मत मत हारो, हम बचा लेंगे। और इसी वजह से एक ऐसी बड़ी तबाही जिसमें संख्या मरने वालों की और होती, उसे कम किया जा सका। वो लोग मालवीय नगर के सबसे बहादुर निकले जिन्होंने सही समय पर सूझबूझ का परिचय दिया और लोगों को निकालने में मदद की।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां के अस्पताल में भी अग्निकांड हुआ है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई और इस आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्म

0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप दिल्ली के करावल नगर से बड़ी खबर, जहां पर चांद मंजिला मकान बताया जा रहा है कि दरार के चलते गिर गया। हालांकि समय रहते मकान खाली करवा लिया गया था। मकान के पास में नाले का निर्माण और मरम्मतीकरण का काम चल रहा था। करावल नगर, वहां की ये तस्वीर है। मकान में बताया जा रहा है कि जब वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था पास में, तो उसकी वजह से दरार आई और इसके बाद ये मकान गिर गया। कुछ समय के बाद इमारत ताश के पत्तों की तरह गिरता दिखा। रात के बाद बात ये रही कि मकान खाली होने के चलते इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसी इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भवन के गिरने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। ये करावल नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी देश की राजधानी की ये तस्वीर है करावल नगर की, और यहां पर लाइव वीडियो आप देखिए। इमारत एकाएक कैसे झुकती है और फिर गिरती चली जाती है। आसपास लोग ऐसा लग रहा था कि उसे देखने के लिए पहुंचे हुए, और वो भी वहां से फिर भागने लगते हैं। मकान के पुराना जर्जर था, इस वजह से गिरा। अब साथ में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके कारण उस मकान में दरार आई और उसके चलते वो गिरा। इसकी बताया जा रहा कि जांच की जा रही है। 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे पंचकुला से आए एक सनसनीखेज वीडियो की, जिसमें एक शख्स पर दो शूटर्स अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक रतन लुबना नाम के शख्स पर फायरिंग हुई, जो एक निगम पार्षद का देवर बताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने पंचकुला में सरेआम फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा गैंग इससे पहले भी कई बार ये कर चुका है, वो हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहा है। एक बार फिर से देखिए पंचकुला की तस्वीर। शख्स दौड़ता अपनी जान बचाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसके चलते वो गिर भी जाता है और पीछे दौड़ते हुए ये लोग आपको देखेंगे। बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियां बरसाई जा रही है।
1: पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित स्विस लाउंज के बाहर कल फायरिंग हुई। कल रात की यह घटना है, जब रतन लुबाना स्विस लाउंज से बाहर निकले तभी जो गोल्डी बराड और रोहित गुदारा के जो गुर्गे थे यहां पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और लगभग 8 राउंड कहा जा रहा है कि फायर हुए, जिनमें से एक राउंड जो है वो रतन लुबाना को हिट किया और जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं इस वक्त और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसके बाद जब ये गुर्गे यहां से निकले, गैंगस्टर्स यहां से निकले, तो पुलिस ने एक चेज लगाया, इंटरसेप्शन की एक हाईवे के ऊपर, और वहां पर उनके बीच में क्रॉस फायर भी हुआ। और उस क्रॉस फायर में कहा जा रहा है कि दोनों गैंगस्टर्स जो थे, जिनकी पहचान जसविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह हुई है, दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, दोनों को बुलेट इंजरी जो है हुई है, दोनों की टांगों में गोलियां लगी और पुलिस ने दोनों को इंटरसेप्ट किया और अरेस्ट किया। तो ये बड़ी घटना थी जिसने पूरे पंचकुला को दहला दिया कि किस तरह स्विस लाउंज से बाहर निकले रतन लुबाना के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पंचकुला से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी आज तक।
0: अब खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर नगर निगम ने 5 मंजिला इमारत को गिराया है। ये इमारत दरअसल झुकने लगी थी, आसपास डर का भी माहौल था और आखिरकार आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया। फिर नगम और पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच में ये रामगंज के चीतावाला मोहल्ला में ये इमारत कुछ इस तरह से गिराई गई।
2: करंट कहां से आया?
0: ये वो तस्वीर है, इमारत झुकने लगी थी। अंदेशा तो था ही कि गिर जाएगी, तो उससे पहले प्रशासन ने पहले तो इमारत और आसपास की इमारतों को खाली करवाया ताकि कोई भी जनहानि ना हो, और उसके बाद से प्रशासन की देखरेख में इस पूरी की पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और सेफली सिर्फ वही पोर्शन जो झुक रहा था उसको गिरा दिया गया। 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगली खबर। उत्तर प्रदेश से यूपी में दो जगहों पर अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन चला है। दो मदरसों पर, गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध मदरसा बना हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पारी पुलिस फोर्स, पीएसी, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब दूसरा बुलडोजर चला है बागपत के बड़ा तहसील के बोपुरा गांव में। यहां निर्माणाधीन मदरसा और मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। आरोप है कि गांव में मदरसा इस्लामिया सबिबुल फलाह और मस्जिद के नाम पर बिना वैध अनुमति के निर्माण कराया जा रहा था।
2: उत्तर प्रदेश सरकार

0: का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। गाजियाबाद के डासना में वर्षों पुराने बने मदरसे को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। ना कि सिर्फ ध्वस्त किया जबकि उस पर 1 करोड़ रुपए का नोटिस भी जारी कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा बागपत में निर्माणाधीन मदरसे को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। पाया गया कि ये अतिक्रमण था और इसके अलावा सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर गरज रहा है और ऐसे अवैध अतिक्रमण या सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसों के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
1: अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद से सियासत चल रही है। एक खेमा अपने आप को मजबूत दिखा रहा है, दूसरा खेमा जरूर अभी बेबस दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको सीधा हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास चलते हैं जो वहां की सियासत का हाल बता रहे हैं।
2: 2026 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद ममता बनर्जी के लिए जैसे मानो समस्या और भी बढ़ गई है। 80 में से 59 विधायक तृणमूल कांग्रेस के, वो ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को अपना विपक्ष के नेता चुन लिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब ममता बनर्जी क्या करेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर ज्यादातर लोग जो पार्टी के हैं वो खफा रहे हैं और ममता बनर्जी इस बारे में कुछ नहीं की। और अब सारे विधायक जो है 59, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल लिया है, वो बागी बन गए हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी इस पार्टी को एकजुट रख पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या आने वाले दिनों में इस पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर ममता बनर्जी रहेंगी, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया था, जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जो पार्टी पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल सरकार में थी, क्या उस पार्टी में ममता बनर्जी रह पाएंगी? तो आगे अगर रहती हैं तो उनका रणनीति क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा।
1: तो ये थे हमारे संवाददाता अपसेन गुप्ता। 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे राहुल गांधी के दावे की। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है बता रहे हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा।
3: ईरान वॉर और वेस्ट एशिया में जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही है उसके बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि अगले 1 साल में देश में इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। इसमें बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस देश में इमरजेंसी भी लग सकती है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि इमरजेंसी लगाने का डीएनए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और इस देश में आज तक सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाई गई है, और इस देश में दोबारा इमरजेंसी कभी नहीं लग सकती। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार नीट को लेकर और इसी के साथ साथ पेट्रोल को लेकर जो दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बीच विपक्ष सरकार पर लगातार है, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं। मेरे सहयोगी आलोक दास के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्सॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: बात करते हैं एक्टर आमिर खान के। 60 साल की उम्र में आमिर खान तीसरी बार शादी रचाना जा रहे हैं। आखिर कौन बनने वाले हैं आमिर खान के दुल्हन और कब हो रही है शादी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सना।
5: आमिर खान के घर पे बजने वाली है फिर से शहनाई की गूंज। हाँ, 5 जुलाई को आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने वाली है। जी हाँ, ये न्यूज बिल्कुल फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर चुका है, और ये आज ही खबर आई है कि आमिर खान, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले साल एक बहुत ही प्यारे से सेरेमनी में अपने बर्थडे के दो दिन पहले उन्होंने मीडिया को बुलाया था और अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया था और एक ऑफिशियली जो एक अनाउंसमेंट होता है जिसे आजकल हम हार्ड लॉन्च कहते हैं वो किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो अपने रिश्ते को छुपाए नहीं रखना चाहते और शायद यही प्यार है जो अब तीसरी बार आमिर खान शादी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने चूज किया है एक बहुत ही क्लोज नेट इंटीमेट शादी। 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान अपने जो है वाउज लेंगे गौरी स्प्रैट के साथ और ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक सिंपल फंक्शन होने वाला है जिसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे।
1: 12:12 रिपोर्टर में आप रुकने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
7: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम, एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। आउच। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, we can work with that.
8: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
9: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: बाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
2: बिजनौर से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाने का दावा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर पुलिस ने उनके धामपुर आवास पर रोका, बड़ी संख्या में पुलिस उनके आवास पर ही मौजूद। यूपी में अभियान शुरू करने से पहले चंद्रशेखर बोले कि सम्मानजनक सीटें मिलने पर किसी भी दल के साथ गठबंधन संभव है। बिजनौर में एएसपी यात्रा में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और मुफ्त शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे। उत्तर प्रदेश भर में यात्रा के दौरान पदोन्नति में आरक्षण और अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी उठेगी। मुरादाबाद के सनातन धवन में इंटर कॉलेज में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहली बड़ी चुनावी रैली, 2027 की तैयारी के लिए उतरे जयंत चौधरी। मुरादाबाद में विजय संकल्प महारैली के जरिए जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश में, जाट वोटों को एकजुट करना भी चौधरी की बड़ी चुनौती। मुरादाबाद के ठाकरे द्वारा इंटर कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जुटे, जयंत चौधरी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव के संभावित तारीख मांगी है। लखनऊ में हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग के रिपोर्ट और चुनावी टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया। लखनऊ में पंचायत चुनाव मामले में सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने, मंत्री ने विपक्ष पर विकास को रोकने का आरोप लगाया। संभल में कब्जा मुक्त कराए गए सरकारी जमीन पर दंगा पीड़ित परिवार को आज 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित होगी। शेरखास सराय संभल में प्रशासन 1978 दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवारों को जमीन सौंपेगा। 2027 चुनावों से पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना संभल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वर्षों से विस्थापित परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने सॉल्वर गिरोहों और अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी जारी की। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने पर चल अचल संपत्ति अब जब्त की जा सकती है। परीक्षा के प्रश्न पत्र या इससे जुड़ी सामग्री साझा करना कानूनन अपराध माना जाएगा और इसे लेकर पूरा सिस्टम चौकस। यूपी में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सॉल्वर गिरोहों पर करोड़ों के जुर्माने का प्रावधान भी। लखनऊ में एससीएफ ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सदस्य चक्र शेरू उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया। हरदोई लखनऊ लिंक रोड नेटवर्क पर एससीएफ का शिकंजा, हजारों अपात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का इन पर आरोप। कानपुर में ब्राह्मण चेहरे एक सुर में बोले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, वही होंगे पार्टी का फेस। कानपुर में ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का दावा, सनातन के लिए सरकार के कामों से ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ। कानपुर में कई ब्राह्मणों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर असंतोष भी जताया, कहा कि इस बार विकल्प तलाशेंगे। कन्नौज में शंकराचार्य का योगी सरकार पर सवाल, आरोपी असद के एनकाउंटर पर बोले कि जांच और न्याय की जगह मुठभेड़ समाधान नहीं, कानून के तहत सजा जरूरी। एफएसएसएआई ने साहिबाबाद गाजियाबाद में छापेमारी की, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त, जांच के लिए 10 नमूने भेजे गए। यूपी में विधानसभा चुनावों की राजनीति के रुझान आने शुरू हो गए, कहीं पर चुनावी रैलियां शुरू हो रही, कहीं पर चुनावी अभियान, और इसी बीच में यूपी की सियासत की नई प्रयोगशाला।

0: संभल से बड़ी खबर आपको देते हैं। योगी सरकार ने संभल में 1978 के दंगा पीड़ित परिवार का पुनर्वास शुरू कर दिया है। आज संभल के दंगे में मारे गए रस्तोगी परिवार को अवैध कब्रिस्तान से मुक्त कराई गई जमीन का पट्टा औपचारिक रूप से सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर ने खुद अपने हाथों से रस्तोगी परिवार को जमीन का मालिकाना हक वाला जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज हैं वो सौंपे हैं। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर, संभल जिले के DM और SP ने बकायदा पूजा पाठ हवन करवाकर मृतक राम शरण दास रस्तोगी की पुत्र वधु दंगा पीड़ित परिवार के रुकमन रस्तोगी को ये पट्टा सौंपा है।
1: सबसे पहले तो हम उस पीड़ित परिवार और ऐसे 100 से ज्यादा जो 1978 के दंगों में जिनके परिवारों की जाने गई हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और देर आए दुरुस्त आए, 48 साल लग गए उनको न्याय देने में। आज हमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, उन परिवारों के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से अराजकता को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कर्फ्यू ना दंगा, हर कुछ है चंगा, आज उत्तर प्रदेश में सभी नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं। किसी को कोई दहशत नहीं पैदा कर सकता है। जितने गुंडे अपराधी माफिया उनको जमींदोज करके मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब कोई भी सर उठाने का अगर काम करता है, दुस्साहस करता है, तो उसको पता है कि उसका जहन्नुम का टिकट कटना तय है।
0: और इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अभिनव माथुर।
2: 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को संभल में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनी कुमार सिंह और संभल जिले के DMSP की मौजूदगी में कब्रिस्तान से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का 100 वर्ग मीटर जमीन के पट्टे को आवंटित करने की कार्यवाही प्रशासन की तरफ से की गई है। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ दिनों बाद 1978 के दंगा पीड़ित परिवार का आशियाना बनकर तैयार होगा। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो अब से 10 महीने पहले तक इस जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसको प्रशासन ने धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान को हटाने की कार्रवाई की, और उसके बाद अभी इस जमीन को 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को आवंटित किया गया है। अगर आज की बात की जाए तो यहां सबसे पहले विधि विधान के साथ 1978 के दंगा पीड़ित परिवार के द्वारा यहां पर हवन पूजन किया गया, और उसी के साथ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और DMSP के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा पूर्ण आहुति दी गई, और उसके बाद यहां पर विधि विधान से पूजन कराए जाने के बाद यहां पर आप ये देखेंगे तो ये इसी जगह पर ठीक दूसरी तरफ यहां पर ये वो पूरी जगह है जहां पर अब इस 1978 के दंगा पीड़ित परिवार का आशियाना बनाए जाने के लिए ये पूरी नींव रखी गई। जबकि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर के साथ ही संभल जिले के स्थानीय प्रशासन की दंगा पीड़ित परिवार के साथ मौजूदगी थी। वहीं उसके बाद अब ये वो पूरी जगह है जहां पर आप जो देखेंगे तो जहां अब से 10 महीने पहले तक ये पूरा कब्रिस्तान था, लेकिन 12 अगस्त 2025 को यहां पर प्रशासन के द्वारा इस पूरे कब्रिस्तान को जमींदोज कर दिया गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। लेकिन अब इस पूरी जमीन पर 1978 के दंगा पीड़ित परिवार यानी मृतक रामशरण दास रस्तोगी के पुत्र वधु और उनके पोते कपिल रस्तोगी को इस पूरी जमीन का पट्टा आवंटित किया गया है, जिसके बाद अब इस पूरी जमीन पर 1978 के दंगा पीड़ित परिवार का आशियाना बनकर तैयार होगा। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने यह साफ कर दिया है कि न केवल इस जमीन पर 1978 का दंगा पीड़ित परिवार एकमात्र बसेगा, बल्कि दूसरे दंगा पीड़ित परिवारों को भी इसी जमीन पर बसाने का काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार को पूरा आश्वासन दिया था कि जिस तरह से आपको यहां से जो है भगाया गया या यहां से जिस तरीके से पलायन कराया गया, उसके बाद अब इन परिवारों को इस संभल की जमीन पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: संभल में जिस रस्तोगी परिवार को आज जमीन का पट्टा मिला है वो एकमात्र परिवार नहीं है, सैकड़ों ऐसे हिंदू परिवार हैं जो बार बार हो रहे दंगों से घबराकर संभल छोड़कर भाग चुके थे। उन सभी की पुनर्वापसी की मुमकिन जो है अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन रस्तोगी परिवार का कम से कम पुनर्वास कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने हुकूमत की मंशा और सियासत का जो रुख है वो साफ कर दिया है।

0: वो दौर है सियासत कुछ ऐसा था जब बात बात पर संभल सुलग जाता था। वो जुल्म की रवायत ऐसी थी कि न तो थाने कचहरी में सुनवाई थी, न लखनऊ के कान डोलते थे। फिर वक्त बदला, सियासत बदली, सत्ता बदली, तो जनता के जज्बात भी बदले, संभल के हालात भी बदले। आदत से मजबूर संभल ने एक बार फिर जोर जबर और खून खराबे का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन इस बार हुकूमत के हाथ और सियासत के इरादे सख्त। संभल अपनी तारीख का हिसाब चुकाने लगा, पन्ने पलटते गए, हिसाब होता गया। और ऐसा ही एक पन्ना पलटा 48 साल पहले हुए दंगे में एक परिवार के साथ हुए भीषण अत्याचार का।
1: उन पर इतने चाकू के बार करे कि पोस्टमार्टम में भी 109 चाकू पाए गए हैं, और फिर उनकी हत्या करने के बाद में दुकान को लूट कर और जो भी मतलब उनका सपना उसे दुकान के तराजू के पल्लों से बांधकर और बाट बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया गया था।
0: उस राम शरण दास रस्तोगी के परिवार को इंसाफ के लिए 5 दशक और 3 पीढ़ी तक इंतजार करना पड़ा।
1: जब मेरे पिताजी ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई दी तो दंगाइयों की तरफ से धमकियां मिलने लगी, और जिसकी वजह से एक घटना और फिर घटित हुई। कोई कपिल नाम का व्यक्ति जामा मस्जिद में घुस गया था 2005 में। दंगाइयों ने मतलब मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया, और जबकि वो कपिल कोई और था, तो पुलिस प्रशासन ने उस समय मुझे दंगाइयों से बचाया। और उसके बाद में जब लगातार धमकियां मिलती थी मेरे पिताजी को, और मेरे साथ में भी ये हादसा हुआ जब मैं 9-10 साल का था, तो मेरे पिताजी ने यहां से पलायन करना ही उचित समझा।
0: और 2024 के दंगों के बाद जब संभल के तारीख के पन्ने पलटने लगे, तो 2 साल की खुदाई के बाद संभल में एक से बढ़कर एक कहानियां निकलने लगी। सीएम योगी ने संभल की तारीख से हाल तक के जुल्मों का जिक्र करते हुए संभल के पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही थी।
2: 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था, 1976 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए, 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत।
0: और अब सीएम योगी ने अपना वचन पूरा किया, और अब संभल के दंगे में भगाए जा चुके रस्तोगी परिवार को अवैध कब्रिस्तान से मुक्त कराई गई जमीन का पट्टा मिल गया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि संभल में आजादी के बाद से करीब 20-25% हिंदू आबादी पलायन कर गई है, और उसके पीछे संभल में होने वाले बार बार के दंगे ही बड़ा कारण थे। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
3: अब पिछले 2 साल से जिस संभल में सुशासन की सत्ता का हिंदुत्व प्रयोग चल रहा है, दरअसल वो मुस्लिम परस्त राजनीति का ऐसा किला है जहां 30 साल में आज तक बीजेपी जीत ही नहीं पाए है। संभल विधानसभा सीट के इतिहास की अगर हम बात करें तो संभल विधानसभा सीट पर साल 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखे जाए तो साल 2007 में संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल महमूद ने 46,096 वोट यानी 33.44% वोट हासिल किए, जीत हासिल की। बीजेपी के प्रत्याशी राजेश सिंघल यहां दूसरे नंबर पर रहे। फिर 2012 की तरफ देखें तो नवाब इकबाल महमूद ने 79,692 वोट यानी 40.70% वोट हासिल किए, जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंघल, उनको 49,773 वोट मिले थे। और फिर साल 2017 में समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल महमूद ने 79,248 यानी कि 32.84% वोट के साथ जीत हासिल की थी। जबकि दूसरे नंबर पर है बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, उन्हें 59,976 वोट मिले थे। योगी राज के बावजूद साल 2022 में समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल महमूद ने 1,07,073 यानी 43.73% रिकॉर्ड वोट पाकर जीत हासिल की थी। जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेश सिंघल को 65,376 वोट मिले थे। हालांकि 2022 में योगी राज के 5 साल के बाद हुए चुनावों में संभल में बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत से थोड़ा सा दूर ही खड़ी दिखाई दी। अब देखना होगा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी संभल सीट पर कोई नया फॉर्मूला लागू करके कमल खिलाने में कामयाब हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है। अब अयोध्या, काशी और मथुरा से लेकर संभल तक यूपी की सियासत में हिंदुत्व की धार पर सवार सियासत सत्ता की बुलंदी तक पहुंचते रहे, लेकिन अब धर्म के आगे राजनीति का जातिकरण भी होने लगा है और इसकी मिसाल तब मिलती है जब एक ही दरमियान सूबे के तीन अलग अलग इलाकों में तीन अपराध की घटनाएं होती हैं और उन्हें लेकर राजनीतिक परिचर्चाएं तीन रंगों में बटी हुई दिखाई देती हैं।

0: उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में पिछले दिनों तीन कत्ल हुए। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, कातिल असद ढेर हो गया। लखनऊ में संदीप सिंह की हत्या हुई, दिनेश यादव गिरफ्तार हो गया। गाजीपुर में विनीत सिंह की हत्या हो गई। अब इन कत्लों के जुर्म और गुनहगारों की जाति मजहब पर चल रही राजनीति की बुनियाद देखिए। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या करने वाले आरोपी असद की मौत हो गई। तीन आरोपी गिरफ्तार हैं, कई संदिग्ध हिरासत में हैं, बाकियों की तलाश है। हत्याकांड के चक्कर में पूरे मोहल्ले की पैमाइश होने लगी है, आसमान से निगरानी तक हो रही है और अब कार्रवाई की चपेट में अवैध मदरसे तक आ गए हैं।
1: प्रशासन ने सीलिंग की है, आप ये देखिए, ताला लगा करके यहाँ पे मोहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस चिपकाया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से कि इस मदरसे से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो एक सप्ताह के भीतर पेश किया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये जो मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पे लिखा है।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई करके मुस्लिम आरोपित का एनकाउंटर कर डाला, लेकिन पांच दिन पहले गाजीपुर में हुई होटल व्यवसायी की हत्या के केस में आरोपित तक नहीं पकड़ा गया।
2: मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि दरारियां कम करिए, बुलडोजरों को पत्ते पर मत भेजिए, ये तो सर्दी की पराकाष्ठा है।
0: गाजीपुर के होटल व्यवसायी ने जान को खतरे की शिकायत पुलिस से कई बार की थी, लेकिन ना तो खतरा टाला गया और ना सुरक्षा मिली। हालांकि सीएम योगी इन दिनों हर सभा कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं।
3: माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं, हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: यूपी में माफिया के खात्मे के दावे के बावजूद जुर्म का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा और इन्हीं जुर्मों के हवाले से सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन यूपी में हो रहे अपराधों की खबरें और मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब ऐसा ही समाजवादी सवाल जब लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या को लेकर भी उठाए गए, लेकिन इस हत्याकांड में जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आरोपी दिनेश यादव नाम का शख्स है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है और इसी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने शूटर मुहैया कराने वाले दिनेश यादव के ड्राइवर मुबीन को भी गिरफ्तार किया।
4: संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें दिनेश यादव को और उसके साथ एक मुबीन को गिरफ्तार किया गया है। हम इस समय पीजीआई थाने में मौजूद है। यहाँ पर जो गाड़ी मौजूद है ये देखिए, इस पे लिखा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लोहिया वाहिनी चलाई जाती है उसका समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, इस तरीके का यहाँ पर कह सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है।
5: समाजवादी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में, ना किसी आंदोलन में, ना किसी प्रदर्शन में, ना किसी पार्टी दफ्तर में, ना कार्यालय में, मैं समझता हूँ कि दिनों क्या कई सालों से नहीं दिखा हुआ।
0: अब ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव 27 तारीख से लखनऊ में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे और पकड़ा गया आरोपित यादव है और दूसरा मुस्लिम। ओपी राजभर ने एक और तस्वीर डालकर उसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे जमीन विवाद है, जिसमें 5 लाख की सुपारी देकर बकरीद वाले दिन संदीप सिंह की हत्या करा दी गई। लखनऊ से आशीष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आपको देते हैं। यूपी की नगीना से आज समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने धामपुर में उनके आवास में रोक रखा है। चंद्रशेखर ने आज से यूपी में सत्ता परिवर्तन रैली की शुरुआत की घोषणा कर रखी थी। अब इसे लेकर चंद्रशेखर का आज कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस की टीम धामपुर में धमक गई, चंद्रशेखर के आवास के बाहर तैनात दिखी।
7: आज बिजनौर में आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन होना था, लेकिन बिना परमिशन के होने वाली इस रैली को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये मेन चौराहा जो है ये बंद कर दिया गया है। चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। रैली को यहां से रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और रैली स्थल से पहले जो मेन चौराहा है उसको घेर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और रैली किसी भी कीमत पे ना निकले इसकी तैयारी पुलिस ने कर ली है, क्योंकि इस रैली के लिए कोई परमिशन या अनुमति नहीं ली गई है। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक।
6: तो चंद्रशेखर आजाद की चुनावी राजनीति का पहला दिन ही रोक टोक के साथ शुरू हुआ। दरअसल यूपी की सियासत में 1-1.5% दलित वोट पाकर चंद्रशेखर आजाद को लगने लगा कि मायावती के साथ अब तक जुड़े रहे दलित वोट, जो पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन इंडिया की ओर चले गए थे, वो उनके पाले में आ सकते हैं। और इसीलिए पश्चिमी यूपी से ही चंद्रशेखर ने चुनावी कार्यक्रमों के आगाज की तैयारी कर रखी थी और बिजनौर से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम की तस्वीरों के साथ चंद्रशेखर ने पोस्टर में बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं को एक मंच पर साथ लाने का दावा किया है और 32 मुद्दों पर जनता के बीच बदलाव की मांग रखने वाले हैं। अब इसमें पदोन्नति में आरक्षण और अति पिछड़ी जातियों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग से लेकर पिछड़े वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की भी एक प्रमुख मुद्दा इस यात्रा में रहता। तो उत्तर प्रदेश में दरअसल साल 2027 के समर में दलित वोटों पर पकड़ की होड़ सबसे ज्यादा है। इसमें दो बड़े कारण हैं। एक तो ये कि 2017 के बाद से यूपी में एनडीए और बीएसपी दोनों का दलित वोट का हिसाब किताब लगातार ढलान की ओर दिख रहा है, और ऊपर से पिछले चुनाव में गठबंधन इंडिया की ओर दलितों के रुझान ने सत्ताधारी दलों की फिक्र बढ़ा दी है। ऐसे में नगीना से सांसद बनकर आए जो है आज समाज पार्टी को लगता है कि दलित वोटों का रुख उनकी ओर करने का यह सबसे अच्छा मौका है।
8: किसी जमाने में उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख तय करने वाला दलित वोट का रुझान आने वाले चुनाव में क्या किसी एक दल की ओर हो पाएगा, ये अनुमान और आशंका इन आंकड़ों के बिना पर उठती है। क्योंकि पिछले 9-10 साल के रुझानों की बात की जाए तो 2017 में बीएसपी को 53%, बीजेपी को 34% और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 9% दलित वोट मिले थे। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद भी बीएसपी को 51% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 40% तक दलित वोट मिल गए थे। लेकिन 2022 में फिर विधानसभा में बीएसपी 41%, बीजेपी 31% और समाजवादी पार्टी को 18% दलित वोट मिले। और बड़ा उलटफेर 2024 में हुआ, जब बीएसपी को सिर्फ 29% दलित वोट मिले, बीजेपी को 27% और इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिल गए। और दलित वोटों के इसी बिखराव और बीएसपी से मोहभंग की लहर में यूपी के नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी जीत कर संसद पहुंच गए।
9: जुल्म, जाति, अत्याचार हुआ, उनसे लड़ना से।
8: अब चंद्रशेखर को लगता है कि बहुजन आंदोलन की लहर पर सवार मायावती ने सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन पिछले 14 वर्षों से जब वो पकड़ ढीली पड़ती जा रही है तो आजाद समाज पार्टी को मौका मिलना चाहिए।
9: क्योंकि मुझसे कहा जाता था कि इनके जाने से बिखराव हो जाता है, तो उन 5 स्टेटों में उनका क्या रिजल्ट आया? मीडिया को चिंतन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, क्या कहीं 1% ज्यादा वोट ले पाए? 30% वोट है उन प्रदेशों में, लेकिन मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जनता देखती है कि कौन आदमी काम कर रहा है। उनको 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में समाज ने बहुत प्रयास किया है। जब सफलता नहीं मिल पा रही तो समाज के अंदर चिंतन है कि अगर सत्ता से ज्यादा दिन दूर रहेंगे, 12 के बाद 26, 14 साल हो गए।
6: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीति में एक और अहम शुरुआत आज पश्चिमी यूपी से हुई है। पश्चिमी यूपी में लगभग 3 दर्जन सीटों पर 35-45% वोट की पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने चुनावी मुहिम शुरू की है। पिछले दिनों मेरठ से लेकर बागपत तक सभाएं कर चुके जयंत चौधरी ने आज मुरादाबाद में बड़ी सभा के साथ औपचारिक शंखनाद कर दिया है।
10: समाजवादी पार्टी का मजबूत दुर्ग भेदने उतरेंगे जयंत चौधरी। बीजेपी की बंजर जमीन सींचने का है प्लान। यूपी की सियासत में भले ही जयंत को छोटा चौधरी माना जाता हो, लेकिन जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासत की होती है तो वो बड़े चौधरी कहलाते हैं। आरएलडी ने ये दिखलाया भी है, लेकिन अब वो अपने पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने मुरादाबाद को चुना है। आपको बता दें, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसका जातीय समीकरण मुस्लिम बहुल सीटें, 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती, तो वहीं लोकसभा सीट भी वहां से सपा ने अपने खाते में की। अब जयंत चौधरी वहां पर कमल खिलाने का प्लान लेकर पहुंचे हैं। ये एक तरह से जयंत के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो भी उनका घाटा नहीं, क्योंकि उनकी बागपत मुजफ्फरनगर में बढ़त बनी हुई है, लेकिन अगर कुछ कर ले गए तो बीजेपी को भी नुकसान नहीं और वो सीट मुरादाबाद की लेकर चुनावी समर में उतरते दिखाई देंगे। आज से चुनावी शंखनाद आरएलडी का मुरादाबाद से। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
14: Oh, ouch.
13: However you make money work, we can work with that.
15: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
16: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
17: Sokudo.
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
2: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: मालवीय नगर होटल अग्निकांड की आग सरकार तक पहुंची तो मंत्री और अधिकारी सभी एक्शन में आ गए। खुद आशीष सूद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से पूछताछ की और कड़े एक्शन का वादा किया। अब दिल्ली सरकार उन संस्थानों पर नकेल कसने का दावा कर रही है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिन पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज MCD, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग की टीम एक साथ जांच के लिए निकलेंगे।
6: हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
5: दिल्ली में 702 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए लाइसेंस दिए गए हैं जिन पर अब सरकार एक्शन की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा सरकार हर अग्निकांड के बाद ऐसी ही बातें करती है लेकिन 21 मौत पर जवाबदेही तय करनी होगी।
7: फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी।
5: दिल्ली के मालवीय नगर की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। अब इस मामले में सियासत गरमाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नई दी फायर एनओसी। 6 कमरों की जगह बनाए गए 25 कमरे। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप। अब तक 21 मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद होटल में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम। एलजी ने दिए सख्त निर्देश। मुजफ्फरपुर में जिला अस्पताल आईसीयू वार्ड भरा धुआं। 5 की मौत। लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता के हाथ से छुट्टी पार्टी की बागडोर। बागी गुट के ऋतुव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष। 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत। सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट। कैबिनेट दी मंजूरी।

मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट कमेटी का गठन, इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल। तीन मार्च से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों का इंस्पेक्शन शुरू करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई संभव। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन का आरोप, जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई। मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में 21 की मौत, कई विदेशी नागरिकों की गई जान, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज हो सकती है कई इलाकों में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। मेयर प्रवेश वाई ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश, 3 मिनट जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक परिवारों को मिलेगा 2 लाख मुआवजा। आग हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान, हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए, 8 घायल अब भी वेंटिलेटर पर। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर उठाए सवाल। और जानी में ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा, इलाके के अधिकांश इमारतों के बेसमेंट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार की 9 की गई जान, सभी अस्पताल में भर्ती परिजनों से मिलने आए थे। विदेशी नागरिक की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के संपर्क में विदेश मंत्रालय, दी जा रही है जरूरी संभव मदद। होटल मालिक लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा, डर के चलते वो मौके से फरार हो गए थे। लवकेश बजाज ने कहा कि वो घर भी नहीं गए और सड़कों पर घूमते रहे। पूछताछ में मालिक का खुलासा, 3 साल पहले अलवल नाम की एक पार्टी से ली थी ये बिल्डिंग। आरोपी की पुलिस 3 से 4 दिन की पुलिस मांगेगी रिमांड, आरोपी ने कबूला, बिल्डिंग के लिए कभी नहीं ली फायर की एनओसी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी कार्रवाई का खौफ, हौज रानी के होटल्स पर लटके ताले। मालवीय नगर और हौज रानी बांकर विदेशी पर्यटक सामान लेकर ठहरने की जगह तलाशते नजर आए। दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड, सीटीआई ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, फायर सेफ्टी के लिए 8 सूत्रीय गाइडलाइंस की मांग। पंचकुला में एक शख्स पर 2 शूटर्स ने किया अंधाधुंध फायरिंग, सूत्रों के अनुसार रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स द्वारा हमला किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं बढ़ने से 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मौके पर मौजूद परिजनों ने अस्पताल पर प्रबंधन पर लगाए आरोप, एक परिजन ने बताया कि उसके पिता आईसीयू में भर्ती थे, हादसे में उनकी मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड, मृतकों के परिजनों को 4-4 रुपए की सहायता करने का ऐलान। बिजनौर से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करें, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण का संदेश लेकर जाएंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने उनके धामपुर आवास से रोका, बड़ी संख्या में पुलिस उनके आवास पर मौजूद। यूपी में अभियान शुरू करने से पहले चंद्रशेखर बोले, सम्मानजनक सीटें मिलने पर किसी भी दल से गठबंधन संभव। बिजनौर में एसपी यात्रा में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, मुफ्त शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे। उत्तर प्रदेश भर में यात्रा के दौरान पदोन्नति में आरक्षण और अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग उठी। मुरादाबाद में सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहली बड़ी चुनावी रैली आज, 2027 तैयारी के लिए उतरे जयंत चौधरी।

मुरादाबाद विजय संकल्प महारैली के जरिए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाट वोटों को एकजुट करना जयंत चौधरी के लिए चुनौती। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इंटर कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ता जुटे, जयंत चौधरी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। लखनऊ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की संभावित तारीख मांगी। लखनऊ में हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया। लखनऊ में पंचायत चुनाव मामले पर सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने, मंत्री ने विपक्ष पर विकास रोकने का आरोप लगाया। संभल में कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर दंगा पीड़ित परिवार को आज 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित होगी। शेखसराय संभल में प्रशासन 1978 दंगे के बाद प्लान कर चुके परिवार को जमीन सौंपेगी। 2027 चुनाव से पहले हिंदुत्व प्रयोगशाला बना संभल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वर्षों से विस्थापित परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के 100 गिरोहों और अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने पर अचल और चल संपत्ति जब्त की जा सकती। परीक्षा के प्रश्न पत्र या सुझाव सामग्री साझा करना कानून अपराध माना जाएगा, इसे लेकर पूरा सिस्टम चौकस है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत 100 गिरोहों का करोड़ों का जुर्माने का प्रावधान है। एसटीएफ ने आयुष्मान योजना को लेकर लखनऊ में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सदस्य चक्र शेरू उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया है। हरदोई लखनऊ लिंक नेटवर्क पर एसटीएफ का शिकंजा, हजारों अपात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का आरोप। कानपुर में ब्राह्मण चेहरे एक सुर में बोले, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, वहीं होगी पार्टी का चेहरा। कानपुर में ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का दावा, स्नातन के लिए सरकार के कामों से ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ। कानपुर में कई ब्राह्मणों ने यूजी से जुड़े मुद्दों पर असंतोष जताया, कहा इस बार विकल्प तलाशने पर विचार। कन्नौज में शंकराचार्य पर योगी सरकार पर सवाल, आरोपी असद के एनकाउंटर पर बोले, जांच और न्याय की जगह मुठभेड़ नहीं है समाधान, कानून के तहत सजा जरूरी है। एफएसएसएआई के सिहाईबाबाद गाजियाबाद में छापेमारी, एक्सपायर्ड पर दाग खाद्य सामग्री जब्त, जांच के लिए 10 नमूने भेजे गए। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या में 12 विदेशी नागरिक शामिल, अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक। हादसे पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, अग्निकांड में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सभी सुरक्षा मानकों की होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस पूछताछ से किए कई खुलासे। आज से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ एके मलिक का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गैर आतंक हत्या का मामला। उपराज्यपाल ने सभी होटल्स और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच अभियान चलाने का आदेश दिया। अजमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, मांगों को लेकर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, प्रशासन पर बढ़ा दबाव। नैनीताल में भीषण जाम में लोग परेशान, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कत। कटिहार में दूध का जली बाइक, मचार कम, बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी, कारणों की जांच जारी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज की। नवसारी में दो गुटों के बीच जनपद मारपीट, विवाद ने उग्र रूप लिया, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। एमपी के सिवनी में 6-4 की वारदात, सीसीटीवी में कैद, आरोपी की हरकत तो कैमरे में कैद, पुलिस ने जांच तेज की। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया, यूपी के बुलंदशहर में घटना पर प्रशासन सतर्क, मामले की जांच। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद, चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को परेशानी। गाजीपुर एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इराज आजा का बड़ा बयान, पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की, जांच जारी। नशे में धुत युवकों का पुलिस पर हमला, मचा बवाल, ओडिशा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के मारपीट का आरोप, जांच शुरू। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क का किया खुलासा। पति पत्नी के बीच खूनी संघर्ष, तलवारों से हमला, भोपाल में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दोनों घायल। निर्माणाधीन फिश मार्केट का गेट भरभराकर गिरा, सिद्धार्थनगर में चला बड़ा हादसा, घटना से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। बागपत में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप, कई ढांचे ध्वस्त। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात के महीसागर खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते युवक का वीडियो चर्चा का विषय बना। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत, एमपी के छतरपुर में घरेलू विवाद लिया खौफनाक मोड़। महाराष्ट्र पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फ्रेशर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर। गुजरात के सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पूछताछ जारी। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है टी20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज।
सूर्य कुमार यादव को लेकर जल्द होगा फैसला। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। 13 जून को वनडे सीरीज की शुरुआत। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची जर्मनी की ज्वेरेव। फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के

बात करेंगे, शादी करीबी लोग होंगे शामिल। वॉशिंगटन में बातचीत के बाद लेबनान और इजराइल में युद्ध विराम लागू करने पर सहमति। अमेरिका की मध्यस्थता में चौथे दौर की त्रिपक्षीय बैठक में ऐलान। अमेरिका में इसराइल के राजदूत एचईएल लेटर ने टिकाऊ युद्ध विराम की जताई उम्मीद। दक्षिण लेबनान में अमेरिका के नेतृत्व में पायलट जोन गठन की बात कही। बातचीत ठीक पहले लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला, इसराइल ने जारी किया वीडियो। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह करने का दावा। ट्रंप ने इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पागल कहने की मानी बात। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के साथ लेबनान जंग पर गर्मागर्म बातचीत की बात। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका दिया। ईरान के खिलाफ जंग पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोस्तबा से मिलने की जताई इच्छा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने राजनयिक बातचीत में मोस्तबा के सक्रिय रूप से शामिल होने की बात कही। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया। बुधवार को हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोकी गई उड़ानें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन को फंड दिए जाने पर जल्द फैसले का दिया भरोसा। सीनेट की सब कमेटी के $400 मिलियन की मदद पर जल्द फैसले की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2028 राष्ट्रपति चुनाव में जीडी वैंस और रूबियो की जोड़ी को बताया जाए 2028 चुनाव में दोनों को माना जा रहा है रिपब्लिकन उम्मीदवार का प्रत्याशी। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे और किर्गिस्तान को यूएन सुरक्षा परिषद में मिली जगह। 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा 2 साल का कार्यकाल।

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ी खबर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साकेत के मैक्स अस्पताल जाकर सीएम ने घायलों का मुआयना किया, उनसे परिवार वालों से हालचाल जाना, अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ चल रहे उपचार की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

0: घायलों के परिवार वालों से भी रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है, घायलों का हालचाल जाना है, डॉक्टर्स के साथ उपचार की समीक्षा भी की है। दिल्ली अग्निकांड लेकर एक और बड़ी खबर बता दें, अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मैक्स हॉस्पिटल की तस्वीर, जहां पर आज सुबह सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, वहीं घायलों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। देखना यह होगा कि क्या बीएनबी स्कीम्स पर भी कोई लगाम या फिर अंकुश लगाने की तैयारी में दिल्ली सरकार है या नहीं। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, जाहिर तौर पर मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन आगे से की घटना ना हो उसके लिए दिल्ली सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है क्या?
1: देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री मैक्स हॉस्पिटल पहुंची थी, तमाम जो घायल और पीड़ित हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करी और कंपनसेशन का भी ऐलान जो है वो किया है। 10 लाख रुपए जो है वो मृतक के परिवार वालों को और जो पीड़ित परिवार है जो घायल हुए उनको 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए तो दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक भी जो है वो चल रही है। बीएनबी को लेकर के कई कड़े फैसले जो है वो सरकार जो है वो ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई, 6 कमरे की इजाजत, 21 कमरे 25 कमरे जो है वो होटल में चलाए जा रहे थे, वो भी पूरी तरीके से इनलीगल, उस पर सरकार जो है वो कल ही एक ज्वाइंट कमेटी का गठन जो है वो किया था, उस पर लगातार जो मॉनिटर है वो खुद दिल्ली के गृह मंत्री कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है लगातार कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से आगे इस तरीके की घटना ना हो उसको लेकर के सरकार क्या क्या मेजर स्टेप्स उठा सकती है, उन सब पर चर्चा जो है वो आज दिल्ली सचिवालय में जो है वो फिलहाल की जा रही है।
0: ठीक है, अब हमारे साथ इस बीच बड़ी खबर यह है कि मालवे नगर अग्निकांड मामले में होटल की फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल की एक्सपर्ट टीम आज एक बार फिर मौके पर पहुंचेगी। कल एफएसएल की टीम सिर्फ एक ही फ्लोर पर जांच कर पाई थी। अग्निकांड में मरने वालों में ज्यादातर लोग होटल के तीसरे फ्लोर और बेसमेंट में मौजूद थे। कई कमरों में जांच दौरान दमकल विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और दूसरे उपकरण मिले। जो लोग लंबे समय से होटल में रुके थे वो खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर लोग की मौत दम घुटने के कारण हुई है। अग्निकांड में जान गंवाने वाले 12 विदेशी नागरिकों में से पासपोर्ट के जरिए अब तक 9 की पहचान हो गई है। जिनकी पहचान हुई है उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। सभी विदेशी नागरिकों के शव उनके देश वापस भेजने के लिए दिल्ली पुलिस उनकी लिस्ट विदेश मंत्रालय को भेज चुकी है। सभी विदेशी नागरिकों की डीएनए प्रोफाइलिंग पुलिस ने करवा ली है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये प्रोफाइलिंग

0: कर ली गई, पोस्टमार्टम भी करा लिए जाएंगे, शव सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, पासपोर्ट नहीं मिला है?
1: नहीं नहीं, अभी जो जानकारी है कि तमाम जो विदेशी नागरिक थे उन सभी की पहचान कर ली गई है, और पहचान करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो जो उनका पासपोर्ट था वो मिला, क्योंकि जब भी कोई विदेशी नागरिक आता है इलाज कराने के लिए तो वो टूरिज्म जो वीजा पे जब यहाँ पर आता है तो कुछ एजेंट होते हैं जिनके जरिए वो यहाँ पर आते हैं, इस्ते से लेकर के इलाज सारी चीजें वो प्रबंध करते हैं, तो उनके जरिए भी जानकारी मिली थी कि कौन कहाँ पे रुका हुआ है, तो उसकी वजह से पहचान करने में दिक्कत नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो मौत हुई थी नेहा वो दम घुटने से हुई थी, इसलिए शव के पहचान में भी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जानकारी आदेश के बाद परमिशन मिलने के बाद डीएनए प्रोफाइलिंग भी पुलिस ने करवा ली है ताकि बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जी नहीं, हाँ
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है, इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए। सभी होटल्स, नर्सिंग होम्स, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश है। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान आज से शुरू हो रहा है। कार्रवाई के डर से हौजरानी के इलाकों में कई B&B होटल पर ताला लटका दिखाई दे रहा है।
2: हौजरानी अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई। मैक्स साकेत में कई परिवार ऐसे जो इलाज कराने के लिए आते थे वो इसी हौजरानी के लेन में होटल्स, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट में रहते थे ताकि उनके परिजनों को, उनके प्रियजनों का जिनका इलाज मैक्स साकेत में हो रहा है उनका देखभाल वो रख सके। जैसे राधे श्याम अग्रवाल का परिवार रह रहा था उस होटल में जिसमें आग लगी, 8 लोग परिवार से मारे गए। अब तस्वीर क्या बदल रही है, 24 घंटे में ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा, शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है, जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का, क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। कुल मिलाकर इसी इलाके में आपको एक लाइन से एक के बाद एक होटल्स दिखाई देंगे जो संभवतः जिनके लाइसेंस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप दिए गए थे या गेस्ट हाउसेस के तौर पर दिए गए थे, और इसके बाद अगला होटल इसी लाइन में आप देखेंगे फ्लरिश इन। तो एक एक करके सभी होटल्स में अब आपको ताला दिखाई देगा। कुल मिला के अब सवाल ये उठ रहा है कि कल जब अग्निकांड हुआ 21 लोगों की जान गई, अथॉरिटीज अब नींद से जागेगी, इस इलाके की जांच करेगी, ताला लगाया जा सकता है, एक्शन हो सकता है, और इसी वजह से डर से होटल मालिकों ने अब खुद ताला लगा दिया है। जो लोग यहाँ रह रहे थे मैक्स साकेत में इलाज कराने के लिए, किसी और अस्पताल में इलाज कराने के लिए, उनको कह दिया गया कि आप निकल जाइए और आपको फिलहाल इन होटल्स के बाहर ताला जड़ा।
0: इस बीच दिल्ली के खरावल नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर 4 मंजिला मकान गिर गया है। दरार आने के बाद समय रहते मकान को खाली करा लिया गया था। मकान के पास नाले के निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। मकान पर दरार आ गई है और कुछ समय बाद पूरी इमारत भरभरा कर ढह गई। राहत की बात ये रही कि मकान खाली होने के कारण इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और न ही किसी के तहत होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि भवन के गिरने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर नगर निगम ने 5 मंजिला इमारत में गिरा दिया है। इमारत झुकने की वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था। आखिरकार आसपास के मकानों को करवाया या खाली, और फिर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया। रामगंज के चीता वाला मोहल्ले में ये इमारत थी, 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जो आसपास के लोगों ने शिकायत की, उसके बाद ये कार्रवाई की गई।
3: करंट कहाँ से आया?
0: वक्त एक ब्रेक का उछला है, टिकते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
4: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आगे आगे।
6: अरे उधर
5: उधर किधर?
6: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: In association with
12: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
14: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
11: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
15: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
1: In association with
0: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
1: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
0: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए। दिल्ली में आग से 14 हड़कंप। 21 की मौत, 50 ज्यादा घायल। हादसे के बाद होटल्स में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम। एलजी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला अस्पताल

0: आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, 5 लोगों की मौत, लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता के हाथ से छुटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता विपक्ष, 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को नोटिस। बढ़ाने के सरकार का बड़ा कदम, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत, सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
1: न फायर एनओसी, न कानून की परवाह, ठेंगे पर नियम कायदा, दिल्ली में होटल बम, संवेदनहीनता की इंतहा, सिस्टम का क्रूर मजाक, आंखें मूंदे अधिकारी, सोता प्रशासन, 21 मौत के असली मुजरिम कौन, कौन जवाब दे, कौन जिम्मेदार, सिर्फ कागजी एक्शन से बचेगी जान।

0: खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। दिल्ली अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। दूसरी ओर रिटायर के गिरफ्तार मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को अहम जानकारी दी। उसे पुलिस थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश करने वाली है। इससे पहले लवकेश ने पूछताछ में बताया कि उसकी कुल 3 प्रॉपर्टीज है। खुलासा यह भी हुआ है, नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराए। ऐसे में शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मालवीय नगर इलाके में स्थित होटल में आग लगती है, उसमें लोग फंस जाते हैं। आसपास के लोग और रेस्क्यू टीम्स लगातार लोगों को बचाने में जुट जाती हैं, लेकिन होटल का मालिक लवकेश बजाज मौके पर मौजूद रहने के बावजूद वो होटल में फंसे लोगों को बचाने के बजाय मौके से फरार हो जाता है। अब डर का वो हवाला दे रहा है। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि कैसे 3 जून की सुबह वो मौके से भाग गया, सड़कों पर घूमता रहा। बीती रात दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब दिल्ली पुलिस कुछ ही देर में उसे कोर्ट में पेश करने वाली है।
1: बस और लाचार की भरी चीख सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कोई अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा है।
2: कम, कम, कम, कम, कम, कम, कम,
1: कम। फंसे लोग बार बार मदद मांग रहे हैं। एक तरफ होटल सुलग रहा है, दूसरी ओर कमरों में फंसे लोग खिड़कियों में झांक रहे हैं कि कोई तो उन तक मदद पहुंचा दे। ये 3 जून की खौफनाक तस्वीरें हैं। जब आग की लपटें बेकाबू हो रही थी, ये मंजर बेहद भयावह था। लेकिन तमाम खौफ और खतरे के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर मदद कर रहे थे। फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे थे, उनकी जिंदगी बचा रहे थे। कुछ देर के लिए उस भीड़ में वो गुनहगार भी खड़ा रहा जिसने इस होटल को शमशान बना दिया। नाम है लवकेश बजाज। ये उसी होटल फ्लोरिश स्टे का मालिक है जहां 3 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद लवकेश बजाज गिरफ्तार हुआ। जब दिल्ली पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए तो उसने बड़ी बेशर्मी से कबूला कि हाँ, वो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था। हादसे वाले दिन चंद घंटे बाद दिल्ली के साकेत इलाके से लवकेश बजाज की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में इसने पुलिस को बताया कि वो हादसे के वक्त मौके से गुजरा था, लेकिन वहां से तुरंत निकल गया और रुका नहीं। पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि वो डर के चलते मौके से भाग गया। लवकेश की माने तो भाग कर वो घर नहीं गया बल्कि सड़कों पर घूमता रहा। और पुलिस की पूछताछ में सबसे अहम खुलासा ये कि कभी फायर की NOC नहीं ली थी। 3 जून की सुबह जब मालवीय नगर के लोग होटल के अंदर आग और धुएं के बीच फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब ये शातिर अपनी गर्दन बचाने के लिए भाग रहा था। जब इसे अपने होटल के मेहमानों को बाहर निकालने के उपाय करने थे, तब इसे अपनी पड़ी थी। होटल में इतने खौफनाक और दिल दिमाग को झकझोर देने वाले भीषण अग्निकांड के बाद पहली प्राथमिकता लोगों के रेस्क्यू की थी। दूसरा अहम था हादसे के इस मुजरिम को दबोचना। जब लवकेश बजाज गिरफ्तार हुआ तो इसने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसने 3 साल पहले आहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये बिल्डिंग खरीदी थी और ये होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था।
3: ये देखिए, आज तक हम आपको फिर तस्वीर दिखा रहे हैं, समझने की जरूरत है कि हम बेहद इस होटल से कितने करीब है। अंजुम जी है, ये सामने
4: यहाँ पे पहले खादी शिल्प होता था, उसके बाद यहाँ पे आहलूवालिया कंस्ट्रक्शन किसी ने ये बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद ये इन्होंने किसी बजाज सम
3: एक बात बताइए, NOC मिल सकती इस होटल को?
4: इस होटल को NOC इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है, इन्होंने 25-25 कमरे इसमें बना रखे, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है।
1: मिली जानकारी के मुताबिक लवतेश बजाज ने पुलिस को बताया कि होटल से पहले यहां खादी की शॉप थी। इमारत काफी जर्जर थी। उसने ये भी दावा किया है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ से जुड़ी कई परमिशन ली थी। गिरफ्तार बजाज ने यह भी बताया कि वो होटल अकेला चला रहा था, इसमें कोई पार्टनर नहीं है। आरोपी ने बताया कि उसने होटल का पूरा काम जय मिश्रा नाम के एक शख्स को सौंप रखा था जो उसका अकाउंटेंट है। होटल से जुड़े सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम पर ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि वो जय मिश्रा कहाँ है। दिल्ली पुलिस अब उसका रोल भी वेरीफाई कर रही है।
3: इस खूनी होटल के मालिक लोकेश बजाज को दिल्ली पुलिस ने 3 अप्रैल की देर शाम साउथ दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लोकेश बजाज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने होटल की फायर एनओसी कभी ली ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पूछताछ में लोकेश बजाज ने खुलासा किया कि इस होटल की देखरेख उसका अकाउंटेंट जय मिश्रा ही करता है, लाइसेंस भी जय मिश्रा के नाम पर ही है। इतना ही नहीं, आग लगने के बाद लोकेश बजाज इस होटल के आसपास आया, कुछ देर रुका, उसके बाद मौके से फरार हो गया और सड़कों पर वो लगातार घूम रहा था।
1: होटल फ्लोरिस स्ट्रे जहां हादसा हुआ उसके निर्माण में लवकेश बजाज ने नियमों की तनिक भी परवाह नहीं की और प्रशासन की अनदेखी की वजह से इसका हौसला बुलंद रहा। अब वही अनदेखी 21 जिंदगियों पर भारी पड़ी है। अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के साकेत का रहने वाला होटल कारोबारी लवकेश बजाज कानून को ठेंगा दिखाता रहा। उसे किसी एक्शन का डर नहीं था। तीन होटल का मालिक है, लेकिन बताया जा रहा है किसी में भी एनओसी नहीं ली गई। खुद आलिशान कोठी में रहता है और अपने होटल व्यवसाय को चमकाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल करता था। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो उसकी असलियत दुनिया के सामने आने लगी है।

0: 21 मौतें। इस गुनहगार ने अपना अलग ही बिजनेस मॉडल बनाया हुआ था। होटल में किसी की जान जाए तो जाए, हादसा हो तो हो जाए, ये मान चुका था कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो लवकेश बजाज दिल्ली के मालवीय नगर और अन्य इलाकों में तीन तीन होटलों का मालिक है। एक होटल है फ्लोरिश स्टे, जिसमें 3 जून को भीषण आग लगी और 21 जिंदगियां खत्म हो गई। दूसरा होटल है फ्लोरिश इन और तीसरा होटल है लेमन ग्रीन। होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगी और 21 लोगों की जान गई तो अधिकारियों ने फाइल पलटनी शुरू कर दी। फिर क्या था, लवकेश बजाज के तीनों होटलों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। होटल फ्लोरिश स्टे में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन लवकेश बजाज ने वहां 25 कमरे बना डाले थे। साथ ही होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे। दोनों किचन के अंदर LPG के सिलेंडर रखे हुए थे। हालांकि जानकारी मिली है कि LPG सिलेंडर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। पुलिस आशंका जता रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी। पुलिस ने बिल्डिंग की फॉरेंसिक जांच भी की है। नियम कानून को ठेंगा दिखाने वाले बजाज अपने दूसरे होटलों में भी कुछ ऐसा ही किया। आज तक की टीम लवकेश बजाज के होटल फ्लोरिश इन भी पहुंची तो पाया कि वहां भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जहां 3 कमरों की इजाजत थी, वहां बजाज ने 5-6 कमरे बनाए। सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा। बेसमेंट में भी 4 कमरे बना दिए।
1: फ्लोर पर कितने रूम्स हैं ये आप चेक कीजिए। रूम नंबर 101, इसके बाद रूम नंबर 102 यानी 2 कमरे, रूम नंबर 03 यानी 3 कमरों तक की इजाजत है। लेकिन अब आप देखेंगे, एक कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा, एक कमरा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर नजर आएगा, एक कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा। आखिरकार इन तरीके के जो होटल्स चल रहे हैं, जो इनलीगल तरीके से, जिनके पास परमिशन सिर्फ 3 कमरों की है, ओवरऑल पूरी बिल्डिंग को 6 कमरे की है, उन होटल्स के अंदर किस तरीके से बड़े स्तर पे जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वो चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं और लगातार यहाँ पर कमरे जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर फ्लोर पर इसी तरीके का आलम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, एक कमरा यहाँ पर नजर आ जाएगा, यहाँ पे गेस्ट नजर आएंगे और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से रूम जो है वो नजर आएंगे। यानी हर फ्लोर पे आपको 4 से 5 कमरे जो है वो नजर आएंगे।
2: हम फ्लरिश्ते के टेरेस में है। ये सामने अगर देखें, ये मैक्स हॉस्पिटल ये आपके सामने है। आपको यहाँ से बल्कि इमरजेंसी की एंट्री सब कुछ यहीं से दिख जाएगा।
0: जिस होटल में आग लगी उसमें कमरे की बुकिंग के लिए लवकेश ऑनलाइन प्रचार करता था। उसने कमरों की तस्वीरें और बिल्डिंग की छत से मैक्स अस्पताल की तस्वीर साइट पर अपलोड की थी, लेकिन हर कोई उसके गुनाहों से अनजान था, जो 3 जून को जानलेवा हो गया। अवैध तरीके से होटल निर्माण कर लवकेश बजाज मोटी कमाई करता रहा, अकूत संपत्ति बनाता रहा और अपने लिए साकेत में उसने कोठी बनवा ली। होटल फ्लोरिश स्टे में हुए हादसे के बाद आज तक की टीम लवकेश के साकेत स्थित आवास पर भी पहुंची।
3: मालवीय नगर में होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के कसूरवारों में से एक लवकेश बजाज के घर पर आज तक की टीम पहुंची हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एक आलीशान कोठी है जिसमें बजाज फैमिली रहती है और इसी एक फ्लोर पर लवकेश बजाज रहता है। करोड़पति लवकेश बजाज के कई होटल हैं मालवीय नगर में। जिस होटल में आग लगी उसके आसपास 2 होटल हैं, दोनों ही गैर कानूनी तरीके से बिना NOC के चलाए जाते हैं।
4: ये जो कोठी है लवकेश बजाज की
5: है? नहीं, उनकी फैमिली रहती है यहाँ पे, मतलब पूरी फैमिली रहती है।
4: लवकेश बजाज भी इसी फ्लोर में रहते हैं,
5: ये पता नहीं, आइडिया नहीं है हमारे को।
0: अब लवकेश गिरफ्तार हो चुका है और उसकी काली करतूतों की फाइल भी खुल चुकी है। तमाम एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशांत मेहरा और अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: और आसपास के इलाके में भी इसी तरह के होटल चलाए गए हैं जिसमें फायर NOC नहीं है, जिसमें जरूरी मानकों को अनदेखी किया गया है। अंशुल सिंह की रिपोर्ट देखिए।
7: दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 21 लोगों की जानें चली गईं। इसके बाद खानापूर्ति करते हुए दिल्ली सरकार कहीं एक्शन में दिखी और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब वो सारी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की जा रही हैं जिनके पास परमिशंस नहीं है और उसके बाद भी वो इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं। इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ और बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कितनी बिल्डिंग्स है जिनको दिल्ली सरकार सीज कर पाएगी। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक और बड़ा होटल है। ये होटल कुछ 50 मीटर दूर होगा उस होटल से जहां पर हादसा हुआ है। और अगर आप यहां पर भी देखें तो एक तो ये बहुत ही ज्यादा संकरी गली में है और उसके अलावा इस होटल में भी बेसमेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये देखें तो ये बेसमेंट का वेंटिलेशन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। हालांकि ये होटल इस वक्त अंदर से बंद कर दिया गया है, जो लोग अंदर है उन्हें अंदर ही रहने बोला गया है और जो लोग बाहर है उनका सामान तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन आप यहाँ तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से इस होटल में भी एक बेसमेंट है, बेसमेंट का ये आउटर वेंट है और बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही है। और अगर मैं आपको एक सिलसिले से ये पूरा इलाका दिखाऊं, ये हौस रानी गांव है जहां पर ये हादसा हुआ है। और अगर आप देखें इस बिल्डिंग में भी एक इलीगल बेसमेंट है जो चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज होती है इसमें, जो कि MCDA के नियमों के हिसाब से बिल्कुल ही गैर कानूनी है। बेसमेंट में किसी भी तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। और ऐसा ही नहीं, ये पूरा एक सिलसिला है, यहाँ पर एक के बाद एक बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर इसी तरीके से इलीगल बेसमेंट चलाए जा रहे हैं, इसी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज जो है बेसमेंट में चलाई जा रही हैं, उसे रेंट वसूला जा रहा है, उनसे जो है कमर्शियली पैसा लिया जा रहा है। आप देखें ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारे बेसमेंट्स हैं जो अभी इस वक्त अंदर से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अब पुलिस यहां आ सकती है और इन सबके खिलाफ एक्शन ले सकती है। एक के बाद एक ये सिलसिले से देखिए, ये सारे बेसमेंट्स जो हैं ये इस पूरे इलाके में अभी भी जारी हैं। तो
6: अजीज बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम सवालों के बीच गिरफ्तार आरोपी लवकेश बजाज कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। दिल्ली पुलिस उसे कोर्ट में रिमांड के लिए पेश करेगी, रिमांड मांगी जाएगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कितने दिन की रिमांड मांगी जाएगी?
8: देखिए इस वक्त मैं मालवीय नगर थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर उसको कल रात में जब अरेस्ट किया गया था तो सीधे यहीं लाया गया था और यहीं पे FIR भी दर्ज है। जो जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से उसे निकाला जाएगा लवकेश, और उसको सीधे कोर्ट लेके जाएंगे क्योंकि मेडिकल यहाँ पर पुलिस ने पहले करा लिया है। और जो अनुमान है जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की बात हुई हमारी सोर्सेस से कि करीब 4 दिन की रिमांड की मांग यहाँ पर पुलिस कर सकती है क्योंकि सिलसिलेवार पूरी चीजों को समझना होगा। इसमें सबसे पहली चीज कि बिल्डिंग कब बनी, कितनी परमिशन के लिए उसने अप्लाई किया और जो जब आग लगी वो कहां पर था, उसे कब उसकी जानकारी मिली, तो कई ऐसे सारे सवाल हैं जिसके जवाब जानने और इन्वेस्टिगेशन में सभी कुछ समझने के लिए तकरीबन 4 दिन के रिमांड की मांग यहां पर पुलिस कर सकती है। और इसके जो पूरा जो जानकारी मिली है कि जो अकाउंटेंट था वो इस पूरे जो होटल था उसको चला रहा था, उसकी भी तलाश की जा रही है, उससे जुड़ी भी पूछताछ इससे करनी है। उसके लिए अलग से 10 टीमें बनाई गई हैं, नेहा 10 टीमें लगातार अकाउंटेंट की तलाश में जुटी हुई है। उसके तमाम हाइड आउट, वो कहां जा सकता है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो बस कुछ ही देर में यहीं से निकाला जाएगा और सीधे साकेत कोर्ट लेके जाया जाएगा। पुलिस की टीम, पुलिस के IO यहां पर मौजूद हैं अंदर थाने में और इस बीच कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी पूछताछ की थी और अब कोर्ट ले जाने की तैयारी यहां पर की गई है। कोर्ट ले जाने से पहले आमतौर पर मेडिकल कराया जाता है लेकिन यहां पर पुलिस ने पहले ही मेडिकल करवा लिया था तो इसलिए अब सीधे कोर्ट, साकेत कोर्ट यहां से ले जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब यहां से निकाला जाएगा। और हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से कि उसे ले जाने की जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं तो कभी भी यहां से पुलिस आरोपी को लेकर के कोर्ट के लिए निकलेगी। जी
6: शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप कल हुए हादसे के बाद लवकेश बजाज के खिलाफ जांच तेज है, इसके होटल के निर्माण में बरती गई नियमों की अनदेखी को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जहां समूचा तंत्र खुद को एक्टिव बताता है, तमाम प्रक्रिया और नियमों को पूरा कराने और जांच पड़ताल का हवाला दिया जाता है, वहां कानून तोड़कर ऐसे होटल कैसे बन गए?
9: लवकेश पर आरोपों की लिस्ट लंबी है क्योंकि उसके किए गुनाह ने 21 जिंदगियां छीन ली। जिस होटल में आग भड़की वो अवैध था, उस होटल के लिए ना तो फायर डिपार्टमेंट का NOC था, होटल में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, नियम के हिसाब से होटल में सुविधाएं नहीं थी, 6 कमरों की जगह लवकेश ने 25 कमरे बनवा दिए थे। इसका नतीजा हुआ कि 12 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की जान चली गई। फ्लोरिश एस्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी, दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी, फिर भी लवकेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्तरां चल रहा था। एमसीडी अधिकारी आंखें मूंदे हादसे का इंतजार कर रहे थे। नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट और पर्यावरण विभाग जैसे विभाग के अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय अपने एसी वाले दफ्तरों की शान बढ़ाते रहे। अब हादसे के बाद दिल्ली के तमाम महकमे जाग चुके हैं, अधिकारियों की नींद टूट चुकी है। ताबड़तोड़ एक्शन के लिए टीमें मुस्तैद हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाने में अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की है। इसमें BNS धारा 105 है, जो गैर इरादतन हत्या के लिए है। BNS धारा 326 जी भी लगाई गई है, जिसमें आग या विस्फोटक पदार्थ आदि के जरिए संपत्ति या जगह को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। FIR में BNS धारा 324(5) का भी जिक्र है, यानी किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से संबंधित आरोप है। BNS की धारा 125A और 125B, जिसमें दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य और लापरवाही का इल्जाम है। साथ ही धारा 287 भी लगाई गई है, जिसमें ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थ के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने की बात कही गई है। FIR के बाद लवकेश गिरफ्तार हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस उससे सवाल जवाब करना चाहती है। पुलिस जानना चाहती है कि उसने होटल के लिए फायर की NOC क्यों नहीं ली थी, उसे इतनी आसानी से लाइसेंस कैसे मिल गया, 6 कमरों की जगह 25 कमरे कैसे बना लिए, जय मिश्रा के नाम पर क्यों लाइसेंस लिए। पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है।
3: सूत्रों के मुताबिक लोकेश बजाज की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस को लोकेश बजाज से पूछताछ करनी है, होटल जय मिश्रा के नाम पर क्यों लिया गया था, सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम पर क्यों लिए जाते थे, होटल की फायर की NOC क्या कभी उसने लेने की कोशिश की थी। ये वो सवाल है जो लोकेश से पूछे जाएंगे। उसके अलावा होटल में जब आग लगी तो लोकेश कहां गया था, कहां फरार चल रहा था, क्या वो होटल के आसपास आया था, ऐसे कई सवाल हैं जो लोकेश बजाज से पूछे जाने जरूरी हैं।
9: अब दिल्ली पुलिस लवकेश बजाज से उसके तीनों होटलों के दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, ताकि उसकी करतूतों का राज फाश हो सके। अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: बीच बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां एक इमारत में भीषण आग लगी है। यह हादसा हैदराबाद के आमरपेट इलाके में हुआ। इस वक्त दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी। भीषण यह आग, दूर तक आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। आमरपेट इलाके की घटना है, जहां पर इस इमारत में आग लगी है। अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब्दुल, आग के कारण?
10: अमीरपेट के KSR फैशन बिल्डिंग में हेलमेट वर्ल्ड नामक एक शोरूम है, जहां पर हेलमेट के का बिका होता था और साथ में ऊपर एक फैशन का शोरूम था, जहां पर ये आग लगी। आज कुछ देर पहले ये आग अचानक से भड़की, जिसके बाद पूरा शोरूम को अपनी चपेट में लिया। KSR फैशन बिल्डिंग के नाम से मशहूर है अमीरपेट के मैसी वनम इलाके का ये वाकया है, जहाँ पर काफी भीड़ होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन जब आग लगी तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था, तो कैजुअलिटीज यहां पर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लगातार फायर और पुलिस कर्मी आग को काबू करने की कोशिश में लगे हैं। 7 फायर इंजन यहां पर बुलाए गए हैं, जो लगातार आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर धुआं यहां पर फैला है। फोम या हेलमेट के अंदर जो फोम होता है, शायद उसकी वजह से ये धुआं होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन लगातार 7 फायर इंजन यहाँ पर पहुंच कर लगातार आग को काबू करने की कोशिश कर रही है। आग का कारण अभी तक पता नहीं चला है, अधिकारी इस पर जांच करेंगे कि आग से काबू पाया जाएगा।
6: तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
14: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: In association with
12: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
13: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा डितोब्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके इवन द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूं, मुझे तो चोट चोट चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
7: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
8: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
7: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
8: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
7: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो
8: कद्दावर। हम सुनिए ना, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है, हम उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एडवाइजर होके हम लोगों चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

पटना में कोचिंग वाले खान की खुली पोल सेंटर पर बवाल के मामले में पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को उठाया, दोनों पर फायरिंग करने के आरोप, दूसरी कोचिंग से अदावत की जंग। दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपित लवकेश बजाज गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं था फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप, अब तक 21 मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद होटलों में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम, एलजी ने दिए थे सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला अस्पताल आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 5 लोगों की मौत लपट उठी, तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। और ममता के हाथ से छुट्टी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के रिद्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष, 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हर बार होता है, हम आपको बताएंगे न्यूज रूम लाइव में हम आपको कौन सी खबर दिखाने जा रहे हैं। तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात की जाएगी दिल्ली की, और हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में किस तरह से अब अग्निकांड के बाद सबक लिया जा रहा है, और दिल्ली अग्निकांड से, इतनी भीषण अग्निकांड से दिल्ली ने क्या सबक सीखा है। दूसरी बड़ी खबर वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको ले जाएंगे पटना, और पटना में बताएंगे बिहार से कि कैसे मुजफ्फरपुर में एक आईसीयू में आग लगती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे बंगाल में टीएमसी में अभी और कितनी बगावत बरकरार है, और आगे क्या देखने को मिलेगा, ममता दीदी क्या करेंगे ये भी बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली कांड के बाद किस तरह से अब जख्म दिखाई दे रहे हैं, लोगों की परेशानी कितनी बढ़ गई है। लेकिन इन सारी खबरों के बारे में चर्चा करो उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताती है। बिहार के पटना से बड़ी खबर आ रही है, और खान ग्लोबल स्टडीज यानी फैजल खान, अब वहां पुलिस ने जांच पड़ताल की और तब पता चला कि 2 गार्ड को हिरासत में लिया गया है। जांच अब आगे बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पटना में पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, और एक्शन लेते हुए 2 गार्ड को हिरासत में लिया गया है फैसल खान के। पटना फायरिंग को लेकर बिहार पुलिस अब एक्शन में है, 2 गार्ड हिरासत में लिए गए हैं। फिर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची, अधिकारी और जवान थे। माना जा रहा है कि वायरल वीडियो में जो लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, पुलिस उनकी पहचान में जुटी है, और जो सामने आई है जानकारी उसमें यह पता पड़ा है कि फैसल खान के ही 2 गार्ड थे। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आखिर क्या वजह रही कि फैजल खान के 2 गार्ड्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, यही थे गोली चलाने वाले?
1: बिल्कुल हिमांशु, देखिए मंगलवार की रात जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि 2 कोचिंग संस्थान जो दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को, उन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई में ये कहीं ना कहीं मारपीट की घटना हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि 10:10 पर रात में घटना हुई, 11 बजे जो फैसल खान है वो सामने आते हैं और वो आरोप लगाते हैं कि फायरिंग की गई, उन्होंने खुद देखा गोलियां इधर से चल रही हैं उधर से चल रही हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद जब पटना पहुंचे कार्तिकेय शर्मा और पुलिस ने बजाप्ता सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद यानी रात में 1 बजे वो अपने बयान से पलट गए थे। और अब जबकि ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, आज सुबह से पटना पुलिस के पास भी पहुंचा, हमारे पास भी पहुंचा, हम भी इसकी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पटना पुलिस ने इस वीडियो को आधार माना है। और अब देखिए स्थिति यह है कि ये वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें फायरिंग करते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं, ये दूसरे लोग नहीं है, ये दूसरे कोचिंग संस्थान के नहीं है। जो रोशन आनंद जिनकी गिरफ्तारी कल हुई और गौरव और अभिषेक के साथ खान सर के लोगों की तरफ से आरोप लगाने के बाद, ये उस कैंप के लोग नहीं है। ये खान सर जो कहे जाते हैं फैजल खान, ये उनके ही गार्ड्स हैं, और पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार किया है, पहचान की गई है इनकी। और बहुत बड़ा सवाल अब ये है हिमांशु कि क्या फैजल खान की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से एफआईआर की गई फैजल खान के एक स्टाफ कन्हैया सिंह की तरफ से, और उसमें कहीं वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, वो कहीं उसमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन अब क्या फैजल खान के गार्ड अगर फायरिंग में इन्वॉल्व हैं तो फैजल खान को पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत कह सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठाएंगे कि एक तरफ एक एफआईआर हुई, उन्होंने एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया, और दूसरी तरफ अगर फैजल खान के लोगों ने या उनके गार्ड्स ने फायरिंग की है और वीडियो अब सामने है जिसके बिना पे पुलिस ने 2 गार्ड्स को अरेस्ट किया है,
0: तो हमारे साथ एक बार बने रहिए। खान ग्लोबल स्टडीज के फैजल खान ने फायरिंग मामले में क्या कुछ कहा था, जरा एक बार वो सुन लेते हैं हम।
2: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर
3: लगभग कितना राउंड गोली चला है,
2: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
4: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे।
5: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए,
4: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: शशि भूषण हमारे साथ में बने हुए हैं। शशि, अब यहां पर तो बोल रहे हैं कि बगल वाले कोचिंग वाला है, लेकिन अब 2 गार्ड को हिरासत में लिया गया है, तो क्या ये माना जाए अदावत की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यहां पर बातें कुछ और आ रही है सामने, आप पुलिस जांच कर रही है, तो आगे और एक्शन लंबा होगा।
1: हिमांशु, बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, मुसल्लापुर हाट का जो ये पूरा इलाका है पटना में, जहाँ मतलब 5,000 से ज्यादा समझिए कोचिंग संस्थान चलते हैं, छोटे बड़े सब दावा करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके यहाँ के अभ्यर्थियों का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। पिछले दिनों 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली का रिजल्ट आया, 19,800 पदों पर बहाली थी। अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दो बड़े कोचिंग संस्थान संचालक, एक तो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद, दूसरे जो फैसल खान हैं खान ग्लोबल स्टडीज के, ये इन दोनों ने मिलकर के 12,000 और 10,000 यानी 22,000 का आंकड़ा इन्होंने अपना बता दिया कि हमारे ही 22,000 स्टूडेंट ने सफलता हासिल की। और बहुत बड़ी बात यह है कि 31 मई को इन दोनों संस्थानों की तरफ से जो अब सफल अभ्यर्थी थे उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
0: और लंबी जाएगी और इस मामले में और भी कई कड़ियां हैं जो जोड़ते हुए पुलिस जांच की गहराई तक पहुंचेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलिए बात बिहार की कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं। होता क्या है, आईसीयू में आग लग जाती है, दम घुटता है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, और जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि यहां ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्वास्थ्य मंत्री यानी निशांत कुमार चुप्पी साध लेते हैं। 5 लोगों की मौत हो गई, आईसीयू जहां पर लोग जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही होती है, वहां पर धुआं भर जाता है, वहां पर आग लग जाती है, और वहां कर्मचारी क्या होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं मरीजों को छोड़ के।

0: इस साफ पड़े कमरे को देखिए, कौन कह सकता है कि ये किसी अस्पताल का आईसीयू हो सकता है। जो आईसीयू जिंदगी सुरक्षित करने के लिए होता है, वही आईसीयू आग का दरिया बन गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया, जिसमें 5 लोगों की जिंदगी भी खत्म हो गई।
1: वार्ड में कोने में एक मॉनिटर रखा हुआ था, अमूमन जो देखते हैं आप उसमें, उस मॉनिटर में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद अचानक से जो एसी है वहां पर, एसी में भी जो है वो ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो आग और ज्यादा फैल गया। पूरे आईसीयू में जो है वो धुआं धुआं हो गया था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। कार्रवाई के नाम पर अभी फिलहाल ये कहा गया है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हाँ, परिजनों की तरफ से जो है वो शिकायत जरूर जो है वो मिली है प्रशासन को, पुलिस को, और उसके बाद जांच टीम बना दी गई है। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जांच की रिपोर्ट आएगी बताया जा रहा है, उसके बाद ही जो है सुनिश्चित किया जाएगा आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या एफआईआर होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं, उसका मामला जरूर सामने आ रहा है।
0: हादसे के बाद मौके पर डीएम पहुंचते हैं, कमिश्नर पहुंचते हैं, यहां तक कि स्थानीय विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े चेहरे की आंखें नहीं खुलती। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार न खुद मुजफ्फरपुर आना जरूरी समझते हैं, न किसी और को भेजते हैं, उल्टा जब उनसे सवाल होता है तो कन्नी काट कर निकल जाते हैं।
2: सर, मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर मिसल ला दिया है
3: सर,
2: मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर मिसल ला दिया है।
0: निशांत कुमार को दिल्ली जाना था, साथ में संजय झा थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाकर हादसे की डिटेल लेना, पीड़ित परिजनों को सांत्वना देना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाने की जल्दी थी, इतनी जल्दी कि थोड़ी देर ठहर कर मीडिया के सवालों का ही जवाब दे देते, इतना ही बता देते कि हादसे पर उनका विभाग क्या एक्शन ले रहा है।
4: मुजफ्फरपुर में अस्पतालों में जो आग लगी है, अत्यंत ही दुखद घटना हुई है और इसमें कुछ लोगों की जाने भी गई है। आखिर किस कारण से ये आग लगी, किनकी गलती थी, कि जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार में बैठे लोग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय सांसद से जब सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं।
0: निशांत कुमार तो खामोशी से निकल गए, लेकिन इस हादसे पर प्रतिक्रिया बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरे मंत्री की तरफ से आई।
5: सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही
6: है। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी नहीं, सरकार नहीं गई, आशीर्वाद लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसमें दोषी उस प्रकार

0: थे जिनका सौ बाहर था,
1: 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर एक दो
0: ऑप्शन बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया जिनकी स्थिति काफी मैंने
1: जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था जो हम और एसएसपी साहब देख के आए, 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूंकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है, अन्य जो मरीज है उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है, उनके परिजनों के द्वारा यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है, जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर वो उनको भी चोटें आई हैं।
2: और चलिए बात दिल्ली अग्निकांड के जख्म की कर लेते हैं, क्या हुआ, कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाती हैं अस्पताल में, मरीजों से हालचाल जानती है कि तबीयत ठीक है कि नहीं है, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है और अब जो आरोपित है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नाम है उस आरोपित का लवकेश बजाज, जिसके 3 ऐसे ही होटल BNB चल रहे हैं। अब पुलिस अब से थोड़ी देर बाद उसे कोर्ट में पेश करने वाली है। उससे पहले लवकेश ने पूछताछ में बताया कि उसकी कुल 3 प्रॉपर्टी हैं। ये भी खुलासा हुआ कि उसने नियमों को ताक पर रखा, अवैध निर्माण कराए और ऐसे में शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वो तो कल से उठ रहे हैं, इससे पहले भी उठते रहे हैं। लेकिन जिस शख्स को आप देख रहे हैं लवकेश बजाज है, होटल मालिक है, 3 इसके होटल हैं और तीनों में ही उसने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया है। और ये बताया कि जब आग लग रही थी, जब लोगों की जान जा रही थी, वहां पर मौजूद था लेकिन वहां पर रुका नहीं, डर गया था तो वहां से चला गया, रात भर सड़कों पर घूमता रहा। ये लवकेश बजाज ने पूछताछ में बताया है, NOC नहीं ली। तो अब कार्रवाइयां की जा रही हैं, पूछताछ की जा रही है और आरोपित से पूछताछ करके अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी वहां पर हालात क्या है, हमारे सहयोगी अंशुल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसी जगह से जहां पर आग लगी थी, 21 लोगों की जान चली गई थी।
3: दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 21 लोगों की जानें चली गईं। इसके बाद खानापूर्ति करते हुए दिल्ली सरकार कहीं एक्शन में दिखी और दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अब वो सारी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की जा रही हैं जिनके पास परमिशंस नहीं है और उसके बाद भी वो इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं। इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ और बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कितनी बिल्डिंग्स है जिनको दिल्ली सरकार सीज कर पाएगी। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक और बड़ा होटल है, ये होटल कुछ 50 मीटर दूर होगा उस होटल से जहां पर हादसा हुआ है। और अगर आप यहां पर भी देखें तो एक तो ये बहुत ही ज्यादा संकरी गली में है और उसके अलावा इस होटल में भी बेसमेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये देखें तो ये बेसमेंट का वेंटिलेशन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। हालांकि ये होटल इस वक्त अंदर से बंद कर दिया गया है, जो लोग अंदर है उन्हें अंदर ही रहने बोला गया है और जो लोग बाहर है उनका सामान तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन आप यहाँ तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से इस होटल में भी एक बेसमेंट है, बेसमेंट का ये आउटर वेंट है और बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही है। और अगर मैं आपको एक सिलसिले से ये पूरा इलाका दिखाऊं, ये हौस रानी गांव है जहां पर ये हादसा हुआ है और अगर आप देखें इस बिल्डिंग में भी एक इलीगल बेसमेंट है जो चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज होती है इसमें जो कि MCD के नियमों के हिसाब से बिल्कुल ही गैर कानूनी है। बेसमेंट में किसी भी तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती।
2: अब देखिए ये तो एक होटल है, आग लगी, 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या दिल्ली में सिर्फ एक ही होटल है, बहुत से होटल है, क्या वहां पर कायदे कानून माने जा रहे हैं या वहां पर भी ताक पर रखे जा रहे हैं। सुशांत बेहरा हमारे सहयोगी हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें हो क्या रहा है।
4: हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के हौसकास विलेज में। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में किस तरीके से अवैध रूप से नियमों की अनदेखी करके रेस्टोरेंट्स, किचन्स और बेड एंड ब्रेकफास्ट के कॉन्सेप्ट के साथ होटल्स और गेस्ट रूम चल रहे हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये हौसकास विलेज है और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तंग गलियों से होते हुए ये तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बनाए गए हैं। रेस्टोरेंट का नाम द विलेज रूफ टॉप है, यानी छत के ऊपर किचन जो है वो चल रही है। लेकिन अगर आप इस गली के अंदर एंटर करेंगे, पूरा अंधेरा इस गली के अंदर आपको यहाँ नजर आएगा। तमाम ये जो बिजली के मीटर हैं जो दरअसल बिल्डिंग के बाहर होने चाहिए, दरअसल ये आप देखेंगे तस्वीरों में कि तमाम बिजली के जो मीटर्स हैं वो अंदर की तरफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर ये जो तंग गली है इसमें कई सारे ऊपर की तरफ अगर कहा जाए तो छत पर रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट है, बेड एंड बेड का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। आज तक की जब टीम यहाँ पर पहुंची तो तमाम जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स चल रहे थे उन्होंने अपने साइन बोर्ड जो है वो हटा दिए कहीं उन पर कार्रवाई ना हो जाए। अब ये देखिए कितनी सुनसान ये

0: की गली है और यहां पर अगर देखा जाए तो एक बच्चों के लिए वर्ल्ड आर्ट डिजाइन का एक स्कूल भी है जो यहां से पीछे की तरफ से होता हुआ अंदर की तरफ जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे की तरफ आएं और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से अगर कोई हादसा कोई घटना यहां पर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो है एक स्कूल भी चलता है ताकि तमाम बच्चे जो है वो आते हैं और ये वो तस्वीर है। देखिए ये पीछे की तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल भी जो है वो नजर आएगा। हम कोशिश करेंगे कि अंदर की तरफ भी दिखाएं क्योंकि इससे ऊपर अगर बात की जाए तो छत पर रेस्टोरेंट भी जो है वो चलता है। ये बताइए कि यहाँ पर स्कूल चलता है, है? स्कूल चलता है यहाँ पे?
1: हाँ जी।
0: कितने बच्चे आते हैं?
1: अब ये नहीं पता है सर, मैं तो सफाई करके चली जाती हूँ।
0: इससे ऊपर क्या है?
1: इससे ऊपर टेलर रहता है।
0: अच्छा, और इससे ऊपर?
1: उसके ऊपर होटल।
0: होटल होटल चलता है?
1: हाँ।
0: देर तक चलता है?
1: हाँ, हमें तो नहीं पता, 11-12 बजे तक चलता
0: है। 11-12 बजे तक?
1: हाँ।
2: सुशांत बेरा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दिल्ली के दूसरे होटल में पहुंचे लेकिन खान मार्केट, वहां पर भी बहुत सारे लोग जाते हैं। और खान मार्केट में किस तरह की हालात है, हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
3: राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई मालवीय नगर में, उसके बाद एनडीएमसी इलाका जिसको लटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, जिसके अंदर खान मार्केट जैसे पॉश इलाके आते हैं, वहां पर अब जो एनडीएमसी चेयरपर्सन है उन्होंने एक इंस्पेक्शन चालू कर दिया है। इंस्पेक्शन इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। रिव्यू के अंदर अगर ये पाया जाता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो फिर जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पर ये रेस्टोरेंट्स हैं या फिर ये होटल्स हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सख्ती बरती है और ये कहा है कि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं चलने दिया जाएगा जहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
2: 24 घंटे, महज 24 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा बवंडर आ गया कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या पश्चिम बंगाल में। पूरी राजनीति बदल के रख दी गई है वहां पर। ममता बनर्जी जो अभी तक टीएमसी को काफी मजबूती के साथ रखी हुई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत से बागी विधायक हो चुके हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई।
4: किसे पता था 5,429 दिन सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी अर्श से फर्श पर गिरेंगी। बंगाल की जनता उन पर यूं अविश्वास जताएगी कि तिनका तिनका ताकत बिखरती जाएगी। विधायकों का संख्या बल सिर्फ 80 पर सिमट कर रह जाएगा और सिर्फ एक महीने के भीतर ममता बनर्जी को बगावत की ऐसी आग झेलनी पड़ेगी कि पार्टी के हाथ से फिसलने का खतरा मंडराने लगे। पहले सुनिए बागियों के नेता ऋतव्रत बनर्जी की ये सलाह जो उन्होंने ममता बनर्जी को दी है।
5: আমি আবার বলছি, আমি মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধী ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারবো, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে ভোট, যখন ভোট হবে আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াক আউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করবো, কিন্তু এই অবস্থা হবে না যে ওয়াক আউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো, এটা এই রাজনীতি আমরা করবো না।
4: कल तक ये चेहरे ममता बनर्जी के आसरे थे, इनकी राजनीति ममता बनर्जी के नाम से चलती थी, इनके पद ममता के मोहताज थे। लेकिन कल और आज में फर्क होता है। कल ममता सत्ता के शीर्ष पर थी, आज वो अलग थलग खड़ी हैं। इनके बनाए चेहरे अब उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। ममता के सामने अब अपनी ही पार्टी को सुरक्षित बचा लेने का सवाल है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद और दफ्तर पर बागियों का कब्जा हो चुका है और ममता बनर्जी हाथ मलती रह गई और कुछ नहीं कर सकी।
6: You snatched everything from me, but you cannot snatch my morals. I will never bow down my head.
4: कल जो कुछ हुआ ममता की राह में कांटे बिछाने की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तृणमूल पर कब्जा किसका होगा, असली तृणमूल कौन सी है। इसका जवाब ये है कि विधायक दल और सियासी दल अलग अलग होते हैं। स्पीकर सिर्फ विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं। राजनीतिक दल के तौर पर टीएमसी पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। दूसरा सवाल ये है कि तृणमूल पर इस टूट के बाद किसका कब्जा रहेगा। मौजूदा हालात में चुनाव आयोग के फैसले तक ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी, वो अपनी मर्जी से पार्टी में फेरबदल कर पाएंगी। एक सवाल ये भी है कि क्या बागी गुट को तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल सकता है, जैसी मांग उनकी तरफ से स्पीकर से की गई है। जवाब ये है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बागी गुट का दावा तब मजबूत होगा जब 80 में से 60 विधायकों की तरह 19 से 20 लोकसभा सांसद भी बागियों से जा मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अगर फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरह हुआ तो फिर ये अहम हो जाएगा कि किसके पास ज्यादा विधायक, सांसद और संगठन का समर्थन है। मतलब तृणमूल कांग्रेस तभी ममता के हाथ से जाएगी जब विधायकों की तरह सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी बड़े पैमाने पर बगावत कर दें। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: और देखिए यहां पर वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली कांड के सख्त।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
10: Jack, come home. It's supper time.
9: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
11: Jack, could you play that one song with the words?
9: Jack FM, playing what we want.
12: Sokudo.
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
9: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.
2: Atlas Butler has convenient two-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listen in BMB? Nobody likes waiting around.
3: Call 1-800-FURNACE.
4: Hey, sports fans. Tune In is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
8: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. एयू
9: सोच बदलो और बैंक भी.
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
10: जहाँ खबर वहाँ खबरदार.
4: In association with
14: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
15: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी. कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच. चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर.
16: बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है. यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई. कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी. लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है. रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पटना में कोचिंग वाली खान की खुली पोल। सेंटर पर बवाल के मामले में पुलिस ने फैसल खान के दो गार्ड को उठाया। दोनों पर फायरिंग करने के आरोप। दूसरी कोचिंग से अदावत की जंग। दिल्ली होटल अग्निकांड का मुख्य आरोपित लवकेश बजाज गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी। 6 कमरे की जगह 25 कमरे बनाए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप। अब तक 21 मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद होटलों में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम। एलजी ने दिए थे सख्त निर्देश। बिहार में मुजफ्फरपुर में जिला अस्पताल आईसीयू वार्ड में भरा धुआं। अब तक 5 की मौत। लपटोठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता के हाथ से छोटी पार्टी की बागडोर। बागी गुट के रुद्रत बनर्जी बने नेता। विपक्ष 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस।

और देखिए न्यूज रूम लाइव के सेगमेंट में हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। दिल्ली का अग्निकांड, 21 लोगों की मौत हो जाती है और अब क्या हो रहा है, अब एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अग्रवाल परिवार खत्म हो गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर जहां आईसीयू में लगती आग, 5 लोगों की मौत हो जाती है। और यहां पर जब आग लगती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कर्मचारी भाग खड़े होते हैं। सवाल लोगों के मन में ये चल रहा है, क्या सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है?

किसी की लापरवाही और पूरा परिवार भुगतता है। आग लगती है, लापरवाही की जाती है, लेकिन एक पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार खत्म हो जाता है। और अब गुस्सा भी है, गम में है, और पूरा परिवार यहां पर खत्म हो गया। अग्रवाल परिवार की बात की जा रही है जो उस वक्त उस होटल में मौजूद थे। क्यों? क्योंकि साकेत अस्पताल में उनका कोई भर्ती था और उन्हें देखने के लिए वो पहुंचे थे। पूरे परिवार के बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह के वहां हालात रहे, कि कुछ भी नहीं बचा और सब कुछ खत्म हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गुरुग्राम का पूरा परिवार जल गया। देश की राजधानी में सिस्टम की मनमानी ने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ना रिश्तेदार बचे, ना पत्नी, ना बेटी और ना माँ, सब मारे गए। दिल्ली के होटल अग्निकांड में गुरुग्राम के चार्टर अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में अब कोई नहीं बचा है सिवाय बुजुर्ग पिता के। 70 साल की प्रेमलता अग्रवाल, 45 साल के विवेक, 42 साल की तर्जनी अग्रवाल, 20 साल की जीविशा, 17 साल की वारिया, 68 साल के अशोक पंसारी, 70 साल के जावरीलाल और 68 साल की कमला, सबकी मौत हो गई।
1: एक मेरी बेटी है तर्जनी अग्रवाल, एज 42 इयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाई, उसकी एज 20 इयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है एज 17 इयर्स, वरिया।
0: विवेक अग्रवाल परिवार का कसूर क्या था? उन बेटियों की क्या गलती थी कि बीमार दादा से अस्पताल में मिल सके? विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश में ठहरा हुआ था। ये सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि विवेक के पिता बीमार है, साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती है। गुरुग्राम से रोज आना जाना कठिन था तो पास के ही होटल में कमरा ले लिया।
2: सीए के तौर पर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। परिवार में उनकी वाइफ है जो कि किसी एनजीओ से जुड़ी है और जो बच्चे हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, अब ऐसे में पहले वाइफ बिजनेस करती थी, फिर किसी एनजीओ से जुड़ी और बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही थी। परिवार में माँ भी हैं जो काफी बुजुर्ग हैं और पिता हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल जी कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए, और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: होटल फ्लोरिश में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, विवेक की बुजुर्ग माँ प्रेमलता अग्रवाल, विवेक की दो बेटियां जीविशा अग्रवाल और वारिया अग्रवाल ठहरे हुए थे। बड़ी बेटी जीविशा बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी, दादा बीमार थे इसलिए वापस आ गई थी। इसके अलावा विवेक के मामा अशोक पंसारी, मौसा जवरीलाल और मौसी कमला भी विवेक के पिता को देखने के लिए आए थे। ये सब लोग होटल फ्लोरिश में ठहरे हुए थे।
2: विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ उस होटल में रुके थे जहां पे ये अग्निकांड हुआ, जिसमें 21 लोगों की मौत सामने आई थी। हालांकि परिजन ये बताने में लगे हैं कि 4 लोगों के शव उन्हें दिखाए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी के 2 से 3 लोग कहां हैं, परिजन कहां हैं, उसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा। जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। इस मकान में भी जब हम पहुंचे तो यहां पे परिजन जरूर थे जिनके मायूस चेहरे ये बता रहे थे कि हादसा बहुत बड़ा था और इस हादसे की बहुत बड़ी कीमत विवेक अग्रवाल और उनके परिवार को चुकानी पड़ी है। विवेक अग्रवाल कल ही अपनी पत्नी, 2 बच्चियों के साथ उस होटल में पहुंचे थे जहां पे मैक्स हॉस्पिटल में उनके पिता एडमिट थे। बच्चों की छुट्टियां थी तो बच्चों को भी साथ लेके गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी मौसी भी, यानी कुछ और परिजन भी उस हॉस्पिटल में मौजूद थे।
0: बुधवार की सुबह जब होटल में आग लगी तो इस परिवार को भागने का भी अवसर नहीं मिला। होटल कब आग की लपटों में घिर गया इन्हें पता भी नहीं चला। जब फ्लोरिश होटल धधक रहा था तो अंदर किसी का दम घुट रहा था, तो कोई आग की लपटों से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। होटल के कमरों के गेट में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, इसलिए कई कमरों के तो दरवाजे खुले ही नहीं। विवेक ने आखिरी कॉल अपने एक रिश्तेदार को किया और सिर्फ इतना कहा कि बेटियों को बचा लो। ये एक पिता की बेबसी थी जिसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा था। पत्नी, माँ, बेटियां, मौसी, मौसा, मामा सब इस आग के चपेट में थे। कमरे में धुआं भर गया था, सांसें साथ छोड़ रही थी। विवेक की मौत इस अग्निकांड में हो गई।
1: वो भी गुजर गए दोनों, 6 के 6 हमारे, उनमें से 2 मिस हैं, बाकी भी गुजर गए। अच्छा, हमारे 8 आदमी।
3: अच्छा, 8 आदमी।
1: हाँ जी।
3: कौन लोग थे, क्या-क्या?
1: मेरी बेटी है, मेरा दामाद है।
0: विवेक अग्रवाल की पत्नी तर्जनी अग्रवाल मॉडल थी, मिसेज इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी। तर्जनी अग्रवाल एक एनजीओ से जुड़ी थी। खुद विवेक अग्रवाल भी सोसाइटी के कार्यों में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने विवेक के पड़ोसियों को भी झकझोर दिया है।
4: देखिए, ऐसा है कि हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्द पूर्ण यहाँ पे माहौल।
2: करते क्या थे सर?
4: सभी पड़ोसी ये सीए थे,
5: बीवी बच्चे और उनके पिताजी और माँ वो सब यहीं रहते थे। अब वो बताते हैं कि सभी सब ऐसे हादसे में शिकार हुए हैं, तो मुझे अभी तक ये नहीं है, बाकी अब यहाँ सब लोग बात कह रहे हैं, अभी हम पता करेंगे और अगर क्या है कहाँ तक सभी या कोई बच्चा अभी बचा हुआ है क्या है। तो बस मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना बड़ा हादसा मेरे पड़ोस में पहली दफा हुआ है।
0: अग्रवाल परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहता था, अब ये घर सुनसान पड़ा है। घर में रहने वाले सभी लोग इस हादसे की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। बुजुर्ग पिता बचे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो मैक्स अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी, या हर बार की तरह इस बार भी जांच कमेटी के नाम पर सब फाइलों में दफन हो जाएगा? गुरुग्राम से धीरज वशिष्ठ के साथ अंशुल सिंह और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: तो देखिए, अग्निकांड हो गया, गुनहगार कौन है ये पता लगाने की कोशिश होती रहेगी, लेकिन आप सोचिए ये अग्निकांड के बाद जख्म कितना गहरा है। एक परिवार सब खत्म, 9 लोग खत्म हो चुके हैं। अंजलि इस्टवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जो दर्द इस वक्त परिवार को होगा, जो परिवार भुगत रहा होगा, उसका 1% भी हम इस वक्त एहसास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी क्षति पूरे परिवार के लिए है ये।
7: बिल्कुल, और ये सोचिए ये असहनीय दर्द है, और इस सब के बीच भी आपको इंतजामात पूरे करने हैं, आपको जो कर्मकांड होते हैं वो भी पूरे करने हैं। परिवार के, आप मेरे पीछे देखेंगे, ये परिवार के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो भी परिवार वाले हो सकते थे वो यहाँ आकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ संपन्न हो जाए। ये जो एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं, करीब 5 एम्बुलेंसेज आई हैं, क्योंकि 5 पार्थिव शरीर यहां से सेक्टर 32 के मोक्ष धाम तक जाएंगे, जहां पर उनके आखिरी जो कर्मकांड है वो किए जाएंगे। इनमें 2 छोटी बच्चियां थी, जैसा कि हम जानते ही हैं, जो उनकी पोतियां थी, राधेश्याम जो बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी, ये 2 पोतियां जो हैं उनको पिंडदान नहीं होगा, इसलिए हम गए थे क्रेमेटोरियम में, तो वहां उन्होंने मोक्षधाम में हमें बताया कि उनका सबसे पहले क्रियाक्रम करने की कोशिश की जाएगी, सीधा शरीर को अंदर ले जाया जाएगा, बाकी का परिवार की अनुमति और उनकी जो भी इच्छा है उसके मुताबिक बाकी की क्रियाएं की जाएंगी। लेकिन इस वक्त परिवार अंदर ही है, क्योंकि अब पार्थिव शरीर भी यहां आ गए हैं, कल रात पूरा पोस्टमार्टम का मामला था, तो उसके बाद अब सब यही है, पर परिवार में शोक बहुत है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, और समझ सकते हैं, जब एक सोचिए इस मकान के अंदर रहने वाले जो लोग थे सभी चल बसे हैं और एक आग में झुलस के चल बसे हैं, सिर्फ जो बचे हैं वो एक बुजुर्ग हैं।
6: बिल्कुल अंजलि, और ये तकलीफ, ये जो पीड़ा है ये बहुत बड़ी है, कोई भरपाई इसकी नहीं कर सकता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब जिम्मेदार महकमे सो रहे थे उस वक्त मालवीय नगर की जनता, जो आम लोग थे वो जग रहे थे, इतनी लापरवाही की गई, लोगों की जान जा रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लोग जल रहे थे, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो उनको जिंदा बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, और अब उन्हीं दिल्ली के अग्निवीरों से हम आपको मिलवाते हैं।
0: जब पूरी इमारत धधक रही थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था, न भागने की जगह थी और न ही कोई रस्सी या सीढ़ी की जान बचा सके, तब मालवीय नगर के इन जाबाजों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिससे जो बन पड़ा सब लेकर दौड़ पड़ा कि कैसे भी जितने भी लोगों को बचा सके बचा लो।
8: खुद कूदे थे वो बच गए, माइनर इंजरी हुई उन लोगों को, वो बच गए। उसके बाद फायर आई है, एम्बुलेंसेज आई है, पुलिस के प्रशासन आया है, और सब लोगों ने मिलकर के फिर अंदर से लोगों को निकाला है जिनकी सांसें चल रही थी, और डॉक्टर और नर्सेज की टीम भी आई है अपनी दवाइयों के साथ, उन्होंने CPR भी दिया है, ऑक्सीजन भी दी है। और जो मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस में हम एक व्यक्ति को लेकर के एम्बुलेंस भगा रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं कि दूसरा तीसरा आएगा, फटाफट से इलाज मिले, उसको भगा रहे हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस की लाइन लगी थी, और आसपास भिकाजी कामा प्लेस से हमारे पास फायर आई है। नेहरू प्लेस से हमारे पास फायर आई है, ओखला से हमारे पास फायर आई है, जितने भी नजदीक फायर स्टेशन थे सब जगह से फायर आ गई है, एम्बुलेंस भी सब जगह से आ गई।
0: दिल्ली अग्निकांड के कई हीरो हैं जिन्होंने परवाह किए बगैर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद की। वसी राजा, अरमान, संजय और भी बहुत लोग थे, सबने अपने अपने हिस्से का प्रयास किया, तब जाकर 40 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी।
9: अरमान नाम के लड़के
10: की दुकान से हमने गद्दे उठाए, इसने मना नहीं करा, इससे हमने नुकसान कराया, इससे हमने बेडशीट लिए जिनके ऊपर हम लोगों को
9: लेकर
11: कूद रहे थे लोग,
10: पर हमारे पास उतारने के लिए कोई सामान नहीं था, वो अरमान की दुकान से हमने बेडशीट ली थी, जो बेडशीट के सहारे उतारा और इंजर्ड भी था।
0: होटल चल रहा था, छत तक आग फैली हुई थी, निकलने का रास्ता एक ही था, वो भी आग की लपटों में घिरा था। लोगों को कुछ सूझा नहीं तो पास में ही अरमान की बेडशीट की दुकान थी, उसकी दुकान से गद्दे लाए गए, सड़क पर बिछाया गया, जिससे कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ऊपर से कोई कूदता, नीचे खड़े लोग तुरंत उसे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते, CPR देते और फिर अस्पताल रवाना कर देते।
10: कैजुअल्टी कंडीशंस में अगर आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, कोड येलो, हमने लोगों को ट्रेनिंग, उसमें हमें कैसे CPR दिया जाता है, जो हमने बिल्डिंग के अंदर भी दिया है सर, बाहर लाके एम्बुलेंस में भी दिया है, और साथ के साथ अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म भी किया, जितना पूरी टीम टाइमली आ गई, जो लोग जान भी बची है। मैं
12: कुछ लोग अंदर जले हुए नहीं थे, बेहोश थे, धुएं की वजह से बेहोश हुआ है, जिनको हमने
10: CPR दिया, अनकॉन्शियस, जो CPR देने थे उनका पूरा मुंह जला हुआ था, हमने बिना हाइजीन के वो बंद नहीं करे।
0: सुबह 7:45 के आसपास आग लगी थी, फायर ब्रिगेड का इंतजार किए बिना ही आसपास के लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। संजय भी उसी होटल के पास रहते हैं, घर के बच्चों ने उन्हें बताया कि सामने काला धुआं उठ रहा है। संजय बिना देर किए होटल पहुंचे और बाकी लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए।
8: 8:20 पे मैं जहाँ पर जो स्नैक लाइट में जो आग लगी थी उसके बारे में, यहाँ पर धुएं का बहुत जबरदस्त दम घोटू गुबार यहाँ पे आया, मैंने फल वाले से पूछा बेटा किस चीज का धुआं है, कह रहे स्नैक लाइट में आग लग गई है, तो फिर वो धुएं सिमट करके आग में परिवर्तित होकर के आग फैलने लगी, फिर हम सब लोग, मैं भी और मेरे साथ और भी कई लोग थे, हमारे साथ हमारा कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल दिनेश यादव भी था, उसके हाथ में हथौड़ी थी, हथौड़ी से हमने विंडोज तोड़ी सारी और ईंट से हमने पत्थर तोड़ के विंडोज तोड़ी, और सोमालिया के लोग थे यहाँ पर, इसमें मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग आए हुए थे, 50 से 60 लोग इसके अंदर रह रहे थे, 15 से 20 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया था गद्दों के जरिए और सीढ़ियों के जरिए।
0: पड़ोसियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था, तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी आ गई, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। इधर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के सिपाही और आसपास के लोग रेस्क्यू करते रहे। जैसे तैसे करके एक सीढ़ी की व्यवस्था की गई, कुछ लोग सीढ़ी से ऊपर गए और ऊपर फंसे लोगों को निकाला।
13: 8:45 के आसपास हम लोग आए थे जब यहाँ पे ऑलरेडी आग लग चुकी थी, उसके बाद रेस्क्यू करना शुरू किया था हमने, जम करवा के रेस्क्यू शुरू किया था, और फायर फाइटिंग आने के बाद हम उनके साथ अंदर गए, वहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को लेके आए, कुछ ब्रॉड डेड है, कुछ जिंदा है।
0: रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे उन्होंने उस भयावह मंजर को देखा, जब वो कमरों में घुसे तो कई लोगों की लाशें पड़ी थी, कुछ की सांसें चल रही थी, उन्हें नीचे उतारकर CPR दिया गया और फिर अस्पताल भेजा गया। इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में मालवीय नगर के लोगों ने हिम्मत दिखाई, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने भी लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी 21 लोगों को नहीं बचाया जा सका। अंजलि इस्टवाल, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
6: दिल्ली में अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की जान चली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में ICU में आग लगती है, 5 लोगों की जान चली जाती है। और बड़ी अचरज की बात यह है कि जब आग लगती है तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो मरीजों को छोड़कर भाग जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि आपको पता है इस बारे में, तो वो चुप्पी साध लेते हैं।

0: मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल जल गया, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को देखिए। आईसीयू वार्ड के अग्निकांड ने जिंदगियां छीन ली, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते। किसी के घर का चिराग बुझ गया, कोई बेसहारा हो गया, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। पहले मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड की बात करते हैं, फिर लौटेंगे तो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पुत्र नीतीश कुमार की बात करेंगे, जिनके जिम्मे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल है। गुरुवार की सुबह यहाँ आईसीयू वार्ड में आग लग गई, जिस अस्पताल में लोग जीवन रक्षा के लिए आते हैं, प्राण बचाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 5 लोगों की मौत बीमारी से नहीं, आग से हो गई। प्रसाद अस्पताल का आईसीयू वार्ड सुबह सुबह धधक उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग फैल चुकी थी।
1: थाना में रिपोर्ट मांगा तो मांगे तो रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के सिलेंडर, कुछ हमको मिलेगा देगा दवा भी। आज आग लग गया 3 बजे में,
2: 4 बजे
1: के लगभग में लगा है आग।
3: पेशेंट
1: क्या हुआ? पेशेंट जला हुआ है, उसमें जहाँ
2: हम भूखा है सर। मेरा 5 स्टाफ लेके आपको, 5 स्टाफ पुलिस लेके गया। पेशेंट जला हुआ।
0: सुबह का वक्त था, अस्पताल में अपने अपने मरीजों के पास कोई सोया हुआ था, कोई तीमारदारी कर रहा था, कुछ लोग गलियारे में थे, लेकिन जब आग फैली तो अफरा तफरी मच गई।
4: ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था, धुआं से बहुत लोग एकदम घुटकर आदमी मर गया था। करीब करीब हम लोग 15 से 20 आदमी के निकाले हैं, जिसमें 7-8 आदमी जिंदा निकाले हैं और सब डेथ बॉडी को निकाला।
5: कितना अनुमान है लोगों
4: की? 20 आदमी कम से कम, 15 से 20 व्यक्ति। हाँ, 15-20 व्यक्ति को निकाला गया है, जिसमें 5 से 7 व्यक्ति जिंदा निकाला गया है।
5: अच्छा, रेस्क्यू में आग का कारण क्या लग रहा है?
4: शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
5: अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए?
4: अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सर नहीं मिल रहा है, ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है। हम लोग गिनती नहीं किया, हम लोग को भी पटना में रिपोर्ट देना है कितना कैजुअल्टी, कितना मरे हुए हैं, कितना बचे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेट हम लोग जल्दीबाजी में निकालने के फेरा में गिनती नहीं कर सके। हाँ, रेस्क्यू हो गया है। एक बार अंतिम हम लोग सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई आग नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं फंसा।
5: अग्निशमन पदाधिकारी रामविलास पांडे थे, जिनकी टीम सुबह 3 बजे से लगी हुई है और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो कैजुअल्टी और मौत है वो 10 लोगों की बताई जा रही है और 20 लोग उसमें से घायल थे आईसीयू में, जिनको निकाल के विभिन्न अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल प्रबंधन के लोग, तमाम लोग फरार हैं। फायर सेफ्टी की टीम पहुंची हुई है, स्थानीय प्रशासन पहुंची हुई है। जो मरीज के परिजन थे वो काफी व्याकुल और परेशान है कि उनके मरीजों के साथ क्या हुआ।
0: आग लगते ही अस्पताल में हाहाकार मच गया। जो गंभीर रूप से बीमार थे वो भाग नहीं सके, जो भाग सके वो बच गए, और जो फंस गए जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया।
6: ICU वार्ड में कोने में एक मॉनिटर रखा हुआ था, अमूमन जो देखते हैं आप उसमें, उस मॉनिटर में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद अचानक से जो AC है वहां पर, AC में भी जो है वो ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो आग और ज्यादा फैल गया। पूरे ICU में जो है वो धुआं हो गया था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है।
0: अस्पताल में अपनों की मौत हुई तो परिजनों की हालत खराब हो गई, पूरे परिसर में चीख पुकार मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे 20 मरीजों को ICU से निकालकर किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जिले के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे, अस्पताल का मुआयना करने लगे, लेकिन अब निरीक्षण का क्या लाभ, अब तो 5 लोग मारे गए।
7: अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास की ये घटना है। जैसे ही घटना की सूचना हम लोगों को मिली है, तुरंत हम लोग यहाँ रस किए हैं और जो आग लगी हुई थी ICU CCU वाला जो वार्ड था, तो उस पे जो है 5 बजे तक आग पर कंट्रोल कर लिया गया था, उससे पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था और मरीजों को आसपास के अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ मरीज जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में यहां भर्ती थे, उनकी अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु भी हुई है। अभी तक जो है 4 डेथ्स हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, जिनका कि SKMCH में हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया है। उनके परिजनों को भी SKMCH हॉस्पिटल में भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और 4 लाख के मुआवजा की घोषणा की है।
0: मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल के मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन के लोग इस घटना के बाद से ही फरार हैं, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखें, अब जरा उनसे मिलिए। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं। नए नए मंत्री बने हैं। मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, मामला सीधे इनके विभाग से जुड़ा है, लेकिन जब मंत्री जी से बात करने की कोशिश की गई, तो निशांत कुमार खिसक लिए। निशांत के साथ नीतीश के भरोसेमंद संजय कुमार भी थे, उन्होंने भी कैमरे को साइड किया और बिना कुछ बोले चलते बने। अब सवाल ये है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसके भरोसे है, बिहार के अस्पतालों को कौन रेगुलेट करता है, क्या कोई निगरानी होती भी है या नहीं, क्या बिहार सरकार ने इस घटना के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी को लेकर कोई कदम उठाया। रोहित कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक।
3: सब कुछ भगवान भरोसे है, प्रशासन भरोसे कब होगा पता नहीं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: एक फोन कॉल और साजिश नाकाम। कराची से आए कॉल से मिला सुराग। कॉल से खोला हमले के प्लान का राज। दाऊद इब्राहिम के प्लान पर पानी। करीब एक महीने पहले कराची से आए कॉल को आईबी ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद कॉल की डिटेल को दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया गया। कॉल में इंटरसेप्ट हुई बातचीत ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा था। आनंद फानंद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को कराची से रची गई साजिश का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा गया। जांच टीम के पास सबसे बड़ी लीड एक मोबाइल नंबर था, जिस पर कराची से फोन आया था। जैसे ही जांच टीम के हाथ उस आतंकी तक पहुंचे, साजिश का पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब एक महीने की तफ्तीश के दौरान एक बात साफ हो गई कि सभी आतंकियों को कराची में बैठा मुन्ना झिंगाड़ा निर्देश दे रहा था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी गुर्गा है। पूरा ऑपरेशन करीब एक महीने तक चला। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में अब तक 8 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। होटल के पास नहीं थी फायर की एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप, अब तक 21 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद होटल में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम, एलजी ने दिए थे सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जला अस्पताल, आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 5 लोगों की मौत। लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। नमस्कार, 3 बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली से आ रही खबर को लेकर। दरअसल दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश जारी है, बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। दरअसल आज आईएमडी ने जारी किया था अपना येलो अलर्ट और मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जता दी थी और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी भी कर दिया गया था। आईएमडी ने 4 और 5 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों दिनों में तेज हवाएं, आंधी तूफान और गरज और हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दिल्ली के तमाम इलाकों में आंधी तूफान और तेज बारिश भी आ रही है।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहां समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हो। खूब अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग आप एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहाँ भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत सी जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। बादलों की जो गड़गड़ाहट है आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाजाही है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है, धीरे धीरे देखिए रफ्तार जो है ब्रेक लग गया है। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उमस और गर्मी का सामना हम कर रहे थे उससे तो राहत मिली है, लेकिन ये राहत कम से कम अभी के लिए तो मुसीबत लाई है। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि ये फ्लाईओवर है, आप समझिए कि अगर फ्लाईओवर पे इस तरह का आपको तस्वीर मिल सकती है जल जमाव की, तो जो निचले इलाके हैं अगर वहां पर भी स्थिति होगी तो वहां इसका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें आप जो है दिल्ली मेरठ हाईवे की देख रहे हैं जो कि

0: समय में आपको पहुंचा देती है। और अगर यहाँ स्थिति है, देखिए आगे गाड़ियां भी ब्रेक डाउन होने लगी, आगे ट्रक है वो आगे मेरे खड़ा हुआ है, तो हाँ मौसम ने मिजाज बदला और उसके बाद जो है आंधी पानी रफ्तार तेज धुएं का तूफान और उसके बाद अब मूसलाधार बारिश, इसे हम बूंदाबांदी में नहीं तो मूसलाधार बारिश है जो हम अभी दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं।
1: बिल्कुल, और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए लोगों को जरूर मौसम के बदलने के बाद ये लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि देखिए जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है जमाझम। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से ली गई तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिन में अंधेरे जैसे माहौल इस समय हो गया है और इस समय जो ताजा हालात है वो हमने आपको दिखाया। हमारे सहयोगी जो थे आशुतोष, वो लगातार आप तक ये खबरें पहुंचा रहे थे। देखिए बिल्कुल आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष मैं चाहूंगा एक बार फिर से अगर आप तस्वीरें दिखा सके, और खासतौर पे ये भी कहा जा रहा था कि देखिए मौसम के एकदम से करवट लेने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है या मानसून से जो पहले प्री मानसून की दस्तक होती है क्या वो इसकी वजह है?
0: नहीं, प्री मानसून इसे नहीं कह सकते क्योंकि मानसून की दस्तक केरल में हुई और 5 दिन डिले है, तो प्री मानसून एक्टिविटी आने में 15-20 मिनट लगेगा। ये एक पश्चिमी विक्षोभ भी आपने जिसका जिक्र किया, और इससे हमने देखा था कि 30 तारीख को मौसम में बदला हुआ था, फिर हमने 1 तारीख और 2 तारीख को भी देखा कि बादल थी, और आज की जो प्रिडिक्शन थी मौसम विभाग की थी कि बादलों का डेरा होगा और जो है हवा पानी तेज तो होगी, शाम को हवा तेज चलेगी।
1: आशुतोष ये जानकारी तो आप दीजिए ही, साथ में अगर आप तस्वीरें भी दिखा सके।
0: यहाँ पर बिल्कुल रफ्तार अगर आप
1: बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए आशुतोष।
0: बिल्कुल, और ये देखिए अभी उसी बात है ना कि सड़कों पर जो रफ्तार है वो 3 से 3:30 बजे रफ्तार इतनी सुस्त हो गई है कि मैं जैसे ही दरअसल दिल्ली से आगे यूपी की ओर आगे बढ़ रहा था और उसके बाद से इतनी तेज ऐसे आप समझिए कि हवा की रफ्तार ऐसी थी कि गाड़ी जो है वो हिलने लगी थी, और उसके बाद हमने सही जगह पर मैंने ही नहीं बल्कि कई, ये देखिए अब जो यूपी से दिल्ली की ओर जा रहा है ट्रैफिक आप देखेंगे उसकी रफ्तार कोई और वजह नहीं है, पानी का जमाव दरअसल सड़कों पर हो गया, आधा रास्ता देखिए ये पूरा बंद होने लगा है। अब इसीलिए गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरतते हुए दूसरे इलाके से निकल रहे हैं, और इसी वजह से दरअसल अब ये स्थिति पूरे दिल्ली में हो सकती है, कई जगहों पर जल जमाव की समस्या हो सकती है, ट्रैफिक बाधित हो सकता है, और खासकर मौसम देखिए हवा, अब कौन भाई बोलेगा ये 3 से 4 बजे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशुतोष आपकी तस्वीरें हमें हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी समय है जो दिल्ली के अंदर दिन के अंदर ही अंधेरा छाने लगा, हालांकि ऐसा ना हो कि ये बारिश कंटिन्यू रहे और ये मजा सजा में तब्दील हो जाए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको दिखाते हैं 100 शहरों से 100 बड़ी खबरें। भोपाल में एक्स गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला, युवक ने 20 सड़क पर चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले, हमला सीसीटीवी में कैद हुआ। एक्स गर्लफ्रेंड को बचाने आई बहन पर भी वार किए, भोपाल में सनसनीखेज चाकूबाजी के बाद आरोपी फरार। जयपुर में ओवर स्पीड थार ने बाइक सवार राइडर को रौंदा, नशे में 150 मीटर तक घसीटता रहा, सीसीटीवी में कैद हुआ है पूरा फुटेज। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने कुर्सी पर बैठे युवक को मारी चक्कर, 2 लोगों हुए घायल, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में भरभरा कर गिरी 5 मंजिला इमारत, धूल के गुब्बार से बदला पूरा ढांचा, सामने आया वीडियो। हैदराबाद के अमीरपेट में कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगी, तेजी से फैली लपटों से मचा हड़कंप। पंचकुला में एक शख्स ने 2 शूटर्स की अंधाधुंध फायरिंग कर दी, सूत्रों के अनुसार रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स द्वारा हमला किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से 4 मरीजों की हुई मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू भी किया गया। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। मालवीय नगर के फ्लोरेस्ट्री होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड पर दिल्ली सरकार, आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में होगी पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया, इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं। 3 माह से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियां का इंस्पेक्शन भी करेगी, मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियां की पहचान की गई है, बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों के अनदेखी का आरोप है। जल्दी हो सकती है सख्त कार्रवाई। जिले के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। कई विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों के 12 विदेशी नागरिक भी शामिल। अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक है। आसिफ एलजी ने बुलाई है बड़ी बैठक। अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सभी सुरक्षा मानकों की होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज के पुलिस पूछताछ में किए हैं कई खुलासे। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ एके मालिक का खुलासा हुआ है, उन इलाके में किसी होटल के पास नहीं एनओसी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है गैर इरादन हत्या का मामला। उपराज्यपाल ने सभी होटल और नर्सिंग होम में अग्निकांड अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के आदेश भी दिए। आजरानी में ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा, इलाके की अधिकांश इमारतें बेसमेंट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही अग्रवाल परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन को देखने और मिलने आए थे। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री अजय शंकर का बयान, दूतावास के संपर्क में विदेश मंत्रालय और दी जा रही है सभी जरूरी मदद। होटल मालिक लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली में पुलिस से पूछताछ में किया खुलासा, वो डर के चलते वो मौके से हो गया था फरार। लवकेश बजाज ने कहा कि वो घर भी नहीं गया और सड़कों पर ही घूमता रहा। पूछताछ में मालिक का खुलासा, 3 साल पहले अहलूवालिया नाम की पार्टी से खरीदी थी बिल्डिंग। आरोपी की भी पुलिस 3 से 4 दिन की रिमांड ले सकती है। आरोपी के कबूला है कि बिल्डिंग के लिए कभी भी नहीं ली गई थी फायर एनओसी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी कार्रवाई का खौफ, हौजरानी इलाके में होटलों पर लटके हैं ताले। मालवीय नगर और हौजरानी मार्केट में विदेशी पर्यटक सामान लेकर ठहरने की जगह तलाशते नजर आए। दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड, सीटीआई ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा है पत्र। फायर सेफ्टी के लिए 8 सूत्री गाइडलाइन की मांग की है। होटल में आग लगने की शुरुआती पलों में वीडियो भी सामने आया। तारों से निकलती चिंगारी के बीच अफरा तफरी मच गई। दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में से जहां एक शख्स खिड़की से लटकता और फिर नीचे कूदता नजर आया। होटल अग्निकांड जांच में लवकेश से पूछताछ में नए खुलासे हुए। 3 प्रॉपर्टी से जुड़ाव सामने आया है। लेमन ग्रीन, मिकासा और फॉलरिश स्टे भी शामिल है। मालवीय नगर अग्निकांड पीड़ितों से मिली है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुआवजे का किया है ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिजनौर से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनगणना अभियान चलाने का दावा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने उनके धामपुर आवास पर रोका। बड़ी संख्या में पुलिस उनके आवास पर मौजूद रही। यूपी के मैं अभियान शुरू करने से पहले चंद्रशेखर बोले हैं कि सम्मानजनक सीट मिलने पर किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावना है। बिजनौर में एएसपी यात्रा से पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और मुफ्त शिक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। उत्तर प्रदेश भर में यात्रा के दौरान पदोन्नतों और आरक्षण और अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग उठेगी। मुरादाबाद के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहली बड़ी चुनावी रैली का आगाज किया गया। 2027 की तैयारी के लिए उतरे हैं जयंत चौधरी। मुरादाबाद में विजय संकल्प महारैली के जरिए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश में, जाट वोटों को भी एकजुट करने के लिए कोशिश करेंगे जयंत चौधरी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार इंटर कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जुटे हैं। जयंत चौधरी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनावों की संभावित तारीख की मांग की है। लखनऊ में हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में पंचायत चुनाव मामले में सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गया। मंत्री ने विपक्ष पर विकास रोकने का आरोप लगाया। संभल में कब्जा मुक्त कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन से दंगा पीड़ित परिवार को आज 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित होगी। शेर खां सराय संभल में प्रशासन 1978 दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार को जमीन सौंपेगी। 2027 चुनाव से पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना संभल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर के बाद वर्ष उसे विस्थापित परिवार के पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की गई। लखनऊ में यूपी पुलिस ने भर्ती एवं पदोन्नत बोर्ड के सॉल्वर गिरोह को और अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने से चलाचल संपत्ति जब्त की जा सकती है। परीक्षा के प्रश्न पत्र या इससे जुड़ी सामग्री साझा करना कानूनी अपराध माना जाएगा, इसे लेकर पूरा सिस्टम चौकस है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सॉल्वर गिरोह को करोड़ों रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। लखनऊ में एसटीएफ ने आयुष्मान योजना के फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह के सदस्य चक्रशेरू उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई लखनऊ लिंक वाले नेटवर्क पर एसटीएफ का शिकंजा, हजारों अपात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का आरोप है। कानपुर में ब्राह्मणचर्य एक सुर में बोले हैं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, वहीं होंगे पार्टी के नौचेहरा। कानपुर में ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का दावा, सनातन के लिए सरकार के कामों से ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। कानपुर में कई ब्राह्मणों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर असंतोष जताया, कहा कि इस बार विकल्प तलाशने पर विचार किया जाएगा। कन्नौज में शंकराचार्य का योगी सरकार पर बड़ा सवाल, आरोपी असद के एनकाउंटर पर बोले, जांच और न्याय की जगह मुठभेड़ समाधान नहीं है, कानून के तहत सजा जरूरी है। फसाई ने सैदाबाद गाजियाबाद में छापेमारी की है, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त करने के लिए 10 नमूने भी भेजे गए। पटना में फैजल खान के सेंटर पर बवाल मचने से पुलिस ने फैजल खान के दो गार्डों को पकड़ लिया है, दोनों पर फायरिंग कराने का आरोप है, दूसरी कोचिंग में अदावत का यह मामला बताया जा रहा है। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान है, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही। कटिहार में धू धू कर जली बाइक, मचा हड़कंप, 20 सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, कारणों की जांच जारी है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। नवसारी में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, विवाद के लिए उग्र रूप से मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला है मोर्चा। मध्य प्रदेश एमपी के सिवान में भी छेड़खानी की वारदात सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हो गई, आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड की गई, पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला आया सामने, यूपी के बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क हो गया, मामले की जांच जारी है। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ गया है, चालकों और प्रशासन के बीच टकराव, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इराज राजा का बड़ा बयान आया सामने, पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की, जांच जारी है। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर, प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला है प्रशासन का शिकंजा, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात के महिसागर में एक खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जोखिम में डालकर स्टंट करते युवकों का वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत, एमपी में छतरपुर में घरेलू विवाद के लिए खौफनाक मोड़, पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फ्रेशर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। गुजरात के सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पूछताछ जारी है। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत की टी20 टीम का कप्तान, विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होगी सीरीज। सूर्य कुमार यादव को लेकर जल्द होगा फैसला, हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला, 13 जून को वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेव, फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के चाकू से होगा उनका मुकाबला। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर, 25वीं वरीयता प्राप्त शाइडर ने नंबर 1 रैंक सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराया है। बीसीसीआई ने जारी किया अक्टूबर नवंबर में होने वाली टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल, इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 22 अक्टूबर को होगी T20 सीरीज की शुरुआत, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल, नॉर्वे चेस में 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस की को मात दे दी है। कतर की तहसीन मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास, फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम के जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने हैं जमशेद। 20 साल के याकूब पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फिल्म डॉन 3 के विवाद में अभिनेता रणबीर सिंह का मिली है राहत, माम सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद किया है यू टर्न, रणबीर सिंह की हटाई पाबंदी। मणिपुरी फिल्म
हुंगू बुंग में दुनिया में रोशन किया है देश का नाम।

0: चुनाव फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र की प्री टीजर जारी कर दिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पाथेर दावी की शताब्दी के समर्पित की गई है फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान फिर से मचाएगी धमार। 25 साल के बाद 12 जून को फिर से बड़े पर्दे पर उतरेगी ये फिल्म। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में ग्रैंड अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से करेंगे शादी। सिर्फ करीबी लोग ही होंगे शामिल। वॉशिंगटन में बातचीत के बाद लेबनान और इसराइल पर युद्ध विराम लागू करने की सहमति जताई। अमेरिकी मध्यस्थता में 4th दौर की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया है। अमेरिका ने इसराइल के राजदूत एजीएल से टिकाऊ युद्ध विराम की जताई है उम्मीद। दक्षिणी लेबनान में अमेरिका के नेतृत्व में पायलट जोन गठित करने की बात भी कही है। बातचीत से पहले लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला हुआ। इसराइल ने जारी किया वीडियो। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया गया है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पागल कहने की मानी है बात। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के साथ लेबनान जंग पर गर्मा गर्म बातचीत की गई थी बात। रिपब्लिकन के ने नेतृत्व वाला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ईरान के खिलाफ जंग पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को दी है मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई से मिलने की जताई है इच्छा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने राजनयिक बातचीत में मुस्तफा के सक्रिय रूप से शामिल होने की बात कही है। कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले का वीडियो किया गया है जारी। बुधवार को हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोकी गई थी उड़ाने। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन को फंड दिए जाने की बात पर जल्द फैसला लेने का भरोसा जताया। सीनेट की सब कमेटी ने $400 मिलियन की मदद पर जल्द फैसले की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2028 में राष्ट्रपति चुनावों में जेडी वेंस और रूबियो की जोड़ी को बताया अजय। 2028 में चुनाव में दोनों के माना जा रहा है रिपब्लिकन उम्मीदवार। ऑस्ट्रिया पुर्तगाल त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे और किर्गिस्तान में यूएन सुरक्षा परिषद में मिली है जगह। 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा 2 साल का कार्यकाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त दिल्ली अग्निकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली पुलिस को मिली अग्निकांड के आरोपी की रिमांड। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है लवकेश बजाज। देखिए आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेशी की गई थी और आज दिल्ली पुलिस ने उनकी रिमांड की मांग की और 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी मिल गए। संजय क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा है?
2: अपडेट ये है कि जब कोर्ट में लवकेश बजाज को पेश किया गया तो पुलिस ने 4 दिनों की कस्टडी मांगी। पुलिस ने कहा कि कल चूंकि हमारी जो जांच टीम है इतनी गर्मी थी अंदर, इतना गर्म माहौल था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम अंदर जा नहीं पाई है। एक तो जलने की बदबू, दूसरे वहां पर पूरा लोहे और सरिया और शीशा वो सारे गर्म हो गए थे। लिहाजा आज टीम वहां जा रही है और होटल के स्टाफ से भी पूछताछ करनी बाकी है। और होटल के स्टाफ से पूछताछ के बाद लवकेश बजाज के साथ उनका कन्फ्रंटेशन कराना है और बहुत सारी फॉरेंसिक जांच में जो सारी चीजें सामने आएंगी उसमें इससे बात करनी है। तो ऐसे में 4 दिन की कम से कम पुलिस कस्टडी चाहिए। लवकेश बजाज की तरफ से ये कहा गया कि पहले तो उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए। ये कहा गया गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो कानून प्रणाली में जो कही गई है CRPC में और अभी NBCC में NBSS में उसमें BNSS उसके मुताबिक सही नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि लवकेश बजाज की पत्नी को वारंट ऑर्डर दिखाए गए थे, गिरफ्तारी का वारंट, और इसके साथ ही सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट ने भी सारे सबूत देखने के बाद यह तय पाया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और नियमानुसार थी। कोर्ट ने 4
0: बिल्कुल देखिए संजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज कोर्ट में लवकेश बजाज को पेश किया गया और दिल्ली पुलिस को उनकी 4 दिन की रिमांड मिल गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
3: इन एसोसिएशन विद भारत।
4: Order for Jennifer C.
5: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
4: Yeah. Can you handle that much caffeine?
5: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Oh, really? That's great.
5: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Yeah, you just said that.
5: Did you say I just said that?
4: Yeah, I'm cutting you off.
5: I can't have any more? Why not?
6: You earn, we match. Discover Cashback Match. See terms at discover.com/creditcard.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
9: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर क्या?
11: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
6: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंट बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी
4: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
5: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक
6: हमारे साथ संदीपन साहा है उनसे बात करते हैं आखिर क्या क्या फैसला हुआ है थोड़ा हमें बताइए
7: देखिए हम लोगों ने आज एक चिट्ठी दिए थे स्पीकर को 58 एमएलए जो कि 80 विधायक जीते हैं उसका 2/3 से भी ज्यादा कि ऋतुव्रत बैनर्जी एलओपी और अखरुज जमान चीफ व्हिप वो हम लोग स्पीकर को दिए थे हमें वो मान्यता दी गई है अभी ऋतुव्रत बैनर्जी एज अ एलओपी फंक्शन करेंगे और चीफ व्हिप के रूप में फंक्शन करेंगे अखरुज जमान उसके साथ हम लोग का 4 डिप्यूटी लीडर रहेंगे जावेद अहमद खान सबीना यास्मीन शिवली शाह और मैं खुद हम लोग विधानसभा के अंदर यही दल प्रिंसिपल अपोजिशन रहेगा और यही दल सब काम करेगा आने वाले समय में
6: चाबी भी मिल गई है आपको आज
7: चाबी भी एलओपी के घर के चाबी भी मिल गई
6: तो ममता बनर्जी ही आपकी नेत्री हैं
7: ममता बनर्जी हमें सलाह देगी इतनी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी है वो हमें सलाह देंगी और वो अगर सलाह देंगे तो हम लोग वो सलाह ग्रहण करेंगे
6: तो नहीं यहाँ पे एक जो बात है तकनीकी जो प्रॉब्लम है इसमें है कि आपको और ऋतुव्रत को तो हटा दिया गया था पार्टी से निकाल दिया गया था आज सारी कमिटीज भी तोड़ दी गई थी तो ऐसे में ये कैसे होगा
7: देखिए 2/3 से ज्यादा एमएलए ने ये डिसाइड किया था तो आप पार्टी से निकाल रहे हो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका विधायक पद खारिज हो जाता है अगर विधायकगण 2/3 से ज्यादा ये निर्णय लेते हैं कि ये विधायक एलओपी बनेंगे तो उसपे पार्टी का कोई से नहीं है ये परिषदीय दल का डिसीजन है जो आज लिया गया है
6: ममता जी अगर नहीं मानती हैं कहती हैं कि हम आप लोगों को नहीं मानेंगे तब क्या उस स्थिति में क्या करें
7: तब देखेंगे पहले उनको बोलने दीजिए कि नहीं मानेंगे ये तो उन विधायक जीते हुए विधायक तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो आज प्रिंसिपल अपोजिशन ब्लॉक बन चुका है वो ये डिसीजन लिए है
8: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
0: In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
10: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty

गिरफ्तार मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश, होटल के पास नहीं थी फायर एनओसी, 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए। दिल्ली में आग से चौतरफा हड़कंप, अब तक 21 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद होटल में एनओसी की जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम, एलजी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला अस्पताल आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 5 लोगों की मौत, लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता बनर्जी के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट ने रितप्रंत बनर्जी ने बने नेता, विपक्ष 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा, स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के मोक्ष धाम में। ये है सेक्टर 32 में और यहां हम इसलिए आए हैं क्योंकि अग्रवाल परिवार, एक पूरा परिवार जिसकी सदस्यों 8 सदस्यों की मौत हो गई उस अग्निकांड में दिल्ली के, जिसे किसकी लापरवाही कहें अब तक ये समझ में नहीं आता। एक होटल में आग लगी और उस होटल में रहने के लिए आए अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य, उसमें उनकी मौत हो गई। और आज इस वक्त करीब आधा घंटा पहले परिवार के उन लोगों के पार्थिव शरीर यहां लाए गए हैं और अब यहां पे कुछ कर्मकांड, जो क्रियाएं की जाती हैं, पिंडदान जैसे किया जाता है, ये करने के बाद उनके पार्थिव शरीरों को आगे ले जाया गया है और वहां उन्हें अग्नि दी जाएगी। लेकिन सवाल एक ही बना हुआ है कि एक परिवार, उसका ये दुख असहनीय, इस पीड़ा की घड़ी में वो सवाल पूछने की क्षमता नहीं रखता, ना ही उनकी इस वक्त इच्छा है, वो बस इस दुख से पार पाना चाहते हैं। तो इस परिवार की कहानी सुनिए, कैसे माता पिता, उनकी मां, उनकी 2 बेटियां और उनके परिवार के 2 और लोग इस आग का शिकार बने हैं। सुनिए ये कहानी।

0: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गुरुग्राम का पूरा परिवार जल गया। देश की राजधानी में सिस्टम की मनमानी ने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ना रिश्तेदार बचे, ना पत्नी, ना बेटी और ना मां, सब मारे गए। दिल्ली के होटल अग्निकांड में गुरुग्राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में अब कोई नहीं बचा है सिवाय बुजुर्ग पिता के। 70 साल की प्रेमलता अग्रवाल, 45 साल के विवेक, 42 साल की तर्जनी अग्रवाल, 20 साल की जीविशा, 17 साल की वारिया, 68 साल के अशोक पंसारी, 70 साल के जावरीलाल और 68 साल की कमला, सबकी मौत हो गई।
1: एक मेरी बेटी है तर्जनी अग्रवाल, एज 42 इयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाई, उसकी एज 20 इयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है एज 17 इयर्स, वरिया।
0: विवेक अग्रवाल परिवार का कसूर क्या था? उन बेटियों की क्या गलती थी कि बीमार दादा से अस्पताल में मिल सके? विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश में ठहरा हुआ था। ये सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि विवेक के पिता बीमार है, साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुग्राम से रोज आना जाना कठिन था तो पास कहीं होटल में कमरा ले लिया।
2: सीए के तौर पर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। परिवार में उनकी वाइफ है जो कि किसी एनजीओ से जुड़ी है और जो बच्चे हैं क्योंकि वो पढ़ रहे थे, अब ऐसे में पहले वाइफ बिजनेस करती थी फिर किसी एनजीओ से जुड़ी और बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही थी। परिवार में माँ भी हैं जो काफी बुजुर्ग हैं और पिता हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल जी एक कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: होटल फ्लोरिश में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, विवेक की बुजुर्ग माँ प्रेमलता अग्रवाल, विवेक की दो बेटियां जीविशा अग्रवाल और वारिया अग्रवाल ठहरे हुए थे। बड़ी बेटी जीविशा बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी, दादा बीमार थे इसलिए वापस आ गई थी। इसके अलावा विवेक के मामा अशोक पंसारी, मौसा जवरीलाल और मौसी कमला भी विवेक के पिता को देखने के लिए आए थे। ये सब लोग होटल फ्लोरिश में ठहरे हुए थे।
2: विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ उस होटल में रुके थे जहां पे ये अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की मौत सामने आई थी। हालांकि परिजन ये बताने में लगे हैं कि 4 लोगों के शव उन्हें दिखाए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी के 2 से 3 लोग कहां हैं, परिजन कहां हैं, उसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा। जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। इस मकान में भी जब हम पहुंचे तो यहां पे परिजन जरूर थे जिनके मायूस चेहरे ये बता रहे थे कि हादसा बहुत बड़ा था और इस हादसे की बहुत बड़ी कीमत विवेक अग्रवाल और उनके परिवार को चुकानी पड़ी है। विवेक अग्रवाल कल ही अपनी पत्नी, 2 बच्चियों के साथ उस होटल में पहुंचे थे जहां पे मैक्स हॉस्पिटल में उनके पिता एडमिट थे। बच्चों की छुट्टियां थी तो बच्चों को भी साथ लेके गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी मौसी भी यानी कुछ और परिजन भी उस हॉस्पिटल में मौजूद थे।
0: बुधवार की सुबह जब होटल में आग लगी तो इस परिवार को भागने का भी अवसर नहीं मिला। होटल कब आग की लपटों में घिर गया इन्हें पता भी नहीं चला। जब फ्लोरिश होटल धधक रहा था तो अंदर किसी का दम घुट रहा था तो कोई आग की लपटों से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। होटल के कमरों के गेट में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था इसलिए कई कमरों के तो दरवाजे खुले ही नहीं। विवेक ने आखिरी कॉल अपने एक रिश्तेदार को किया और सिर्फ इतना कहा कि बेटियों को बचा लो। ये एक पिता की बेवशी थी जिसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा था। पत्नी, माँ, बेटियां, मौसी, मौसा, मामा सब इस आग के चपेट में थे। कमरे में धुआं भर गया था, सांसें साथ छोड़ रही थी। विवेक की मौत इस अग्निकांड में हो गई।
1: वो भी गुजर गए दोनों, अच्छा के छह हमारे, उनमें से 2 मिस हैं, बाकी भी गुजर गए। अच्छा, हमारे 8 आदमी।
3: अच्छा, 8 है।
1: हाँ जी।
3: कौन लोग थे, क्या
1: मेरी बेटी है, मेरा दामाद है।
0: विवेक अग्रवाल की पत्नी तर्जनी अग्रवाल मॉडल थी, मिसेज इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन शादी के बाद घर परिवार के जिम्मेदारियों ने उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी। तर्जनी अग्रवाल एक एनजीओ से जुड़ी थी, खुद विवेक अग्रवाल भी सोसाइटी के कार्यों में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने विवेक के पड़ोसियों को भी झकझोर दिया है।
4: देखिए, ऐसा है कि हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे माहौल।
2: करते क्या थे सर?
4: सभी पड़ोसी ये सीए थे,
5: बीवी बच्चे और उनके पिताजी और माँ वो सब यहीं रहते थे। अब वो बताते हैं कि सभी सब ऐसे हादसे में शिकार हुए, तो मुझे अभी तक ये नहीं है, बाकी अब यहाँ सब लोग बात कह रहे हैं, अभी हम पता करेंगे और अगर क्या है कहाँ तक सभी या कोई बच्चा अभी बचा हुआ है क्या है। तो बस मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि इतना बड़ा हादसा मेरे पड़ोस में पहली दफा हुआ है।
0: अग्रवाल परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहता था, अब ये घर सुनसान पड़ा है। घर में रहने वाले सभी लोग इस हादसे की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। बुजुर्ग पिता बचे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो मैक्स अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी, या हर बार की तरह इस बार भी जांच कमेटी के नाम पर सब फाइलों में दफन हो जाएगा? गुरुग्राम से धीरज वशिष्ठ के साथ अंशुल सिंह और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। अब पता चल रहा है कि जो आरोपी है इस अग्निकांड का, उस आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड मिल गई है। तो इसी के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्या खामियां थी, क्या कानून तार पे रखे गए थे। तो लवकेश बजाज जो मालिक है इस होटल का, वो आरोपी है और उसको आज कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस शमशान भूमि में जिसका नाम मोक्षधाम है, जहां इस वक्त आप मेरे पीछे अग्रवाल परिवार और उनके दोस्तों और परिवार वालों को देख सकते हैं। इस वक्त यहां पर उनकी चिताओं को आग दे दी गई है, मुखाग्नि दे दी गई है और परिवार इस वक्त जिस दुख में है उसका आप अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि अब एक ही घर में रहने वाले जब 5 लोग एक ही शमशान भूमि में एक ही दिन एक ही पल जब उनके चिता को अग्नि दी जा रही है तो उस परिवार का क्या हाल होगा। लेकिन इसमें अहम यह हो जाता है कि इस मामले का जो आरोपी है जिसकी रिमांड अब 4 दिन की पुलिस को मिली है, आखिर वो कहां था जब आसपास के सारे लोग आपके उस जलती हुई इमारत में से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लवकेश बजाज वहां पर मौजूद था, वो मौजूद ही नहीं था बल्कि जब उसने ये सब देखा तो वो वहां से भाग गया और भागकर अपने घर में गया। वो सड़कों पर घूमते रहा और अब वो हवाला दे रहा है कि उसे डर लग गया था इसलिए उसने ऐसा किया।
7: बेबसी और लाचार की भरी चीख सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कोई अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा है।
8: कम, कम, कम, कम, कम, कम, कम, कम,
7: फंसे लोग बार बार मदद मांग रहे हैं। एक तरफ होटल सुलग रहा है, दूसरी ओर कमरों में फंसे लोग खिड़कियों में झांक रहे हैं कि कोई तो उन तक मदद पहुंचा दे। ये 3 जून की खौफनाक तस्वीरें हैं, जब आग की लपटें बेकाबू हो रही थी। ये मंजर बेहद भयावह था, लेकिन तमाम खौफ और खतरे के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर मदद कर रहे थे, फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे थे, उनकी जिंदगी बचा रहे थे। कुछ देर के लिए उस भीड़ में वो गुनहगार भी खड़ा रहा जिसने इस होटल को शमशान बना दिया। नाम है लवकेश बजाज। ये उसी होटल फ्लोरिस्ट स्टे का मालिक है, जहां 3 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद लवकेश बजाज गिरफ्तार हुआ। जब दिल्ली पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए तो उसने बड़ी बेशर्मी से कबूला कि हाँ, वो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था। हादसे वाले दिन चंद घंटे बाद दिल्ली के साकेत इलाके से लवकेश बजाज की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में इसने पुलिस को बताया कि वो हादसे के वक्त मौके से गुजरा था, लेकिन वहां से तुरंत निकल गया और रुका नहीं। पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि वो डर के चलते मौके से भाग गया। लवकेश की माने तो भाग कर वो घर नहीं गया, बल्कि सड़कों पर घूमता रहा। और पुलिस की पूछताछ में सबसे अहम खुलासा ये कि कभी फायर की एनओसी नहीं ली थी। 3 जून की सुबह जब मालवीय नगर के लोग होटल के अंदर आग और धुएं के बीच फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब ये शातिर अपनी गर्दन बचाने के लिए भाग रहा था। जब इसे अपने होटल के मेहमानों को बाहर निकालने के उपाय करने थे, तब इसे अपनी पड़ी थी। होटल में इतने खौफनाक और दिल दिमाग को झकझोर देने वाले भीषण अग्निकांड के बाद पहली प्राथमिकता लोगों के रेस्क्यू की थी। दूसरा अहम था हादसे के इस मुजरिम को दबोचना। जब लवकेश बजाज गिरफ्तार हुआ तो इसने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसने 3 साल पहले आहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये बिल्डिंग खरीदी थी और ये होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था।
9: ये देखिए, आज तक हम आपको फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझने की जरूरत है कि हम बेहद इस होटल से कितने करीब हैं। अंजुम जी हैं, ये सामने
10: की तरफ होटल। यहाँ पे पहले शिल्प होता था, उसके बाद यहाँ पे आहलूवालिया कंस्ट्रक्शन किसी ने ये बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद ये इन्होंने किसी बजाज
9: एक बात बताइए, एनओसी मिल सकती इस होटल?
10: इस होटल को एनओसी इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है, उन्होंने 25-25 कमरे इसमें बना रखे, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है।
7: मिली जानकारी के मुताबिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि होटल से पहले यहां खादी की शॉप थी, इमारत काफी जर्जर थी। उसने ये भी दावा किया है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ से जुड़ी कई परमिशन ली थी। गिरफ्तार बजाज ने ये भी बताया कि वो होटल अकेला चला रहा था, इसमें कोई पार्टनर नहीं है। आरोपी ने बताया कि उसने होटल का पूरा काम जय मिश्र नाम के एक शख्स को सौंप रखा था जो उसका अकाउंटेंट है। होटल से जुड़े सारे लाइसेंस जय मिश्र के नाम पर ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि वो जय मिश्रा कहाँ है। दिल्ली पुलिस अब उसका रोल भी वेरीफाई कर रही है।
9: इस खूनी होटल के मालिक लोकेश बजाज को दिल्ली पुलिस ने 3 अप्रैल की देर शाम साउथ दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लोकेश बजाज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने होटल की फायर एनओसी कभी ली ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पूछताछ में लोकेश बजाज ने खुलासा किया कि इस होटल की देखरेख उसका अकाउंटेंट जय मिश्रा ही करता है, लाइसेंस भी जय मिश्रा के नाम पर ही है। इतना ही नहीं, आग लगने के बाद लोकेश बजाज इस होटल के आसपास आया, कुछ देर रुका, उसके बाद मौके से फरार हो गया और सड़कों पर वो लगातार घूम रहा था।
7: होटल फ्लोरिस्ट स्टे जहां हादसा हुआ, उसके निर्माण में लवकेश बजाज ने नियमों की तनिक भी परवाह नहीं की और प्रशासन की अनदेखी की वजह से इसका हौसला बुलंद रहा। अब वही अनदेखी 21 जिंदगियों पर भारी पड़ी है। अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: तो जैसा आपने सुना, लवकेश बजाज का हौसला बुलंद था, इतना बुलंद था कि वो कानून को ठेंगा दिखा रहा था, कोई कानून का पालन ही नहीं कर रहा था। 3-3 उसकी प्रॉपर्टीज थी, 3-3 ऐसे होटल थे जो इस इलाके में चल रहे थे और किसी का भी एनओसी नहीं था उसके पास, और जमकर वो अपने इन होटल्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग भी करता था, बुकिंग्स मंगवाता था और खुद एक आलीशान कोठी में साकेत में रहता था। लेकिन अब आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में है।

0: 21 मौतें। इस गुनहगार ने अपना अलग ही बिजनेस मॉडल बनाया हुआ था। होटल में किसी की जान जाए तो जाए, हादसा हो तो हो जाए, ये मान चुका था कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो लवकेश बजाज दिल्ली के मालवीय नगर और अन्य इलाकों में तीन तीन होटलों का मालिक है। एक होटल है फ्लोरिश स्टे, जिसमें 3 जून को भीषण आग लगी और 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। दूसरा होटल है फ्लोरिश इन और तीसरा होटल है लेमन ग्रीन। होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगी और 21 लोगों की जान गई तो अधिकारियों ने फाइल पलटनी शुरू कर दी। फिर क्या था, लवकेश बजाज के तीनों होटलों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। होटल फ्लोरिश स्टे में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन लवकेश बजाज ने वहां 25 कमरे बना डाले थे। साथ ही होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे। दोनों किचन के अंदर एलपीजी के सिलेंडर रखे हुए थे। हालांकि जानकारी मिली है कि एलपीजी सिलेंडर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। पुलिस आशंका जता रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी। पुलिस ने बिल्डिंग की फॉरेंसिक जांच भी की है। नियम कानून को ठेंगा दिखाने वाले बजाज अपने दूसरे होटलों में भी कुछ ऐसा ही किया। आज तक की टीम लवकेश बजाज के होटल फ्लोरिश इन भी पहुंची तो पाया कि वहां भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जहां 3 कमरों की इजाजत थी, वहां बजाज ने 5-6 कमरे बनाए। सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा, बेसमेंट में भी 4 कमरे बना दिए।
1: फ्लोर पर कितने रूम्स हैं ये आप चेक कीजिए। रूम नंबर 101, इसके बाद रूम नंबर 102 यानी 2 कमरे, रूम नंबर 03 यानी 3 कमरों तक की इजाजत है। लेकिन अब आप देखेंगे, एक कमरा आपको यहां पर नजर आएगा, एक कमरा मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर नजर आएगा, एक कमरा आपको यहां पर नजर आएगा। आखिरकार इन तरीके के जो होटल्स चल रहे हैं, जो इनलीगल तरीके से, जिनके पास परमिशन सिर्फ 3 कमरों की है, ओवरऑल पूरी बिल्डिंग को 6 कमरे की है, उन होटल्स के अंदर किस तरीके से बड़े स्तर पे जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वो चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं और लगातार यहाँ पर कमरे जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर फ्लोर पर इसी तरीके का आलम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, एक कमरा यहाँ पर नजर आ जाएगा, यहाँ पे गेस्ट नजर आएंगे और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से रूम जो है वो नजर आएंगे। यानी हर फ्लोर पे आपको 4-5 कमरे जो है वो नजर आएंगे।
2: हम प्लरिश्ते के टेरेस में है, ये सामने अगर देखें, ये मैक्स हॉस्पिटल ये आपके सामने है, आपको यहाँ से बल्कि इमरजेंसी की एंट्री सब कुछ यहीं से दिख जाएगा।
0: जिस होटल में आग लगी उसमें कमरे की बुकिंग के लिए लवकेश ऑनलाइन प्रचार करता था। उसने कमरों की तस्वीरें और बिल्डिंग की छत से मैक्स अस्पताल की तस्वीर साइट पर अपलोड की थी, लेकिन हर कोई उसके गुनाहों से अनजान था, जो 3 जून को जानलेवा हो गया। अवैध तरीके से होटल निर्माण कर लवकेश बजाज मोटी कमाई करता रहा, अकूत संपत्ति बनाता रहा और अपने लिए साकेत में उसने कोठी बनवा ली। होटल फ्लोरिश स्टे में हुए हादसे के बाद आज तक की टीम लवकेश के साकेत स्थित आवास पर भी पहुंची।
3: मालवीय नगर में होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के कसूरवारों में से एक लवकेश बजाज के घर पर आज तक की टीम पहुंची हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एक आलीशान कोठी है जिसमें बजाज फैमिली रहती है और इसी एक फ्लोर पर लवकेश बजाज रहता है। करोड़पति लवकेश बजाज के कई होटल हैं मालवीय नगर में। जिस होटल में आग लगी उसके आसपास 2 होटल हैं, दोनों ही गैर कानूनी तरीके से बिना एनओसी के चलाए जा रहे
4: हैं। ये जो कोठी है लवकेश बजाज की
5: है? नहीं, उनकी फैमिली रहती है यहाँ पे। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली रहती है।
4: लवकेश बजाज भी इसी फ्लोर में रहते हैं,
5: ये पता नहीं, आइडिया नहीं है हमारे को।
0: अब लवकेश गिरफ्तार हो चुका है और उसकी काली करतूतों की फाइल भी खुल चुकी है। तमाम एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशांत मेहरा और अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

0: जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोक्ष धाम में और यहाँ परिवार अग्रवाल परिवार इस वक्त मौजूद है, जो अपने परिवार के जो सदस्य गुजर बसे हैं उनको मुखाग्नि दे रहे हैं। लेकिन अहम ये हो जाता है कि लवकेश बजाज, जिसके ये होटल थे जिसमें लोग रह रहे थे, वो क्यों भाग खड़ा हुआ। बल्कि अगर ध्यान दें तो बीट के अफसर तक सो रहे थे, महकमे जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी सो रहे थे, चाक जो रहे थे वो सिर्फ आसपास के रहने वाले लोग, मालवीय नगर के लोग, जिन्होंने जो बन पड़ा किया, लोगों को उस जलती हुई इमारत से बाहर निकाला। मिलिए कुछ ऐसे ही अग्निवीरों से जिन्होंने वहां पूरी मदद की, जितनी क्षमता थी उतनी मदद की।
1: जब पूरी इमारत धधक रही थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था, न भागने की जगह थी और न ही कोई रस्सी या सीढ़ी की जान बचा सके, तब मालवीय नगर के इन जाबाजों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिससे जो बन पड़ा सब लेकर दौड़ पड़ा कि कैसे भी जितने भी लोगों को बचा सके बचा लो।
2: खुद कूदे थे वो बच गए, माइनर इंजरी हुई उन लोगों को, वो बच गए। उसके बाद फायर आई है, एम्बुलेंसेज आई है, पुलिस के प्रशासन आया है और सब लोगों ने मिलकर के फिर अंदर से लोगों को निकाला है जिनकी सांसें चल रही थी, और डॉक्टर और नर्सेज की टीम भी आई है अपनी दवाइयों के साथ, उन्होंने CPR भी दिया है, ऑक्सीजन भी दी है। और जो मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस में हम एक व्यक्ति को लेकर के एम्बुलेंस भगा रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं कि दूसरा तीसरा आएगा, फटाफट से इलाज मिले उसको भगा रहे हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस की लाइन लगी थी और आसपास भिकाजी कामा प्लेस से हमारे पास फायर आई है, नेहरू प्लेस से हमारे पास फायर आई है, ओखला से हमारे पास फायर आई है, जितने भी नजदीक फायर स्टेशन थे सब जगह से फायर आ गई है, एम्बुलेंस भी सब जगह से आ गई।
0: गुरुग्राम के मोक्षधाम से इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: That's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: बहुत चुल मच रहा है, कसम से आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के पुजाएंगे हम।
8: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
7: अधूरा प्यार ही
8: तुम्हें दुनिया के यार ठीक है मत दोहराओ
9: बिजुरी आए गए।
8: हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट,
9: यह अब ही नसिया पाया भैया।
7: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
9: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ तुमको।
7: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर, पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 5 की मौत। लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बैनर्जी बने नेता, विपक्ष 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय के बाद नोटिस।

0: होटल अग्निकांड में आज तक का बड़ा खुलासा।
1: बहुत
0: साल 2022 में ही दिल्ली पुलिस ने रिजेक्ट किया था होटल का लाइसेंस। सब कुछ जानते हुए भी मास्टरमाइंड लवकेश बजाज ने खेला मौत का खेल। पकड़े जाने के डर से चुना चोर रास्ता, जलते लोगों को छोड़ भागा। होमस्टे के मुखौटे में खोल दिया अवैध होटल। मासूमों की जिंदगी से ये कैसी क्रिमिनल जालसाजी। होटल कांड का गुनहगार लवकेश बजाज सूत्र था।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड की। 21 लोग इसमें बेमौत मारे गए थे। दक्षिण दिल्ली जिले की साकेत अदालत ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को आज 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों को दरकिनार करते हुए अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया नियम अनुसार और पूरी तरह से वैध थी। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी मांगते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि होटल के कर्मचारियों की जांच पड़ताल करने की जरूरत है। अभियुक्त वकील ने दावा किया कि जानकारी उसी भाषा में दी जाए जिसे वो समझता है। अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि अदालत को यह देखना होगा कि गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तारी मेमो और केस डायरी में दोहराया गया है या नहीं। बजाज के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अवैध है। आरोपों की को बिल्कुल अभी मुक्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पहले दे दिए गए हैं। होटल का मालिक, जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लवकेश बजाज, उसके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन उसमें नहीं किया गया। वहीं अभियोजन पक्ष यानी पुलिस का कहना है कि बाहर रहने पर वो होटल के स्टाफ को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए गिरफ्तारी जरूरी है। पूछताछ अभी तक हो नहीं पाई है, फॉरेंसिक जांच इस समय चल रही है, लेकिन गर्मी इस समय इतनी है कि कल वो गिरफ्तारी नहीं कर सके। फॉरेंसिक टीम आज जांच करने पहुंची है, यानी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम उस इलाके में कल दाखिल नहीं हो पाई, क्योंकि आग लगने के बाद भी आग तो बुझा ली गई लेकिन गर्मी, तापमान इतना ज्यादा था जले हुए कमरों में कि जांच संभव नहीं थी। बजाज के वकील ने अदालत में यह भी दलील दी कि वो भी एक पीड़ित है, उसे विक्टिम के रूप में देखा जाए, उसकी इमारत जलकर खाक हो गई है। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह पूरी तरह से इस मामले का आरोपी है। और एक और बड़ी बात जो पुलिस ने कही कि जब बिल्डिंग में आग लगी तो लवकेश बजाज वो देख रहा था, मदद करने के बजाय वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे सहयोगी संजय शर्मा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा यह हादसा, 21 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस लवकेश बजाज को आरोपी क्यों करार दे रही है? उसके वकील का कहना है कि वो भी खुद एक विक्टिम है, उसकी भी बिल्डिंग जलकर राख हो गई।
3: पुलिस का ये कहना था कि लवकेश, सबसे पहले तो लवकेश बजाज की तरफ से ये कहा गया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही नहीं है, जो BNSS में प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें गिरफ्तारी का वारंट नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रमाण पेश किए और ये कहा कि उसकी पत्नी को उसकी गिरफ्तारी का वारंट पेश किया गया था, सारी चीज़ें दी गई थी। कोर्ट ने भी आखिरकार सारी दलीलें सुनने के बाद ये माना कि प्रक्रिया का पालन किया गया है, 4 दिन की पुलिस हिरासत में उसे भेजा गया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है गौरव कि ये सिर्फ सभी आरोपियों में से एक है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है। क्या पुलिस या प्रशासन, सरकार प्रशासन इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो इस मामले में जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर पर पांव रखकर आगे बढ़ते हुए सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, क्या उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट के आगे लाने की हिम्मत दिखाएंगे लोग? क्योंकि जितने बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, जितने बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम जिम्मेदार लोगों को कानून की जद तक ला कर रहेंगे, उनको सजा दिलाने की गारंटी हम लेते हैं, उनको सजा मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। कोर्ट ने जनवरी में ये कहा था याचिकाकर्ता को कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे कि फायर सेफ्टी के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। लेकिन नतीजा ये हुआ, इससे पता चलता है कि इन 6 साल जिनकी 1.5 साल से सरकार है, 10 साल वाले उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: बिल्कुल सही प्रश्न भरी है, कौन है वो अधिकारी जो अपनी जेबें भर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने और इस पर मैं आपसे ये चर्चा जारी रखूंगा। लेकिन इस समय लवकेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लवकेश बजाज ने साल 2022 में ही सिस्टम को धोखा देने की कोशिश शुरू कर दी थी, उसके बावजूद ये इमारत कमजोर थी। साल 2022 में लवकेश बजाज इस इमारत में एक पूरी तरह से कमर्शियल होटल चलाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग को बकायदा एक अर्जी भी दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। दिल्ली पुलिस के नियमों यानी फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इन सभी मापदंडों पर यह इमारत खड़ी नहीं उतर रही थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने, जो उसका लाइसेंसिंग विभाग है, होटल को चलाने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। साल 2025 तक दिल्ली में किसी कमर्शियल होटल को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के इसी लाइसेंसिंग विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य था। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने लवकेश को कमर्शियल होटल का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, तब उसने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करने की चाल चली। कैसे? ये जो चोर रास्ता था उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। दरअसल लवकेश बजाज ने दिल्ली सरकार के टूरिज्म विभाग की एक बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का लाभ उठाया। ये स्कीम दरअसल बड़े होटलों के लिए नहीं थी बल्कि होमस्टे के लिए होती है। इसके नियम भी कुछ हल्के होते हैं। तो उसने होटल खोलने के बजाय अपने अकाउंटेंट जय मिश्रा को आगे किया और टूरिज्म विभाग से सिर्फ 6 कमरों के एक बेड एंड ब्रेकफास्ट का छोटा सा लाइसेंस ले लिया। कागज पर उसने बकायदा दिखाया कि सिर्फ 6 कमरों का एक छोटा सा वो होमस्टे चलाना चाहता है, लेकिन हकीकत ये थी कि रिजेक्टेड बिल्डिंग के अंदर उसने 25 कमरों का एक अवैध होटल खोल दिया था, जिसे दिल्ली पुलिस पहले असुरक्षित मानकर खारिज कर चुकी थी। और आज तक के इस बड़े खुलासे पर अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, मेरे दो सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश 2022 से 2025 तक सफलता, लेकिन अरविंद बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को या एमसीडी को या बाकी अधिकारियों को यह क्यों नहीं पता चला कि 2025 से यहां पर 6 कमरों के नाम पर 25 कमरों का बकायदा एक होटल चल रहा था।
4: देखिए, प्लानिंग के तहत आंखों में धूल झोंका गया, ये समझने की जरूरत है कि 2025 के पहले तक, जून 2025 के पहले तक दिल्ली में जो होटल और रेस्टोरेंट थे उसके लिए एनओसी और लाइसेंस वो दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट देती थी, लेकिन 2025 में एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और फिर ये बताया कि दिल्ली पुलिस जो की जो लाइसेंसिंग है वो होटल और रेस्टोरेंट को लाइसेंस नहीं दे सकती। लेकिन सबके बीच आज तक को जो जानकारी मिली है वो ये है कि 2022 में इसने दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को में अप्लाई किया था और होटल का लाइसेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि नियम ताक कानून पर रखे गए थे इस वजह से दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने होटल का लाइसेंस नहीं दिया था। उसके बाद इसने बीएनबी सिस्टम का फायदा उठाया और उसके तहत बीएनबी नाम को था लेकिन पूरी तरह से होटल चलाया जा रहा था जिसमें 6 कमरों की इजाजत थी लेकिन 25 कमरे बनाए गए थे, 4 मंजिला इमारत थी। इतना ही नहीं, अदालत में दिल्ली पुलिस ने जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की तो खुलासा ये भी किया है कि पूरी तरह से नियमों की अनदेखी हुई, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, इस वजह से ये आरोपी है। इसके अलावा इस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस, खास तौर से जय मिश्रा जो अकाउंटेंट है जिसके नाम से तमाम दस्तावेज लवकेश लेता था, उसी के नाम से लाइसेंस लेता था और बीएनबी सिस्टम के नाम पर होटल चला रहा था। जी
1: अच्छा, एक और बड़ी बात हिमांशु यहां पर यह आती है कि माना लवकेश बजाज और इसके साथ जो जय मिश्रा नाम का इसका मैनेजर था, उन्होंने एक चाल चली, लेकिन क्या अथॉरिटीज आंख बंद करे बैठी थी? उनको क्यों नहीं पता चला? चाहे दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी हो या फायर का इसने एनओसी नहीं लिया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में फायर विभाग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, एमसीडी को कुछ नहीं पता था, या फिर उनकी भी कथित तौर पर मिलीभगत की जांच होगी?
5: देखिए, नहीं पता था ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि वहां पर रुकता कौन था? रुकते थे फॉरेनर्स, वो जो पेशेंट को सामने हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे उनके तीमारदार आके रुकते थे, और कई फॉरेनर्स ज्यादातर उसमें रुकते हैं। जब फॉरेनर्स रुकते हैं तो उनके साथ गौरव कई सारे रूल्स फॉलो हो जाते हैं कि कितने आ रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड पुलिस भी रखती है, वो रिकॉर्ड आगे भी शेयर किया जाता है। तो ऐसे में वहां पर 6 की जगह 25 कमरे थे, ये किसी को नहीं पता, ये असंभव है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, वो होटल कहीं अंदर कहीं किसी कोने में छिपा हुआ नहीं था, हौजरानी के मेन रोड पर वो होटल बना हुआ था, सबको पता था कि उसका एरिया कितना। आप देखेंगे वो अकेला नहीं है, वो गनीमत ये थी कि वो तो कॉर्नर का था तो खिड़की के सहारे कूद करके कुछ लोगों ने जान बचा ली। आप आगे अगर चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पिंजरे की तरीके से इन होटल्स को बनाया गया है, सरेआम बनाया गया है, मेन रोड पर बनाया गया है, नीचे बेसमेंट बनाया गया है, बिजली विभाग का बकायदा बिजली आती है उसमें। अगर आप 6 रूम के लिए बिजली देते तो कितनी आपको बिजली देनी होगी, लेकिन आप 25 से 28-30 कमरे, ऐसे कमरे बने हुए, आप सोचिए बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 ऊपर 5 फ्लोर, वो सामने सरेआम तने हुए हैं। जरा सा अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, सामने अपने घर के अगर 4 ईंट और सीमेंट रखता है, तो तुरंत तमाम अथॉरिटी के लोग पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में ये कहना कि किसी को पता ही नहीं चला, प्रशासन को पता ही नहीं चला और आंखों में धूल झोंककर, नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर मिली भगत है। जाहिर तौर पर कई ऐसी चीजें होती हैं जो सरकारी तौर पर जो सरकारी अफसर हैं उसकी अनदेखी करते हैं, और अनदेखी यूं ही नहीं करते हैं, इसे ही करप्शन करते हैं, जो बेहद अच्छे से एकदम अपना उसने अपनी जगह बना ली है।
1: और यही यहाँ सबसे बड़ा सवाल है,
5: नॉर्म्स इस होटल के अंदर नहीं था।
1: बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ।

BSCS और जिले के जिलाधीश को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी एक पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस ने MCD को जो पत्र लिखा है उसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल सर्वे कराने की भी बात की गई है। दिल्ली पुलिस ने बिजली कंपनी BSES को पत्र लिखकर बिजली कनेक्शन की जानकारी मांगी है और मौजूदा स्थिति का सर्वे करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण जिले के DM को भी पत्र लिखकर बिल्डिंग इंस्पेक्शन करने को कहा है, साथ ही होटल के रजिस्ट्री से जुड़े कागजों की जांच भी करने को कहा गया है, क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती कि ये सब चल रहा था और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल की फोरेंसिक जांच के लिए FSL यानी फोरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी की जो टीम है वो एक बार फिर मौका वारदात पर इस समय पहुंची है। कल FSL की टीम केवल एक फ्लोर तक ही जांच के लिए आगे बढ़ पाई थी। अग्निकांड में मरने वालों में वो लोग भी शामिल है जो होटल के तीसरे फ्लोर और बेसमेंट में उस समय मौजूद थे। कई कमरों में जांच के दौरान दमकल विभाग को इलेक्ट्रिक चूल्हे और दूसरे उपकरण भी मिले हैं। दरअसल जो लोग लंबे समय से होटल में रुके हुए थे वो खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कुकर का या इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कमरे में ही कर रहे थे और सूत्रों के मुताबिक अधिकतर लोगों की जो मौत हुई है वो आग से नहीं बल्कि धुएं से और दम घुटने की वजह से हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस होटल में लवकेश बजाज का कोई पार्टनर नहीं था। विदेशी नागरिकों के शव पासपोर्ट के जरिए पहचान जो की गई है उसमें अब तक 9 की पहचान कर ली गई है। जिनकी पहचान हो गई है अब उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। सभी के DNA पुलिस अलग से सेव कर रही है यानी रख रही है। अगर कानूनी प्रक्रिया के लिए उसकी आवश्यकता होगी तो उसे अलग रखा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पहुंची है FSL की टीम। कल ये जांच शुरू तो हो गई थी लेकिन पूरे 25 कमरों की जांच में अभी और समय लगेगा। कल तापमान इतना ज्यादा इमारत के अंदर बढ़ गया था कि टीम को कुछ ही देर में बाहर निकलना पड़ा था।

0: और अब हम आपको सीधे गुरुग्राम के मोक्षधाम लिए चलते हैं। यहां पर मेरी सहयोगी अंजलि इष्टवाल मौजूद है। अंजलि, जो लोग अपने परिजनों के इलाज के लिए वहां आए थे, वो लोग भी इनमें से कुछ मारे गए हैं। बहुत ही नम आंखें हैं वहां सबकी।
1: बिल्कुल गौरव, आपको समझना होगा ये एक ही परिवार था। 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्षधाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है, उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है। और परिवार इस वक्त इतने दुख में, इतना गमगीन है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हम परिवार के घर पर भी गए थे, वहां पर भी शोक था, वो बात करने के मन में उनमें नहीं था। और यहाँ पे भी ये पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है, पूरा उन्हीं के लोग हैं जो यहाँ आए हैं। राजस्थान से भी कई आए हैं और कई यहीं दिल्ली गुरुग्राम के भी हैं।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि न्याय केवल अग्रवाल परिवार को नहीं, उन सभी 21 लोगों के परिवार को मिलना चाहिए जो यहां मारे गए। और केवल एक लवकेश ही नहीं, लवकेश बजाज ही नहीं, महकमे के वो लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंखों के नीचे ये चल रहा था। लवकेश बजाज को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कल अपने वो होटल के सामने था, जब होटल जल रहा था उसके सामने ये सब हो रहा था, लोगों को बचाने के बजाय

0: वो वहां भाग गया। अवैध होटल को चलाने के लिए उसने वहां पर एक मोहरा रखा हुआ था, उसी मोहरे के नाम पर सारा कारोबार चल रहा था ताकि अगर मुसीबत हो भी जाए तो वो बच जाए। अब हम आपको लवकेश बजाज के चार गुनाह दिखाते हैं, वो शातिर दिमाग जो जानता था कि कानून को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाना है। देखिए ये रिपोर्ट।
1: लोकेश बजाज जी कहाँ है इस वक्त?
2: इस वक्त नहीं है, उधर ही होगा सर।
3: मालवीय नगर की जलती हुई इमारत और उसकी खौफनाक तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही हैं, आखिर 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मालवीय नगर में लगी वो भयानक आग कोई हादसा नहीं बल्कि सीधे सीधे कत्ल था, और इस कत्ल का सबसे बड़ा गुनहगार मौत का वो सौदागर अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है जिसका नाम है लवकेश बजाज। पूछताछ में इस आरोपी ने जो कबूलनामे किए हैं उन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गुनाह नंबर एक, लाशों के ढेर पर खड़ा किया 25 कमरों का होटल। लवकेश बजाज का पहला और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इस शातिर दिमाग शख्स ने दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग से सिर्फ 6 कमरों का ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिया था, लेकिन लालच की सारी हदें पार करते हुए इसने नियमों की धज्जियां उड़ाई और उसी जर्जर इमारत के भीतर अवैध रूप से 25 कमरों का पूरा होटल खोल दिया, यानी चंद पैसों के लिए मासूमों की जिंदगी को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। गुनाह नंबर दो, कभी नहीं ली फायर की एनओसी। इस गुनाह की कहानी यही खत्म नहीं होती। पूछताछ में आरोपी मालिक ने खुद कबूला है कि उसने इस पूरी बिल्डिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट से कभी कोई एनओसी नहीं ली थी। जिस इमारत में पहले खादी की दुकान हुआ करती थी, जो इमारत अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी, उसे लवकेश बजाज ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के मौत के कुएं में तब्दील कर दिया।
1: सूत्रों के मुताबिक लवकेश बजाज की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस को लवकेश बजाज से पूछताछ करनी है, होटल जय मिश्रा के नाम पर क्यों लिया गया था, सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम पर क्यों लिए जाते थे, होटल की फायर की एनओसी क्या कभी उसने लेने की कोशिश की थी। ये वो सवाल है जो लोकेश से पूछे जाएंगे। उसके अलावा होटल में जब आग लगी तो लोकेश कहां गया था, कहां फरार चल रहा था, क्या वो होटल के आसपास आया था, ऐसे कई सवाल हैं जो लोकेश बजाज से पूछे जाने जरूरी हैं।
3: गुनाह नंबर तीन, जय मिश्रा नाम का बेनामी मोहरा। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस मास्टरमाइंड ने एक बेनामी मोहरा तैयार किया था। जय मिश्रा जो इस होटल का अकाउंटेंट है, शातिर लवकेश ने सारे सरकारी कागज, सारे बिल और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस इसी जय मिश्रा के नाम पर दे रखा था ताकि अगर कभी कोई आफत आए तो वो खुद साफ बच निकले। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस अब इसके पूरे होटल साम्राज्य यानी लेमन ग्रीन और मिकासा के दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। गुनाह नंबर चार, जब लोग जल रहे थे वो भाग रहा था। और सुनिए इस इंसान की बेरहमी की इंतहा। जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे तब ये होटल मालिक मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय ये डरपोक और बेरहम शख्स वहां से चुपचाप रफू चक्कर हो गया। खुद को बचाने के लिए ये रात भर सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार इसे दबोच दिया। अब दिल्ली पुलिस ने MCD, DM और BSES को पत्र लिखकर इस पूरे मौत के साम्राज्य को जमींदोज करने की तैयारी कर ली है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: लेकिन ये साम्राज्य क्या उन अधिकारियों की जानकारी के बिना चल रहा था या फिर मोटी मलाई वो भी यहां से उठा रहे थे और अब कन्नी काट रहे हैं? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communication so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
3: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
3: इन एसोसिएशन विद
15: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: बाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरी बाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरी बाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: विदेशी। हादसे के बाद होटल में एनओसी की जांच करने पहुंची एनसीडी की टीम, एलजी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में जला अस्पताल, आईसीयू वार्ड में भरा धुआं, अब तक 5 की मौत। लपटे उठी तो मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खामोश। ममता बनर्जी के हाथ से छूटी पार्टी की बागडोर, बागी गुट के ऋतव्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष, 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी का दावा। स्कूल भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस। दिल्ली एनसीआर में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, भीषण आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा, जगह जगह गिरे पेड़ों से भारी नुकसान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: धमाका, धुआं और चारों तरफ चीख पुकार, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का आत्मघाती प्रहार, ईरान ने पहले वीडियो जारी कर किया अमेरिकी बेस पर हमले का दावा, मगर कुवैत की भयानक तस्वीरें आईं तो पलट गया। अब सोशल मीडिया पर छिड़ी अमेरिका ईरान में जंग, व्हाइट हाउस की धमकी, ईरान तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। ईरान का पलटवार, 1450 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल तैयार, ईरान की खुली चुनौती, देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांधने की तैयारी, ऐतिहासिक प्रस्ताव पास, अब ईरान पर आगे हमले नहीं कर पाएंगे ट्रंप। संवेदनशील हालात में ट्रंप का बेहद हास्यास्पद बयान, ट्रंप बोले सीज फायर मतलब संभल कर एक दूसरे पर हमले, ट्रंप का दावा वीकेंड तक ईरान से होगी सुलह। ईरान ने ट्रंप के दावे को फिर किया खारिज, क्या ट्रंप को रोक पाएगी अमेरिकी संसद। क्या मध्य पूर्व के बारूदी धमाकों से फिर दहल उठेगी दुनिया।
0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। कभी लगता है अब शांति हो जाएगी, लेकिन फिर युद्ध के बादल एक बार फिर मंडराने लगते हैं, और यही इस समय मध्य पूर्व में हो रहा है। बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर आ रही है। दोनों ही देशों के बीच मध्य पूर्व में जो युद्ध विराम है वो किसी भी समय टूट सकता है, ऐसा अंदेशा है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जो युद्ध विराम चला आ रहा है उसे किसी भी समय पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने का उसी समय संकल्प ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। अधिकारियों ने इस बात पर भी बल दिया कि भले ही दोनों के बीच जो हिंसक झड़पें हैं वो रुक रुक कर अभी भी हो रही हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक्स, बड़े हवाई हमले पूरी तरह से सीजफायर के दौरान बंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि युद्ध फिर शुरू हो, इसीलिए वो हफ्तों तक या आने वाले महीनों तक भी छोटी मोटी झड़पों को तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका के नागरिकों की जान गई तो फिर यह युद्ध फिर भड़क जाएगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि बार बार हो रहे हमले ट्रंप पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि संघर्ष विराम के लंबे समय तक टिकने की संभावना पर अब संदेह होने लगा है कि इस दबाव के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी समय पलटवार का आदेश दे सकते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीजफायर भी एक मजाक सा लगता है और इसी कारण जब उनसे पूछा गया कि सीजफायर पर उनकी परिभाषा क्या है, क्योंकि कहने को तो सीजफायर है लेकिन कभी अमेरिका वार कर रहा है ईरान पर दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप पर, तो कभी ईरान पलटवार कर रहा है कभी बहरेन पर तो कभी कुवैत पर और लोगों की जान जा रही है, तो उनकी परिभाषा क्या है सीजफायर की, तो उनका जरा हास्यास्पद सा बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीजफायर ही समझा जाता है। ट्रंप का ये बयान क्या था और उनका अंदाज क्या था, आप सुनिए।
4: How do you define ceasefire?
5: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
4: How do you define ceasefire?
5: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
0: तो दुनिया का अलग हिस्सा है और उस भाग में अगर आप थोड़ा संभल कर एक दूसरे पर गोलीबारी करते हैं तो उसे सीजफायर ही समझा जाता है। यह डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में उनकी सोच है। वैसे इस बीच ईरान की जो नौसेना है और वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की जो नौसेना है, उसने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा भी किया है। उसने बकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये कहा कि एक गुप्त लोकेशन से ट्रैक करके उन्होंने एक मिसाइल दागी। और ये तस्वीर देखिए, ईरान का जो दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ही निशाना बनाया है जो एक युद्धपोत पर है और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था तो ईरान के लिए खतरा था। ईरान के मुताबिक ये ईरान के कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले का पलटवार है, जवाब है। ईरान के इस दावे को अभी अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सेंटकॉम ने सिरे से खारिज कर दिया है। उसने कहा कि ये जो वीडियो है ये झूठा है, ईरान झूठ बोल रहा है और किसी भी अमेरिकी युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ईरान का दावा ये है कि उसने बकायदा अमेरिका की नेवी के एक युद्धपोत को देखा, ट्रैक किया।

0: तो सोचिए, कहने को तो इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस सीज फायर के बीचों बीच और क्या हो रहा है। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन दोनों पर एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और बड़ा हमला किया। कल सवेरे उसने कुवैत और बहरीन को मिसाइल और ड्रोन दोनों से निशाना बनाया, और इस दौरान उसके हमले की चपेट में कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 भी आ गया। खबर यह है कि इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, 63 लोग इसमें घायल हुए। घायलों में एयरपोर्ट का स्टाफ भी है, कुछ पैसेंजर भी हैं जो समय एयरपोर्ट पे थे, कुछ यात्री जो अपनी विमान यात्रा के लिए वहां पहुंचे थे, उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुवैत के रक्षा मंत्री ने इसे ईरान का एक जघन्य युद्ध अपराध बताया है। अब मैं आपको ये जरा इसको बड़े स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस समय फंक्शनल एयरपोर्ट था। आप सोचिए, वहां पर कई लोग, कई यात्री आ गए थे क्योंकि उनको एक उड़ान लेनी थी, और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1, ये हम आपको बाहर से एक तस्वीर जो एक कैमरे पे कैद हुई है वो दिखा रहे हैं। ऐसे समय में ये देखिए, ये एक लॉयटरिंग म्यूनिशन आता है, जोर से वार करता है, कुछ गाड़ियां वहां से निकलने का प्रयास करती है, और कई लोग एयरपोर्ट के अंदर घायल भी हो गए। इसका जो अंदर का वीडियो है वो तो और भी खौफनाक है। उस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये अंदर का वीडियो है कि लोग चल रहे हैं, नॉर्मल बिल्कुल चल रहे हैं, और एकाएक एक जोर से आकर मिसाइल वहां पर गिरती है या रॉकेट आकर गिरता है। और खबर यह था कि जो पहला वीडियो आपने ये देखा, ये देखिए एक कामिकाजी ड्रोन है ये, जो आके बड़े तेजी से वहां पर गिरता है, और उससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है, आग लग जाती है, और वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, उनके रक्षा मंत्री कई। देखिए, ये पहला वीडियो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ईरान का ये सुइसाइड ड्रोन अटैक था कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर। आप यहां पर अपनी कोने में अगर जरा ध्यान से देखेगा तो यहां से आपको बड़े तेजी से एक ड्रोन आकर वहां गिरता हुआ नजर भी आएगा, और ये हथियारों से लदा कामिकाजी यानी सुइसाइड ड्रोन होता है, और ये बड़ी तेजी से आकर वहां गिरता है। वो देखिए, वो तेजी से आकर गिरा और जबरदस्त उसमें विस्फोट हुआ। अंदर का भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और इससे दूसरी एंगल का ये वीडियो जो है, इसमें आसमान से आके टर्मिनल की छत से टकराता हुआ ड्रोन अंदर गिर जाता है, और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है। ये हम आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं, बहुत जोरदार वहां पर धमाका होता है और भीषण आग लग जाती है, और काला धुआं कई घंटों तक उठता रहा। बाहर से जो हिस्सा हमले का शिकार हुआ, अब हम आपको यही हिस्सा अंदर से जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग टर्मिनल बिल्डिंग में चल रहे थे, और एकाएक ये वहां पर अटैक हुआ। ये जो तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां तो वहां से निकली, लेकिन अंदर काफी नुकसान हुआ। पार्किंग लॉट के बाहर का यह वीडियो है, पैसेंजर टर्मिनल पे हुए हमले के बाद उठता धुआं आप देख सकते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा जो काफी दूर लगा था वो भी कंपन से हिल गया, और इसी दौरान वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी, कुछ में आग लग गई, और एक गाड़ी वहां तेजी से निकलने में सफल हुई। और ये देखिए, ये लोग एयरपोर्ट पर उस समय टहल रहे हैं, सुरक्षा कर्मी यहां पर खड़े हुए हैं, ये देखिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी वहां पर है, कुछ पैसेंजर्स चल रहे हैं, और इसी में एक भारतीय शख्स की यहां पर मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान पर वॉर क्राइम का आरोप कुवैत ने लगाया है। ऐसा ही एक हमला बहरीन में भी हुआ है, लेकिन कुवैत का कहना यह है कि उसने कम से कम 15 रॉकेट मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन एक जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया वही है जो अंदर आकर यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग में लगा। और ये जो खौफनाक मंजर है, ये आप टर्मिनल 1 में देख सकते हैं, पैसेंजर लॉबी का ये वीडियो है। छत पे ड्रोन आके टकराया, जोरदार धमाका हुआ, तबाही साफ नजर आ रही है। अब कुवैत का कहना है कि ये अपराध मंजूर नहीं है, ईरान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह तो जंग है ही, अब एक सोशल मीडिया पर अलग जंग छिड़ गई है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को सबक सिखाने की बकायदा धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने उनके जो सहयोगी हैं वो सोशल मीडिया पर अटैक कर रहे हैं ईरान पर, तो दूसरी तरफ ईरान की संसद की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके चीफ इब्राहिम अजीजी हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी ने एक पोस्ट किया जिसमें रेत की घड़ी वो टाइमर आप देख सकते हैं वो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वक्त तेजी से निकल रहा है। ईरान के लिए इसमें एक चेतावनी छिपी हुई है कि इस वक्त रहते ईरान सुलह कर ले वरना वक्त निकल जाएगा और ईरान को फिर मजा चखाया जाएगा। लेकिन इसके जवाब में ईरान के एक बड़े नेता इब्राहिम अजीजी ने कह दिया कि उन्हें पोस्ट के जवाब में खैबर शिकन नाम की जो उनकी खतरनाक मिसाइल है उसकी उन्होंने तस्वीर डाल दी। वीडियो के साथ उन्होंने ये लिखा, देखते जाओ आगे क्या होता है। जो खैबर शिकन मिसाइल है ना, ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, यानी बहुत जल्दी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग 1450 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर दूर ये वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और बैठे बैठे मध्य पूर्व में, पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं, चाहे वो इराक में हो या कुवैत में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो या सऊदी अरेबिया में या कतर में, कहीं भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से वो B-2 बॉम्बर्स के जो बमवर्षक विमान है उसका वीडियो पोस्ट करके धमकाया गया था, तो तब भी ईरान ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया था कि अगर आप बम वर्षा करेंगे तो मिसाइल की वर्षा ईरान की तरफ से भी होगी। यानी अमेरिका का अगर वार होता है सोशल मीडिया पर भी, तो ईरान का जबरदस्त पलटवार होता है। ईरान के जो सुरक्षा प्रमुख हैं खतरनाक मिसाइलों का वीडियो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि धमकी मत दो, हमारी मिसाइलें तैयार हैं, जो भी होगा हम देख लेंगे। और इस बीच वॉशिंगटन डीसी, हम आपको एक और बात बताते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरह से उनकी संसद में विद्रोह हो रहा है। संसद में डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध लड़ने के अधिकार पर ताला लगाने की का प्रयास हो रहा है। हालांकि यह सांकेतिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की संसद में जो प्रस्ताव पास कर दिया गया है उसमें ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके भी 4 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
1: ये तस्वीर अमेरिकी संसद में कल हुई वोटिंग की है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 215 वोट और पक्ष में 208 वोट। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप पर लगाम लगाने के लिए 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वोट किया। बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान से युद्ध लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए हैं? क्या अमेरिकी संसद ने आधी रात को बड़ा खेल करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध वाले वीटो और पावर पर ताला लगा दिया है? जी हां, ईरान के साथ चल रही भीषण जंग के बीच वॉशिंगटन से जो खबर आई है उसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। बिना संसद की मंजूरी के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया है। 215 बनाम 208 वोटों से पास हुए इस प्रस्ताव का सीधा मतलब है कि अब ट्रंप अपनी मर्जी से ईरान पर आगे हमले नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी संसद ने ट्रंप के युद्ध अधिकार पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ट्रंप को रोकना क्या इतना आसान है? नहीं, ट्रंप के पास वीटो पावर है जिससे वो इस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर सकते हैं और इसे एक झटके में कूड़ेदान में डाल सकते हैं। अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो संसद के पास उन्हें झुकाने का एक ही तरीका है। अभी ट्रंप के खिलाफ 215 वोट पड़े हैं, दोबारा इसी प्रस्ताव को जबरन लागू कराने के लिए 290 से ज्यादा यानी 2/3 वोट चाहिए। वैसे ट्रंप भी जानते हैं कि अमेरिका में युद्ध को पसंद नहीं किया जा रहा है, लोग महंगाई से परेशान हैं, इसीलिए वो मीडिया में ईरान से सुलह की बातें कर रहे हैं।
2: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
3: Mr. President,
2: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। उसने दो टूक कह दिया है कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस हफ्ते ईरान से कोई समझौता करेंगे या संसद के प्रस्ताव पर वीटो लगाकर ईरान में कोई बड़ा धमाका। आज तक ब्यूरो।
0: और चलते चलते मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं कि आखिर यह बात अटकी कहां हुई है, अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है। शनिवार या रविवार तक एक बड़ी खबर आ सकती है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप की तीन शर्तें हैं और इन्हीं पर पेच फंसा हुआ है। पहली शर्त, हॉर्मूज को सबसे पहले बिना शर्त खोल दिया जाए, कोई पैसा ना लिया जाए, ये पहली शर्त है। ईरान संवर्धित यूरेनियम को या तो खुद नष्ट कर दे 450 किलोग्राम जो है, या फिर अमेरिका उसे नष्ट कर दे, या अमेरिका को वो दे दे, या IAEA उसे देख ले। तीसरी शर्त, परमाणु कार्यक्रम पर हमेशा नहीं तो लंबे समय के लिए, 15 साल 20 साल लंबे समय के लिए पूरी तरह से पाबंदी लग जाए, ताकि केवल शांतिपूर्वक काम चले जैसा ईरान चाहता है। ट्रंप की मांगों पर ईरान ने भी पलटवार किया है और अपना रुख साफ किया है। ईरान का क्या कहना है, ईरान मिसाइल परमाणु ताकत अपनी काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ईरान लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम चाहता है, यानी इज़राइल नहीं वार करेगा हिजबुल्ला पर। ईरान की तीसरी मांग पर जो है कि जो आर्थिक प्रतिबंध उन पर लगे हैं वो पाबंदियां हटे, फ्रीज की हुई जो उनके $27 बिलियन है वो पैसा उन्हें तुरंत लौटाया जाए और फिर बाकी मुद्दों पर बातचीत हो। यहीं पर ये पेच आकर अटक गया है। क्या शनिवार या रविवार तक इसका समाधान निकलेगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। लेकिन रणभूमि में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach, in association with
4: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo,
3: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty.
7: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
12: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
11: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
10: They score!
11: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: कराची में आतंक का कंट्रोल रूम। दाऊद के हाथ में था रिमोट कंट्रोल। चार हैंडलर, 9 आतंकी और 5 शहर। दाऊद के आतंकियों का कबूलनामा। एक बार फिर कराची के क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस एक्टिव हो चुका है, मतलब साफ है कि आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी फिर से सक्रिय हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसकी साजिश दिल्ली और मुंबई में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दाऊद के टेरर मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर सबसे पहले कुख्यात शूटर विजय डॉन को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक और आरोपी को दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों सीधे पाकिस्तान में बैठे दाऊद के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर रहा विजय शूटर। जांच आगे बढ़ी तो मुजाफा और यावर खान के नाम भी सामने आए। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल और कई वाइटल इंस्टॉलेशन। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली और मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी के वीडियो बरामद हुए हैं। इसमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और कई बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। दिल्ली की कई रणनीतिक लोकेशनों के वीडियो बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि मुन्ना झिंगाड़ा ने उन्हें आतंकी हमले के लिए भर्ती किया था। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से वो चैट मिली है जिसमें मुन्ना झिंगाड़ा से लेन देन की बात हो रही है।
1: माशा अल्लाह करके आना काम, नेपाल के रास्ते तुम्हें वापस दुबई बुला लेंगे।
2: बड़े साहब ड्रग्स दो, पहले हमें 20 लाख रुपए चाहिए।

0: दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश। 21 लोगों की मौत के बाद होटलों में एनओसी की जांच शुरू। गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों का दाह संस्कार। बिहार के मुजफ्फरपुर में लपटों में घिरा अस्पताल, अब तक 5 लोगों की मौत। मरीजों को छोड़ भागे कर्मचारी। आरजेडी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत की खामोशी पर उठाए सवाल। ममता को झटके पे झटका, अब विधाननगर की टीएमसी मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा, तो कोलकाता में एक तृणमूल पार्षद की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी। मानसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार, सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबर। बिल के नए मसौदे का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, भीषण आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, जगह जगह होल्डिंग और पेड़ गिरने से भारी नुकसान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर होगा। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर हम दंगल करेंगे, क्योंकि आज देश के दर्शकों और बंगाल के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव नतीजों में मिली हार के बाद क्या बंगाल में ममता बनर्जी के पास पार्टी भी बचेगी या नहीं, क्योंकि पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत हो चुकी है। 80 में से करीब 60 विधायक बगावत कर चुके हैं, अपना अलग नेता विपक्ष और चीफ व्हिप चुन चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक की मुखालकत कर रही है। पिछले 48 घंटे में पार्टी ने सिर्फ एक फैसला किया है कि सभी कमेटियां भंग कर दी गई है। टीएमसी का रुख है कि कथित तौर पर बागी गुट, जिस ऋतव्रत और संदीपन को नेता विपक्ष और उपनेता चुन रहे हैं, वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं और इसीलिए उनकी मान्यता नहीं हो सकती। और बाकी विधायकों का जो समर्थन है वो तरह तरह के दबावों के कारण भले ऋतव्रत के साथ दिख रहा हो, लेकिन टीएमसी में ममता के नेतृत्व के खिलाफ अभी तक कोई भी चैलेंज नहीं है। पार्टी अपनी बात कह रही है, लेकिन दुनिया को राइटिंग ऑन द वॉल साफ नजर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी का हाल हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाल हुआ, ठीक उसी तर्ज पर अब तृणमूल कांग्रेस की सियासत भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला फिलहाल अदालत तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी विधायक दल में ही बगावत हुई है। सांसदों की ओर से यह सुगबुगाहट चल रही है कि जैसे काकोली घोष ने पार्टी छोड़ने के बाद से ही अभी और खबर नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत की आग संसदीय दल तक पहुंचती है, तो जरूर टीएमसी के लिए अदालत और चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाना मजबूरी हो जाएगा। बंगाल में आगे क्या होने वाला है? ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाएंगी या भतीजा? टीएमसी को कांग्रेस जो ऑफर दे रही है, उसके पीछे की सियासत आखिरकार क्या है? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: तो इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त भी आ रही है कि बंगाल में टीएमसी के अंदर बड़ी टूट का दावा किया गया है। जो माना जा रहा था, बंगाल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय का बयान आ चुका है। उनका यह कहना है कि बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में इससे पहले ही 80 में से 60 विधायकों ने, जो अभिषेक बैनर्जी ने जिन्हें चुना था, उन्हें नेता विपक्ष न मानने का फैसला लिया। और अब सुखेंदु राय, बंगाल में टीएमसी के जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी फूट हो चुकी है।
1: पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत, चीफ विप दो हैं। ममता के चीफ विप फरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ विप अकरुज्जमा, उपनेता विपक्ष 6 हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी, बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा। मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी।
2: इस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया तो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया, तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना।
1: दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई। आरोप है कि इसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए, जिसकी सीआईडी जांच चल रही है। अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अलग गुट को दलबदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है। बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं, तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं। और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है।
3: Hitherto associated with the Trinamool suddenly went to join the BJP, and most of them are not people we consider as worthwhile additions to the political culture. I think many of them are tainted, many of them are people who are responsible for the syndicate raj, etc. So Shoemaker's quite rightly pointed out that the, you know, we are not going to take anyone.
4: मैं तो ये सर दावा करूंगा कि बंगाल में जितने आम कार्यकर्ता है दूसरे सारे पार्टियों के, खासकर सत्तारूढ़, खासकर टीएमसी पार्टी, उन सबको मैं जरूर यह सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अगर कुछ करना है तो सब कांग्रेस में शामिल हो जाइए, कांग्रेस आपके लोग स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया, अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए। कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया। बंगाल में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी। बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी। बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है। वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से। इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं। हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया। ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: तो अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि यह बात तो साफ है कि दो गुट सामने आकर यह कह रहे हैं कि हम ही असली नेता है तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के भीतर। लेकिन रास्ता वही नजर आ रहा है जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ। तृणमूल कांग्रेस भी उसी रास्ते पर जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या राजनीति है इसके पीछे, कब तक ये चलता रहेगा? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन पूर्व सांसद है राज्यसभा के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे और अभी तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की तरफ से इसमें अपनी भूमिका रखेंगी और प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार है कोलकाता से इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं हमारे पैनल के सामने हमेशा की तरह रखूंगा। पहला सवाल, अभिषेक के खिलाफ बगावत के बाद ममता टीएमसी क्या बचा पाएंगी? क्योंकि बगावत करने वाले कह रहे हैं कि हमारी बगावत तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, ममता के खिलाफ नहीं है। ममता अभी भी हमारी नेता है, तो क्या पार्टी बचा पाएंगी ममता बैनर्जी? पार्टी से निकाले जा चुके ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है क्या? क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर कह रहे हैं कि वही नेता विपक्ष है, जबकि टीएमसी कह रही है उन्हें तो पार्टी से निकाल दिया था, कैसे उन्हें आप नेता विपक्ष चुन सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या विधायक दल में बड़ी टूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी टूट का खतरा बढ़ गया है? क्योंकि परिसीमन विधेयक एक बार फिर सरकार सोच रही है कि इस मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस करेगी। बहरहाल इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता से, विधायक दल के फूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी दरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर शेख राय ने पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। सुखेंद्र शेखर राय यह कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक दल के बाद अब पार्लियामेंट्री पार्टी में भी फूट पड़ सकती है, संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यह तो दिखाई दे रहा था कि विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी तक खुलकर लोग सामने भी नहीं आ रहे, क्या खबर क्या है पहले?
5: बिल्कुल साहिल, अभी तक जो नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सुखेंदु शेखर राय काफी एक्सपीरियंस सीजनड कैंपेनर माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में, इतने साल के सांसद है। वो अब ये कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे पार्टी के साथ है ही नहीं, हालांकि ऑफिशियली वो अभी भी राज्यसभा के सांसद है, और वो कह रहे हैं कि वो अपना रुख कुछ दिनों में साफ कर देंगे, क्या वो पार्टी से रिजाइन करेंगे, क्या वो अपने पद से रिजाइन कर देंगे राज्यसभा से। लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ अगले कुछ दिनों में उनका ये कहना है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में जो सांसद है उनमें भी दरार दिखने को मिल सकता है और वो पार्टी से निकल सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला अब देखने को मिला था पश्चिम बंगाल विधानसभा में, वही फॉर्मूला का रेप्लिकेशन अब लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है।
0: तो सांसद है बहुत बड़ा राज्यसभा, तृणमूल कांग्रेस के 24 उसमें से लोकसभा में और 18 राज्यसभा के भीतर है। किस तरीके की टूट नजर आ रही है, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस?
5: देखिए, सुखेंदु दा का माने तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में राज्यसभा लोकसभा मिला के सांसद निकल सकते हैं पार्टी से, और अगर वो निकल जाएं तो वो क्या करेंगे, क्या वो अलग से इन विधायकों के साथ जुड़ के इलेक्शन कमीशन में ये मांग करेंगे कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है, क्या उस तरफ बढ़ रही है खेल? कहीं ना कहीं इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो नेक्स्ट मूव है वो लीगल मूव हो सकता है। वो ये चाह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिशियली बता दे पश्चिम बंगाल विधानसभा से कि किस नीति के तहत, किस लीगल प्रोविजन के तहत उन्होंने ऋतव्रत बैनर्जी को LOP के जो पद है उस पद पे उन्होंने नॉमिनेट किया है। क्योंकि ऋतव्रत बैनर्जी को एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस से, वो तृणमूल में है ही नहीं। तो अगर वो है नहीं तृणमूल में तो वो कैसे 58 लोगों का सिग्नेचर लेके ये क्लेम कर सकते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का LOP बनेगा?
0: क्या स्पीकर के तरफ से लेके तृणमूल कांग्रेस ऑर्डर दिया गया है, जो इस पे फैसला दिया गया है, क्या उसकी कॉपी अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है क्या? क्योंकि आमतौर पर विधानसभा के स्पीकर जो भी फैसला देते हैं ऐसे मामलों में उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, पब्लिक किया जाता है, कहा जाता है कि हम ये कारण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर का इस पर रूलिंग भी आ चुका है। तो क्या कारण है कि ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता मान लिया गया है, सिर्फ विधायकों की बहुसंख्या के नाम पर ही उनको नेता चुना गया है ये कह रहे हैं स्पीकर का ऑफिस?
5: देखिए अभी तक स्पीकर से कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है। रतिंद्र बोस स्पीकर वो दिल्ली में थे एक दिन के लिए, महज एक दिन के लिए, कल वो कोलकाता आए थे और पूरा जो ड्रामा हमने देखा विधानसभा में, और फिर आज वो दिल्ली चले गए हैं। अभी तक औपचारिक तौर पे स्पीकर के ऑफिस से कुछ भी बताया नहीं गया है। ऋतुव्रत बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये दावा किया कि स्पीकर ने उनको मान लिया है,
0: मान लिया है, क्योंकि उनको दफ्तर की भी चाबी दे दी गई है कि आप वहां पर बैठ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस की। नजर बनाए रखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली वो शायद अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, एक महीना हुआ है सिर्फ, अब तो सिर्फ विधायक दल में फूट थी, अब तो संसदीय दल की भी बात हो रही है।
6: नहीं नहीं देखिए ये जो विधायक दल की जो फूट है उसकी आप जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि असली चेहरा कौन है, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, इस मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने लेटर दिया था कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन सोमन देव चट्टोपाध्याय है, 15 मई को जब भाषण हुआ तब भी वो थे सभा के अंदर, और अचानक से एक दिन में सुबह लेटर जमा होता है और 4 बजे उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है ऋतुव्रत बनर्जी। तो इसमें तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है इसके अंदर में, उनके बिना ये हो ही नहीं सकता। जब दो पार्टी अगर आपके चैनल आपके पास आ रही है तो आपके पास और भी रास्ते थे, आप डिस्कस करते, आप एक लेटर लिखते चेयरपर्सन को पार्टी की, क्योंकि मुद्दा एक पार्टी का है, लोकतंत्र में क्या है
0: उसकी जो नीटिग्रिटीज है, टेक्निकलिटीज है, कानूनी बातें हैं। स्वयं प्रकाश जी उस पर मैं जाऊंगा क्योंकि उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र में भी हमने इस बात को देखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है, देखिए जो मुझे पॉलिटिकली समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अब विधायक ये कह रहे हैं कि जब तक ममता बनर्जी जीत रही थी वो जो बोल रही थी हम आंख बंद करके उसको मान रहे थे, लेकिन अब वो हार चुकी है, अब वो अपनी मनमानी पार्टी के भीतर नहीं कर सकती, अब जो हम बोलेंगे वो भी उनको ध्यान में लेना होगा, वो भी उनको मानना होगा, हमारी राय भी कहीं ना कहीं पूछनी होगी। अभिषेक बनर्जी का डिक्टेट पार्टी के भीतर नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं विधायक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं।
6: सुनिए ना, ऋतुव्रत बनर्जी जब वामपंथी शासन में थे ना तब भी ममता बनर्जी वैसे मानसिकता के लोगों से लड़ी थी, और आज वो जिस टोन में और जिस भाषा में बोल रहे हैं ना उनके अंदर का वही वामपंथ जाग गया है, वो उसी भाषा में बोल रहे हैं कि आप हमारे एडवाइजर बन जाइए। ममता बनर्जी को आप एडवाइजर सोच रहे हैं, 1984 से जिसने जीवन जिया है, संघर्ष का जीवन जिया है, बहुत बार ऐसा हुआ है ममता बनर्जी नहीं रही, 1979 में ममता बनर्जी हारी थी, 91 में दोबारा जीती थी लोकसभा।

0: डॉक्टर शांतनु सेन अभी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन हम वही आदमी है जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी 2023 एंड 2024 में जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हिमालयन करप्शन हुआ था, उस सब का दस्तखत लेके, सबका डॉक्यूमेंट लेके हमने नवान्नों में और हेल्थ डिपार्टमेंट में दिया था, चीफ मिनिस्टर को, दिदेन चीफ मिनिस्टर को हमने दिया था। जब अवैया इंसिडेंट हुआ था, तब मैंने और मेरा बीवी जो अभी फिलहाल सिटिंग काउंसिलर है कलकत्ता कॉरपोरेशन का, जो एक डॉक्टर है, हम लोगों ने आवाज उठाए थे,
1: आपके
0: लेकिन
1: जैसे कई लोग हैं जो पहले भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन
0: लेकिन मेरे को
1: अभी
0: बोलने,
1: अभी जो
0: लेकिन
1: लाइन
0: मेरे एक
1: लगी
0: मिनट,
1: हुई है।
0: मेरे को खत्म करने दीजिए प्लीज। लेकिन हुआ क्या,
1: जी
0: हम जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट दिया उसको प्राइज पोस्टिंग कर दिया गया और मेरे को वहां से निकाल दिया गया। हम आवाज उठाया, सच बोला बोल के हमको सस्पेंड कर दिया गया 14 महीना के लिए। और सबसे बड़ा बात है, जो मेरा ओनली डॉटर है, जो उस टाइम वहां पर मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी, उसको उसका जिंदगी मिजरेबल कर दिया गया। और फाइनली मेरे को डराया गया, अगर तुम इसके बाद भी ज्यादा कुछ बोलोगे तो हम लोग देख लेंगे तुम्हारा डॉटर कैसे डॉक्टर बन पाए। तो आफ्टर ऑल आई एम ए फादर फर्स्ट, इसलिए मेरा डॉटर का करियर के बारे में सोच के फाइनली मेरे को चुप रहना पड़ा। लेकिन ऐसा सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं, बहुत सारे जगह में ऐसा है, जो करप्शन का खिलाफ बात उठाया, डॉक्यूमेंट लेके सबमिट किया, बोला कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई तो दूर की बात, जो लोग करप्ट था उनको प्राइज पोस्टिंग दिया गया और जो लोग को करप्शन के बारे में बात किया उनको
1: नहीं तो जो
0: पनिशमेंट
1: अभी
0: दे
1: जो
0: दिया
1: दिख
0: गया।
1: रहे हैं शांतनु जी, जो अभी
0: हाँ
1: दिख
0: बोलिए।
1: रहे हैं,
0: तो
1: 80 में से
0: या
1: 60
0: आपके
1: लोग जो
0: विषय का
1: दिखाई दे
0: जवाब
1: रहे हैं,
0: नहीं दे
1: वो
0: रही
1: कौन
0: है,
1: है? वो कौन
0: वही
1: है?
0: लोग
1: एक
0: है,
1: मिनट, ये लोग
0: वो
1: कौन
0: वही
1: है?
0: है, वो तृणमूल से जीता हुआ एमएलए है, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में नंबर मैटर्स। हमको नहीं लग रहा है कि वो लोग अब तक जो किया है, कल परसों से लेकर आज तक जो किया है, वो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर मान के किया है। ऐसा नहीं है कि किसी और का साइन, एक्स का साइन वाई कर दिया, राम का साइन ने रहीम साम कर दिया, ऐसा तो नहीं है। पर हमने सोशल मीडिया में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है, वो लोग फिजिकली जाके पेपर सबमिट किया स्पीकर के सामने। इसके बाद स्पीकर अगर इसको
1: क्या
0: सही
1: आपको
0: समझे
1: लगता है
0: तो
1: कि
0: ये
1: अब
0: स्पीकर
1: पार्टी
0: का
1: खत्म
0: पार्टी
1: हो जाएगी चुनाव में हार के बाद? शांतनु जी, आपको लग रहा है कि पार्टी खत्म हो रही है? अभी पूरी तरीके से
0: मेरा कहना
1: नेस्तनाबूत हो जाएगी एक तरीके से।
0: मेरा मेरा कहना यह है, जो 6 साल 6 महीना 1 साल में होना था, जबरदस्ती ये बोलने के लिए कि हमने हारा नहीं है, हमने ये हार को मानता नहीं है, हम रेजिग्नेशन दे नहीं देंगे, ये सब कहने के लिए, और पिछले जो करप्शन है, करप्शन का सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करके जो लोग करप्ट था उनको और भी प्राइज पोस्टिंग देने के लिए, इसका नतीजा ऐसा हो गया कि जो 6 महीने में गिरने वाला था
1: स्वयं
0: वो एक
1: प्रकाश
0: महीना
1: जी,
0: में गिर रहा है।
1: गलत लोगों
0: नहीं,
1: को
0: नहीं।
1: सेलेक्ट करने के वजह से दीदी को इस बगावत का सामना करना पड़ रहा है। जो ऋतव्रत बनर्जी
0: देखिए,
1: आज नेता विपक्ष वहां पर बने हुए हैं, सीपीएम के खिलाफ बगावत करके आपके पार्टी में आए थे, आपने पार्टी में उनको प्राइम पोस्टिंग दी। शांतनु सेन क्या कह रहे हैं सुन लीजिएगा आप, और उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। वही अगुवाई कर
0: देखिए,
1: रहे हैं आपके बगावतखोरों की, और कह रहे हैं कि दीदी
0: नहीं,
1: को आप चीफ एडवाइजर बना दीजिएगा, मार्गदर्शक मंडल में भेज दीजिएगा, पार्टी
0: देखिए
1: पर
0: शांतनु
1: कब्जा
0: सेन
1: करने की
0: ने,
1: पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वयं प्रकाश जी,
0: तो सुनिए ना, पिछले 3 मिनट में शांतनु दया ने जो भी बात कही, शांतनु दया ने, उन्होंने एक बार भी अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया। देखिए दिलचस्प है ना, दिलचस्प है, किसी को अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, तो इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, ये ऐसे शब्द है ना, ये बहुत बहुत धैर्य रखना पड़ता है इसके अंदर में। जब आदमी का व्यक्तिगत आघात होता है ना, इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे ऊपर व्यक्तिगत कुछ हुआ, अब इनकी व्यक्तिगत वहां के स्थानीय किसी नेता से लड़ाई है, वो पॉलिटिकल 1:1 दो नेताओं की लड़ाई है। हर नेता की, एक माँ का क्या रोल होता है, घर में अगर दो बच्चे लड़ते हैं तो दो बच्चों के बहला फुसला के उन्हें शांत किया जाता है। ममता बनर्जी भी वही करती थी कि चलो बुला, मगर अब इनका राज्यसभा दोबारा इनको नहीं भेजा गया, इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, ऋतुव्रत बनर्जी को भी राज्यसभा से विधानसभा लड़वा दिया गया। राज्यसभा लड़े वो विधानसभा से, तो उन सॉरी
1: मतलब आप
0: विधानसभा लड़े
1: ऋतव्रत बनर्जी
0: राज्यसभा
1: को
0: से।
1: राज्यसभा भेज चुके हैं, लेकिन शांतनु
0: हाँ वो तो कहे
1: सेन
0: है ना,
1: जिन्होंने आवाज उठाई आरजी कार विक्टिम के लिए, उन्हें आपने राज्यसभा से हटा दिया। इसी का तो नतीजा
0: नहीं नहीं
1: भुगतना
0: वो
1: पड़ रहा है ना?
0: पहले,
1: स्वयं प्रकाश जी, शांतनु जी
0: नहीं
1: आपको
0: नहीं नहीं
1: जवाब
0: नहीं
1: देना
0: नहीं
1: चाह रहे हैं,
0: नहीं
1: एक मिनट,
0: शांतनु
1: प्रीतम जी
0: सेन
1: को
0: को
1: जवाब
0: पहले ही
1: देना चाह रहे
0: एक्सपेल
1: हैं।
0: कर दिया गया था, राज्यसभा चुनाव के पहले ही एक्सपेल कर दिया गया था। इन्होंने देखिए, पार्टी की एक
1: शांतनु
0: अंदरूनी
1: जी
0: डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर वो देखिए, एक कमेटी बात
1: किसी के
0: मेरे को
1: खिलाफ
0: बोलने
1: एक्शन
0: दीजिए,
1: लेती
0: मेरे
1: है,
0: को मेहरबानी
1: एक
0: करके
1: मिनट स्वयं
0: बोलने
1: प्रकाश जी,
0: दीजिए।
1: जरा उनको जवाब देने दीजिएगा। शांतनु जी जवाब दीजिएगा।
0: सैम प्रकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा छोटे भाई है, उसका साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है।

0: वो बहुत अच्छा बोलता भी है, लेकिन हम स्वयं प्रकाश जी को ये बोलना चाहूंगा कि उस टाइम ममता बनर्जी अगर ये कोशिश, आप बोला ना कि आपस में लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, तो ममता बनर्जी और पार्टी का लीडरशिप का यह ड्यूटी था कि दोनों को बिठाया के मिल मीट कर दे, वो नहीं किया। और जहां तक अर्जीकर का सवाल है, ये जानिए, आप पूछिए गौतम सन्नल जी को, पूछिए नारायण स्वरूप निगम को, पूछिए, उस टाइम हमने कोई भी पेपर कोई भी जर्नलिस्ट को नहीं दिया था, हमने पूरा डॉक्यूमेंट लेके गौतम सन्नल जी को जाके 99 में दिया, जो ममता बनर्जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, हमने
1: ठीक
0: नारायण
1: है
0: स्वरूप
1: शांतनु जी,
0: निगम
1: जो
0: को
1: बात
0: दिया।
1: हो गई वो बीत गई, जरा अभी के राजनीति पर आते हैं शांतनु जी। मुझे यह पूछना है कि जो विधायक आज बगावत कर रहे हैं, क्या सचमुच में वो तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, या धीरे धीरे खिसक के भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल होना चाहते हैं?
0: फिलहाल तो ये हम देख रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है, ये लोग, ये तो आपको मानना पड़ेगा, व्हाट एवर माइट बी द वे, बट दे आर एबल टू कलेक्ट 60 MLA विद देम, 80 MLA के अंदर 60 MLA को इकट्ठा कर लिया गया, और ये आपको तो मानना पड़ेगा।
1: क्या
0: ममता
1: आपको
0: बनर्जी
1: लगता है कि
0: जिसका,
1: पार्टी के भीतर इतना गुस्सा
0: एक
1: था
0: मिनट एक
1: कि
0: मिनट
1: एक
0: एक
1: महीने के
0: मिनट एक
1: भीतर
0: मिनट
1: 60 विधायक इकट्ठा कर लिए? आप भी तो राजनीति
0: मेहरबानी,
1: इतने साल से देख रहे हैं शांतनु जी, आपको लगता है इतना आसान है एक महीने के भीतर 60 विधायक एक साथ आ जाए और बगावत कर दे
0: आप
1: चुनाव के
0: मेहरबानी
1: नतीजे
0: करके
1: आने के
0: मेरे
1: बाद?
0: को, आप मेरे को बोलने दीजिए, मेहरबानी
1: तो
0: करके।
1: पूछने
0: हम
1: क्या, ये
0: लोग
1: लोग
0: जो
1: पहले
0: ममता
1: से तैयार। मैं भी सवाल
0: बनर्जी
1: पूछूंगा ना आपसे। नहीं सर, सवाल भी तो पूछूंगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं भी तो सवाल
0: हंड्रेड
1: पूछूंगा
0: परसेंट
1: ना,
0: हंड्रेड
1: मैं भी आज की पॉलिटिक्स पर बात कर रहा हूं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। ठीक है
0: नहीं,
1: स्वर
0: ठीक है,
1: प्रकाश जी,
0: आपका
1: जरा उनको
0: काम
1: बोलने
0: अपने
1: दे।
0: कर रहे हैं, हम एक ही बात बोल रहे हैं,
1: जी
0: हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, ममता बनर्जी जिसना जिसका एक बुलावे पर लाखों लाखों लोग रास्ता में उतर जाते थे, ममता बनर्जी का एक फोन के लिए सब इंतजार करते थे, वही ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रही है तो 80 के अंदर 17 MLA जा रहा है, वही ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रहा है तो 42 MPs के अंदर 3 MP जा रहा है, और आपका आंकड़ा थोड़ा गलत था, एक्चुअल आंकड़ा है हमारा 29 लोकसभा है, 13 राज्यसभा है, आप 24 और 18 बोला था
1: 29
0: वो ठीक
1: लोकसभा
0: नहीं
1: है।
0: है। हाँ, और ममता
1: हाँ
0: बनर्जी रास्ते में बैठ रहा है धरना में, उसमें सिर्फ 7 MLA है और 2 MP है, ये तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, ममता बनर्जी में रास्ता
1: ठीक
0: में
1: है,
0: आ गया मतलब वो रास्ता दूर दूर तक ब्लॉक हो जाता था, अभी इसका नतीजा ऐसा हो गया,
1: प्रेम शुक्ला
0: इसमें तो ये
1: जी,
0: मानना पड़ेगा।
1: ममता बनर्जी से लोग खफा, ये बात तो नजर आ रही है, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई दूर दूर से आपका कोई लेना देना है नहीं ना मतलब इससे? क्योंकि जब भी इतनी बड़े संख्या पर बगावत दिखती है तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि दूर से अदृश्य हाथ कुछ काम कर रहा है।
0: लेकिन अदृश्य हाथ के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे,
1: देखिए
0: लेकिन हमने ये
1: अब
0: देखा है कि
1: अदृश्य
0: पिछले एक
1: नहीं, प्रेम
0: महीने
1: शुक्ला जी से
0: अदृश्य
1: सवाल
0: हाथ
1: है।
0: को लोग तलाशते रहे, पिछले एक महीने में जिस
1: साहिल जी,
0: तरीके से
1: अदृश्य
0: नया
1: हाथ को
0: सरकार,
1: लोग जो है
0: नया चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र
1: माइक्रोस्कोप
0: मोदी जी
1: लेकर
0: का जो
1: तलाश
0: पिछले
1: सकते
0: समय
1: हैं, ये
0: काम कर
1: उनका
0: रहा है,
1: संवैधानिक अधिकार
0: हमको
1: है।
0: लग रहा है कि आने वाला
1: लेकिन
0: चीफ
1: मुद्दे
0: सर
1: की बात यह
0: है।
1: है कि सुश्री ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाती हैं, उसमें 20 विधायक जाते हैं। रित्रता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाते हैं, उसमें 60 विधायक जाते हैं। तो 60 विधायक अगर ममता बनर्जी के बुलाने पर नहीं जाते और रित्रता बनर्जी के बुलाने पर जाते हैं, तो संविधान के आलोक में विधायक दल का नेता किसको माना जाएगा? संविधान के आलोक में संसदीय नियमों के तहत विधायक दल का नेता तो वही होगा जिसको विधायक दल में बहुमत प्राप्त होगा। तो 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त व्यक्ति को संविधान के आलोक में विधायक दल का नेता माना जाए कि नहीं माना जाए, सवाल ये पैदा होता है। लोकतंत्र में प्रेम
0: बहुमत
1: शुक्ला जी,
0: का महत्व है कि नहीं है? लोकमत में बहुमत का महत्व
1: प्रेम
0: माना
1: शुक्ला
0: जाए,
1: जी,
0: समाप्त कर दिया जाए कि लोकमत में
1: नहीं
0: बहुमत
1: नहीं
0: का कोई
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: माना
0: नहीं
1: जाना
0: है,
1: चाहिए, लेकिन
0: जो
1: कुछ
0: एक तानाशाह
1: संवैधानिक
0: कहेगा वही
1: चीजों को
0: होगा।
1: नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेम शुक्ला जी, संवैधानिक चीजों को
0: क्या
1: नजरअंदाज नहीं
0: नजरअंदाज
1: किया
0: हो
1: जा
0: रहा है, क्या
1: सकता।
0: नजरअंदाज हो
1: आपको
0: रहा
1: तो
0: है,
1: सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट याद है,
0: नजरअंदाज क्या हो
1: आपको
0: रहा है,
1: याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। मैं
0: क्या
1: आपको जरा सुना देता हूं एक बार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का
0: हाँ
1: वर्डिक्ट इस
0: सुना
1: बारे में
0: दीजिए।
1: बड़ा क्लियर है कि स्पीकर को क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायक दल की ओर से। विधायक दल के बहुमत के आधार पर पार्टी के विधायक दल का नेता और व्हिप नहीं चुना जा सकता। 11 मई 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने आदेश में, अपने ऑर्डर में यह बात साफ लिखी हुई है। तो
2: तो मुझे ये समझने की कोशिश करनी है कि आपके जो स्पीकर है उन्होंने कैसे ये माना कि ऋतव्रत बैनर्जी की पार्टी असली राजनीतिक पार्टी है, जबकि पार्टी का असली कम्युनिकेशन पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की तरफ से किया गया था प्रेम शुक्ला जी, और वो पार्टी से एक्सपेल भी हो चुके हैं ऋतव्रत बैनर्जी।
1: उद्धव एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि विधायक दल का जिसके पास बहुमत होगा वो विधायक दल का नेता होगा, ये माना है कि नहीं माना है?
2: नहीं माना है।
1: एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता माना गया? माना गया।
2: नहीं माना है।
1: माना गया है?
2: नहीं माना है।
1: धनंजय चंद्रचूड़
2: आप जो कह रहे हैं उस आधार पर नहीं माना है?
1: यही माना है।
2: नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं उस आधार पर नहीं माना है। देखिए मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है सर, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ।
1: दिखाइए कोर्ट का ऑर्डर।
2: कोर्ट का ऑर्डर है, कंक्लूजन में कोर्ट का ऑर्डर है, कंक्लूजन में जो मैंने आपको पढ़कर बताया, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, जब पार्टी के विप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है न कि विधायक दल की ओर से, इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर करने का निर्देश भी राजनीतिक दल द्वारा ही दिया जा सकता है न कि विधायक दल की ओर से, और अगर स्पीकर को कॉन्फ्लिक्ट के स्थिति में, डिस्प्यूट के स्थिति में यह तय करना है कि कौन विधायक दल का नेता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि असली राजनीतिक पार्टी कौन है इन दो गुटों में से। यह कैसे तय हुआ कि ऋतव्रत बैनर्जी का गुट यह असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी है?
1: निर्वाचन आयोग ने तो स्पष्टता से कहा कि जो विधायक दल का नेता होगा,
2: ये देखिए हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं,
1: वही पार्टी होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टता से कहा कि चूंकि एकनाथ शिंदे के पास अधिक विधायकों का, जो दो तिहाई से अधिक हैं, उनका समर्थन है, और जो निर्वाचित विधायक हैं, निर्वाचित विधायकों को जो मिला वोट है उसके आधार पर ही दल तय होगा, ऐसे में एकनाथ शिंदे को उसने जो है शिवसेना का प्रमुख माना। यह निर्वाचन आयोग का निर्णय, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय ने,
2: हम स्पीकर की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अभी बात करिएगा, आम स्पीकर की बात कर रहे हैं,
1: सुनिए तो मेरी बात।
2: स्पीकर ने बाकायदा इस पूरे मामले पर सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने माना कि एकता छिंदे वाले गुट जो है वही असली राजनीतिक पार्टी है और इसी के आधार पर उनको विधायक दल का नेता माना गया था, लेकिन किसी भी तर्ज पर सिर्फ विधायकों की बहुसंख्या के आधार पर एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात साफ हो चुकी है, 11 मई 2023 का आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं। तो समझने की कोशिश यही है कि कल अगर अदालत में इस मामला अगर चैलेंज किया जाता है तो क्या सफाई दी जाएगी इस पूरे मामले पर?
1: हाँ तो जाए ना अदालत, नहीं वो स्पीकर तय करेगा, वो निर्णय स्पीकर लेगा, क्या स्पीकर को जवाब देना ये तय तो स्पीकर करेगा ना, और स्पीकर संविधान के आलोक में करेगा, और संविधान के आलोक में जो निर्णय होगा वही अदालत में स्वीकार होगा। तो संविधान के आलोक में क्या निर्णय लिया जाए
2: सदन में, फिर किसका विप चलेगा?
1: तय नहीं करेंगी
2: बीजेपी के हिसाब से किसका विप चलना
1: अभी
2: चाहिए?
1: तो फिलहाल जो है
2: ममता बनर्जी की पार्टी का या ऋतव्रत बनर्जी की पार्टी
1: का? बहुमत का चलना चाहिए। ऋतव्रत बनर्जी के पास 60 विधायकों का समर्थन है और विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी है, ऋतव्रत बनर्जी की बात चलनी चाहिए।
2: स्वयं प्रकाश पुरोहित,
1: भारतीय जनता पार्टी की राय है।
3: देखिए बहुत अच्छी बात है,
2: कह रही है कि हिसाब से ऋतव्रत बनर्जी को ही वो नेता विपक्ष मानेंगे।
3: नहीं नहीं, ऋतव्रत बनर्जी जो बात बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी और अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, उनकी बातों का कुछ टांगमू नहीं है। देखिए ऋतव्रत बनर्जी जो बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि वो अवैध रूप से बने हैं, इनलीगल तरीके से बने हैं। उनका जो ये नियुक्तिकरण भी हुआ वो भी अवैध है और इट्स सब्जेक्ट ये कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया जाएगा। इसके अंदर में ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोनों लेटर में साइन किए हैं, बहुत से लोगों को डराया धमकाया गया है, बहुत से लोगों के केसेस हैं, उनके ऊपर उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मुद्दा है अभिषेक बनर्जी की वजह से वो लोग जा रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय लीजिए प्रेम जी। 2011 में
1: अभिषेक बनर्जी ने की,
3: रुक जाओ ना भाई, अरे अरे सुन लो ना भाई,
1: और इसलिए क्रिमिनल केस होगा।
3: अजीत पवार
1: ने एक और क्राइम कर दिया है।
3: अरे भाई मेरे सुन लो ना, अभिषेक बनर्जी 2011 में जब
1: जी का और जुड़ा,
3: अरे आपने भाग मुकुल भाग भी कहा था, आपने भाग शुभेंदु भाग भी कहा था, आपको याद दिला देता हूँ, आप कितने बेशरम लोग हैं, आपने भाग मुकुल कहा भाग और उसे पूरे
1: भारतीय
3: जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया।
1: अरे
3: बोला है, अरे भाग, बात मुकंदू बात भी आपने कहा था, तो
1: भी
3: आप
1: आपके
3: लोग
1: चेहरे
3: की
1: से
3: कथनी
1: छलक
3: कर
1: रही
3: दी
1: है।
3: है, आप लोग छलावा करने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग
1: हमारी
3: हैं। देखिए
1: कर्तृकर्मी
3: शकुनी की
1: वही है,
3: चाले,
1: आपकी
3: शकुनी जो
1: दुर्दशा
3: चाल
1: हो
3: चल
1: रही
3: रहा है
1: है,
3: ना,
1: चलिए
3: शकुनी
1: दुर्दशा
3: जो
1: है,
3: चाल
1: अभी
3: चल
1: बाल
3: रहा है,
1: नीचे
2: ये जब झगड़ा
1: गिरे
2: चल रहा
1: हुए
2: है,
1: कुछ
2: एक
1: दिनों
2: मिनट जरा
1: बाल
2: दोनों को
1: नीचे
2: शांत
1: गया।
2: करिए
1: देखो
2: प्लीज, दोनों को नहीं जरा दोनों को शांत करिए, ये सब झगड़ा चल रहा है ना, तब कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी वहां पर दूर देख के इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में से कुछ लोगों को, टीएमसी में से कुछ लोगों को हम भी उठा सकते हैं क्या। सही है ना मीता जी, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, अगर गुस्सा है ममता बनर्जी से तो कांग्रेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है इस पूरे बगावत के बीच।
4: देखिए पहली बात शाहिल जी, कांग्रेस को तोड़ के टीएमसी का स्थापन, टीएमसी का फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। तब उसके पहले एक वक्त हुआ करता था जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल स्टेट कांग्रेस में यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। पर अगर कांग्रेस, अगर तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या कोई जो बीजेपी के खिलाफ सच में इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कांग्रेस के दरवाजा हमेशा से खुला है। क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर एक स्टेट में अगर बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ कोई जंग लड़ रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। पहली बात तो
2: नहीं, ये
4: ये
2: दरवाजा खुला किसके लिए है? मतलब आप ये
4: दूसरी
2: कहने की
4: बात,
2: कोशिश करिए कि टीएमसी को अब मर्ज हो जाना चाहिए कांग्रेस के भीतर।
4: नहीं नहीं मैंने मैं डोंट डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई
2: आई एम
4: बीजेपी के
2: आस्किंग
4: खिलाफ
2: यू।
4: इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए, और अगर वो साफ है, वो करप्ट नहीं है, तो उनके लिए हमारी दरवाजा खुला है। दूसरी बात मैं ये बोल दूं कि पिछले असेंबली इलेक्शन में 2 करोड़ 60 लाख, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इतने वोट्स मिले थे टीएमसी को, और बीजेपी को मिले थे 2 करोड़ और 90 लाख वोट्स। मतलब डिफरेंस था 30 लाख का। तो जो 2 करोड़ 60 लाख वोट्स टीएमसी को मिले थे, वो दोज वर क्लियर वोट्स अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स। अभी ये जो तमाम लोग अभी चुन के गए हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट एमएलए तो है नहीं, वो लोग टीएमसी के लीडरशिप के अंडर ममता बनर्जी का नाम देके, ममता बनर्जी का टीएमसी के सिंबल के साथ सहारे वो लोग चुन के गए हैं। अभी ये मैं मान सकती थी अगर वो चुनाव के पहले वो अगर रिवोल्ट करते या बोलते कि अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, ममता बनर्जी का ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, पर चुनाव हो जाने के बाद ये सब बोलना और एक महीने के अंदर ये 60 MLA का ये रिवोल्ट करना, क्या ये समझ ले कि इसमें कोई ईडी का हाथ नहीं, कोई सीबीआई, सीआईडी, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग,
2: सारे के
4: एजेंसी,
2: सारे 60
4: इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
2: मीता
4: का हाथ
2: चक्रवर्ती
4: नहीं
2: जी,
4: है, सब
2: मीता
4: कुछ
2: जी,
4: ऑर्गेनिकली
2: मीता
4: हो
2: जी
4: रहा
2: एक
4: है,
2: मिनट,
4: ये
2: सारे
4: तो
2: के
4: हम
2: सारे
4: मान नहीं
2: 60
4: सकते।
2: सारे के सारे 60 सिर्फ ईडी के डर से, किसी को भी देखिए, नाम बड़े बड़े जावेद खान जैसे विधायक में देख रहा हूँ यहाँ पर,
4: टीएमसी एमएलए के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केसेस है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केसेस है, काफी सारे करप्शन के चार्जेस है। तो अगर ये लोग अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे, अगर आप रितोब्रतो बनर्जी का
2: ठीक है
4: पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस,
2: अगर बहस के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली मीता जी, बहस के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली, लेकिन एक बात का सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा। यहां पर स्वयं प्रकाश पुरोहित भी देख रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी देख रहे हैं, और कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार भी इसको देख रहे हैं, और तमाम दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं। सच्चा सच्चा जवाब मुझे चाहिए इस बारे में, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में अगर टीएमसी टूट के कगार पर खड़ी है, आपने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने या 30 लाख वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को पहली बार यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही है कि टीएमसी जिस तरीके से बिखर रही है लगातार एक महीने के भीतर, कांग्रेस पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ना आपको?
4: देखिए साहिल जी, कल मैं आपके चैनल में, आज तक में भी और दूसरे एक टाइम्स नाउ में भी मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, कर्मा इज अ फनी थिंग, यू नेवर नो व्हेन वन कैचेस अप विद वंस कर्मा। तो ये
2: जी, एक मिनट, मैं आपके नेता से ही पूछ लेता हूं, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं ये पूछ लेता हूं। अधीर रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है, क्योंकि आपने ओपनली न्योता दिया हुआ है तृणमूल कांग्रेस में जो खफा लोग हैं उन्हें, कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइएगा। कई लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के भीतर वो जीत सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को अपने पास ले सकते हैं, क्या यह बात सही है?
5: टीएमसी पार्टी में जितने सारे लोग हैं, सारे लोग जन जन तो भ्रष्टाचार नहीं किए हैं ना, जरूर तृणमूल पार्टी में भ्रष्टाचारियों की कई कमी नहीं होंगे, लेकिन सारे तृणमूल पार्टी के जितने समर्थकों ने है, जितने कार्यकर्ता है, मैं ये नहीं मानते सारे भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं। तो मैंने उसी लोगों को यह कह रहे थे कि अभी तृणमूल पार्टी की इस हालत को देखते हुए शायद जैसे कि आम लोगों के साथ साथ सारे वर्कर जो आम कार्यकर्ता है उनको भी मोहभंग हो चुके हैं। तो मतलब अगर उसे लगे कि इस समय सियासत में रहना चाहिए, आज की सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए, कोई मांग करना चाहिए, चाहे जो भी करना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी है या जो साथ देने के लिए तैयार है, अगर ये आम जनता की बात होगी तो। ये तो बड़ी एक राजनीतिक दल के आम कार्यकर्ता है, ये तो बड़े स्वाभाविक है कि हम लोग हर पार्टी के अच्छे लोगों को बुलाते हैं। ये तो कांग्रेस ऐसा तो बकाही कांग्रेस तो है ही एक प्लेटफॉर्म, इसमें अगर कोई शामिल हो इसमें हमें क्या इतराज होना चाहिए। मैं तो ये जरूर दावा देना चाहते हैं
2: आप
5: कि जब तृणमूल पार्टी बिखर गए,
2: तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में जिस कगार पर खड़ी है,
5: तृणमूल पार्टी के
2: महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि शिवसेना और एनसीपी की यही हालत की गई थी, लेकिन उनको तो आपकी तरफ से यह ऑप्शन नहीं दिया गया था कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आइए। तृणमूल कांग्रेस के लिए आप यह ऑप्शन देना चाहते हैं, नंबर एक।
5: नहीं, मैं तो
2: कांडिया अलायंस की बैठक होने वाली है 8 तारीख को, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी का यह बयान,
5: आपका गलत फहमी हो रहा है। नहीं, कोई आप गलत फहमी है। मैंने कहा तृणमूल पार्टी के आम कार्यकर्ता को, तृणमूल पार्टी के एमएलए को नहीं, तृणमूल पार्टी के आम कार्यकर्ता को मैं ये सलाह दे रहे हैं, अगर सारे तृणमूल पार्टी जिस तरीके से बिखरते जा रहे हैं, तृणमूल पार्टी के नुमाइंदेगण जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की डर से और लुभाते हुए जब नया पार्टी खोलते हुए एकनाथ शिंदे मॉडल अपना रहे हैं, उस समय में ही आम वर्कर है जो अभी तक ईमानदारी से पार्टी,
2: लेकिन अधीर रंजन जी कार्यकर्ता तो वही जाएगा वहां नेता जाएगा,
5: कि अभी भी
2: बहुत सारे लोग जिस तरीके से नेताओं के अपने पास ले लेती है और अपना कांग्रेस कुनबा बढ़ाती है,
5: कांग्रेस
2: पार्टी से नेता आप ले लीजिए, आपने खुद ही कहा था
5: हर जगह
2: कांग्रेस पार्टी तोड़कर ही तृणमूल कांग्रेस बनाई गई थी।
5: कांग्रेस
2: अब ये रिवर्स का समय आ गया है ना एक तरीके से,
5: कांग्रेस पार्टी के हर ब्लॉक में नेता है, कांग्रेस पार्टी के हर ब्लॉक में नेता है। नेता मतलब इलेक्टेड मेंबर नहीं, इलेक्टेड मेंबर के अलावा भी नेता तो होते हैं, हमारे हर ब्लॉक में नेता है, उनसे बात करें, उनसे सलाह करें, मशवरा करें और शामिल हो, यही हमारा मांग है, यही हमारा उन लोगों के लिए न्योता भी है। ये
2: आपका यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर रही है, अधीर रंजन जी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मीता जी, एक तरफ वो कह रहे थे कि सरेंडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो कार्यकर्ताओं के लिए कहा जा रहा है। प्रसून आचार्य, ये क्या चल रहा है, क्या एक ऑप्शन कांग्रेस को यहां पर नजर आ रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर नीचे चली जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को एक ऑप्शन मिल जाएगा। एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, मीता जी आपके पास भी आऊंगा, आपके नेता अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके, जरा उस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रसून जी,
6: आप
2: बता दीजिएगा
6: जी, मैं एक एक करके बताते हूँ। नंबर वन, अगर बीजेपी टीएमसी का संसदीय दल पार्लियामेंटरी पार्टी टूट सकती है, जो कहा है, हाँ टूट सकती है।
2: बड़ी खबर, एक मिनट, हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को रेजीनगर सीट की ऑफर कर दी है। हुमायूं कबीर जो पार्टी से निकलकर पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, उपचुनाव में ममता बनर्जी को रेजीनगर की सीट की ऑफर कर दिया है हुमायूं कबीर ने। पता नहीं कहां से अचानक हुमायूं कबीर को ये क्या क्या बोला है वो जरा एक बार सुन लेते। बंगाल के भीतर रोज नया कुछ हो रहा है, जरा एक बार सुन लेते कि हुमायूं कबीर क्या कह रहे।
7: दोनों सीट में आज के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में दोनों सीट में जीता, भवानीपुर और नंदीग्राम, और मैं भी रेजीनगर और नौदा जीता। तो नौदा रख दिया, रेजीनगर में रिजाइन कर दिया। तो मैं रेजीनगर में मेरा बेटा को मैं उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, किंतु ममता बनर्जी को चाहिए, ममता बनर्जी को ही मेरे को खास बोलेगी, तो मैं ममता बनर्जी को ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
2: मतलब तो जिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया था वो कह रहे कि अब मैंने रिजीनगर छोड़ दिया है, ममता जी आप वहां पर आ जाइएगा। प्रसून जी आपकी बात खत्म करिए।
6: हाँ ना ना, हुआ क्या, जो टूट सकती है तो देखिए, हुमायूं का बात ऐसे ही है, लेकिन ममता बनर्जी कल जो ऋतुव्रत को 60 विधायक मिले थे, इसका बात थोड़ा सिचुएशन चेंज हुआ। कई विधायक, मेरा खबर है कम से कम 1 दर्जन विधायक कालीघाट में फोन किया था और फिर ममता बनर्जी को कहा हम लोग को गलत समझा के साइन किया है। एक्चुअली एक प्लेन पेपर में साइन हुआ था, स्पीकर के पास कोई लेटर, कोई टीएमसी का छपा हुआ कोई पैट का लेटर था ही नहीं। तो करीबन, और आज ममता बनर्जी घर से निकले हुए हैं, वो कालीघाट मंदिर जा चुके हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू पे जा चुके हैं, थोड़ा रिलीफ, क्योंकि अभी उसको लग रहा था टूट जाएगा, आज ही भयानक रूप से टूट जाएगा। और सुखेंदु शेखर है, अर्जी
2: प्रेम शुक्ला जी कहीं ना कहीं प्रसून आचार्य खबर दे रहे हैं, उनको अभी भी भरोसा है कि 20 लोग वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 40 लोगों की संख्या रहती है वहां पर, यह भी बड़ी फूट मानी जाएगी प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद स्वयं प्रकाश जी जवाब देंगे।
6: बैक चैनल पे बात हो रहा है, बैक चैनल पे बात हो रहा है,
2: और बैक चैनल से बात हो रही है
1: बनर्जी और ऋतुप्रता बनर्जी को तय करना है। ये तो ममता बनर्जी ऋतुप्रता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच का द्वंद्व है। ये द्वंद्व कैसे तय होगा, ये तो संविधान के आलोक में तय होगा, किसके पास संख्या है नहीं है। अब सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के यहाँ लौट जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता का कोई विषय नहीं है। इसमें चिंता का विषय ममता बनर्जी के लिए है कि आज अगर मैं प्रसून जी की बात को मान भी लूं, तब भी अगर 40 विधायक उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाते हैं तो इसका साफ संकेत है कि ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी की निर्विवाद नेता नहीं रही, और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भयंकर बगावत जो है वो उनकी पार्टी में है।
2: प्रकाश जी ये बात तो माननी
1: होगी, अभिषेक बनर्जी का जो
2: भले कारण कोई भी हो,
1: इसका इलाज कैसे होगा?
2: ये बात तो जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, अभी हालांकि थोड़ा सा बयान उनका चेंज हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आइए हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी खुले हैं।
3: देखिए तारीख तो गवाह है कि दिलेर लोगों को हमेशा धोखे से मारा जाता है, तो षड्यंत्रकारी शकुनी की जो चाले चल रहे हैं तो ये सब प्लानिंग से चल रहा है। अमित शाह जी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा उसके बारे में बयान बोलूंगा, वो अपनी मछली पकड़ने बैठे हैं जाल डाल करके कि कोई मछली हमारे पास भी फंस जाए। उनको ये देखना चाहिए कि आसाम में उनकी बुरी तरह हार हुई है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता आज सेकुलर वोट, आज वोट क्या चीज पर हुआ पश्चिम बंगाल में, हिंदू हिंदू करके वोट हुआ, और हिंदू वोट और सेकुलर वोट, एक तरफ मुस्लिम वोट मांगा है हुमायूं कमीन ने, एक तरफ हिंदू वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी ने, और एक तरफ सेकुलर वोट था जो डिवाइड हो गया 4% सेकुलर। सुन लीजिए
2: जरा, झगड़ा अलग चल रहा है, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, अलग झगड़ा शुरू हो चुका है, ये अलग एंगल शुरू हो चुका है, जरा आप शांत रहिएगा। बीता जी देखिए क्या बोल रहे हैं, जाल फैला के बैठी है कांग्रेस पार्टी, आपके सहयोगी की हालत जो हो रही है, कांग्रेस पार्टी जाल फेंक रही है।
4: तोड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया था, पर मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। अरे प्लीज आप प्लीज वेट फॉर योर टर्न।
3: आपको राहुल गांधी ने जब फोन कर दिया, अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है, जब उन्होंने कहा है कि मैं इस विकट परिस्थिति में, राहुल गांधी
4: कांग्रेस की अधिकृत
2: क्या कहती है वो सुन लेते हैं ना, स्वयं
3: वजह से आज बंगाल में कांग्रेस की स्थिति है,
4: जिनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्जेस ना हो, और वो अगर
3: करप्शन का चार्जेस
4: में शामिल होना चाहे तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजा खुला है।
3: इस देश का चुनाव करप्शन के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, इस देश का चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? करप्शन मुद्दा ही नहीं है, करप्शन के केसेस अगर हो,
2: स्वयं प्रकाश जी एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको, एक मिनट जरा स्वयं प्रकाश जी शांत करिए, शांत करिए उनको, मीता जी आपकी बात खत्म करिएगा,
4: मुझे
2: देखिए आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है आप भी जाल डाल के बैठे हुए हैं।
4: नहीं पहली बात तो मैं ये कोई कोई कि कोई किसी के लिए कोई जाल नहीं रखा है। देखिए अधीर रंजन चौधरी ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो कार्यकर्ता है जिनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, वो अगर बीजेपी के खिलाफ इस जंग में शामिल होना चाहते हैं तो वो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुला है, इसमें कोई गलत बात नहीं।
2: प्रसून आचार्य चलिए आखिर में जरा जरा वरिष्ठ पत्रकार से प्रतिक्रिया लिया जाए, करीब करीब यही बात स्वपन दास गुप्ता भी कह चुके हैं कि जो दागी लोग हैं उनको पार्टी में मत लीजिएगा, बीजेपी में भी लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, एक धड़ा ये कहता है कि दागी लोगों को हमारे पास मत लीजिएगा। स्वपन दास गुप्ता थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता से भी बात कर चुके हैं, और यही बात कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना कहीं,
6: एकदम आप बिल्कुल सही बोल रहा है, इसीलिए आज प्रियंका टेबरियाल दोनों को पार्टी से एक्सपेल किया गया, एक ऋतुव्रत बनर्जी, दूसरे संदीपन शाह, क्योंकि संदीपन शाह का पिताजी के खिलाफ बहुत सारे करप्शन का केस है, हम आपका चैनल में पहले भी बताया। और आज प्रियंका टेबरीवाल जो बीजेपी एक लास्ट इलेक्शन ममता के खिलाफ लड़ी थी, आज खुद जाके वो इंटरली संदीप शाह के पास हार गई थी, वो जाके भीड़ इकट्ठा करते हुए
2: ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश जरूर करेगी कि उनकी पार्टी ना टूटे, लेकिन आज की स्थिति में उनके सामने 28 साल में सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आकर खड़ा है। और आज की स्थिति में जो स्थिति नजर आ रही है उससे एक बात साफ नजर आती है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बंगाल की राजनीति की पिक्चर अभी भी बाकी है। तो नजर बनाए रखिए, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए। आज पिक्चर अभी बाकी है, बंगाल की राजनीति की पिक्चर अभी भी बाकी है। तो नजर बनाए रखिए, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए। आज

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर किधर?
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

अफ्रीका में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के मरीजों की संख्या 320 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांगो में इबोला से पीड़ित करीब 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में एक मौत की पुष्टि हुई है। WHO प्रमुख ने कांगो के इबोला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राष्ट्रपति को इस प्रकोप के बारे में जानकारी दी। WHO ने चेतावनी दी है कि यह इबोला के मरीजों का आंकड़ा अब तक सामने आए मामलों से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इबोला वायरस को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयास तेज हो गए हैं। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भेजी है। इसमें सुरक्षात्मक उपकरण, निदान एवं निगरानी उपकरण, संक्रमण रोकथाम सामग्री और दवाएं शामिल हैं। ये इबोला वायरस का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हमला है, जिससे कांगो और युगांडा जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती दौर में इसका पता नहीं चल पाया, जिससे अब बीमारी को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে
1: জেনারেল ইজ নট বিং রিলিজড ফর দ্য এনসিসি।
2: पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत, चीफ व्हिप दो हैं। ममता के चीफ व्हिप फिरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ व्हिप अखरुजमा, उपनेता विपक्ष छह हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी, बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा। मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी। दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई। आरोप है किसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए, जिसकी सीआईडी जांच चल रही है। अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अलग गुट को दलबदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है। बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं, तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं। और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया, अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए। कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया। बंगाल में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी। बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी। बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है। वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से। इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं। हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया। ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
3: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कांड पर दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश। 21 लोगों की मौत के बाद होटल्स में एनओसी की जांच शुरू। गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों का दाह संस्कार। बंगाल में ममता बनर्जी को झटके पे झटका। अब विधाननगर की टीएमसी मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। मंत्री दिलीप घोष का तंज, भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी के साथ ये होना ही था। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर पार्टी का फैसला। मानसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी के बीच बातचीत की खबर। बिल के नए मसौदे का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज। भीषण आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जगह जगह होर्डिंग, पेड़ गिरने से भारी नुकसान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ठीक, सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी। अबारी। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशियरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं। कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कलैप्स कर रहा है। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है, पूरा सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन आया। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे। मेरे पास मोदी जी के पर इतना इन्फॉर्मेशन है, जब मैं उनसे मिलता हूँ हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कलैप्स कर रहा है, मेरा असेसमेंट है। एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।

0: स्वागत है आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने अभी राहुल गांधी का वो बयान सुना जिसे देश की राजनीति में नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी का राजनीतिक हमला तो अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम विद्रोह करने वाला है। वो देश में नई इमरजेंसी की आशंका खड़ी कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या सिर्फ एक राजनीतिक शिगुफा छोड़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे दावों का आधार क्या है? वैश्विक हालात की वजह से देश में बने आर्थिक संकट को हर कोई स्वीकार कर रहा है, लेकिन क्या आर्थिक सुनामी और उसकी चेतावनी में दम है? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने यह कहकर पलटवार किया है कि राहुल गांधी को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर क्या यकीन नहीं है? देश में तनाव है राहुल का अस्त्र। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि आप देख रहे हैं मोदी से टक्कर, राहुल के बोल से मचा है बवंडर। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है।
0: पहले ही भारत में आर्थिक तूफान की चेतावनी दे चुके राहुल गांधी का दावा अब और बड़ा हो गया है। अब की बार राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी की चेतावनी दी, तो साथ ही इमरजेंसी लगने की आशंकाओं के बीच अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने का दावा कर बैठे।
1: मैं आपको ये बता दूंगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन आया धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इन्फॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर राहुल गांधी अक्सर हमले करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसे दावों के साथ राहुल गांधी मानो सरकार की एक्सपायरी बता रहे हो। उधर अब तक राहुल गांधी सीईसी ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों और एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण बताते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को मैसेज मिलने का दावा कर सबको चौंका दिया। ऐसे बयान के बाद एनडीए ने राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक बताने में देर नहीं की।
2: अरे गांव की कहावत है, कसाई के सरापने कभी गाय नहीं मरी है। राहुल गांधी उसी भूमिका में है। ये देश के ऐसे एलओपी हैं, ये मनाते हैं कि देश में इंटरनल लड़ाई हो जाए, ये मनाते हैं कि देश आर्थिक कठिनाइयों में चला जाए।
3: बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना है धरना कुछ नहीं है। इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है? इन लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता है। लोकतंत्र क्या होता है? मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है।
0: राहुल गांधी ने अब की बार सिस्टम के विद्रोह की बात की है, तो ये वही राहुल गांधी हैं जिनका 18 सितंबर 2025 का एक्सपोस्ट अब तक ताजा है। नेपाल में जेएनजी विद्रोह के कुछ दिनों बाद आए इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस बीच कांग्रेस आर्थिक सुनामी आने के राहुल गांधी के दावे का जोरदार बचाव कर रही है।
4: चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए, ये अलग बात है कि पांच पांच जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया है कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा।
0: कांग्रेस को मौजूदा वक्त में देश डूबता दिख रहा है, सरकार लड़खड़ाती दिख रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन डगमगाने के बाद भी राहुल गांधी कमोबेश ऐसा ही दावा करते थे।
5: जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया।
0: वैसे राहुल ने पिछली बार जब मोदी को कमजोर बताया था तो उसके बाद बीजेपी को कई राज्यों में चुनावी सफलताएं मिली हैं। इधर 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने का पीएम नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमित जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मलुक नागर, महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हेड है वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, आईबी चीफ, ये सारी संस्थाएं अब सरकार के खिलाफ हो गई हैं, उनको फोन कर रही हैं। बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी देश में आ रही है, एक साल तक मोदी जी पीएम नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनका आकलन है। आपका जवाब?
6: देखिए, राहुल गांधी जी की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मैं आपको चुनिंदा उदाहरण पेश करता हूं। आज से नहीं, जब वो सरकार में थे, अगस्त 2009, अमेरिका के राजदूत ड्रोमर से जाके कहते हैं लश्करे तैबा और जैश ए मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद खतरा है। देश ने देखा बाद में एक्चुअली में कौन बड़ा खतरा था। उसी समय ये बोलते हैं कि मंदिरों में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, कोई बात नहीं। जुलाई 2011 ये बोलते हैं कि आतंकवाद को पूर्णतः नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। आइए, ये विदेश में जाके बोलते हैं 2022 मई में इंग्लैंड में जाके बोले बस देश में केरोसिन बिछ गई है, बस विस्फोट होने ही वाला है। अब चार साल से विस्फोट का इंतजार चल रहा है। इन्होंने कहा था वो हाइड्रोजन बम में फोड़ने वाला हूं, और जब इन्होंने तथा कथित हाइड्रोजन बम फोड़ा तो वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से ज्यादा नहीं निकला। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मार्च 2023 में जाकर ये कहा विदेश की धरती से कि साहब व्हाई इंग्लैंड एंड अमेरिका डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर साइलेंट। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर विदेश में इंग्लैंड में क्या कहा कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, विधानसभा हो चुका था उस समय तक, कि अशोक गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, और वो एक कुंभाराम जी थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के उनके नाम पे, और कहते कुंभकर्ण योजना, तीन बार कुंभकर्ण बोल गए। अब आप सोचिए भारत का कोई व्यक्ति कुंभकर्ण योजना बोल सकता है? उसके बाद आप इनके उत्तरोत्तर स्टेटमेंट आकर आगे देखते चले जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि बिना मेहनत किए जो सत्ता पाने की एक खानदानी रईसी थी, वो आदत अब इनके दिमाग पर इस कदर चढ़ गई है कि जब से इनकी विदेश यात्राओं के भुगतान का सवाल पूछा गया है तब से, और भुगतान संतुलन में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक संतुलन भी उसी के साथ खोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को विधिवत पता है कि आज की स्थिति में, हां एक बात से मैं राहुल गांधी जी के सहमत हूं, आर्थिक सुनामी आई नहीं है, दुनिया में आ चुकी है, और सबसे ज्यादा वैश्विक भ्रमण करने वाले नेता राहुल गांधी जी से मैं पूछता हूं, बताओ मेरे भाई दुनिया में एक इलाका बताओ जहां पेट्रोलियम के दाम कम से कम 20% से 40% अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, और एशिया और अफ्रीका में 40% से लेकर 60% तक ना बढ़े हो। बताओ मेरे भाई जहां पर इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फॉरवर्ड चल रही हो, बताइए दुनिया में इस समय एक देश, दुनिया में एक देश बताइए जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा हो, दुनिया में एक देश बताइए जो भारत से अधिक ग्रोथ रेट रख रहा हो,
0: ठीक है,
6: दुनिया में एक देश बताइए जहां बेरोजगारी की दर भारत से अधिक हो, दुनिया में एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। सही बात है, ये सुनामी आई हुई है, सुनामी में अगल बगल के जहाज पलट गए हैं, हमारे जहाज का कैप्टन बड़ी कुशलता के साथ उस सुनामी की लहरों में से निकालता हुआ ले जा रहा है। तो जो झटके, एक लाइन पूरी कर दूं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए ये कैप्टन को दोष देंगे, सुनामी की लहरों को नहीं। इसलिए देश की जनता भली भांति ये समझती है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पे किया, तो इस पंक्ति के साथ मैं समाप्त करता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के लिए कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए।
0: अभय जी, प्रधानमंत्री ने खुद इशारा किया है कि ये जो हम मिडिल ईस्ट का युद्ध देख रहे हैं उसकी वजह से हम पर असर पड़ेगा, उन्होंने तमाम हिदायतें भी देश को दी कि भाई आप अगर ये सुझाव दिए कि आप ये कर सकते हैं तो ये कीजिए, पेट्रोल डीजल की कमी, तमाम बातें उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि ये तो बवंडर पूरे विश्व में आया हुआ है, इसमें नई बात राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और क्या आधार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सामने आकर आईबी चीफ या सीईसी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर वाकई वो लोग संपर्क में हैं तो उसका आधार क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर विद्रोह सिस्टम करने वाला है।
7: ये सरकार अपने खुद के बोझ से गिरने वाली सरकार है। ये सिर्फ आईबी चीफ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम, क्या कह रहे हैं सुनिए प्रधानमंत्री जी। आपके आर्थिक सलाहकार समिति में रहे सुरजीत भल्ला, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ गया है भारत में कि भारत का एफडीआई 2020-21 में, और देश के लोगों गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ आज की क्राइसिस नहीं है कि ये युद्ध की क्राइसिस के कारण नहीं है, 5-7 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था का बट्टा भारतीय जनता पार्टी ने बिठा दिया है। जो नेट एफडीआई हमारा $44 बिलियन था 2020-21 में, वो घटकर कितना हो गया है $2 बिलियन। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 5 महीने में 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत से निकाल लिए निवेशकों ने, जीडीपी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कौन सा देश, अरे 140 करोड़ का देश है, 7 और 12 करोड़ की आबादी के देश यूके और जापान हमसे जीडीपी में आगे निकल गए, हम 5वें स्थान पर आ गए। आप पर कैपिटा इनकम भारत 140वें स्थान पर आ गया सुधांशु त्रिवेदी जी। आप कह रहे थे कौन से देश, अरे 2 करोड़ का देश ताइवान, उसका मार्केट कैप भारत के मार्केट कैप से अधिक हो गया, साउथ कोरिया का मार्केट कैप हमारे मार्केट कैप से अधिक हो गया, हमारा रेमिटेंस घट गया। आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाए प्रधानमंत्री जी। अब 12 साल हो गए आपने घोषणा की कि हम 6.5 मिलियन टन का एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे, लेकिन उसका निर्माण आज तक जमीन अधिग्रहित नहीं की, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के बने थे वही है प्रधानमंत्री जी। अब फर्टिलाइजर का ये हाल है, खरीफ में 390 लाख टन की आवश्यकता हमारे हमको है, हमारे स्टॉक में 51% है, हमारा प्रोडक्शन को अगर मिला भी लें इंडिजीनियस प्रोडक्शन तो 114 लाख मेट्रिक टन की कमी है, 7 करोड़ हेक्टेयर खेती हमारी बगैर खाद के सूखी रहेगी, इसलिए राग अलाप रहे कि 50% ऑर्गेनिक खेती करिए 50%। कहां थे आप तैयारियों के समय, आप तो सत्ता की भूख मिटा रहे थे, राज्य दर राज्य चुनाव कर रहे थे, और क्या आरोप लगा रहे हैं ये जो आर्थिक सलाहकार है, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईडी के छापे मार रहे हैं। अभी वेदांता ने अगर अडानी पर मुकदमा लगाया क्योंकि उसका हक था तो ईडी ने उसके यहां छापा मार दिया। अभी आपने कोस्टल एनर्जन 32 महीने जेल में रहा वो, क्यों, क्यों अडानी जी उसका पावर प्लांट लेना चाहते थे, पावर प्लांट लिया, ईडी ने क्लीन चिट दे दी कि कोई मुकदमा ही उस पर नहीं बनता। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप जानते हैं कितना आउटफ्लो जो भारत की कंपनियां है $29 बिलियन विदेश में इन्वेस्ट किया इस बार उन्होंने, विदेश में, भारत में नहीं किया। आपके मेक इन इंडिया की पोल खुल गई, आप कहां है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइए, आप कहां खड़े हैं हार्डवेयर में बताइए, क्यों निवेश नहीं कर रही विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में, इसका जवाब तो देंगे ना। आप ओएसएम का स्कैम आपने किया, नीट का स्कैम आपने किया, इतनी बड़ी बात थी ओएसएम की जिस कंपनी का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया है, एक मिनट, ओएसएम की जिस कंपनी का जवाब राहुल गांधी जी ने कहा है उससे भी बड़ा एक स्कैम हुआ, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती घोटाले में जिस एजू टेस्ट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था, जैसे ही उसने घोटाला किया और अमेरिका भाग गया, पता है कौन था वो, जो कर्मचारी चयन आयोग बिहार का स्कैम करके जेल में था, जेल से छूटा और उत्तर प्रदेश का ठेका उसको दिया विनीत तारी को, और वो अमेरिका भाग गया। अमेरिका भागने के बाद उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने कहा कि नहीं नहीं साहब माला पहनिए, आपकी तो बहुत गलती दिखाई नहीं देती। अरे क्या कब तक बच्चों के भविष्य का सौदा करोगे आप लोग, कब तक? इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सरकार अपने कुकर्मों के बोझ से गिरने वाली सरकार हो जाएगी।
8: ठीक है,
7: ये बात याद
8: रखिएगा। अच्छा, ज्ञानेश गुप्ता जी अब इन्फॉर्म कर रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी ने कहा है,
7: राहुल जी ने आज तक एक भी शब्द झूठ नहीं बोला।
8: ठीक,
7: अक्षरशः जो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, असत्य कोई कथन आज तक नहीं कहा। और ये सच बात,
8: अमित जी मैं एक रिएक्शन सुधांशु जी से ले लूं फिर मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी छात्रों और पेपर लीक, ये तो वाकई एक ऐसी मतलब आप लोगों की चूक हुई है जिसकी वजह से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और

0: भारत में खोली है तो खोल दी है, और स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व के लिए 30 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व देने के लिए यूएई ने प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में कमिट कर दिया है, तो कमिट करके रख दिया है। अब समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी ख्वाबों में देखते रहते हैं कि बगैर काम किए आसमान से टपक कर मेरे हाथ में आ जाए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी, पार्टी आपकी हारी कोई बात नहीं, आप कहते हैं हार जीत चलती रहती, मैं भी कहना चाहता हूं। अमित शाह जी 25 दिन रहे बंगाल में, राहुल गांधी कितने दिन रहे? चलो बंगाल में आपका कुछ था नहीं, जीरो था, फिर भी कहेंगे वोट चोरी हो गई। आसाम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे राहुल गांधी?
1: केरल में यूपी का चुनाव आने वाला है राहुल गांधी,
0: चुनाव के दौरान वियतनाम और
2: मैं तो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि विनिंग इलेक्शन एंड लूजिंग इकोनॉमी, सिर्फ चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था। मुझे दुख हुआ इतने विद्वान राज्यसभा सांसद, 71 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो है एफडीआई का, जानते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है? भारत की खुद की कंपनियां भी विदेश में जाकर निवेश कर रही है, 29 बिलियन डॉलर, जानते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है? निवेश का वातावरण नहीं है साहब, यहां पर आपने वातावरण नहीं दिया और डींगे हाँक रहे। फॉक्सकॉन आप सेमीकंडक्टर का 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 2021 से कह रहे हैं कि वेदांता और फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट आया क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेस्टिनेशन ही नहीं रह गया हिंदुस्तान, हार्डवेयर का डेस्टिनेशन हिंदुस्तान नहीं रह गया। मैंने कहा ताइवान जैसा 2 करोड़ का देश, उसकी मार्केट कैप हिंदुस्तान से ज्यादा हो जाए, शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि भारत अच्छा डेस्टिनेशन है कंपनियों के लिए। अरे बनाना चाहिए, हम साथ में खड़े, सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम समालोचना कर रहे हैं कि आप करिए, आप हमारी मत मानिए। अब विरल आचार्य कह रहे हैं कि जो मोनोपोलाइजेशन किया है, हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों को सारा काम सौंप रहे हैं आप एक के बाद एक, उससे भारत से कंपनियां भाग रही है उठ उठ के बाहर, भारत में वातावरण नहीं रह गया। प्रधानमंत्री जी आपके आर्थिक सलाहकारों की सुनिए, मत सुनिए कांग्रेस पार्टी की, मत सुनिए
1: विदेशी निवेश पर। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए कि भाई क्यों भारत से, उन्होंने कहा कि लोग पैसा लेकर जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी, ये वाजिब सवाल है, कोई भी जो समझता है अर्थशास्त्र वो पूछेगा।
0: हाँ देखिए, अब मैंने आपसे कंपनियों का नाम लेके बताया जो भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आप बताइए बाहर जाके इन्वेस्ट किसने किया? भाई डॉलर की वैल्यू अमेरिका बढ़ा रहा है इसलिए पैसा आदमी यहां से निकाल के वहां पे ले जा रहा है, इज अ डिफरेंट थिंग। आप ये बताइए कि अमुक इंडस्ट्री भारत से उठकर चली गई। और अभय दुबे जी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, आपने ताइवान की बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी के समय में सीडेक की शुरुआत हुई थी जो एक अच्छा इनिशिएटिव था। 1987 में तो ताइवान ने सब शुरुआत भी नहीं की थी, उसके बाद क्या हुआ? खत्म। आपकी सरकार ने चीन वीन के इशारे पर वो परिस्थिति नहीं बनने दी। इंटेल 2007 में भारत छोड़ के चली गई, क्यों? आपका चाइना के साथ कौन सा एग्रीमेंट था कि मोबाइल के कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पे ड्यूटी ज्यादा थी, मोबाइल पूरा इंपोर्ट करो तो ड्यूटी कम, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मार दिया था। इसलिए 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल हैंडसेट बनाने की फैक्ट्री थी, आज 340 है और हम दुनिया के सेकंड
1: बिगेस्ट। कंपनी का नाम बताइए ना जो भारत से उठ के चला गया। अमित जी इसके बाद तुरंत आ रही हूं, अमित जी और मलुक जी खाली चेहरा देखने थोड़ी आए हैं।
0: फॉक्सकॉन, गूगल, अमेजन, सैमसंग, आईफोन,
1: बताइए
0: जो मैन्युफैक्चरिंग यहां से बाहर चली गई हो।
2: अंजना जी एक बस एक
1: जल्दी
2: बस एक सेकंड
1: जल्दी सर,
2: एक स्टडी कर लीजिए देश के लोगों। मई के महीने में जीएसटी का कलेक्शन है 59,000 करोड़ का, कंपोनेंट उसका सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी का है, 20% इंपोर्ट ड्यूटी में जीएसटी में कलेक्शन बढ़ गया, और टोटल जीएसटी का कितना ग्रोथ हुई पिछले महीने से पता है? सिर्फ 3%। इसका अर्थ है कि नेट 70% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। सुधांशु जी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, आप मेरी, मैंने कहा ना कि इंटरव्यू पूरा सुन लीजिए, डिटेल्ड लिस्ट दी गई है कैसे हमारी कंपनियां छोड़कर क्यों
1: करेंगे, बताइए। अब नेक्स्ट राउंड में सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ एक बार, अमित जमे, सुधांशु जी एक ही बार जवाब दीजिएगा, अमित जमेई जी भी बोले, हम तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आपको चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिलेगी, क्या आप ये नहीं मानते अमित जी कि लोकतंत्र में चुनाव से ही हराया जा सकता है? ये एक साल के अंदर अगर कह रहे राहुल जी कि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, तो ये कैसे होगा?
3: अंजना जी 2027 में उत्तर प्रदेश की तो जनता ने अपना मन बना लिया, लेकिन जो आदरणीय राहुल जी ने बात कही है, अगर मैं राहुल जी की बात को, अजय भाई ने जवाब दे दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अंजना जी है कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे सुभाष गर्ग जी, उन्होंने भारत को फ्रेजाइल

0: फायर, और कहा कि ये वल्नरेबल वन ऐसा देश बन चुका है जो बहुत ही इसकी आर्थिक स्थिति खतरनाक मुहाने पर खड़ी हुई है। अगर कोई बाजीगर यूनिवर्सिटी ना एक नई बनाई जाए, बाजीगर यूनिवर्सिटी, आंकड़ों के बाजीगर यूनिवर्सिटी, तो सुधांशु भाई मेरे बड़े भाई हैं, उसके वाइस चांसलर तो बन ही सकते हैं। ये मामला बहुत संगीन और बहुत ही गंभीर है कि भारत की आर्थिक कमर टूट रही है। कमर टूटेगी, भारत की इकोनॉमिक स्थिति खराब होगी, तो अंजना जी मुझे, आपको, अजय भाई को, सुधांशु भाई को, पूरा देश जब चरमराएगा तो हमें तकलीफ होगी। ये देश ऐसे नहीं बना है। अगर नरेंद्र मोदी जी को ये मेजोरिटी मिली है तो हसीना, शेख हसीना को भी मेजोरिटी मिली थी, 75% थम्पिंग मेजोरिटी पूरे देश में, एक छत्र रात 24 घंटे में रातों रात गायब, पूरी सरकार, सत्ता बदल, तब सब कुछ। लेकिन हमारा ये कहना है कि अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी ने, नंबर वन रशिया के हक में हमने अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर किया, नंबर टू 43,000 करोड़ का वन वे इंडो यूएस जो डील हमने करी कि हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, तो हम इतना पैसा कहां से लाएंगे जब भारत खुद आर्थिक मोर्चे पर हमारी कमर टूटी हुई है। और नंबर तीन, मैं जौनपुर में हूं अंजना मैम, यहां पे आज के वक्त में मुझे डीजल नहीं मिल रहा, एडवांस में 4 दिन 5 दिन की लाइन लगी हुई है, गैस का संकट है, परिवार के परिवार परेशान है, होटल्स में गैस नहीं है। ये जो संकट है, इस संकट के बीच में मनमोहन सिंह जी, मुझे याद है UP 1 UP 2 में वो सुषमा जी से, आडवाणी जी से बैठ के चर्चा करते थे, कोई अगर बात होती थी। लेकिन वो सरकार इतनी ऑटोक्रेटिक सरकार, इतनी यूरोपियन सरकार, कि ये देश के किसी भी पक्ष से बात नहीं करना चाहती। चलिए एलोपी, आप अपनी राहुल जी से आप नफरत करते हो, बिल्कुल आप कर लो, लेकिन देश के अर्थशास्त्रियों को सुनो, आप भल्ला जी की सुनिए, आप सुजीत भल्ला जी की बात को सुनिए, और वो कह रहे हैं अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आगे आने वाले दिनों में भारत की स्थिति और गंभीर खराब होगी। इसलिए पूरे देश में
1: देखिए ना,
0: बेरोजगारी,
1: अभी आप जब
0: नौजवानों
1: बोल
0: में
1: रहे हैं ना,
0: निराशा
1: सुनिए
0: बढ़ी।
1: ना अमित जी, अभी जब आप बोल रहे हैं विपक्षी एकजुटता कितनी जरूरी चीज है, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन से डीएमके भी अलग हो रहा है, एक महत्वपूर्ण साथी था, और संसद में कांग्रेस से अलग सीट मांगी थी उन्होंने कि कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अब खबर आ रही है कि उनको अलग जगह दे दी गई है। तो आपको नहीं लगता ये आप लोग जो जल्दबाजी में बांग्लादेश और नेपाल से बार बार तुलना करते हैं, मैंने बीच में नहीं टोका था कि आप अपनी बात पूरी कर लें, आपने बांग्लादेश में शेख हसीना का उदाहरण दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह से लोग घर में घुसकर और लोगों को निकालेंगे और इस तरह की एनार्की होगी?
0: बिल्कुल साफ कहना है, हमेशा सुधांशु जी विपक्ष विपक्ष को चिढ़ाते हैं, यहाँ हार गए, वहां हार गए, यहाँ हार गए, वहां गए, यहाँ नहीं हो, वहां नहीं हो, हमारा 70% हमारी इतनी सीट है, हमारी इतनी सीट है। हमारा ये कहना है कि शेख हसीना की भी सीट थी, शेख हसीना के पास भी 75% वोट था, लेकिन जो उसने दमन बांग्लादेश के लोगों के साथ किया, चाहे वहां गलत सरकार बनी या कुछ भी हुआ, ये जो एरोगेंस है, हमारा ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को, जल्द उसका कपड़ा उतार देना चाहिए, उतार के जो स्थिति है उसको आप फेस करिए। पूरा देश का युवा निराशा, जानती है कितनी बुरी चीज होती है अंजना मैम, पूरे देश के युवाओं में निराशा है, एक संकट, बेरोजगारी का संकट, अर्थव्यवस्था का संकट, पूरे उत्तर प्रदेश की एमएसएमई आज के वक्त में नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने बर्बाद कर दिया। उधर भदोही का जौनपुर के बगल में जो कारपेट इंडस्ट्री था, हजारों करोड़ का माल बिकने को तैयार नहीं है, हमारे गरीब लोग जिसमें वर्कर से काम करते
1: जवाब दीजिए इसका, सुधांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है, पूरी करिए, पूरी कीजिए।
0: अगले 27 तक पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन स्ट्राइक नहीं होगा। अरे ये क्या है, इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी की आहट नहीं है, तो ये क्या है, स्ट्राइक भी नहीं होगा, धरना भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा, गरीबी भुखमरी के माहौल में ये तानाशाही करेगा इनकी पार्टी, क्या भी देखिए सुधांशु जी क्या बोलते हैं,
1: जवाब दीजिए सुधांशु जी, तीन चार बातें उन्होंने उठाई हैं।
2: देखिए यही यही सब बातें बताते हैं हमारे दोनों विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ताओं ने, बगैर तथ्य दिए बातें वही है, और मैं आपसे कह रहा हूं एआई का जमाना है, जरा इनके स्टेटमेंट्स को डालिए, वही चीज रिपीट करते हैं। अब मैं फिर दूसरा तथ्य बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट में 17% का कंट्रीब्यूशन करेगा और ग्लोबल ग्रोथ रेट का इंजन बनेगा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मैंने कोट किया। अब आइए साहब, आप कहेंगे, अभी देखिए अभय जी क्या बोले कि साहब इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा आ रहा, बिल्कुल सही बात है भाई, सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और सोना सबसे कॉस्टली चीज में से एक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी सोने पे बढ़ जाएगी तो मानी हुई बात है कि एक्साइज की वैल्यू बढ़ी हुई दिखेगी एज कंपेयर टू, ये होती है आंकड़ों की बाजीगरी। कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो सेम स्टेटस पे है, अचानक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो आप करें देखो इंपोर्ट ड्यूटी के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग का एक कम दिख रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फैक्ट क्या है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं भाई क्या कह रहे हैं यूएस डील के बारे में अमित जमाई जी, अरे अभी तो मार्को रूबियो कह गए थे, अभी तो न्यूएंसेस उसके फाइनल वर्कआउट हो रहे हैं। और आप जो यूएस डील के ऊपर, यूएस डील के ऊपर किसने क्या किया था न्यूक्लियर डील पे, अरे मुलायम सिंह यादव ने 2008 अगस्त में जब कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस कर दिया था तो मनमोहन सिंह की सरकार को जाके समर्थन दिया था और बदले में ज्वाइंट, सुनिए, बदले में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस विड्रॉ हुए थे। आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, ठीक है, चिल्लाइए,
1: आपने
2: टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, क्या तरीका है भाई, हम तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में। अब सुनिए, और मैं अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, यहां समस्या यह नहीं है राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं, उसका आप कारण समझिए। जो हश्र तृणमूल कांग्रेस का हुआ, जो हश्र शिवसेना का हुआ, यह एक हारे हुए नेता का सत्ता हारने के बाद उसको यह भय है कि मेरे पार्टी के लोग ही कहीं मुझे पूरी तरीके से छोड़ के न चले जाएं। जिस विवशता के साथ उनको कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, और सत्य क्या है तो वो जाने, मीडिया की खबरों के अनुसार केरल में अपने मन का सीएम नहीं बनवा पाए, कर्नाटक में सीएम बदलना पड़ा, तो अब उन्हें यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में जैसे भेड़े बारा बाड़ा तोड़ के भागती है वो परिस्थिति ना बन जाए, तो उनको एक साइकिल लॉजिकल बूस्टर देने के लिए, छलावा देने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम साल भर तक मेरे कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ बने रहें। ये इसकी अतरेद है, आप कहे बिलबिला रहे हैं भैया, हम कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी वाले सीट तो उनको देते नहीं विधानसभा के बाई इलेक्शन में लड़ने के लिए, और बीच में बोलते चले जा रहे हैं।
1: अरे आप ना जूम से जुड़े हैं अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, आप जूम से जुड़े हैं तो जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आप हाथ उठाइए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, वो कंप्लीट करते आप ही के पास आ रही हूं, जल्दी से आप जवाब दीजिए उनकी बात का, अब दीजिए, उनकी बात खत्म हुई है, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय जी आपके पास। देखिए बड़ा सवाल आज ये है कि एक, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पूरे विश्व में तमाम देशों में कीमतें बढ़ रही हैं और भारत को ऐसे वक्त पर सभी पार्टियों को मिलकर चलना होगा क्योंकि ये परेशानी सबकी होगी। मलुक जी इसके बाद फौरन आपके पास आ रहे, अब जवाब दीजिए उनको, अमित जी आवाज नहीं जा रही।
0: देखिए मेरा मेरा आपसे सिर्फ साफ ये कहना है, अंजना ओम कश्यप जी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप कहिए, हमें तो अच्छा लगेगा कि अंजना ओम कश्यप जी एक बहुत ही जिम्मेदार सिटीजन है, उन्होंने भारत के बारे में कोई राय दी। मार्को रूबियो भाजपा ने बदल दी, मार्को रूबियो ने कहा है कि अगले छह महीने में सर मार्ची सर आपकी बहुत अच्छी जाएगी, मार्को रूबियो कह गए हैं कि अभी ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अरे प्रियांशी भाई ये सब ज्योग्री छोड़ दीजिए, भारत की जनता सबसे बड़ा आज विपक्ष है, भारत के युवा, भारत के एससी एसटी ओबीसी, 2027 में आपका जो हाल होगा आपने सोचा भी नहीं होगा इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आप सेना लगवा दीजिए, पश्चिम बंगाल में आप लगाए थे ना, सेना लगाइए, आप पुलिस लगाइए, आप फोर्स लगाइए, देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश के अंदर।
1: ठीक, मलुक नागर जी, मलुक नागर जी अब आपकी बारी है, आप आइए सामने, राहुल जी ने तो एक बार, मलुक जी अपना बोनी तो कर ले सर, अभय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मलुक जी, राहुल जी कह रहे हैं कि एक साल के अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि पीएम नहीं रहेंगे मोदी जी।
3: अंजना जी, बहुत दिन पहले चील और गिद्ध हमारे देश में बहुत ज्यादा थे, वो जितने भी नीचे जमीन पे जानवरों को चरते हुए देखते थे उनको लगता था ये सारे मरेंगे हम खाएंगे, तो कांग्रेस उसी तरह है गिद्ध और चील की तरह। आजकल जिस तरह हमारे देश से गिद्ध और चील गायब हुए हैं, कांग्रेस भी करीब करीब उसी तरह गायब है, आबादी के हिसाब से 8.5% क्षेत्र में केवल इनका राज रह गया, उसी तरह गायब हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं या इमरजेंसी लगाएंगे, इन्हें खुद अपने आत्मग्लानी हो रही है, ये खुद इनके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, 75 की इनको इमरजेंसी की याद आ रही है और अपनी करतूतें जो इनकी पीछे रही हैं उन्हें जनता के सामने ला रहे हैं, या ये कहो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पिछले 4-5 साल से जो हमारे अपने सुधांशु जी ने आंकड़े बताए, कब कब क्या क्या राहुल जी ने बयान दिए, उनमें जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम कराए हरियाणा में, देश की संसद में निकलते हैं देश की इकोनॉमी डेड, अरे 60 साल तो कांग्रेस ने खुद ने इकोनॉमी बढ़ाई है उसको भी डेड कर रहे हैं, तो लोग इनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं और एक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के लोग हमें सब बहुत मिलते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं हमसे, कहते हैं यार जिन बातों को हम नहीं कह पाते देश की पार पार्लियामेंट में और देश के नेशनल टेलीविजन पे आप बोल देते हो तो हमारा पार्टी के हमारे मन की बात हो जाती है। तो अब इनको सोच समझ के बोलना चाहिए ये क्या बोल रहे हैं। और अंजना जी, ये किसी भी तरह देश को बदनाम करें, देश में गुमराह करें, झूठ बोलें, धोखा दें, अफवाह फैलाएं केवल कि किसी तरह सरकार बदनाम हो जाए और ये सत्ता के भूखे लालची भेड़िया सत्ता में आ जाए, इस सोच के साथ इन्हें सोचना चाहिए। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देश के सामने और देश की जनता के सामने बहुत छोटी चीज है। देश बहुत बड़ा है, देश के लोग सब कुछ है।
1: हाँ।
3: देश का संविधान सब कुछ है।
1: अच्छा, दुबे जी भी जुड़ गए,
3: नहीं समझ रही थी संविधान को,
1: दुबे
3: इसी तरह ये कुछ नहीं समझ रहे, इन्हें भी झेलना पड़ेगा उसी तरह जिस तरह ममता जी ने झेला या हर प्रदेश में इन्हें झेला। और ये जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरे देश में इकट्ठे होकर किसी भी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, यहाँ ज्ञान बांटते हैं आकर के, देश की जनता सब जानती है, समझती है और इसीलिए इनको औकात में इनकी में रखती है।
1: ठीक है, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तो दो दुबे जी आज हो गए इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन एक बार अभय जी बहुत देर से हाथ उठाए हैं, आनंद दुबे जी एक बार वो बोल लें उसके बाद में, क्योंकि सीधा हमला मालूक नागर साहब आपकी पार्टी पर किया, वो कह रहे हैं कि आप लोग पूरे देश में ऐसी स्थिति बनाते हैं जैसे लग रहा है कि अब तो बस गई सरकार, और उसी कड़ी में राहुल जी ये बोल रहे हैं।
4: ऑन अ लाइटर नोट, आपने कहा कि मालूक जी ने की बोनी भी नहीं हुई है। हाँ, ये बात स्वीकारता हूँ, ये सत्ता के अतिथि कलाकार हैं, जहाँ भी बड़ी सत्ता देखते हैं उसके पास अपना ठेला वेला लगा के अपनी दुकान लगा लेते हैं। गंभीर बात सुधांशु जी ने कही थी, सुधांशु जी आप चेक करिएगा, 2025-26 में $29 बिलियन भारत के उद्योगों ने विदेश में लगाया है। भारतीय इंटरप्राइजेस इन्वेस्टेड $4 बिलियन इन यूके, लार्सन एंड टर्बो इन्वेस्टेड $2.5 बिलियन, टाटा ग्रुप इन्वेस्टेड इन को स्टील यूके, टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट $2.1 बिलियन इन टीटीएस ग्लोबल होल्डिंग्स, जाइडस ने इन्वेस्ट किया है फ्रांस में, सन फार्मा में, एक लंबी फहरिस्त है, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और मेरा नहीं है ये बात, अरविंद जी ने अपने इंटरव्यू में कही थी, उसके बेसिस पर मैंने निकाला। आपने जो उदाहरण दिया कि सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो कंपोनेंट, ये पिछले माह का है, जब प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं कही थी ना, तब का डेटा है ये जो जारी हुआ है। आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मंथ पहले का जीएसटी का डेटा देती है, और सबसे बड़ा कंपोनेंट कहाँ का है पता है, जो चाइना से बेतहाशा इंपोर्ट हो रहा है ना, वो कंपोनेंट है। यही बात तो अरविंद जी ने कही कि दो मेजर फैक्टर हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के। आप जो डर डर कर विदेश नीति, ना आपकी विदेश नीति सही है, ना अर्थनीति सही है, ना तेल नीति सही है, ना खेल नीति सही है, ना खेत नीति सही है। आप अमेरिका ने कहा कि छोड़ दीजिए आप चाबहार पोर्ट, आपने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया, 14,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट था। आप उन्होंने कहा ईरान से ऑयल लेना छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया। रशिया से आप छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, 30 दिन काम कैप दे रहे हैं, 30 दिन में जितना उनके जहाजों में लोड किया है खरीद लीजिए, आपने उसको स्वीकार कर लिया। वेनेजुएला से तेल लीजिए, अरे इतना विस्कोसिटी है उसमें, इतना विस्कस तेल है कि सिर्फ वो आपके दोस्त की रिफाइनरी में ही साफ होता है। हमने पूछा कि डेटा दीजिए किन किन प्राइवेट कंपनी ने रशिया से कितना कितना ऑयल, क्रूड ऑयल लिया है और कहां भेजा, तो आपने कहा साहब ये सेंसिटिव डाटा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, हम नहीं देंगे। क्यों ऐसा आप देश के साथ कर रहे हैं? गंभीर सवाल देश के अर्थशास्त्री उठा रहे हैं, देश के समाजशास्त्री उठा रहे हैं, देश के कलमकार उठा रहे हैं, जवाब दीजिए ना, कब तक पूछ उड़ाएंगे? राहुल गांधी जी ने जितने सैद्धांतिक प्रश्न आपसे खड़े किए आपने आज तक नहीं बोला। आप चलिए, मैं आपको आखिरी बार कहता हूं, ये स्वीकार करके जाइए, आप क्यों डॉलर का डोमिनेंस हम सहें? 20% की वृद्धि हुई है हमारी करेंसी का, डिप्रिसिएशन 20% से हुआ है। आप ये कही आज कि ब्रिक्स के सम्मेलन में कहेंगे कि हम ब्रिक्स बैंक की स्थापना करेंगे, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे और डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
1: इस पर एक डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट जवाब,
4: हमको यहाँ इंडिया में आकर गाली दे जाते,
1: ब्रिक्स को मजबूत करेंगे और डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। सुधांशु जी,
2: देखिए फिर अभय दुबे जी ने जो बोला, आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए, इन्होंने क्या बोला, इंडियन कंपनीज का नाम लिया कि टाटा ने इन्वेस्ट किया, एलएनटी ने इन्वेस्ट किया, ये तो अच्छी बात है, भारतीय कंपनियां विदेश में जा रही हैं। टाटा ने कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां से बाहर शिफ्ट कर दी, एलएनटी ने कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां से बाहर शिफ्ट कर दी, उल्टा रफाल का फिजलाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को मिला, अरे भाई साहब, आप कहते हैं विदेश की कंपनी जो यहाँ थी चली गई, ये तो भारत के लिए अच्छी बात है। भारत की कंपनियां अब रियल मल्टीनेशनल बनकर दुनिया के तमाम देशों में व्यापार कर रही हैं। अब सुनिए,
4: $71 बिलियन डॉलर।
2: अरे फैक्ट फैक्ट फैक्ट फैक्ट, आप एक विदेशी कंपनी का नाम
1: नहीं
2: भारत से अरे धीरे धीरे अरे भाई साहब कहे अपने अपने टर्न पे देखिए कैसे आप लोग व्यथित हो जाते हैं एक ही फैक्ट कंफर्टेबल आने पे। अब आइए चाइना की बात, तो सारे दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, जब अटल जी की सरकार गई तो हमारा चाइना के साथ करंट जो भी ट्रेड डेफिसिट था वो $1 बिलियन था, सिर्फ $1 बिलियन, यानी मैनेजेबल था। और जब 2014 में आए $37 बिलियन, आज 112-113 है, मानता हूं, मगर 37 गुना हो गया। और उस कारण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वो सारे देश को पता है। और भाई साहब, ये दोस्त की रिफाइनरी, ये तो एक अच्छी बात है कि भारत में जो विस्कस तेल है वो भी रिफाइन हो सकता है और नॉर्मल भी। ये भाई साहब रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था दोस्त को, किसने दिया था भाई साहब, बता पाएंगे आप? यही स्थिति है कि हमेशा भारत की कंपनियों के खिलाफ बोलना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, और विदेश के लोगों के पक्ष में बोलना। और ये राहुल, वही राहुल गांधी है। मैं एक अब अपने टर्न पे, सर अपने टर्न पे प्लीज, अभय जी अब एक लाइन और बोल देता हूं आपको। अंजना जी, जुलाई 2024 में यही राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलस में जाके बोलते हैं, कहते हैं कि चाइना ने इन अनएम्प्लॉयमेंट को बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है। सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक बढ़ते बढ़ते चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गई। चाइना ने अपना डाटा देना बंद कर दिया। फिर जनवरी 2024 से नए सिरे से डाटा देना शुरू किया। फिर जुलाई 2017 में वो 17% हो गई। और बेशर्मी के साथ राहुल गांधी सितंबर 2024 में कह रहे हैं कि साहब यूनिवर्सिटी ऑफ डलास में कि भारत ने कंट्रोल कर लिया। मैंने फिर फैक्ट बोले हैं और विपक्ष के नेताओं ने
1: सबको दिखा दीजिए एक बार। दुबे जी, आज स्क्रीन पर हम सब श्वेतधारी बने हुए हैं, आज सारे ही लोग सफेद कपड़ों में, आप ही एक भगवा पहनकर आ जाए हैं स्क्रीन पर। दुबे जी, राहुल जी कह रहे हैं, जी राहुल जी ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की सुनामी आई हुई है और ऐसी स्थिति है कि एक साल तक मोदी जी टिक नहीं पाएंगे, पीएम नहीं रहेंगे, तो आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव से हराइएगा या कोई और तरीका सोचा हुआ है?
5: मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में ऐसा कोई संकट न आने पाए, न ऐसी कोई तनाव की स्थिति हो और न तो हम लोगों को कोई दुख घेरे। ये ईश्वर से प्रार्थना है। हम लोग राजनीति में आए, हम आज सब लोग विपक्ष में बैठे हैं। अभय दुबे जी हैं, अमित जोमई साहब हैं, आनंद दुबे हैं। हमारे गांव में कहावत है अंजना जी कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ता है, कोई और मरेगा तो आप स्वर्ग नहीं देख सकते। अगर हम ये चाहें कि एक साल में सरकार गिर जाए, अराजकता फैल जाए, त्राहिमाम हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाए, तो क्या गारंटी कि हमारी सत्ता आ ही जाएगी? अरे जो बैठे हैं वो चले जाएंगे, पता नहीं फिर कौन आएगा, कैसे आएगा। उससे अच्छा हमें आना है, तो जब हमें आना है, हमें ही स्वर्ग देखना है, तो हमें मरना होगा। मरने का मतलब कलयुग में कर्म करना होगा, अपनी पार्टी को बढ़ाना होगा, अपने सांसद विधायक जिताने होंगे, लोगों के बीच में जाना होगा। हम उस काम में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी टूट गई महाराष्ट्र में, फिर भी हमने 20 विधायक, 9 सांसद, 65 नगर सेवक हम लाए हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। लेकिन कभी ये हम कल्पना नहीं करते कि बीजेपी कहीं भाग जाए, हम आ जाए, माहौल खराब हो जाए। नहीं, ये नकारात्मक राजनीति है। और मुझे पूरा विश्वास है अंजना जी अपने देश के जैन जी पर कि यहां कभी न नेपाल जैसी स्थिति होगी, न श्रीलंका जैसी होगी, न बांग्लादेश जैसी होगी। अरे कॉकरोच के चक्कर में क्यों पड़े हो? हमारे देश के लोग अगर किसी को मदद करेंगे या किसी का सहारा देंगे तो मंकी पार्टी बनाओ, वानर सेना बनाओ, उसको मदद करेंगे। ये कॉकरोच, कल कोई मॉस्किटो लेके आ जाए, मच्छर, तो हम लोग मच्छरदानी लगा लेंगे, मच्छर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कॉकरोच आएगा तो उसके लिए हिट ले आएंगे, लेकिन जब वानर सेना आएगी तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। हम उस देश के रहवासी हैं, हम सनातनी लोग हैं। ये कॉकरोच के
1: दुबे जी, आपका भगवा रंग बोल रहा है या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं?
5: मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आनंद दुबे सनातनी हूँ, बाला साहब जी का चेला हूँ, और मैंने एक ही चीज देखा है, देश सबसे पहले, देश सबसे पहले। अगर कोई कल्पना सपने में भी कर रहा है कि देश टूटेगा, तो ये देश उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में हो चुका है, भविष्य में भी आप देख लेना। 2029 में चुनाव हो, इस चुनाव में हम बीजेपी को हराएं और हमारे लोग पीएम बने, ये आकांक्षा ये इच्छा अगर हो तो सब लोग इज्जत करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। लेकिन 6 महीने में कोई गिर जाए, कोई टूट जाए, कोई भाग जाए और हम आ जाए, तो ये गंदी राजनीति तो विपक्ष नहीं करता, विपक्ष नहीं करता।
1: दुबे जी दूसरे दुबे जी से आज भिड़ रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए हैं, बोल लीजिए।
2: बहुत बस बिल्कुल, मैं इसमें भी सिर्फ फैक्ट बोलता हूं जो आनंद दुबे जी ने कहा, जो नेपाल में हुआ, नेपाल में सत्ता में आने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले क्या किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सोचो, जिन्होंने सोचा था कि सत्ता मेरे पास आएगी। अब आइए बांग्लादेश में क्या हुआ, ये वही बीएनपी है जिसने जमाते इस्लामी को 2001 में लेजिटिमेटाइट दी थी, जैसे आप लोग कट्टरपंथियों से हॉब नॉबिंग करते हैं, और उसके बाद उनको कैबिनेट में एक बर्थ दी थी। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी तारिक रहमान की पार्टी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कौन है, जमाते इस्लामी। अगले चुनाव में वही आपके सामने खूंखार बन के खड़ा होगा। और अभय दुबे जी याद करिए, आपकी पार्टी मुस्लिमों का साथ लेती थी, आज मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बनाने पड़े हैं, 5। केरल में भारत के इतिहास में पहली बार जिन्ना की मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं, आगे 15 भी बन सकते हैं, सीएम भी बन जाएगा। इसलिए याद रखो मेरे भाई, जो आनंद दुबे जी ने कहा है उनका विचार हम लोगों से अलग हो सकता, पर यह सच है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना,
1: ठीक है, दोनों दुबे जी को दिखा दीजिए,
2: घर में सदा खड़ा होता है।
1: दुबे जी
6: कहना चाहता हूँ,
1: हाँ आनंद दुबे जी जल्दी से दो लाइन में। हाँ हाँ,
6: एक नेता कह रहे थे कि 50 का टेम्परेचर हो गया है आजकल देश में, इसके पीछे भी मोदी जी हैं। अरे यार, 50 का टेम्परेचर हो गया अगर उसके पीछे भी मोदी जी हैं, तो इसका मतलब आप जब रात को सोते हो तो सपने में भी मोदी जी आते होंगे। इससे बाहर निकलो, ये मोदी फोबिया से बाहर निकलो, दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, लोगों का दिल
1: जीतो। जी, अभय दुबे जी जल्दी से एक रिएक्शन।
4: हाँ अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का उदय ही जिन्ना की नाती के पैसे से हुआ है। जिन्ना जिन्ना का राग अलापते, जिन्ना की मजार पर चादर तुम चढ़ा कर आए थे साहब, जिन्ना को सेक्युलर तुम बता।
1: आनंद दुबे जी आज काहे बरस रहे हैं कांग्रेस पर,
4: सुनिए ना एक मिनट मुद्दा देखिए मैंने मलुक नागर जी, नहीं आनंद दुबे जी का विवेक, वो शिवसेना की उद्धव दादा की बात मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ, उनकी पार्टी का वक्तव्य नहीं रखते हैं वो, हो सकता है मलुक नागर जी की तरह अपना कोई सत्ता के अतिथि कलाकार का व्यवहार कर रहे हो। इन्होंने कुछ नाम मुझसे पूछे थे सुधांशु
1: सर, टाइम इजाजत नहीं देता है, नहीं तो मैं जरूर आपसे ये चर्चा करती। अब अगले दिन जब मिलेंगे तब बात होगी, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे आखिर मेरे भारत में घुसपैठियों का क्या काम है, क्योंकि आज लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पहचान हुई है घुसपैठियों को भेजा जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे बंगाल के लोगों के डर से कट मनी सिंडिकेट पलंग के नीचे क्यों छिप गया है, भारत में अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध करने वालों को अवैध मस्जिद के खिलाफ जापान मॉडल दिखाएंगे, और आखिर में पूछेंगे कि दिल्ली में खोड़ा के सूर्य जैसे हत्याकांड पर चुप्पी क्यों है। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
16: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
17: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
18: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
19: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
17: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: ये तस्वीरें खानसर के कोचिंग सेंटर के बाहर की हैं। देर शाम कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त खान सर कोचिंग सेंटर में मौजूद थे।
1: इन लोगों का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया।
2: लगभग कितना राउंड गोली चला है?
1: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
3: गोलीबारी भी हुई है।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
0: हमले में कोचिंग सेंटर पर तैनात गार्ड घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर का आरोप है कि उन पर ये हमला सस्ती फीस की वजह से हुआ है। कोचिंग संचालक खान सर और उनके पड़ोस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी विवाद में ये हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है।
2: पहले ही भारत में आर्थिक तूफान की चेतावनी दे चुके राहुल गांधी का दावा अब और बड़ा हो गया है। अब की बार राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी की चेतावनी दी तो साथ ही इमरजेंसी लगने की आशंकाओं के बीच अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने का दावा कर बैठे।
1: मैं आपको ये बता दूंगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इन्फॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर राहुल गांधी अक्सर हमले करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसे दावों के साथ राहुल गांधी मानो सरकार की एक्सपायरी बता रहे हो। उधर अब तक राहुल गांधी सीईसी ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों और एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण बताते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को मैसेज मिलने का दावा कर सबको चौंका दिया। ऐसे बयान के बाद एनडीए ने राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक बताने में देर नहीं की।
3: अरे गांव की कहावत है, कसाई के सरापने कभी गाय नहीं मरी है, राहुल गांधी उसी भूमिका में है। ये देश के ऐसे एलओपी हैं, ये मनाते हैं कि देश में इंटरनल लड़ाई हो जाए, ये मनाते हैं कि देश आर्थिक कठिनाइयों में चला जाए।
4: बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है, इन लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता है। लोकतंत्र क्या होता है? मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है।
2: राहुल गांधी ने अब की बार सिस्टम के विद्रोह की बात की है, तो ये वही राहुल गांधी है जिनका 18 सितंबर 2025 का एक्सपोस्ट अब तक ताजा है। नेपाल में जेएनजी विद्रोह के कुछ दिनों बाद आए इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस बीच कांग्रेस आर्थिक सुनामी आने के राहुल गांधी के दावे का जोरदार बचाव कर रही है।
5: चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए, ये अलग बात है कि पांच पांच जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया है कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा।
2: कांग्रेस को मौजूदा वक्त में देश डूबता दिख रहा है, सरकार लड़खड़ाती दिख रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन डगमगाने के बाद भी राहुल गांधी कमोबेश ऐसा ही दावा करते थे।
6: जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया।
2: वैसे राहुल ने पिछली बार जब मोदी को कमजोर बताया था तो उसके बाद बीजेपी को कई राज्यों में चुनावी सफलताएं मिली हैं। इधर 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने का पीएम नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। आज तक ब्यूरो।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के पुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है वो सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ
2: बिजुरी आई गए।
1: हाँ हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ
2: हाँ हाँ हाँ, यह अब एक नसिया पाया भैया,
0: ये ये
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
3: हाँ ये खुजा जोर से।

0: हल्ला बोल में राहुल गांधी के बयान पर आप देख रहे थे बहस, अब ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक मार्या के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रता के सस्पेंशन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। दिल्ली एनसीआर में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज। भीषण आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जगह जगह होर्डिंग्स और पेड़ गिरने से भारी नुकसान। शो की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिससे दिल्ली दहली है। मालविया नगर में 21 लोगों की मौत के जिम्मेदार लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस पड़ताल करेगी कि लवकेश ने आखिर कैसे सिस्टम में सेंध लगाकर 21 लोगों को मार डाला और इन 21 लोगों की मौत के और कितने गुनाहगार हैं।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में लगी ये भयानक आग कोई हादसा नहीं बल्कि सीधे सीधे कत्ल था और इस कत्ल का सबसे बड़ा गुनहगार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका नाम है लवकेश बजाज। पूछताछ में इस आरोपी ने जो कबूलनामे किए हैं वो डराने वाले हैं। इसने कबूल किया है कि इसने दिल्ली सरकार से 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लिया था, लेकिन अवैध रूप से 28 कमरों का पूरा होटल खोल दिया।
2: पुलिस कोर्ट में लेकर के लवकेश को पहुंची थी तो क्लियर कहा था कि किसी भी नॉर्म का कोई भी वहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, कोई भी सेफ्टी नॉर्म वहां पर नहीं था, फायर सेफ्टी नॉर्म नहीं था। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए गए थे।
1: इस पूरी बिल्डिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट से इसने कभी कोई एनओसी ली ही नहीं थी, यानी लवकेश बजाज ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इस इमारत को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया था। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस मास्टरमाइंड ने एक बेनामी मोहरा तैयार किया था, जय मिश्रा, जो इस होटल का अकाउंटेंट है।
3: पूछताछ में लवकेश बजाज ने खुलासा किया कि इस होटल की देख रेख उसका अकाउंटेंट जय मिश्रा ही करता है, लाइसेंस भी जय मिश्रा के नाम पर ही है।
1: शातिर लवकेश ने सारे सरकारी कागज, सारे बिल और बीएनबी का लाइसेंस इसी जय मिश्रा के नाम पर ले रखा था, ताकि अगर कभी कोई आफत आए तो वो खुद साफ बच निकले। जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब ये होटल मालिक मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय ये डरपोक और बेरहम शख्स वहां से चुपचाप रफू चक्कर हो गया।
3: आग लगने के बाद लवकेश बजाज इस होटल के आसपास आया, कुछ देर रुका, उसके बाद मौके से फरार हो गया और सड़कों पर वो लगातार घूम रहा था।
1: अब दिल्ली पुलिस ने एमसीडी, डीएम और बीएसईएस को पत्र लिखकर इस पूरे मौत के साम्राज्य को जमींदोज करने की तैयारी कर ली है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: जब 21 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई इसी अग्निकांड में, जब गुरुग्राम का एक पूरा परिवार खत्म हो गया, जब जख्म नासूर बन गया, तब दिल्ली सरकार जागी है। अब कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: जब आग ने 21 लोगों को राख कर दिया, तब जागी दिल्ली सरकार। जब घर के घर उजड़ गए, तब दिल्ली सरकार को आया होश। जब पिताओं के बच्चे सुलग के मर गए, तब टूटी है सरकार की नींद। जब आंसुओं का सैलाब और दर्द का आकाश विस्तारित हो गया, तब सरकार ने सोचा कुछ करना चाहिए, और कुछ करने के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अस्पताल में देखने चली गई कि कौन कितना जला है, कौन कितना बचा है।
4: यहाँ पर जो मरीज है जो कि मालवीय नगर के अंदर हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद जो तमाम मरीज थे उनको मैक्स हॉस्पिटल के अंदर भी जो है एडमिट किया गया था, उन्हीं की देखने के लिए इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहुंची है मैक्स हॉस्पिटल।
1: मरीजों से मिलकर भला कैसे महसूस करेंगी सीएम साहिबा कि जलने की तड़प क्या होती है, दम घुटता है तो कैसे लगता है, सामने मौत हो तो मंजर कैसा होता है, जान बचाने के लिए पांचवें फ्लोर से कूदने पर क्या तकलीफ होती है, कैसे जान पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली की सरकार ने जान गंवाने वालों की कीमत तय कर दी। मर चुके लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि ज्वाइंट हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी, 1 महीने तक बड़े स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा, बीएनबी पॉलिसी वापस ली जाएगी, नियमों का उल्लंघन करने वाले का बीएनबी तुरंत रद्द होगा, हादसे की जांच मजिस्ट्रेट करेंगे, ये सब किया जाएगा, मगर तब जब 21 लोगों के प्राण चले गए। जितनी सक्रिय सरकार हुई है इसका 20% भी पहले सक्रिय होती तो ये भयावह तस्वीरें देखने के लिए ही ना मिलती, बेकसूर बेमौत न मारे जाते। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मालवीय नगर की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी, अभी आग में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उसके पहले ही ऐसा ही एक अग्निकांड बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हो गया है। यहां भी अस्पताल में लापरवाही की आग लगी और 5 लोगों की जान चली गई।
5: मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल का आईसीयू वार्ड धुआं धुआं है। अस्पताल के भीतर सब कुछ खाक हो गया है, तस्वीरें भयानक हैं। इसी अस्पताल के भीतर चीख चिल्लाहट मची हुई है क्योंकि लापरवाही की आग ने यहां भी 5 लोगों को मार डाला है। सुबह का वक्त था, अस्पताल में अपने अपने मरीजों के पास कोई सोया हुआ था, कोई तीमारदारी कर रहा था, कुछ लोग गलियारे में थे, लेकिन जब आग फैली तो अफरा तफरी मच गई।
6: अस्पताल प्रबंधन के लोग, तमाम लोग फरार हैं, फायर सेफ्टी की टीम पहुंची हुई है, स्थानीय प्रशासन पहुंची हुई है। जो मरीज के परिजन थे वो काफी व्याकुल और परेशान हैं कि उनके मरीजों के साथ क्या हुआ।
5: आग लगते ही अस्पताल में हाहाकार मच गया, जो गंभीर रूप से बीमार थे वो भाग नहीं सके, जो भाग सके वो बच गए और जो फंस गए जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया।
7: 4 डेथ्स हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, जिनका कि SKMCH में हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया है, उनके परिजनों को भी SKMCH हॉस्पिटल में भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और 4 लाख के मुआवजा की घोषणा की है।
5: जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखें, अब जरा उनसे मिलिए। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं, नए नए मंत्री बने हैं। मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, मामला सीधे इनके विभाग से जुड़ा है, लेकिन जब मंत्री जी से बात करने की कोशिश की गई, तो निशांत कुमार खिसक लिए। अब सवाल ये है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसके भरोसे है, बिहार के अस्पतालों को कौन रेगुलेट करता है, क्या कोई निगरानी होती भी है या नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उस ड्रामे की जो कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर ने फैलाया है। दरअसल खान सर ने आरोप लगाया है था कि उनकी कोचिंग पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है जो फैजल खान को मुश्किल में डाल सकता है। अब खान साहब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं।

0: इस एक वीडियो ने खान सर, माफ कीजिएगा, फैजल खान की पोल पट्टी खोल के रख दी है। इस एक वीडियो ने फैजल खान के दावों को उधेल के रख दिया है। इस एक वीडियो ने बता दिया कि फैजल खान की कोचिंग पर गोलीबारी का सच क्या है। दो दिन पहले इन्हीं खान साहब ने दावा किया था कि कोचिंग चलाने वाले रोशन आनंद ने इनके यहाँ फायरिंग कराई है।
1: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गई।
2: लगभग कितना राउंड गोली चला है?
1: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं।
0: इन्होंने अपनी आंख से गोलीबारी देखी थी मगर अगले ही दिन पलट गए थे, लेकिन पलटू राम अब फंस गए हैं क्योंकि ये जो गोली चलाने वाले गार्ड साहब को दिख रहे हैं ये इन्हीं की कोचिंग के गार्ड हैं। इन दोनों गार्ड्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या रोशन आनंद की तरह अब फर्जीवाड़ा करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में फैजल खान की भी गिरफ्तारी होगी। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
3: अब बात राहुल गांधी के दावे की। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि एक साल के भीतर पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी। राहुल के इस दावे के पीछे का सच क्या है और क्यों हो रही है इस बयान पर सियासत, इस रिपोर्ट को देखिए।
4: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है।
0: पहले ही भारत में आर्थिक तूफान की चेतावनी दे चुके राहुल गांधी का दावा अब और बड़ा हो गया है। पहली बार राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी की चेतावनी दी थी तो साथ ही इमरजेंसी लगने की आशंकाओं के बीच अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने का दावा कर बैठे।
4: अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: अब तक राहुल गांधी सीसी ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों और एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण बताते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को मैसेज मिलने का दावा कर सबको चौंका दिया।
5: ये मनाते हैं कि देश आर्थिक कठिनाइयों में चला जाए।
6: बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है।
0: इस बीच कांग्रेस आर्थिक सुनामी आने के राहुल गांधी के दावे का जोरदार बचाव कर रही है।
7: तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है, तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया।
0: कांग्रेस को मौजूदा वक्त में देश डूबता दिख रहा है, सरकार लड़खड़ाती दिख रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन डगमगाने के बाद भी राहुल गांधी कमोबेश ऐसा ही दावा करते थे।
8: जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया।
0: राहुल के दावे में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने के जश्न की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। आज जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
9: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
10: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
9: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
11: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
9: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
12: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
2: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
13: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
14: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
9: मतलब ये है कि हर बीते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की।
15: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी।
16: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
15: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में, रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
17: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
18: कितने गोलियां लगी है इसके?
17: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
15: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस पंचकुला आज तक।
3: प्रयागराज से भी हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाती है। बताया जा सकता है कि सैदपुर के रहने वाले समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रत्नेश यादव इस कार में थे। रत्नेश अपने 3 साथियों के साथ झलवा से कीतगुंज की ओर जा रहे थे। सिविल लाइंस के पास कार बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में रत्नेश यादव की मौत हो गई है।

कार हादसे की एक और तस्वीर ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां एक्सप्रेसवे पर चलती हुई एक जैगुअर में आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये लग्जरी कार जल गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने कार से कूद

0: है। उधर रोहित की फिटनेस को लेकर भी सस्पेंस जारी है, जो आईपीएल के कई मैच में अनफिट होने की वजह से बाहर रहे। ऐसे में टीम इंडिया इन दो बड़े दिग्गजों के विकल्प की तलाश कर रही है, जिसमें देवदत्त पड़िक्कल, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रजत पाटीदार जैसे चेहरों में से किसी को मौका मिल सकता है। उधर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को भी चयनकर्ताओं ने कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है। आयरलैंड और 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करते नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल की जगह अब उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात खाड़ी देशों में फैले तनाव की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
2: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
3: How do you define ceasefire?
4: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
2: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
1: ये थी खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
6: In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair.
9: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion, from pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
10: Pure Ayurvedic beauty.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Oh no, bahut bore lag raha hai.
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative ke bina. Dates, badam, pista, kaju aur shahad se taiyar kiya gaya. Lion Dates Nut Bites.
4: Lion Date Nut Bites.
6: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
7: Money, money, money, money, every month.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: आगे, आगे.
10: अरे उधर,
9: उधर क्या?
10: Correct, correct.
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank. Bharose ka prateek. Summer Cool Cooler. Hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler. Life banaye wonderful.
0: Hint. Bade aaram se. Vimal. Bolo zubaan kesri.
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजतक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तर पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: उत्तर प्रदेश के तीन शहरों में पिछले दिनों तीन कत्ल हुए। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हुई, कातिल असद ढेर हो गया। लखनऊ में संदीप सिंह की हत्या हुई, दिनेश यादव गिरफ्तार हो गया। गाजीपुर में विनीत सिंह की हत्या हो गई। अब इन कत्लों के जुर्म और गुनहगारों की जाति मजहब पर चल रही राजनीति की बुनियाद देखिए। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या करने वाले आरोपी असद की मौत हो गई। तीन आरोपी गिरफ्तार हैं, कई संदिग्ध हिरासत में हैं, बाकियों की तलाश है। हत्याकांड के चक्कर में पूरे मोहल्ले की पैमाइश होने लगी है, आसमान से निगरानी तक हो रही है और अब कार्रवाई की चपेट में अवैध मदरसे तक आ गए हैं।
1: प्रशासन ने सीलिंग की है, आप ये देखिए, ताला लगा करके यहाँ पे मोहर लगा दिया गया और साथ ही साथ एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस चिपकाया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से कि इस मदरसे से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो एक सप्ताह के भीतर पेश किया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये जो मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, यहाँ पे लिखा है।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस पर त्वरित कार्रवाई करके मुस्लिम आरोपित का एनकाउंटर कर डाला, लेकिन 5 दिन पहले गाजीपुर में हुई होटल व्यवसायी की हत्या के केस में आरोपित तक नहीं पकड़ा गया।
2: मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि दरारियां कम करिए, बुलडोजरों को पत्ते पर मत दीजिए, ये तो सर्दी के पास रहते हैं।
0: गाजीपुर के होटल व्यवसायी ने जान को खतरे की शिकायत पुलिस से कई बार की थी, लेकिन ना तो खतरा टाला गया और ना सुरक्षा मिली। हालांकि सीएम योगी इन दिनों हर सभा कार्यक्रम में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं।
3: माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं, हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: यूपी में माफिया के खात्मे के दावे के बावजूद जुर्म का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा और इन्हीं जुर्मों के हवाले से सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आए दिन यूपी में हो रहे अपराधों की खबरें और मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब ऐसा ही समाजवादी सवाल जब लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या को लेकर भी उठाए गए, लेकिन इस हत्याकांड में जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि आरोपी दिनेश यादव नाम का शख्स है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है और इसी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने शूटर मुहैया कराने वाले दिनेश यादव के ड्राइवर मुबीन को भी गिरफ्तार किया। अब ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव 27 तारीख से लखनऊ में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे और पकड़ा गया आरोपित यादव है और दूसरा मुस्लिम। ओपी राजभर ने एक और तस्वीर डालकर उसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे जमीन विवाद है, जिसमें 5 लाख की सुपारी देकर बकरीद वाले दिन संदीप सिंह की हत्या करा दी गई। लखनऊ से आशीष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच, 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता बनर्जी को झटके पे झटका, टीएमसी से बागी नेता ऋतव्रता के सस्पेंशन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज, भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने, 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके, कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर पार्टी का फैसला।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। विशेष में आज बात एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो दर्द की सारी सीमाओं से परे है। दिल्ली के अग्निकांड ने एक पूरे परिवार को निगल लिया। पिता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे और बेटा, बहू और नाती होटल में लगी आग में जिंदा जल गए।

0: खुशहाल परिवार जिसे सिस्टम ने चला दिया। हंसते खेलते पति पत्नी, प्यारी सी बेटियां, माँ और तो मासूम बच्चे, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट एक पिता ने कभी सोचा नहीं था कि जो परिवार उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पास के एक होटल में रुका हुआ है, वो परिवार उनसे कभी नहीं मिल सकेगा। गुरुग्राम के चार्टर अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल के पिता गंभीर फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे हैं और साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती है। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माँ के साथ दिल्ली आए थे। इसी दौरान विवेक अग्रवाल के मौसा मौसी और एक अन्य परिजन भी बीमार पिता का हालचाल लेने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भी उसी होटल में ठहरने का फैसला किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। रात सामान्य थी, परिवार अगले दिन अस्पताल जाने की तैयारी में था, लेकिन अचानक होटल में आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार धुएं और लपटों से भर गया। जो इमारत यात्रियों के लिए ठहरने की जगह थी, वो देखते ही देखते चिता बन गई। 70 साल की प्रेमलता अग्रवाल, 45 साल के विवेक अग्रवाल, 42 साल की तारिणी, 20 साल की जीविशा, 17 की वारिया, 68 साल के अशोक पंसारी, 70 साल के जावरीलाल और 68 साल की कमला, सबकी मौत हो गई।
1: एक मेरी बेटी है तारिणी अग्रवाल, एज 42 इयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाई, उसकी एज 20 इयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है एज 17 इयर्स, वरिया।
0: परिवार को उम्मीद थी कि बीमारी से लड़ रहे पिता को अपनों का साथ मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और शायद स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जिस परिवार ने अस्पताल के कमरे में अपने बुजुर्ग पिता का हाथ थामने की योजना बनाई थी, वो कुछ ही घंटों बाद आग की लपटों और धुएं के बीच जिंदगी की सबसे भयावह लड़ाई हार गया।
2: सीए के तौर पर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। परिवार में उनकी वाइफ है जो कि किसी एनजीओ से जुड़ी है, और जो बच्चे हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, अब ऐसे में पहले वाइफ बिजनेस करती थी, फिर किसी एनजीओ से जुड़ी और बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही थी। परिवार में माँ भी हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, और पिता हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल जी एक कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए, और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: होटल फ्लोरिश में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, विवेक की बुजुर्ग माँ प्रेमलता अग्रवाल, विवेक की दो बेटियां जीविशा अग्रवाल और वारिया अग्रवाल ठहरे हुए थे। बड़ी बेटी जीविशा बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी, दादा बीमार थे इसलिए वापस आ गई थी। इसके अलावा विवेक के मामा अशोक पंसारी, मौसा जावरीलाल और मौसी कमला भी विवेक के पिता को देखने के लिए आए थे। ये सब होटल फ्लोरिश में ही ठहरे थे।
3: मौसा जी का ट्रीटमेंट साकेत हॉस्पिटल में चल रहा था, और जो मेरे मौसी का परिवार है जो गुड़गांव में रहते हैं, उनके लिए साकेत डेली अप डाउन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने साकेत हॉस्पिटल के सामने ही होटल के अंदर रूम लिए थे। तो जो लोग किशनगढ़ से और अजमेर से आए थे मिलने के लिए, वो लोग भी उसी होटल में चले गए, और सबका साथ प्लान था कि वहीं से इकट्ठे होकर सब लोग साकेत हॉस्पिटल गए।
0: होटल में आग लगी तो इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक हो गया, परिवार का धुएं से दम घुटने लगा। विवेक ने आखिरी कॉल अपने एक रिश्तेदार को किया और सिर्फ इतना कहा कि बेटियों को बचा लो। ये पिता की बेबसी थी जिसकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था। पत्नी, माँ, बेटियां, मौसा, मौसी, मामा, सब इस आग की चपेट में थे। कमरे में धुआं भर गया था, सांसें साथ छोड़ रही थी, और विवेक की भी मौत इस अग्निकांड में हो गई।
1: वो भी गुजर गए दोनों, छह के छह हमारे, उनमें से दो मिस हैं, बाकी भी गुजर गए। अच्छा, हमारे आठ आदमी।
4: अच्छा, आठ आदमी।
1: हाँ जी।
4: कौन लोग थे, क्या क्या साथ
1: में? मेरी बेटी है, मेरा दामाद है।
0: अग्रवाल परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहता था। अब ये घर सुनसान पड़ा है। घर में रहने वाले सभी लोग इस हादसे की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए, सिवाय उस पिता के जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
5: कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है जी, इतना दुखदायक है जिसकी कोई सीमा नहीं है, दुख की कोई सीमा नहीं है।
2: जानते थे आप तर्जनी अग्रवाल को?
5: तर्जनी अग्रवाल को इतना नहीं थी, ठीक है देख लेते हैं, जैसे खड़ी है गेट पे नमस्ते नमस्ते। बाकी जो विवेक जी की मदर थी वो हम पार्क में बैठते थे, अच्छी थी, कभी तिरजाने के कपड़े थे, जो भी
6: निःशब्द है कि ऐसा हुआ और इसको कोई शब्द नहीं है, इसकी मतलब इतना दुख है, पूरा परिवार चला गया, दोनों बेटी माँ तर्जनी उसकी वाइफ विवेक खुद, हम लोग साथ में साइकिलिंग करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, इतनी यादें हैं विवेक के साथ, बहुत दुखी हूँ। तर्जनी भी बहुत रिगार्ड करती थी, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों का बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ दोनों, दोनों में बड़ा ही लगाव हम लोग देखते थे, दोनों बच्चियाँ बड़ी प्यारी थी, तो बहुत दुख।
0: आज जब विवेक के परिवार का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरे परिवार में मुखाग्नि देने के लिए कोई नहीं था।
3: मुखाग्नि परिवार के जो बाकी छोटे बच्चे हैं, जो हमारे मौसा जी के ब्रदर हैं, उनके जो परिवार है, उनके बेटों ने और पोतों ने मुखाग्नि दी है।
0: किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या गया। अचानक एक हस्ती खेलती दुनिया अपने पीछे आंसुओं का सैलाब छोड़कर चली गई।
7: परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्षधाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहाँ लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई।
0: अब सवाल ये कि आखिर इस परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, जहाँ एक नहीं 3-3 परिवार जिंदगी भर का दर्द लेकर जीने को मजबूर है।
3: जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
0: इस हादसे की सबसे मार्मिक तस्वीर शायद वह है जो मैक्स अस्पताल के कमरे में मौजूद है। वहाँ एक बुजुर्ग पिता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें शायद अब भी अपने बेटे, बहू, पोतियों और परिवार के बाकी लोगों के आने का इंतजार होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिन कदमों की आहट का इंतजार था वो हमेशा के लिए थम चुके हैं। गुरुग्राम से अंजलि स्तिवाल और नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।
8: सोचिए, एक पूरा परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस कार से विवेक अग्रवाल का परिवार होटल गया था वो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है, जिसे ले जाने वाला अब कोई नहीं बचा।
9: विवेक और तर्जनी अग्रवाल अपने दोनों बेटियों के साथ फ्लरिश स्टे होटल में हौजरानी में थे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी, संभवतः इसी गाड़ी में बैठकर, मर्सिडीज में बैठकर वो साकेत मैक्स जाते, अपने पिता से मिलते, दोनों पोतियां दादा से मिलती, लेकिन अभी वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी। ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं, और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए। कितने सफर इस गाड़ी में विवेक और तर्जनी ने साथ में पूरे किए होंगे, उनकी बेटियों को लेकर कितने सपने उन्होंने देखे होंगे, लेकिन लापरवाही, लालच एक व्यक्ति की 21 लोगों की जान ले लेती है, और साथ ही साथ दिल्ली में अलग अलग एजेंसियों की गलतियां।
8: दिल्ली अग्निकांड के बाद आज सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री और अधिकारी शामिल थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं और सीएम ने यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार महकमे भले सो रहे थे लेकिन मालविया नगर के लोग जाग रहे थे। हमेशा की तरह इस अग्निकांड में भी सारे अफसर बाबू बीट ऑफिसर बच जाएंगे, लेकिन सल्यूट है उन नागरिकों को जिन्होंने लोगों को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। मिलिए मालविया नगर अग्निकांड के अग्निवीरों से।
10: जब पूरी इमारत धधक रही थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था, न भागने की जगह थी और न ही कोई रस्सी या सीढ़ी की जान बचा सके, तब मालवीय नगर के इन जाबाजों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिससे जो बन पड़ा सब लेकर दौड़ पड़ा कि कैसे भी जितने भी लोगों को बचा सके बचा लो।
11: खुद कूदे थे वो बच गए, माइनर इंजरी हुई उन लोगों को, वो बच गए। उसके बाद फायर आई है, एम्बुलेंसेज आई हैं, पुलिस की प्रशासन आया है और सब लोगों ने मिलकर के फिर अंदर से लोगों को निकाला है जिनकी सांसें चल रही थी, और डॉक्टर और नर्सेज की टीम भी आई है अपनी दवाइयों के साथ, उन्होंने सीपीआर भी दिया है, ऑक्सीजन भी दी है। और जो मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस में हम एक व्यक्ति को लेकर के एम्बुलेंस भगा रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं कि दूसरा तीसरा आएगा फटाफट से इलाज मिले, उसको भगा रहे हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस की लाइन लगी थी और आसपास भिकाजी कामा प्लेस से हमारे पास फायर आई है, नेहरू प्लेस से हमारे पास फायर आई है, ओखला से हमारे पास फायर आई है, जितने भी नजदीक फायर स्टेशन थे सब जगह से फायर आ गई है, एम्बुलेंस भी सब जगह से आ गई।
10: दिल्ली अग्निकांड के कई हीरो हैं जिन्होंने परवाह किए बगैर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद की। वसी राजा, अरमान, संजय और भी बहुत लोग थे, सबने अपने अपने हिस्से का प्रयास किया, तब जाकर 40 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी।
12: अरमान नाम के लड़के
13: की दुकान से हमने गद्दे उठाए, इसे मना नहीं करा,
12: इससे हमने नुकसान कराया,
13: इससे हमने बेडशीट लिए हैं जिनके ऊपर हम लोगों को
12: लेके
14: ऊपर से जो कूद रहे थे लोग,
12: पर हमारे पास उतारने के लिए कोई सामान नहीं था।
8: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: 515 and the nays were 208. The concurrent resolution is adopted.
1: ये तस्वीर अमेरिकी संसद में हुई वोटिंग की है. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 215 वोट और पक्ष में 208 वोट. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप पर लगाम लगाने के लिए चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वोट किया. बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान से युद्ध लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए हैं? क्या अमेरिकी संसद ने आधी रात को बड़ा खेल करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध वाले वीटो और पावर पर ताला लगा दिया है? जी हाँ, ईरान के साथ चल रही भीषण जंग के बीच वॉशिंगटन से जो खबर आई है उसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है. बिना संसद की मंजूरी के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया है. 215 बनाम 208 वोटों से पास हुए इस प्रस्ताव का सीधा मतलब है कि अब ट्रंप अपनी मर्जी से ईरान पर आगे हमले नहीं कर पाएंगे. अमेरिकी संसद ने ट्रंप के युद्ध अधिकार पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ट्रंप को रोकना क्या इतना आसान है? नहीं, ट्रंप के पास वीटो पावर है जिससे वो इस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं. ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर सकते हैं और इसे एक झटके में कूड़ेदान में डाल सकते हैं. अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो संसद के पास उन्हें झुकाने का एक ही तरीका है. अभी ट्रंप के खिलाफ 215 वोट पड़े हैं. दोबारा इसी प्रस्ताव को जबरन लागू कराने के लिए 290 से ज्यादा यानी दो तिहाई वोट चाहिए. वैसे ट्रंप भी जानते हैं कि अमेरिका में युद्ध को पसंद नहीं किया जा रहा है. लोग महंगाई से परेशान हैं, इसीलिए वो मीडिया में ईरान से सुलह की बातें कर रहे हैं.
2: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
3: Mr. President,
2: it could happen. I mean, if it happens, I mean, it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है. उसने दो टूक कह दिया है कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस हफ्ते ईरान से कोई समझौता करेंगे या संसद के प्रस्ताव पर वीटो लगाकर ईरान में कोई बड़ा धमाका. आज तक ब्यूरो.

0: এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে
1: বেঙ্গল ইজ নট বিং রিলিজড ফর দ্য এনসিসি।
2: पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, बागी गुट के ऋतव्रत, चीफ व्हिप दो हैं। ममता के चीफ व्हिप फिरहाद हाकिम, बागी गुट के चीफ व्हिप अकरुज्जमा, उपनेता विपक्ष 6 हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी, बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा। मतलब साफ हो गया, ममता की पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ व्हिप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी। दरअसल मामला ये कि 4 मई के नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई। आरोप है किसी चिट्ठी में वो फर्जी दस्तखत कर दिए गए, जिसकी सीआईडी जांच चल रही है। अब सवाल है कि 2/3 बहुमत के साथ 80 में 60 विधायकों ने अलग गुट तो बना लिया, लेकिन अभी लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अलग गुट को दलबदल कानून से बचने के लिए 19 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के गुट की जरूरत है। बीजेपी के नेता सौमित्र खान कह चुके हैं कि 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। ये भी पता चलता है कि ममता धरना भी देती हैं, तो सिर्फ 6 सांसद पहुंचते हैं। और अफवाह ये भी कि आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ 8 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के असली कैडर को फिक्र होने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी के दागी सब जांच और कार्रवाई के डर से बीजेपी में चले गए, बाकी बचे खुचे नेताओं ने अलग गुट बना लिया, अब आम कार्यकर्ता चाहे तो कांग्रेस में आ जाए। कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने अलग गुट बनाकर विधायकों के समर्थन का दावा किया। बंगाल में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भी स्पीकर ने बागी गुट को मान्यता दी। बंगाल में भी स्पीकर ने वही किया। महाराष्ट्र में भी शिंदे ने ठाकरे की तस्वीरें लगाकर रखी थी। बंगाल में भी बागी गुट ममता का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बस फर्क ये कि बंगाल में अलग पार्टी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जब विधायक अभिषेक का नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं और ममता अभिषेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में टीएमसी पर कब्जे की लड़ाई अदालत से चुनाव आयोग तक जाने वाली है। वैसे शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिया आदेश में साफ कहा था कि पार्टी के व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल की ओर से की जाती है, न कि विधायी दल की ओर से। इसके अलावा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाता है, न कि विधायी दल की तरफ से। इस आदेश के नजरिए से कानूनी लड़ाई में ममता के लिए विकल्प खुले दिखते हैं। हालांकि टीएमसी ने अब तक अदालत का रुख नहीं किया। ममता बनर्जी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग करके पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
3: लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतव्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन अब घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट चोट चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में जमहूरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जमहूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
4: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
5: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां

0: हमारे लोगों को मारा जाता, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
1: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
0: वो बताएंगे वो जो लोग वहाँ पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
1: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो कद्दावर।
0: हम सुनिए ना, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है, हम उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एडवाइजर होके हम लोगों चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।

0: विशेष में अब इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बाकी नेता ऋतुव्रत को निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का कटाक्ष। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का निर्णय। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश से तरुण चुग, राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। जमीनी नेताओं को प्राथमिकता। अहमदाबाद में योगासन विश्व चैंपियनशिप का आगाज। पीएम बोले, योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार। एकजुट होता है मन शरीर और आत्मा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर देश की राजनीति से आ रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त का इंतजार करने को कह रहे थे वो वक्त आ चुका है? क्या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में विपक्ष को झटका देने और इंडिया गठबंधन में बिखराव के बीच अगले महीने विपक्ष को नया झटका देने और बिखेरने की रणनीति प्रधानमंत्री ने बना ली है? मानसून सत्र संभव है कि अगले महीने शुरू होगा, उससे पहले नरेंद्र मोदी फिर से उस बिल को तैयार करने लगे हैं जिस पर विपक्ष ने एकजुट होकर एक बार जीत का स्वाद चखा है, लेकिन अब हार का सामना करना पड़ सकता है।
1: क्या नरेंद्र मोदी को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आने वाला है?
2: सिर्फ वक्त का इंतजार है।
1: क्या एक महीने के भीतर नरेंद्र मोदी विपक्ष को नया झटका दे सकते हैं?
2: हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे।
1: क्या राहुल गांधी की एक साल वाली चुनौती को नरेंद्र मोदी ने एक महीने में तोड़ देने का लक्ष्य बना लिया है?
2: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: संसद के विशेष सत्र में अप्रैल महीने के भीतर विपक्ष की एकजुटता से मिली महिला आरक्षण बिल वाली हार पर इस वक्त नरेंद्र मोदी नई रणनीति बना चुके हैं। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में हार के बाद बिखरे हुए विपक्ष को और बिखेर देने का ट्रेलर 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने दिया था। अब उसकी पिक्चर विपक्ष को मानसून सत्र में दिखा सकती है सरकार।
2: मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए
1: 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल के पास नहीं होने पर यह बयान दिया था।
2: आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है।
1: अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से एक वादा किया कि भले ही उनके पास आज संख्या बल ना हो, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे।
2: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है।
1: नरेंद्र मोदी ने वक्त के इंतजार की बात ऐसे ही नहीं कही, शायद वो जान रहे थे कि 4 मई के बाद देश का राजनीतिक नक्शा नई करवट लेगा और सही वक्त में फिर से अपनी कोशिशें वो शुरू कर देंगे। सूत्रों से जो जानकारी आई उसके मुताबिक लगता है नरेंद्र मोदी जिस वक्त का इंतजार करने को कह रहे थे वो वक्त आ गया। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार परिसीमन पर आम सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से विचार भी कर रही है। सूत्र कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद परिसीमन के पक्ष में हैं और उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। डीएमके ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है और वो सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। मतलब बदले राजनीतिक हालात में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल के रास्ते की हर रुकावट को हटाने में जुटी है ताकि महिलाओं से किया पीएम का वादा पूरा किया जा सके।
2: मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे।
1: अप्रैल में महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े विवाद के आधार पर इसलिए विरोध किया था क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहना था कि यह सरकार महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती है। इसी के चलते 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए तब बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट रहे जबकि इसके विरोध में 230 मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में दो तिहाई 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्ष की एकता के चलते तब नहीं मिल पाया।
3: जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया।
1: राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने तब इसे मोदी सरकार की हार के रूप में पेश किया, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष की एकता बिखरती जा रही है। टीवीके के साथ जाने पर डीएमके कांग्रेस से नाराज है, तो तृणमूल कांग्रेस में टूट का खतरा। अगर दोनों पार्टियों के सांसदों को सरकार इस बिल पर अपनी बात समझाने में कामयाब रहती है, तो फिर सरकार की राह आसान हो सकती है।
2: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं, हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
1: अगर 22 सांसदों वाली डीएमके बिल को समर्थन देने के लिए राजी हो जाती है और टीएमसी सांसदों का एक धड़ा भी साथ आ जाता है, तो फिर सरकार बिल को पास करवाने के संख्याबल के करीब पहुंच सकती है। डीएमके और टीएमसी के सांसदों की इसी अहमियत को देखते हुए सरकार की तरफ से इस बिल पर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से डीएमके ने संसद में अलग बैठने और 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में न आने का ऐलान किया है, उसे सरकार के इस मिशन को लेकर सकारात्मक संदेश भी माना जा सकता है।
0: विपक्षी एकता में दरार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संसद में डीएमके मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस से अलग बैठती दिखेगी, जिसकी अलग बैठने की मांग को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार स्टालिन के सांसद लोकसभा में वहां बैठे दिख सकते हैं, जहां पर फिलहाल टीएमसी के सांसद बैठते हैं। प्रस्तावित फेरबदल के तहत पहली लाइन में जिस सीट पर अभिषेक बनर्जी बैठते हैं, वो सीट डीएमके नेता टीआर बालू को दी जा सकती है। वहीं ममता के सांसदों को अब स्टालिन के सांसद की जगह बैठने को दी जा सकती है। विधानसभा के बाद अब संसद में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। टीएमसी सांसदों के भी टूटने के दावे होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सांसद पाला बदलना चाहते हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने आज तक से बातचीत में बड़ा दावा किया। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि टीएमसी के ज्यादातर सांसद कभी भी बगावत कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर संसद में पार्टी टूटती है तो ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी के सांसद भी अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हैं तो विपक्ष के लिए भी ये झटका होगा।
1: ममता बनर्जी के साथ 20 विधायक और ऋतुव्रत बनर्जी के साथ 60 विधायकों का दावा। 4 मई से पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के विधायक बगावत कर देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत? क्या विधायकों की तरह ममता बनर्जी को अब उनके सांसद भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं?
4: मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं है?
5: मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ।
4: और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है?
5: देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता।
4: नहीं, बातचीत तो होती होगी।
5: बातचीत होती है, मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर नहीं है।
1: तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की बगावत के बाद सांसदों के पाला बदलने या बागी गुट बनाने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ये दावा तृणमूल के ही पुराने नेता और राज्यसभा से सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में खुलकर बताया कि तृणमूल कांग्रेस में सांसदों की बगावत अब सिर्फ वक्त की बात है।
5: तो दो गाय थे, ये अभी तक जितना सुनने में आया कि चंद दिनों में लोकसभा में वो बंगाल वाला सिचुएशन रिपीट होने जा रहा है। चंद दिनों में, ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करने पड़ेगा।
1: चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष, जो ममता की दशकों पुरानी साथी रही, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के कई संकेत पहले से निकाले जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या विधायकों की तरह ममता के लोकसभा के सांसद भी अलग गुट बना सकते हैं? क्या शिवसेना और एनसीपी की तरह संसद में तृणमूल कांग्रेस का भी नया गुट बीजेपी के साथ बैठा दिखाई देगा, या फिर आम आदमी पार्टी के सांसदों की तरह तृणमूल के ज्यादातर सांसद बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे?
4: कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर?
5: 29 नहीं, 28 है।
4: 28
5: बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाईकोर्ट में,
4: तो क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है
5: मेजोरिटी चला जाए?
4: ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजोरिटी ही चला जाएगा?
5: मेजोरिटी चला जाएगा।
1: लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हैं, तो राज्यसभा में 13। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होने के बाद एनडीए की ताकत 141 सांसदों की हो गई। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत होगी। इस तरह एनडीए के साथ अगर टीएमसी का एक बड़ा धड़ा आ जाता है तो राज्यसभा में एनडीए का 2/3 बहुमत हो जाएगा, जिससे मोदी सरकार अपने एजेंडे वाले कई बिल पास करवा सकेगी।
4: और राज्यसभा में?
5: राज्यसभा में अभी तक कोई सिलसिला ऐसा नहीं है, शुरू नहीं हुआ ऐसा सिलसिला, लेकिन विधानसभा में जब हुआ, लोकसभा में जब होने वाला है, तो राज्यसभा बाहर कितने दिन बाहर रहेंगे? राज्यसभा में भी हो सकता है।
4: तब तो सवाल बनता है आपके ऊपर भी।
1: पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के रहते हुए भी उनके भतीजे को लेकर विद्रोह पार्टी में हो चुका है। अलग हुए विधायक सीधे सीधे हार के लिए अभिषेक की तरफ उंगली उठाते आ रहे हैं।
6: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
1: ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। पार्टी के नए चुने गए 80 विधायकों में करीब 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। ऋतुव्रत बनर्जी और उनके करीबी सहयोगी संदीपन साहा को पार्टी से निकालने के बावजूद ये टूट नहीं रुकी। अभी पार्टी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि ममता बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि ममता के लिए अभी सबसे मुश्किल समय है। फिर भी फिरहाद हकीम नहीं माने, जो बताता है कि पार्टी में हार का गहरा असर हुआ है।
5: देखिए, आम जनता बार बार सिग्नल दिया, लेकिन हमारे सरकार एक भी सिग्नल को या तो समझा नहीं या माना नहीं, या समझा भी था लेकिन माना नहीं। उसको जो नतीजा निकला था, जो हालत होना था, वो हो गया।
1: 4 मई के बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली गईं। पार्टी तो हारी ही, वो खुद भवानीपुर से चुनाव हारी। इसके बाद पलता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान ने मैदान छोड़ा, जिसने बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। पर सबसे बड़ा झटका विधायकों की बगावत से लगा, जिसने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दिया है। नौबत यह आ गई कि टीएमसी के पूर्व नेता रहे हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का अब ऑफर देने लगे हैं। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पर सवाल है कि क्या अभिषेक के खिलाफ यह आक्रोश उनके लोकसभा सांसदों में भी है, जिनके पार्टी से छिटकने से संसद में ममता बनर्जी की ताकत और अहमियत दोनों घट जाएगी?
7: तृणमूल कांग्रेस में हार के बाद जो टूट हुई है, उसमें कई मुस्लिम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। इसमें पूर्व मंत्री और ममता के करीबी नेता जावेद अहमद खान शामिल हैं, जो अब पार्टी की हार के लिए ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं। जावेद अहमद खान की तरह ममता के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के मेयर का पद छोड़ दिया है।
8: थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, वक्त बदल गया है। द प्राइम मिनिस्टर नाउ लीड्स अ क्रीकी वल्नरेबल शेकी कोलिजन एंड इट लीड्स अ कोलिजन गवर्नमेंट व्हिच इज जस्ट वेटिंग टू ब्लो अप।
1: अभिषेक बनर्जी की ये तेवर 2024 में मोदी सरकार की 240 सीटों पर अटकने के बाद सबने देखे। जो अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नंबर दो नेता की हैसियत से मोदी सरकार को ललकारते रहे, वो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जाने के बाद बागियों की नजर में हार की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। नौबत ये आ गई है कि कोई उनका नाम तक सुनना नहीं चाहता, उन्हें पहचानने तक को तैयार नहीं है।
9: हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री है।
1: जावेद अहमद खान का ये कहना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी के अच्छे दिनों में जावेद अहमद खान की गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होती रही। वर्षों तक वो पार्टी के मुस्लिम चेहरे रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा समेत कई पद संभाले, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार क्या गई, इन्होंने अभिषेक को पहचानने से इनकार कर दिया, पार्टी में खामियों की लंबी फहरिस्त पकड़ा दी।
9: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
1: जावेद अहमद खान आज भले अभिषेक से नाराजगी के नाम पर ममता को मुसीबत में अकेला छोड़कर बाग

0: लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सिस्टम हिल चुका है। राहुल गांधी कहते हैं कि या तो मोदी सरकार गिरेगी या इमरजेंसी लगेगी।
1: और नरेंद्र मोदी ने
0: राहुल गांधी कहते हैं कि एक साल के अंदर मोदी पीएम नहीं रहेंगे।
1: बंद करवा।
2: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है।
0: अमेरिका और ईरान की जंग के दुष्प्रभावों के आधार पर राहुल गांधी आर्थिक सुनामी के दावे लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जो नई बात उन्होंने की है वो सिस्टम के हिलने को लेकर कही।
2: दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाए। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है, और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है।
0: राहुल गांधी ने ये बातें पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के आयोजित एक कार्यक्रम में कही, इमरजेंसी लगने तक का दावा किया। लेकिन बीजेपी का ये सवाल है कि जिस प्रधानमंत्री ने एक भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, वो कांग्रेस की तरह इमरजेंसी क्यों लगाएंगे?
2: अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल ने संस्थागत विद्रोह की बात कही हो। पिछले साल सितंबर में राहुल ने नेपाल में जेनजी के विद्रोह के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब नौजवान छात्र जेनजी ही संविधान को बचाएंगे। बीजेपी की तरफ से इसे भड़काने की कोशिश कहा गया। राहुल के ताजा बयान पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं।
3: चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए, ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया है कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा है।
4: बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है, इन लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता है। लोकतंत्र क्या होता है, मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है।
0: पिछले महीने भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के ही कार्यक्रम में मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की, जिसमें अब इमरजेंसी लगाने का नया दावा जोड़ दिया है।
5: और अब आपको आम आदमी की मारी जाती आकांक्षा पर खबरदार करते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि बेटा और बेटी पढ़े, डॉक्टर या इंजीनियर, या फिर जो वो सपना देखते हैं वो पूरा करें। लेकिन जब पेपर लीक बेटियों को मारने लग जाए तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए।
6: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
0: लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट है। हम कहते हैं कि ये नीट पेपर लीक की वजह से हुई एक छात्रा की हत्या की चार्जशीट है।

0: नीट पेपर लीक में चार्जशीट जो कहती है कि केवल पेपर नहीं लीक हुआ बल्कि आकांक्षा और उसके मम्मी पापा का भरोसा तोड़ा गया। आकांक्षा जैसे लाखों छात्रों को दोबारा इम्तिहान के प्रेशर में धकेला गया। पहले परीक्षा में अच्छा नंबर आने की उम्मीद लगाए छात्रों के दिल दिमाग में फिर से उतना ही अच्छा एग्जाम करने के लिए डराया गया। एक बेटी को सुसाइड के लिए उकसाया गया। किसको? आकांक्षा चतुर्वेदी को। 19 साल की आकांक्षा 3 मई को जब नीट की परीक्षा हुई नागपुर के सेंटर पर आकांक्षा कृष्ण कुमार चतुर्वेदी रोल नंबर 3111105245 बहुत मन से अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने पहुंची। बहुत अच्छा पेपर दिया। इस तस्वीर में जिस तरह मुस्कुराती आकांक्षा दिखती है उसी तरह घर आकर हंसती खिलखिलाती दिखी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही दिन के भीतर जिस कॉपी में वो अपने डॉक्टर बनने के सपनों की तैयारी करती थी उसी में नीट पेपर लीक के बाद टूट गई आकांक्षा अपनी अपने मम्मी पापा की हर आकांक्षा को मार देने का ये दहला देने वाला सुसाइड नोट लिख देगी।
1: बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई। खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वात करने में भी ज्यादा उत्सुक नहीं रहती थी।
2: बहुत बड़ा नाम होगा
3: ऐसा बोलती
2: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी उसके नाम की आगे डॉक्टर लग जाए।
0: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में रहने वाला चतुर्वेदी परिवार जिनके बेटे बहू कृष्ण कुमार और नीलम चतुर्वेदी ने पढ़ने में होशियार बेटी के लिए वो सब कुछ किया जो हमारे देश में एक आम माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कोचिंग और दूसरे खर्च के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए और बाकी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया।
3: जो उसका एग्जाम हुआ था जैसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। डॉक्टर बनने का पूरा मन था
4: अपनी मर्जी से उसने पढ़ाई कर रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी क्योंकि उसके पिताजी का भी 2 ऑपरेशन हो गया, 3 पैरालाइज मार दिया और हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे। हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे। कैसे भी हम अपने दिन निकाल रहे थे बच्चों के इसमें।
2: भाई तक अपने खेत गिरवी कर दिया तो मेरी बेटी आ जाएगी तो इतना जितना जिसको पैसे चाहिए तो क्या मालूम।
0: छोटे शहर में बेटी की बड़ी उम्मीदें दब न जाए इसलिए नागपुर की निजी कोचिंग में जाकर परिवार बेटी को तैयारी कराने लगा। किसान पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में रसोइये की नौकरी करने लगे ताकि बेटी को वहां रहकर साथ दे सके। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद आकांक्षा टूटने लगी। कहां तो उसे परीक्षा देने के बाद लगा था कि 650 नंबर आ जाएंगे, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। आम आदमी मेहनती जितना भी होता है अपनी किस्मत से बस डरता है।
5: हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसका ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और उसने पढ़ाई करी, उसकी अच्छी मार्क्स भी आए थे, 650 के ऊपर थी, कम नहीं थी। पेपर देने के बाद लीक होने का सुनी तो बहुत टेंशन में आ गई। लोन लेके पढ़ाया था, लोगों से कर्ज ले लेके हमने उसको इतनी दूर पहुँचाई। हमने अपनी लड़की को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए तैयार किए थे और उसका भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और
6: बहुत होनहार थी।
5: हम लोग का भी था और उसने अच्छे नंबर भी हमेशा लाती थी। सिर्फ यही दुख है कि ना ये डॉक्टरी करना ये डिसीजन उसका होता शायद।
0: इस हाल पर लाकर छोड़ दिया है कि एक माँ को लगने लगा कि काश बेटी ने डॉक्टर बनने का सपना ही ना देखा होता। भले सरकार कहे कि उसने सख्त एक्शन लिया, पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन चतुर्वेदी परिवार आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार केवल सरकार को मानता है।
3: इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं?
4: हम जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कुछ बोले होते, कुछ प्रेशर दिए होते तो उसका जिम्मेदार हम थे, लेकिन लीक हुआ तो सरकार ही हुआ जिम्मेदार।
0: आकांक्षा ने खुदकुशी 20 मई को नागपुर में की थी। अब उसका ये सुसाइड नोट सामने आया। वो सुसाइड नोट जिसमें भारत के हर आम परिवार की उभरती आकांक्षाओं के सरकारी आपराधिक लापरवाहियों से दम तोड़ देने की गवाही है। राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि एक पिता जो कर सकते थे सब किया, फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उस अनिश्चितता में आकांक्षा छोड़कर चली गई। आकांक्षा की खुदकुशी पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट पर लिखा है कि जब बीजेपी के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या एक बेबस बेटी का यह आखिरी खत भी लगाया जाएगा।
6: नीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की और सीबीआई को जांच दिया और नए एग्जामिनेशन के लिए किया। दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
0: राहुल गांधी की पार्टी के एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ दूसरे नेताओं के साथ आकांक्षा के परिवार से मिले, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है, लेकिन क्या सरकार से कोई मदद देने ढांढस बंधाने आया?
3: सरकार से कोई मदद आप लोगों?
4: सरकार से हमको अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया।
7: सरकार या प्रशासन कोई भी आपके?
1: नहीं, कोई आज तक नहीं आया, न कोई शासन का आदमी आया, न प्रशासन का आदमी आया।
7: किसी ने कोई मदद?
1: कोई मदद नहीं की।
0: आकांक्षा को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रतिनिधि इनके घर पहुंचकर सांत्वना के दो शब्द तो बोल सकते थे, या फिर उसके लिए भी किसी जांच का इंतजार करेंगे नेता? बाकी हर तरह की आर्थिक मदद इस परिवार को और देश में नीट पेपर लीक से जांच गवाने वाले हर परिवार को मिलनी चाहिए, और ये भरोसा तो पुख्ता तौर पर कि फिर किसी आम परिवार की आकांक्षा किसी पेपर लीक की वजह से मरने नहीं दी जाएगी।
8: और अब खबर दिल्ली में होटल में लगी मौत की आग से जुड़ी, जहां आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक करके सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आरोपी लवकेश बजाज 4 दिन पुलिस रिमांड में रहेगा, लेकिन सवाल तो जनता का है, वो जनता जो दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं, जहां एक जिंदगी ही नहीं, एक पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया।
0: लोग तस्वीरें इसीलिए खिंचवाते हैं ताकि खुशनुमा पल हमेशा यादों के पिटारे में दर्ज रहे। वो पिटारा जो कभी खुले तो वापस दिमाग की टाइम मशीन के जरिए पीछे जाकर उस पल को याद किया जाए, जब परिवार इकट्ठा हुआ, खुश हुआ, आपस में मिले, खिलखिलाए। कितना अच्छा लगता है हंसता हुआ एक परिवार देखना। एक साथ जलती ये 5 चिताएं नहीं, ये पूरे परिवार को खत्म कर देने वाली आपराधिक लापरवाही के बाद सुलगते सवाल, जो बताते हैं कि आप चाहे जितना भी टैक्स भरकर देश के किसी भी सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे वाले शहर में रहकर खुद को सुरक्षित समझने की सोचिए, लेकिन आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं। जानते हैं ये चिताएं किसकी? ये चिता है एक बेटे की, नाम विवेक अग्रवाल, उम्र 45 साल, जिन्होंने सोचा कि अस्पताल में भर्ती कैंसर से जूझते पिता के अंतिम वक्त में ज्यादा से ज्यादा देर उनके पास पूरा परिवार रहे। ये चिता एक पत्नी की है, 42 साल की तर्जनी अग्रवाल, जो अस्पताल में भर्ती ससुर के अंतिम वक्त में हर तरह से सेवा के साथ ध्यान देने का धर्म निभाने पहुंची। ये चिता 20 साल की जीविशा की है, घर में जिसे सब एंजल कहते थे, वो एंजल जो अपने पापा के कहने पर बेंगलुरु के कॉलेज से घर लौटी ताकि बीमार दादा के साथ वक्त बिता सके। ये चिता 18 साल की वर्या की भी है, जिसे घर में सब पर्ल कहते थे, पर्ल यानी मोती, मोती जैसी मुस्कान वाली बिटिया थी, पापा, मम्मी, दीदी और अपनी दादी 70 साल की प्रेमलता अग्रवाल के साथ इसी चिता में जल रही। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में हंसता खेलता रहा ये परिवार, क्या मौत के बाद ये सोच पा रहा होगा कि मरने से पहले अस्पताल में जलना ज्यादा कष्टकारी है या फिर मरने के बाद चिता में जलना।
9: बेटी है तर्जनी अग्रवाल, एज 42 ईयर्स, एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाइए, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है एज है 17 ईयर्स, बढ़िया वो भी गुजर गए दोनों। छह के छह हमारे, उनमें से दो मिस है, बाकी भी गुजर गए।
10: अच्छा,
9: हमारे 8 आदमी।
10: अच्छा, 8 आदमी।
9: हाँ जी,
10: कौन लोग थे, क्या
9: मेरी मेरी बेटी है, मेरा दामाद है।
0: असल में मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी वो मैक्स अस्पताल के नजदीक है, जहां इनके पिता कैंसर की वजह से इलाज कराते। पिता चाहते थे कि अंतिम वक्त में परिवार साथ रहे। ये पूरा परिवार अपने मौसी मौसा मामा के साथ मिलने पहुंचा। मालवीय नगर की होटल में रुक गए, लेकिन फिर 3 जून की सुबह होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत के बीच एक परिवार के 8 लोग दम तोड़ते हैं।
11: गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाला एक परिवार विवेक अग्रवाल अपने पूरी फैमिली के साथ, माँ के साथ, बीवी के साथ, दोनों बेटियों के साथ मैक्स अस्पताल में पहुंचे थे। दरअसल मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में विवेक अग्रवाल के पिता एडमिट हैं, लंग्स की प्रॉब्लम के चलते उन्हें वहां पे भर्ती कराया गया था, जिनकी देखरेख के लिए अपने परिवार के साथ अक्सर विवेक अग्रवाल और उनकी बीवी आते जाते रहते थे। इसी दौरान उस होटल में ये पूरा परिवार रुका था, इनसे मिलने के लिए यानी विवेक अग्रवाल के पिता से मिलने के लिए भी उनके मौसा मौसी और मामा भी पहुंचे थे, जो कि उस होटल में रुके थे और कल हुए दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए।
0: होटल में आग लगी, इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक हो गया, परिवार का धुएं में दम घुटने लगा। विवेक ने आखिरी कॉल अपने रिश्तेदार को किया और सिर्फ इतना कहा, बेटियों को बचा लो। सुनकर रूह कांप जाती है, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा था, पत्नी माँ बेटियां मौसी मौसा मामा सब इस आग की चपेट में थे। कमरे में धुआं भरा, सांसों ने सबका साथ छोड़ दिया। अग्रवाल परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहता था। सीए विवेक अग्रवाल ने इतना बड़ा घर बनाया ईमानदारी से पैसे कमाकर, ईमानदारी से टैक्स भरकर, ईमानदारी से पिता का धर्म निभाते कि बेटियां पढ़ लें। विवेक अग्रवाल ने ईमानदारी से हर धर्म निभाया, पिता का, बेटे का, पति का। लेकिन क्या दिल्ली में सरकार और सरकारी व्यवस्था जनता के प्रति ईमानदारी से कर्तव्य निभा पाई? जवाब है नहीं।
12: जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
13: लोग निशब्द है कि ऐसा हुआ, और इस पे कोई शब्द नहीं है, इसकी मतलब इतना दुख है। पूरा परिवार चला गया, दोनों बेटी माँ तर्जनी, उसकी वाइफ विवेक खुद, हम लोग साथ में साइकिलिंग करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, इतनी यादें हैं विवेक के साथ। बहुत दुखी हूँ, तर्जनी भी बहुत रिगार्ड करती थी, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों का, बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ दोनों, दोनों में बड़ा ही लगाव हम लोग देखते थे, दोनों बच्चियां बड़ी प्यारी थी। तो बहुत दुख है,
0: पूरा परिवार खत्म। पता नहीं अस्पताल में भर्ती उनके बुजुर्ग पिता को किसने ये बिजली गिरा देने वाली खबर दी होगी। अपराध की भाषा में इसे सामूहिक हत्याकांड कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल 11 रातन हत्या के नाम पर उस लवकेश बजाज को दिल्ली पुलिस पकड़ पाई, जो होटल का मालिक, इसके मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी है। उन्हें तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन कोई इस अग्रवाल परिवार को वापस जिंदा नहीं कर सकता। काश पहले अगर सरकार और सरकारी विभागों ने नियम तोड़कर चलते होटल पर चिंता जताई होती, तो विवेक अग्रवाल, तर्जनी अग्रवाल, बेटी पर्ल, बेटी एंजल, माँ प्रेमलता, मामा मौसा मौसी सबकी एक साथ चिता न जल रही होती।
8: जनता के हक में हम लगातार खबरदार करते हैं। आज जनता के पानी के मुद्दे को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि जो जल जीवन मिशन आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खबरदार करती रिपोर्ट देखिए।
0: पानी पीता आम आदमी अच्छा लगता है, लगता है पानी तो है कम से कम पीने को, लेकिन ये पानी कहां से लिया गया? क्या आज मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के जल मंत्री, देश के जल जीवन मिशन को संभालने वाले मंत्री देख पाएंगे? जहां पता चलता है कि जनता के लिए प्रधानमंत्री के सबसे जरूरी मिशन जल जीवन मिशन को अधिकारियों ने कागज पर 100% पूरा दिखाकर झाबुआ में उसे गड्ढे में डुबा दिया। २०२६ में भी जहां जनता गटर जैसे दिखने वाले पानी के सहारे जीने को मजबूर है, इसीलिए जनता के हक और हित में खबरदार करने आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश में झाबुआ के खेड़ा गांव पहुंचे हैं।
14: हम गलती ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हैं, जो झाबुआ जिले में आता है और जिला मुख्यालय से करीब करीब अगर आप मान के चलें तो 25 किलोमीटर दूर इस गांव में भामची नदी में महिलाएं गड्ढा खोद के इस तरीके से पानी भरने को मजबूर है। ये साल 2026 की तस्वीर है, सोचिए 6 साल पहले इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। 4 साल पहले वो पाइप बिछ भी गए लेकिन उन पाइपों में आज तक पानी नहीं आया है और यही वजह है कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर आकर के इन महिलाओं को इस भामची नदी पे इस तपती दोपहरी में करीब 43 डिग्री सेल्सियस में जहां खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ये महिलाएं करीब 1 किलोमीटर का सफर करके इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को पार करके यहां पहुंचती हैं और फिर इन गड्ढों से पानी भर के वापस 1 किलोमीटर दूर अपने गांव खेड़ा जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजाना हर 2 से 3 दिन में इनको ये क्रम दोहराना होता है क्योंकि साल भर इस गांव के लोग इस भामची नदी के पानी पर ही निर्भर रहते हैं।
0: ये जिस गड्ढे से पानी भरती दिख रही है ये एक नदी का हिस्सा है। बारिश में पानी लेना आसान हो जाता है, बहती नदी होती है। गर्मी में नदी का पानी गड्ढों में सिमट जाता है।
14: नहीं, आप लोग रोज ऐसी भरते हैं?
15: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए।
14: अच्छा,
15: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी। ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है, रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे।
14: अच्छा,
15: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे। यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं, उधर सब ये जंगल आ रहा है इसलिए।
14: क्यों, आपके गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
15: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया। अच्छा। पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन तो है, 4 साल हो गया पाइपलाइन आया।
14: 4 साल?
15: हाँ, 4 साल हो गया।
0: जिस जगह रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश में झाबुआ से रिपोर्ट करने पहुंचे, यहां 6 साल पहले जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ। कहने को 4 साल पहले काम पूरा हो गया, फिर भी 43 डिग्री का पारा और महिलाओं को 2 किलोमीटर का सफर पानी लाने ले जाने में तय करना पड़ रहा है। नेता तो यहां चुनाव में आते हैं वोट मांगने, लेकिन अभी आना चाहिए, तब जनता की समस्या पता चलेगी, ये समस्या कितनी भारी है। इसीलिए महिलाओं के हक में, महिलाओं का दर्द समझने को पानी की गगरी लेकर रवीश पाल सिंह चलते हैं ताकि पीड़ा को आप तक महसूस करके पहुंचा सकें।
14: रोजाना जो महिलाएं ये कई कई लीटर पानी भर के अपने सर पे या कंधों पे रख के चलती हैं, तो ये कितना तकलीफदेह होता होगा, इसे समझने की कोशिश की है मैंने। और आप यकीन मानेंगे कि ये 5 लीटर का ये जो मैंने स्टील का ये पूरा मटका लिया हुआ है, इसने एहसास करा दिया है कि रोजाना किन परिस्थितियों में महिलाएं यहां से पानी भर के रोज जाती होंगी। करीब 500 मीटर ये महिलाएं अब चल चुकी हैं। पीछे अगर आप वो जगह देखें जहां से ये पानी भर के आ रही थी, ये टीले के दूसरी तरफ का वो हिस्सा है जहां से ये पानी भर के आई थी। और अभी हम जिस जगह पे हैं यहां से और हमें तकरीबन 500 मीटर जाना है। आप इस इलाके को देखिए, ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं जिसमें आपको दूर दूर तक पेड़ की छांव तक नजर नहीं आएगी, यानी एक बार अगर आपने पानी उठा लिया सर पे या कंधे पे तो फिर आपको सीधे गांव जाके रुकना है क्योंकि रास्ते में ये पथरीले टीले हैं, बबूल के पेड़ हैं जिनसे छांव की तो उम्मीद आप मत ही करिए। और इन सब के बीच में हमने कोशिश की है समझने की कि आखिर क्या हालात होते होंगे इन महिलाओं के जिनको रोजाना ये 5-5 लीटर 7-7 लीटर पानी ले करके अपने सर पे रख करके निकलना है। आप रोज करते हो क्या?
16: का ये मैं वो पानी ले जाइए हम
14: रोज।
16: हाँ, का ये रातें आप ये रातें कोई वदार मेहमान था ही ना तो रातें आओ पड़े हम उन्हें।
14: अच्छा।
16: हाँ, रातें आई थोड़ा पानी ले जाए सर हम।
14: चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, थोड़ा हिंदी में बताएंगे क्या बोल रही है अम्मा जी? वो कह रही है रोज आते हैं, क्या बोल रही है, रात को भी आना पड़ता है?
17: सुबह शाम से कायम पानी भरवा।
14: अच्छा,
17: कायम डेली आओ पड़े?
14: डेली
17: डेली।
14: आप देख सकते हैं मेरा तो हाथ अब जो है थोड़ा सा शेक करने लग गया है, कंधा जो है दर्द होना शुरू हो गया है, लेकिन ये तकलीफ जो है ये उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो इन महिलाओं को रोज होती है।
8: खेड़ा गांव का हाल तो आपने देख लिया। इसके बाद आज तक संवाददाता दूसरे गांव से खबरदार करने पहुंचे ताकि आप तक जमीनी सच पहुंच सके। दूसरे गांव में पता चला कि 2024 से जल जीवन मिशन की पाइप तो बिछी लेकिन आज भी पानी खरीद कर काम चलता है।
0: नल जब मुंह चिढ़ाने लगे, बताने लगे कि सरकारी फोटो में लगते दिखते नल और पाइप हकीकत में सरकारी दावों की तरह खाली हैं, तो जरूरी है खबरदार किया जाए। जगह पारा पंचायत बखतपुरा वार्ड जिला झाबुआ राज्य मध्य प्रदेश, जहां दावा है कि 2024 में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लगा। हालत ये, 100 रुपए देकर अब भी जनता टैंकर से पानी खरीद रही है। यहां घरों के बाहर आपको पानी से भरे ड्रम दिखेंगे। जो नल यहां जल जीवन मिशन के तहत लगे सूखे पड़े हैं। पूरा नल घुमा लीजिए, एक बूंद पानी नहीं टपकेगा।
14: झाबुआ जिले के बखतपुरा गांव में जल जीवन मिशन की क्या असलियत है, वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे 2 नल लगे हुए हैं जो कि जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए थे, लेकिन 4 साल हो चुका है नल लगे हुए, नल में जल अब तक नहीं आया है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव चला के दिखाते हैं, इस नल की स्थिति क्या है। ये नलों में टोटियाँ तो लग गई हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये बखतपुरा गांव है और ग्राम पंचायत पारा लगती है यहाँ पे झाबुआ जिले में। जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, ये बड़ी पंचायत है ग्राम पंचायत पारा, लेकिन ये नल आप देख रहे हैं पूरी टोटी घूम गई, लेकिन नल में से जल नहीं निकला है। और यही तस्वीर जो है यहाँ पे हम आपको दूसरे नलों की भी दिखाते हैं। ये नल यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पाइपलाइन आ गई है, पानी की पाइप है, ये जल जीवन मिशन के तहत ये पाइप आई है, लेकिन इससे आगे इसमें से पानी कभी नहीं आया।
0: नल जो लगे हैं वो अब पानी देने की जगह बकरियां बांधने के काम आने लगे।
14: जिस नल से पानी आना चाहिए था, वहां पर फिलहाल गांव के लोगों ने बकरियों को बांधा हुआ है, क्योंकि इस नल से पानी तो एक ही बार आया होगा जब टेस्टिंग हुई होगी, लेकिन अब यही जो नल है वो फिलहाल इन बकरियों को बांधने के काम आ रहा है, क्योंकि नल में से जल नहीं आता, लेकिन खूंटे के तौर पे इन नलों का इस्तेमाल अब ये इन बकरियों को बांधने में हो रहा है।
0: इसके बाद आज तक की टीम पहुंची झाबुआ जिले के धानलपुरा गांव। यहां 2024 से पानी की टंकी बनकर तैयार है। कुछ दिन पानी दिया भी गया, अब पानी की टंकी भी कहते हैं बेकार हो गई।
14: ये जो पानी की टंकी है, करीब 50,000 लीटर क्षमता है इस पानी की टंकी की। साल 2022-23 में ये टंकी यहाँ पर स्वीकृत हुई थी, जिसके बाद बन के तैयार हुई। और आप देखिए क्षमता इसकी लिखी हुई है 50,000 लीटर। 50,000 लीटर पानी इस टंकी में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है हम चल के आपको दिखाते हैं इस पानी की टंकी के अंदर। ये पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धानधलपुरा गाँव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए, उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है।
18: एक ही बार कुछ 4 से 5 दिन या कुछ 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी आया होगा। इसके बाद ना हमने कभी नल में पानी देखा और ना कभी पानी आया यहाँ पर। सर
14: फिर आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं?
18: सर अभी कुछ लोग कुएं से पानी पीते हैं और कुछ एक दो हैंडपम्प है वहाँ से पीते हैं। जी
14: टंकी से पानी आता है? नहीं
18: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर।
14: कब से?
18: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर।
14: अच्छा, और जी कितना पानी है अभी?
18: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर।
0: यही नहीं, टंकी से गांव के लोगों को पानी साफ मिले इसलिए यहां वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम भी लगा। उसे चालू करने के लिए लेकिन कनेक्शन देना विभाग भूल गया। हजारों रुपए की मशीन 2 साल से दीवार पर बिना इस्तेमाल के टंगी है।
14: इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया, लेकिन वो चालू कहाँ से हो? आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। दूर दूर तक यहाँ पे ऐसा कोई सॉकेट नहीं है जहाँ पे इस प्लग को लगाया जा सके।
0: पूरे झाबुआ में जल जीवन मिशन पर 430 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 713 में से 519 गांव में काम पूरा हो गया, लेकिन फिलहाल तमाम गांव में दावा है पूरा काम होकर भी पानी नहीं मिल रहा। अधिकारी ग्राम पंचायत को दोष देते हैं, मंत्री मौसम को।
19: वोटते तो हैंडओवर के बाद ग्राम पंचायत की जवाबदारी रहती ना, उसकी कंट्रीब्यूशन ले, उनको संचालित करे, वो संचालित नहीं करेंगे तो टूटेंगे।
20: ये जरूर है कि जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण।
0: कागज में योजनाएं पूरी हैं, फाइल में खर्च का हिसाब पूरा, लेकिन झाबुआ की प्यास अब भी अधूरी, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए योजनाओं के नाम पर बहे पानी नहीं बह पाया। यही वो सच्चाई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को उजागर करती है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल जवाबदेही का, क्योंकि लोग आज भी गड्ढों से पानी निकालने को मजबूर हैं, तो पूछना जरूरी है आखिर जल जीवन मिशन में जीवन किसे मिला, प्यास किसकी बाकी रह गई। रवीश पाल सिंह, झाबुआ आज तक।
8: खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
23: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
24: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
25: आगे आगे
26: अरे उधर
25: उधर गया
26: करेक्ट करेक्ट
27: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
29: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
28: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
30: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
31: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
32: लायन डेट नट बाइट्स।
33: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
9: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
8: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: गुरुग्राम की इस कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कोठी है सीए विवेक अग्रवाल की। दिल्ली के होटल की आग में विवेक अग्रवाल समेत परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विवेक अग्रवाल के 80 साल के पिता राधेश्याम अग्रवाल मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। गुरुग्राम से आने जाने में परेशानी से बचने के लिए परिवार के लोग इस होटल में रुके थे। अपनी मां प्रेमलता अग्रवाल, पत्नी तर्जनी, बेटी जीविशा उर्फ एंजल, वारिया उर्फ पर्ल के साथ रुके थे। होटल की आग में चारों की जान चली गई। यही नहीं, होटल में विवेक के ननिहाल पक्ष से 3 लोग राजस्थान से पहुंचे थे, उनकी भी इस अग्निकांड में मौत हो गई।
1: विवेक अग्रवाल जी कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए, और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: पड़ोसी सदमे में है। यकीन नहीं हो रहा कि खुश मिजाज मिलनसार अग्रवाल परिवार अब उनके बीच नहीं रहा।
2: बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे और सबसे मिलनसार, और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा।
3: मैं पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं, और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे।
0: दिल्ली के अग्निकांड में कुल 21 लोगों की जान गई, जिनमें 12 विदेशी और 9 भारतीय हैं। इन 9 भारतीयों में 8 लोग गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के थे। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: बहुत चुल मच रहा है कसम से, आज घर जाकर दहिया पूरा कपड़ा उतार के खुजाएंगे।
1: क्योंकि मैं आपकी खुजली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका जो दर्द है सही है, तकलीफ सही है, जो आप इतने दिनों से अपने छोटे से दिल में लेके इतना बड़ा पहाड़ घूम रहे हो,
0: अधूरा प्यार ही
1: तुम्हें दुनिया की सिम यार ठीक है मत दुराओ।
2: बिजुरी आई गए,
1: हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा राइट, ओ थोड़ा राइट, हाँ हाँ हाँ
2: यह अब ही नसिया पाया भैया।
3: अरे थोड़ा सा और ऊपर,
2: अरे लेफ्ट बोल रहा हूँ,
3: हाँ यही यही यही यही खुजा जोर से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि मेरे भारत में घुसपैठियों का क्या काम है। ये घुसपैठिए संसाधनों पर डाका डालने के साथ देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने गुजरात से 500 से ज्यादा घुसपैठियों को दबोचा है, जबकि 500 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सिर्फ अहमदाबाद के चंडोला इलाके से करीब 300 संदिग्धों को दबोचा गया है, जिनमें से 166 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग पिछले कई सालों से फर्जी पहचान पत्र बनाकर हिंदू नाम और पहचान के साथ रखकर लोगों के बीच छिपे हुए थे। आज आपको बताएंगे कि आखिर घुसपैठियों का ये पूरा सिंडिकेट और बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है। यूपी का खोड़ा और दिल्ली का उस्मानपुर हमारी अगली खबर। फासला सिर्फ कुछ किलोमीटर का, लेकिन इंसाफ और समाज के गुस्से का अंतर आसमान पाताल जैसा। दोनों जगह 17 साल के दो मासूम लड़कों को उनके ही दोस्तों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों ने खोड़ा में कड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, लेकिन उस्मानपुर में सन्नाटा है। आखिर क्यों, आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको युद्ध विराम यानी सीज फायर की एक नई और क्रांतिकारी परिभाषा बताएंगे। सौजन्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गोलियां तमीज और सलीके से चलाई जाएं, तो वो सीज फायर ही कहलाएंगी, यानी आप पर गोली चलेगी लेकिन संयमित तरीके से। दर्द तो होगा पर वो शांतिमय दर्द होगा। दुनिया त्राहिमाम कर रही है और यहां साहब फुल स्केल वॉर और मासूम सीज फायर का फर्क समझा रहे हैं। खुद अमेरिकी संसद को उन पर भरोसा नहीं रहा, पर वो दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि गोलियां संभल कर चल रही हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति का भारत दौरा कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। जिस देश से हम एक बूंद तेल भी नहीं खरीद रहे थे, वहां से अब हर दिन हम 4,17,000 बैरल कच्चा तेल मांग रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि हुक्मरानों के लिए इतना आसान है यह कह देना, एक लाइन का आदेश जारी करना, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन क्या इनके बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इन परीक्षाओं के लिए अपनी रातों की नींद गिरवी रख देते हैं। मध्य प्रदेश की आकांक्षा चतुर्वेदी ने सिस्टम के इसी धोखे से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। एक गरीब पिता ने लोन लेकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा था, पर पेपर माफियाओं ने सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन आज सबसे पहले ये कल्पना कीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी पहचान का पूरा ढांचा ही झूठ पर खड़ा है, जो इस देश के नागरिक ना होकर भी इस देश के सारे संसाधनों की लूट खसोट कर रहे हो और इन्हीं संसाधनों का आपके लिए एक सूखा हो। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई घुसपैठिया अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में कैसे आया, बल्कि आज सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, लेकिन कुछ सालों के भीतर उसके पास आधार कार्ड भी आ जाता है, राशन कार्ड भी आ जाता है, बैंक खाता खुल जाता है, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाता है, बिजली पानी का कनेक्शन मिल जाता है, वो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी भी बन जाता है, तो ये सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता। ये पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल बन जाता है, क्योंकि सीमा पर पार करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद पहचान, दस्तावेज, सुविधाएं और लाभ प्राप्त करना एक प्रक्रिया। और जब ये पूरी प्रक्रिया सफल हो जाती है, तब हमें ये पूछना पड़ता है कि आखिर इस देश में इन घुसपैठियों का क्या काम है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद शहर से आई हैं, जहां सिर्फ 24 घंटे में कुल 290 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 166 संदिग्धों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हो चुकी है। इनमें 41 पुरुष हैं, 95 महिलाएं और 30 बच्चे। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घुसपैठिए कैसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैल चुके हैं, और शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई मोहल्ला होगा जहां इनकी मौजूदगी ना हो। अहमदाबाद के जिस इलाके से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम, उस मोहल्ले का नाम है चंडोला। चंडोला में अवैध झुग्गियां हैं और अवैध मकान ज्यादा हैं, जहां से ये लोग आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों से यहां पर रह रहे थे। और क्राइम ब्रांच का दावा है कि इनमें 80% घुसपैठ ये 5 से 6 साल पहले भारत में आए थे। अब ये गुजरात तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा जैसे तमाम शहरों में कुल 501 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इतने ही संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। इसे फिर से सुन लीजिए कि पिछले सिर्फ 24 घंटे में ही गुजरात में 500 घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया है और 500 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर हमारी पुलिस घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ऐसा कोई अभियान चलाए तो सैकड़ों हजारों घुसपैठिए एक ही शहर और राज्य में आपको मिल जाएंगे। और ये एक बिजनेस मॉडल के तहत भारत में रह रहे हैं, जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है। गुजरात में जिन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में ये पता चला कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ये लोग सीमा कर पार करके भारत में दाखिल हुए थे। भारत में दाखिल होने के बाद इनकी मुलाकात कुछ एजेंट से कराई गई। जिनका काम क्या था? इन एजेंट्स का काम था इनके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बनवाना। इनमें भी कई लोगों के पहचान पत्र हाल के दिनों में बदले गए। और इन्हें जानते हैं कैसे बनाया गया? इन्हें AI, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया, जिसे लोगों के असली आधार कार्ड की कॉपी लेकर AI की मदद से उनमें तस्वीर ही बदल दी गई। और ज्यादातर मुस्लिम घुसपैठियों ने अपना हिंदू नाम रख लिया। हिंदू बनकर ये आपके और हमारे बीच आसानी से घुल मिल गए और अलग अलग शहरों में काम भी करने लगे, जैसे दुकानों पर हेल्पर की नौकरी करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी का काम, किसी घर में बावर्ची बन जाना या ऐसे ही दूसरे काम करना, फिर भारत के अलग अलग शहरों में पैसा कमाकर उसे बांग्लादेश भेजना अपने बाकी परिवार वालों के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये भारत में जो भारतीयों के लिए, गरीब वंचितों के लिए जो लाभार्थी स्कीम्स हैं, जो अलग अलग पैसा दिया जाता है चाहे महिलाओं को या फिर अन्य स्कीम्स में, वो पैसा भी लेने लगते हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में जो बांग्लादेशी रह रहे थे वो मोबाइल ऐप से पैसे पहले पश्चिम बंगाल में एक एजेंट को भेजते थे और फिर ये एजेंट इन पैसों को बांग्लादेश में उनके घर तक पहुंचाता था। और इसके लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था जिसे अंगड़िया कहते हैं। अंगड़िया एक तरह की कुरियर व्यवस्था है जिसमें कैश और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और यहां भी यही हो रहा था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में अब तक ऐसे सिंडिकेट खुलेआम काम कर रहे थे जिन पर कोई अंकुश ही नहीं था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर ये घुसपैठिए भारत में पैसे कमाते हैं और पैसे कमाकर बांग्लादेश भेज रहे हैं, तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था और आपके हक की चोरी नहीं है? क्या ये चोरी रुकनी नहीं चाहिए? किसी भी देश की संप्रभुता सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बचती, वो उसके रिकॉर्ड से भी बचती है, उसकी जनगणना से भी बचती है, उसकी नागरिक पहचान प्रणाली से भी बचती है। और इसीलिए अवैध घुसपैठ का सवाल केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये न्याय का भी सवाल है। क्योंकि हर वो लाभार्थी या फिर हर वो लाभ जो किसी घुसपैठियों तक पहुंचता है, वो हमारे किसी ना किसी नागरिक की थाली से लूट कर ही छीना जाता है। आज आप इन तस्वीरों को देखिए और ये सोचिए, क्या हमारे देश में कभी ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे हम जिसमें हमें घुसपैठियों की ये भीड़ दोबारा ना देखनी पड़े, दोबारा हमें फिर ये ना सुनना पड़े कि इन घुसपैठियों के पास आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, पहचान पत्र थे, दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि ये हमारे संसाधनों को लूट रहे थे, दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि ये भारत का पैसा बांग्लादेश भेज रहे थे, और दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि घुसपैठियों का मुद्दा एक एजेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप खुद देखिए।
1: खाते डीवाई बापू डीवाई एसपी 5 जितना राउंड फायर। कल रात ये ऑपरेशन शुरू किया गया जो कि आज सुबह तक जारी रहा, और खास करके तस्वीरों में महिला पुरुष समेत बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन सभी की बात करें तो लंबे समय से ये लोग अहमदाबाद के खास करके चंडोला के आसपास इलाकों में रहा करते थे, लेकिन चंडोला में जब मेगा ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाई गई उसके बाद से सीधे तौर पर अगर कहें तो अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में ये लोग रहा करते थे। खास करके कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि स्पा में रहती थी, कुछ रेड्स में जो पकड़े गए वो पीजी सेंटर्स में रहते थे, रेंट पे रहते थे, और कई सारे लोग मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लोग गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तौर पर पहचान हो चुकी है, ऐसे में अब इन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करके सभी को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा।
0: जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब ऐसे कई सिंडिकेट्स चलते रहे जो कटमनी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाते थे। कटमनी का मतलब है कि ये लोग किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाना हो, अगर उस सरकारी लाभ की योजना में नाम जोड़ना हो, मंजूरी दिलाना हो, भुगतान जारी करवाने के बदले लोगों से कमीशन लिया जाता है या उस कमीशन का हिस्सा, मतलब जो आपको लाभ मिल रहा है, मान लीजिए आपको 1500, जैसे बंगाल में था महिलाओं को 1500 मिल रहा है, तो उसमें से एक हिस्सा ये लोग मांगते थे और इन पर कोई अंकुश नहीं था। मतलब हम आपको 1500 दिलाएंगे, उसमें से आप 800 हमें दे दो या 500 हमें दे दो, कट मनी इसको कहा जाता था बंगाल में। लेकिन अब जानते हैं ये सारे लोग छिपकर खुद को पश्चिम बंगाल की जनता से बचा रहे हैं, और आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जो ममता बनर्जी के पतन का असली कारण भी दिखाती है। ये तस्वीरें टीएमसी नेता शाहिदुल मियां की है जिन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों से कटमनी मांगी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद जब लोगों ने इसका विरोध किया, कटमनी वापस लौटाने के लिए कहा, तो ये टीएमसी नेता अपने घर में पलंग के नीचे जाकर छिप गए हैं। देखिए इनको, इसे लगा कि यहां से इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ये जनता के गुस्से से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस टीएमसी नेता को पकड़कर इनकी परेड निकाली गई। जनता घर में घुस गई और फिर वीडियो बनाने लगी और पलंग के नीचे से इनको निकलना पड़ा, और इससे ये बुलवाया गया कि अब ये कभी किसी भी परिवार से कट मनी नहीं मांगे। देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने सरकार इसलिए बदली क्योंकि वहां लोग इस कटमनी गैंग और इस सिंडिकेट राज से त्रस्त थे, और ये वही सिंडिकेट माफिया है जिसने थोड़े से लालच के लिए बेहिसाब बांग्लादेशियों को भारत में बसा दिया और उन घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र भी बनवा दिए। और सोचिए, ममता बनर्जी की सरकार ने इस सिंडिकेट को रोका क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। यह हमारे देश में ही हो सकता है जहां पैसों के लालच और फिर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए घुसपैठ की बीमारी को इतना बड़ा बना दिया गया कि अब यह भयानक रूप में नजर आती है। और आपको यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। साल 2025 में देश की राजधानी दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजा गया। गुजरात में पिछले साल 450 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए जिन्हें उसी वक्त सत्यापन कराने के बाद डिपोर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार का भी अनुमान है कि पूरे राज्य में लगभग 10 लाख बांग्लादेश घुसपैठिए हैं और 3000 रोहिंग्या मुस्लिम हो सकते हैं, जिनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2025 में 4 घुसपैठिए अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए। मई 25 में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। बहुत लंबी लिस्ट है। महाराष्ट्र में अकेले देखिए साल 2025 में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया और इस कार्रवाई के बाद भी फरवरी 2026 में जोगेश्वरी से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। जबकि हरियाणा में 17 मई 2025 को नू से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। 20 मई 2025 को रेवाड़ी शहर जहां से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए और जुलाई 2025 में फरीदाबाद से 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए जिन्हें सरकार ने डिपोर्ट करने का दावा किया। लेकिन फिर भी जानते हैं इस पूरे मामले में बड़ी चुनौती क्या है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डिपोर्ट करने के लिए तेजी दिखाई जा रही है, लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां इन घुसपैठियों को लेकर रुख बहुत सहज नहीं दिखाई देता। जैसे कर्नाटक में पिछले 2 सालों में 320 घुसपैठिए पकड़े गए जिनमें 219 को डिपोर्ट भी किया गया, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ को बीजेपी का एजेंडा मानती है जबकि खुद कर्नाटक से इतने घुसपैठियों को भेजा गया है। आप देख रहे हैं केरला में जनवरी 2025 में 27, मार्च 2025 में 2 और अक्टूबर 2025 में 1 घुसपैठिया पकड़ा गया। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसकी संभावना ज्यादा थी कि केरलम में और भी घुसपैठिए हो सकते हैं जिनकी जांच के लिए सघन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन केरलम में भी लेफ्ट सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कई विपक्षी दलों का लगता है कि अगर उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की तो इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन आज हम पूछते हैं कि क्या घुसपैठियों को भारत से भगाने में कोई भी वोट बैंक आड़े आना चाहिए और क्या हम घुसपैठ के मुद्दे को धर्म से अलग रख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं क्योंकि खैर इस मामले में भारत को आज जापान से सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण होता है और इसके बाद जब इन पर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे विपक्षी नेता सामने आकर ये कहते हैं कि जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, असहिष्णुता हो गई है। कहते हैं कि क्या इस देश में मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। एक पूरी तस्वीर जो आपके सामने है वो आप देख रहे हैं। अब ये सुनकर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शायद सही नहीं सरकार कर रही है और अगर मस्जिद सरकारी जमीन पर बन गई है तो उसे हटाने की क्या जरूरत है। बन गई है तो ठीक है, यानी हमारे देश में ऐसे मामलों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, कानून को कहीं साइड में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको जापान से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जापान की है जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है और वहां कोई ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम धर्म का मामला है। वहां हर कोई यही बात कह रहा है कि नियम सबके लिए बराबर है, अवैध निर्माण ही रहेगा, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल। जापान के साइतामा प्रांत में कावागुए नाम का एक छोटा सा शहर है जहां 3 अप्रैल को एक मस्जिद का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किया पाकिस्तान के राजदूत ने और इसका नाम रखा गया मस्जिद रमजान। अब जिस जगह ये मस्जिद बनाई गई वहां आसपास सब्जियों के खेत हैं, रिहायशी इलाका है और जापान की सरकार ने इस जगह को अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में रखा है। अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी तरह के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध होते हैं और जंगल, खेती की जमीन, पर्यावरण को बचाकर रखा जाता है। लेकिन यहां इस मामले में कुछ मुसलमानों से सोचा कि वो नियमों का उल्लंघन करके मस्जिद बनाएंगे तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ये तो एक धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था का मामला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत सोच रहे थे, अगर ये भारत में होते किसी सरकारी जमीन पर यही सोचकर अवैध ढांचा खड़ा करते तो शायद यही होता।

उसे धर्म के नाम पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे इस बात पर संरक्षण कतई नहीं मिलना चाहिए कि उसकी धार्मिक पहचान का लेबल लगा दिया गया है। तो फिर कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाएगी ना। और हमारे देश में बहुत बार यही होता है, जबकि जापान या बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां बहस इस बात पर नहीं होती कि नियम तोड़ने वाला कौन से धर्म का है, बहस इस पर होती है कि नियम तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। भारत को भी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसके कानून का कैसा वहां पर काम चल रहा है। वो इस बात से तय होती है कि क्या वो उन कानूनों को बिना राजनीतिक तुष्टिकरण और विशेष धार्मिक डिस्काउंट के लागू कर सकता है। और जिस दिन हमारे देश में ऐसा होने लगेगा, देश में अवैध निर्माण की चर्चा धर्म से हटकर कानून की चर्चा बन जाएगी, उस दिन शायद हम कानून के शासन के एक कदम और करीब होंगे। और इसके लिए हमें जापान का मॉडल अपनाना होगा। हालांकि यहां जापान में आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वहां की संस्कृति का इस्लामीकरण किया जा रहा है। साल 2000 में जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 20,000 थी, लेकिन 2023 आते आते 4,20,000 हो गई, यानी इसमें ऐतिहासिक रूप से 2000% की वृद्धि हुई। इसी तरह साल 2000 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थी, लेकिन आज ये 164 हो गई हैं और इनमें भी 1000% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कह रहे हैं और इसके आगे शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के उस्मानपुर और गाजियाबाद के खोड़ा की घटना में वो कौन सा अंतर है जो चीख चीख कर आपसे कुछ कहना चाहता है। खोड़ा वो जगह जहां 28 मई को बकरीद के मौके पर 5 आरोपियों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की ये कहते हुए हत्या कर दी थी कि क्या उसने बकरीद पर बकरे को हलाल होते देखा है। ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उबाल लेकर आई। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी मोहम्मद असद का एनकाउंटर हुआ, उसके अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस चिपका दिया गया, इलाके के 3 मदरसों को अवैध बताकर सरकार ने सील कर दिया और कई हिस्ट्री शीटर अपराधियों से थाने में शपथ कराई गई कि वो भविष्य में कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। लेकिन इसी घटना के सिर्फ 2 दिन बाद 1 जून को दिल्ली के उस्मानपुर में इसी तरह का हत्याकांड हुआ, जैसे खोड़ा में 17 साल के सूर्य को उसके दोस्तों ने बाहर बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। ठीक उसी तरह उस्मानपुर में 17 साल के अभिषेक को उसके ही कुछ दोस्तों ने घर से बाहर बुलाकर चाकू से गोद दिया, उसे जान से मार दिया। अब ये दोनों घटनाएं एक ही तरीके से हुई, दोनों घटनाओं में मरने वाले लड़कों की उम्र 17 साल, दोनों को दोस्तों ने मारा। लेकिन खोड़ा की घटना में यूपी सरकार की तरफ से इतने सारे एक्शन हुआ, जबकि राजधानी दिल्ली की घटना बाकी दूसरी घटनाओं की तरह कहीं नीचे दब गई और इसकी किसी ने कोई बात नहीं की। जानते हैं क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि इस घटना में खोड़ा की तरह मारने वाले लोग मुस्लिम नहीं थे, ये गैर मुस्लिम थे। और शायद इसी वजह से इन दोनों घटनाओं में इतना बड़ा अंतर दिखा। और यह अंतर सिर्फ सरकारों की कार्रवाई का नहीं है, यह अंतर हमारे समाज की सोच का भी है। हमारा समाज खोड़ा की घटना पर ज्यादा आहत दिखा, लेकिन उस्मानपुर की घटना के बारे में मालूम नहीं। उस्मानपुर में 1 जून को 17 साल के अभिषेक की हत्या हुई। हत्या जिन 7 से 8 लड़कों ने किया, वो अभिषेक के पहले दोस्त हुआ करते थे, बाद में उनके बीच कुछ विवाद हुआ। 1 जून को इन लड़कों ने अभिषेक को उसके घर से बुलाकर गली में उसकी हत्या कर दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो आया है उसमें आरोपी लड़के साफ नजर आ रहे हैं। और इनकी उम्र जानते हैं कितनी है? आज इसीलिए हमने ये सोचा कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये खबर दिखानी बहुत जरूरी है। इनकी उम्र है 12 से 16 साल, ये सारे लड़के जो आपको दिख रहे हैं। खोड़ा में 17 साल के सूर्य की मां बिलक बिलक कर रो रही थी, ठीक वैसे ही इस मामले में भी 17 साल के अभिषेक की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन यह घटना लोगों को उतना नहीं चुभ रही जितनी खोड़ा की चुभी। आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब हमारा समाज भी अपराध की घटनाओं में ऐसे फर्क करेगा? आज सवाल है कि अगर नाबालिग बच्चे, 12 से 16 साल के बच्चे हथियार उठाकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो हमें कितना चिंतित होना चाहिए? और सोचिए अगर ऐसा है तो समाज के तौर पर हमारे लिए कितना बड़ा संकट है। सूर्य की हत्या इतनी गंभीर थी कि हमने आपको दिखाया उस दिन, पूरी खबर दिखाई। उसे तो मारने से पहले उसके दोस्त ने कहा था कि तुमने बकरीद पर कभी बकरा हलाल होते देखा है, और फिर मार दिया। लेकिन यह घटना भी उतनी ही गंभीर है, उतने ही मुश्किल सवाल लेकर सामने आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि

0: आरोपियों को धर्म के चश्मे से ना देखें तो घटनाएं एक जैसी हैं। दोनों घटनाओं में चिंता यही है कि हमारे युवा अपराध के लिए हिंसक प्रवृत्ति आखिर क्यों अपना रहे। अभिषेक, अगर आप देखें तो नाबालिग लड़के दोस्ती में एक दूसरे का खून क्यों कर रहे हैं, ये सोचने के बजाय आज इन दोनों घटनाओं को बांट दिया गया है और प्रतिक्रिया जिस तरह की आ रही है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। खैर, अगली खबर का आप रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर आ रही है। आखिर क्या है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम किसी भी समय टूट सकता है और इसकी पहल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कर सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ने अब अमेरिकी जहाजों और नौसेना पर एक भी हमला किया तो वो इस सीज फायर को खत्म कर देंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने सीज फायर के दौरान ईरान पर हवाई हमले नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो इसकी इजाजत भी दे सकते हैं और ये युद्ध कागजी सीज फायर से निकलकर उसी रूप में आ सकता है जो रूप 7 अप्रैल से पहले पूरी दुनिया ने देखा था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। ये दावा भी एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सीज फायर की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अब सुनिए, उनका कहना है कि अगर गोलीबारी, हम बात गोलीबारी की कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर गोलीबारी संभल कर और संयमित तरीके से की जाए तो उनकी नजर में वो सीज फायर ही है। ये सीज फायर का नया डेफिनेशन वो गढ़ रहे हैं, सुनिए।
1: How do you define ceasefire?
2: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
0: इस बयान के बाद दुनिया पूछ रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर ऐसा है तो 2029 तक वो दुनिया को कैसे कैसे युद्ध और सीज फायर दिखाएंगे। और यहां ये भी सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसकी बात को अब तक पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती आई है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अमेरिका के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते और वहां की मीडिया को भी इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बयानबाजी का दुनिया क्या करे। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान युद्ध के कारण त्राहिमाम हो रहा है, भारत में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 95.74 रुपए है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अभी सीज फायर है, इसलिए संभल कर, संयमित तरीके से गोलियां चल रही हैं और जब सीज फायर नहीं होगा तो फुल स्केल वॉर लड़ा जाएगा। और इस बात से अमेरिका के नेता भी आशंकित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति को सीमित करना है। इस प्रस्ताव को न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिला है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि अब तो अमेरिका की संसद को भी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास नहीं है और संसद उन्हें कानून के जरिए युद्ध लड़ने से रोकना चाहती
3: है।
4: Concurrent resolution directing the President pursuant to Section 5C of the War Powers Resolution to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran.
3: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
0: इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें एक गुप्त लोकेशन से ट्रंक के जरिए मिसाइल दागी जा रही है और ईरान का दावा है कि उसने समुद्र में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है जो एक युद्धपोत पर है और ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो ईरानी इलाके के पास आ रहा था। ये देखिए।

खैर, हॉर्मूज संकट के बीच वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट डेलजी रोड्रिगेज 5 दिनों के भारत दौरे पर आई हैं और ये वही वेनेजुएला है जिसके कच्चे तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रातों रात गिरफ्तार करवा लिया था। उन्हें अमेरिका ले आया था और पिछले कई दिनों से भारत में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और ये दौरा भी इसीलिए हो रहा है। लेकिन आज हम आपको इन दावों का पूरा सच बताएंगे और ये भी विश्लेषण करेंगे कि हॉर्मूज संकट में वेनेजुएला और भारत एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: अब एक एक करके वो आंकड़े देखिए और इन तमाम तथ्यों को समझिए जो वेनेजुएला और भारत के तेल संकट को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पहली बात तो यह है कि संकट की घड़ी में भी भारत का तेल आयात अभी कम नहीं हुआ है। मई महीने में भारत ने प्रतिदिन 50 बैरल कच्चे तेल का आयात किया है, जो पिछले महीने से लगभग 11.2% ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि भारत पहले से भी अब तेल खरीदने में बढ़ोतरी कर रहा है, ताकि देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट ही ना रहे। अब दूसरे ग्राफिक्स पर आइए। यह दावा पूरी तरह गलत है कि भारत ने वेनेजुएला को रशिया के कच्चे तेल का विकल्प बना लिया है। अब भी भारत जिन तीन देशों में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, उसमें पहले स्थान पर रशिया है, जो प्रतिदिन 23 लाख बैरल कच्चा तेल हमें दे रहा है। दूसरे स्थान पर यूएई है, जो 4,40,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। और तीसरे स्थान पर वेनेजुएला है, जो 4,17,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला से हम पहली बार कच्चा तेल खरीद रहे हैं। 2014 से पहले वेनेजुएला भारत का कच्चा तेल निर्यात करने वालों में तीसरे स्थान पर था। 2019 तक हम वेनेजुएला से सालाना 1,60,00,000 कच्चा तेल आयात कर रहे थे। अब यह भी देख लीजिए कि वेनेजुएला के तेल से भारत को फायदा क्या है। हॉर्मूज संकट के कारण भारत के पास कच्चे तेल का बफर स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जो पहले कमी आ रही थी। फरवरी में यह 10,70,00,000 बैरल था, फिर मार्च में यह कितना हो गया? मार्च के महीने में आप देख रहे हैं यह 9,50,00,000 बैरल हुआ। अप्रैल महीने में तेल का यही बफर स्टॉक और कम होकर 9,10,00,000 रह गया। और इसका मतलब यह था कि भारत अपने बफर स्टॉक में जमा तेल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे यह कम हो रहा था। लेकिन वेनेजुएला और रशिया से तेल खरीदने के कारण इसमें इजाफा, और मई महीने में यह 9,60,00,000 बैरल हो गया, यानी 50,00,000 बैरल तेल हमारे बफर स्टॉक में बढ़ गया। अब जो लोग ये पूछते हैं कि वेनेजुएला का तेल भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में खरीद रहा है, उनका सच भी जान लीजिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को रशिया के तेल से सस्ता पड़ रहा है। रशिया हमें ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर कच्चा तेल बेच रहा है, जबकि वेनेजुएला हमें इसी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर प्रति बैरल $5 से $8 का डिस्काउंट दे रहा है। और जानते हैं इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे इंडियन बास्केट में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। अप्रैल महीने में यह प्रति बैरल $114.48 का था, मई महीने में $106.23 का हुआ। और अब जानते हैं वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने के कारण जून महीने में इंडियन बास्केट में कच्चा तेल का जो बैरल है वो $98 का हो गया है। फायदा किसे? भारत को। और सोचिए, जब वेनेजुएला का तेल हमें सस्ता मिल रहा है और इससे इंडियन बास्केट को भी तेल सस्ता हो रहा है, तो हम वेनेजुएला से तेल क्यों ना खरीदें? और यहां तो हम बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। एक दौर वो भी था जब रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला होकर टैरिफ तक लगा रहे थे, लेकिन हमने तेल खरीदा रशिया से। और सवाल यही था कि हमें अपने हित देखने हैं, भारत का हित देखना है। भारत वहीं से तेल खरीदेगा और वहां से तेल खरीदेगा जहां जहां से भारत को फायदा है। हमारी तेल रिफाइनरीज में वेनेजुएला का गाढ़ा तेल रिफाइन करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी हम वेनेजुएला से कम तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला से तेल लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है। और इसी वजह से वेनेजुएला की राष्ट्रपति रोड्रिगेज का यह 5 दिनों का भारत दौरा बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली के होटल में लगी आग की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से अग्निकांड की एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे भयानक आग लग गई। 5 मरीजों के मारे जाने की खबर है और करीब 20 से ज्यादा मरीजों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। 5 फ्लोर के इस प्राइवेट अस्पताल का आईसीयू वार्ड टॉप फ्लोर पर है। यहां गंभीर रूप से बीमार 15 मरीजों को रखा गया था। आईसीयू में रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क गई। इसे बुझाने की कोशिश बहुत देर से की गई, जिसकी वजह से पास में ही लगा एयर कंडीशनर आग की चपेट में आ गया। आग लगने पर एयर कंडीशनर में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे वार्ड में बहुत तेजी से आग फैल गई। इसके बाद अस्पताल के निचले फ्लोर्स पर काला धुआं भरने लगा, जिससे अन्य वार्ड्स में मौजूद मरीजों, उनके अटेंडेंस को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल में मौजूद आम लोगों और मरीजों के अटेंडेंस से जल्दी जल्दी सबको बाहर निकाला। जिससे कई मरीजों की जान तो बची लेकिन आईसीयू में रखे गए मरीजों की निगरानी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज कर रहे थे, जिन पांच मरीजों की मौत हुई दुर्भाग्य से। उन्हें बचाने कोई नहीं गया था। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में समय लगा। जल्दी ही उन्होंने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे तोड़े, मरीजों को बचाया। हादसे के बाद कई मरीजों के गायब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि इस हादसे में ज्यादा लोग मारे गए हैं लेकिन प्रशासन जानबूझकर संख्या कम बता रहा है। हालांकि अस्पताल, जो प्रशासन के मुताबिक बाहर निकाले गए कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनकी जानकारी जल्दी ही उनके परिवार वालों को दी जाएगी। हादसे में हुई मौतों को लेकर अलग अलग दावे हैं। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 है। फायर ब्रिगेड की टीम के दावे के मुताबिक तकरीबन 10 शवों को बाहर निकाला गया है। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा है। मरीजों के अटेंडेंस ने आरोप लगाया है कि रात 3 बजे ज्यादातर मरीज सो रहे थे। ऐसे में जब आग की खबर फैली तो अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय सबसे पहले भागे। उन्होंने मरीजों को ना तो जानकारी दी ना ही उन्हें निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा आरोप यह है कि जब आग भड़की तो अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ना अलार्म बजा, ना वाटर स्प्रिंकलर काम किया। इसके अलावा अस्पताल की छत पर जाने वाला रास्ता इमरजेंसी एग्जिट का मेन गेट बंद था, उससे मरीजों, उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हमारे देश में इमारतों की आपातकालीन व्यवस्थाओं को बहुत हल्के में लिया जाता है। दिल्ली का होटल हो, मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, आलम वही है लापरवाही का। और इस वजह से लगता है जैसे इंसान को इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम बेकार था। आग लगी तो वो फेल हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी नहीं गिरा। दिल्ली के होटल में इमरजेंसी गेट जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब आज सोचने को हम मजबूर हैं कि इमरजेंसी गेट के नाम पर जो दरवाजा दिखाया भी जाता है वो वाकई काम करता है नहीं करता है, खुलता है नहीं खुलता है, लॉक रहता है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो लगाए जाते हैं उनसे पानी निकलता भी है या नकली स्प्रिंकलर्स बस दिखाने के लगा दिए जाते हैं? और तो और, बेसमेंट वाला गेट बंद। ठीक वैसे ही हादसे के वक्त मुजफ्फरपुर के अस्पताल का इमरजेंसी गेट बंद था। दिल्ली के होटल को 6 कमरों का लाइसेंस मिला, 25 कमरे चल रहे थे। मुजफ्फरपुर के अस्पताल के 13 बेड वाले आईसीयू में 15 से 20 मरीज रखे गए थे, इसलिए हादसे के बाद लोगों का निकालना मुश्किल हो गया। दिल्ली के होटल में वेंटिलेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी वेंटिलेशन ठीक नहीं था। आग लगी तो धुआं अस्पताल के हर फ्लोर और वार्ड में फैल गया। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में फायर सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता बरती जाती है। दुखद तो यह है कि आग लगने की घटनाओं के बाद सरकारी सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है जिसमें हादसे की जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं जाती, थोप दी जाती है। जैसे दिल्ली हादसे के बाद क्या हुआ? होटल के मालिक को फायर एनओसी ना लेने का दोषी बताकर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई, जबकि वो कई वर्षों से 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चला रहा था। जिस सरकारी सिस्टम को वो धोखा दे रहा था, उस सिस्टम ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। सच ये है कि हादसे का जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। ठीक वैसे ही मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हादसे को शॉर्ट सर्किट वाली आग बताकर रफा दफा करने की कोशिश हुई। ये नहीं पूछा जाएगा कि अस्पताल के आईसीयू में इतने मरीज कैसे थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम खराब क्यों था। और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इमरजेंसी गेट्स को बंद क्यों रखा गया। होना तो ये चाहिए कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को अस्पताल की सालाना फायर सेफ्टी जांच करनी चाहिए थी और सही ना पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। फायर सेफ्टी को लेकर हमारा पूरा सिस्टम संवेदनहीन हो चुका है। छोटे हो या बड़े, सभी शहरों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की किसी भी सोसाइटी की ऊंची इमारतों में अगर आप रहते हैं तो याद कीजिए कि पिछली बार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपकी सोसाइटी की सुरक्षा जांच कब की थी। आपको याद भी नहीं आएगा क्योंकि आग की दुर्घटनाओं में फायर डिपार्टमेंट अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित रह गया है और उसमें भी वो पूरी तरह से साधन संपन्न ही नहीं है। इसी वजह से अब इस तरह की दुर्घटनाओं में हम लोग मूक दर्शक बनकर रोते बिलखते इन तस्वीरों को देखते हैं, अफसोस जताकर रह जाते हैं। बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और इन पतली पतली सकरी गलियों में वो गाड़ियां घुस ही नहीं पाती हैं। देखिए,
1: क्या हुआ क्या आपके पेशेंट के साथ? कहाँ से आते भर्ती होने? कहाँ से?
2: हम लोग 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, दो गाड़ी प्रस्थान किए, तीसरा चौथा पांचवा छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10-15 व्यक्ति मैंने मृत्यु में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था, इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला, हम लोग आए तो। लेकिन अभी लोग लाश के कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं, हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअल्टी हुआ है।
3: मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है,
4: तीन लोग की मौत हुई है सर।
0: कितना आसान होता है सरकार और सिस्टम के लिए एक लाइन का आदेश जारी करना, परीक्षा लीक हो गई है इसलिए इसे रद्द किया जाता है और फला तारीख को दोबारा परीक्षा होगी, बस एक नोटिफिकेशन और खेल खत्म। लेकिन क्या हुक्मरानों के बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इस एक परीक्षा के लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ लुटा देते हैं? मध्य प्रदेश की आकांक्षा, जिसकी उम्मीदों को सिस्टम के पेपर लीक ने इस कदर निगल लिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। एक किसान पिता जो लोन लेकर रसोईया बनकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहा था, आज वो अपनी बेटी को भी खोच बैठा है। ये मऊगंज की खबर है, मऊगंज के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसके दिल में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का जज्बा था। नीट की परीक्षा देकर जब वो लौटी तो उसकी आंखों में चमक थी, उसे भरोसा था कि 720 में से 650 नंबर तो पक्के हैं। व्हाइट कोट पहनने का सपना बस सच होने ही वाला था कि अचानक खबर आई, नीट का पेपर तो लीक हो गया।
5: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
0: सोचिए उस 18-19 साल की बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या आघात हुआ होगा जब उसे लगा कि सालों की मेहनत कौड़ियों के भाव बिक गई। कुछ लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाते नहीं, लेकिन इस बेबस बाप को देखिए, उसने सब कुछ। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी पेशे से किसान है, लेकिन बेटी के डॉक्टर बनने के अरमानों को पंख लगाने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का लोन लिया। इतने से भी बात नहीं बनी तो अपनी खेती किसानी सब कुछ छोड़कर नागपुर चले गए, वहां एक निजी कोचिंग के पास खुद कुक यानी रसोईया की नौकरी करने लगे, दूसरों के लिए खाना बनाते रहे ताकि बेटी पढ़कर एक दिन उनका और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन वाह रे सिस्टम, चंद रुपयों के लिए ईमान बेचने वाले पेपर माफियाओं ने इस बाप का सब कुछ लूट लिया। रूंधे गले से कृष्ण चतुर्वेदी कह रहे हैं, वो हमेशा बोलती थी पापा देखना एक दिन बहुत नाम होगा हमारा। वो कहती थी कि मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, लेकिन तब जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, कितने सारे सपने दिखाकर वो चली गई। अब जब सपनों को पूरा करने वाला ही नहीं रहा तो क्या सपने और कैसी परीक्षा, दावे होते रहे, परीक्षाएं होती रही, क्या फर्क पड़ता है? अब जांच कमेटी बैठी है, फिर से परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक बेटी तो हार गई ना, उसे जिंदगी के इम्तिहान में इस सिस्टम ने फेल कर दिया। हर साल लाखों बच्चे दिन रात एक करते हैं, खाना पीना भूल कर सारी खुशियों को किताबों में दफन करके तैयारी करते हैं, लेकिन जब नतीजा आने का वक्त होता है तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आकांक्षा इस त्रासदी की पहली शिकार नहीं है, अगर यही रवैया रहा तो आखिरी भी नहीं होंगी। सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए दोबारा परीक्षाओं का ऐलान कर देती हैं, लेकिन उस मानसिक प्रताड़ना का क्या जो ये बच्चे झेलते हैं? लोन के बोझ तले दबे उस पिता के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? साल 2020 से 2024 तक 5 साल में 67,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन औसतन 40 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है, छात्रों का मरना आखिर किसी को दिखता क्यों नहीं। खैर, दोबारा नीट परीक्षा हो जाएगी, कोई ना कोई पास भी हो जाएगा, कोई डॉक्टर भी बन जाएगा, लेकिन मऊगंज के उस रसोइये पिता के घर में अब कभी रोशनी नहीं होगी।

0: कितने सारे सपने दिखा के चली गई। कह रहा हूँ कि जो मीडिया आज मेरे सामने बैठी है, मीडिया के इंतजार में कर रही वो दिन का। उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए।
1: और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो थोड़ी हटकर है। गूगल को बनाने वाली कंपनी अल्फाबेट ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो दुनिया से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और जीका वायरस जैसी बीमारियों का नामो निशान मिटा सकती है। इन बीमारियों से हर साल दुनिया में करीब 7 लाख लोग मारे जाते हैं और भारत में सालाना 1000 लोग इन बीमारियों का शिकार बनते हैं। लेकिन अल्फाबेट ने जो इन्वेंशन की है उससे मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अल्फाबेट ने बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने वाले मच्छरों की फौज तैयार की है। कंपनी ने एआई और रोबोट्स की मदद से 3,20,00,000 मच्छर तैयार किए हैं जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से मिलकर उनको बीमारी फैलाने से रोक देंगे। अल्फाबेट ने अमेरिकी सरकार, रिहायशी इलाकों में इन मच्छरों को छोड़ने की अनुमति मांगी है। लैब में इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों को पालने का काम भी इंसान नहीं बल्कि ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से किया गया है। ये सारी कवायद वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए की जा रही है। अल्फाबेट के इन मच्छरों की खासियत यह है कि ये इंसानों को नहीं काटते, यानी इनसे इंसानों को तो कोई खतरा नहीं है। कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इन मच्छरों में खास तरह का वोल्बाचिया वायरस डाला है। जब भी इस वायरस वाला मच्छर बीमारी फैलाने वाले अन्य मच्छर से मिलेगा तो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी कम होती जाएगी, जिससे धीरे धीरे मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में अगर इस प्रयोग की अनुमति मिलती है तो माना जा रहा है कि दुनिया के कई देश इन मच्छरों को अपने यहां जरूर लाना चाहेंगे ताकि वो मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर दें। और इसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
8: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
9: You're listening to CNBC.
10: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
11: Keep it on smooth jazz.
12: This is Roots Reggae.
13: Exclusively on TuneIn.
14: This is Classic Hip Hop.
15: Exclusively on TuneIn.
8: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
16: फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
17: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
16: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
18: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
19: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
20: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
18: मतलब
20: पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
18: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
20: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
21: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
22: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
6: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंट बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी
4: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: लोग मुझे पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा रितुव्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके इवन द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन अब घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में जामुरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामुरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है।
6: आज आप लोगों ने मिलकर ये जो 80 लोगों का एक टीम जो आगे जाकर तृणमूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तृणमूल सुप्रीमो या फिर अभिषेक बनर्जी के काम करने पे क्या आपत्ति रहा है?
7: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे, तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है। इसीलिए हम लोग जहां हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है, जहां हमारे लोगों को मारा जाता है, तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है, उस दल के साथ नहीं रहना।
6: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको?
7: वो बताएंगे वो जो लोग वहां पर हैं अभी, वो लोग बताएंगे।
6: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप तो कद्दावर।
7: हम सुनिए ना, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते, हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है। ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री हैं, हम उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप एडवाइजर होके हम लोग चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और शराफत और तहजीब के नकाब ओढ़कर बैठे थे, हवा जरा सी तेज क्या हुई, सबके किरदार बेपर्दा हो गए। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच की। 4 दिन के पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटके। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने कहा गलत। मंत्री दिलीप घोष का कटाक्ष। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का निर्णय। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम। जमीनी नेताओं को प्राथमिकता। अहमदाबाद में योगासन विश्व चैंपियनशिप का आगाज। पीएम ने कहा योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार। एकजुट होता है इससे मन शरीर और आत्मा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक और आज दस्तक की शुरुआत एक सवाल से। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया लेकिन बाकी गुनाहगार कहां हैं? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के 37 घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए जा रहे हैं लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी?

0: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर एक, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं। 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर दो, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया। दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर तीन, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई। दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मानकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर चार, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों। दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है। अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है। यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
1: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे। और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
0: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
2: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
3: हाँ आई थी सुबह।
2: लोकेश बजाज ही रहता है?
3: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से तो, लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
2: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
0: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
2: लोकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
0: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी, यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
4: अग्निकांड के एक एक गुनहगार का हिसाब जरूरी है, क्योंकि कई परिवार आज उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम के रहने वाले विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं हैं। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोग मारे गए हैं। आज घर से एक साथ 8-8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील करते हुए कहा है कि जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलेगा, जब तक एक एक दोषी को पकड़कर आप सजा नहीं देंगे, लेकिन रेखा गुप्ता चुप है।
0: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिस्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं, क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है, उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
0: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और माँ हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं, और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए।
0: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण तीन परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे, एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
0: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
4: और अब खबर, भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैसल खान और खान सर की। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें खान सर बुरी तरह से फंस गए, उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में नया ट्विस्ट आ गया। खान सर ने अपनी कोचिंग के बाहर 10 राउंड फायरिंग का दावा किया था, हालांकि कुछ घंटे बाद ही खान सर खुद अपने दावे से पलट गए। लेकिन अब खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में उनके दो गार्ड्स को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है खान सर की कोचिंग में गोलीकांड का पूरा सच। क्या खान सर का पूरा प्लान एक्सपोज हो गया है? क्या खान सर झूठ बोल रहे थे, या फिर खान सर कोचिंग वाली लड़ाई में अब खुद बुरी तरह से फंस गए?
8: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास करें।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए,
1: हम देंगे। यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन होता है।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन हम

0: ये खान सर ने करवाया, लेकिन फिर भी ये वीडियो किसी तरह से रिकवर करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे और अब खान सर फंस गए हैं। खान सर बुरी तरह से फंसते हुए नजर भी आ रहे हैं।
1: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
2: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
1: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
3: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
1: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोली कांड में नया ट्विस्ट आता है और गोली कांड में खान सर के ही 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
4: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम है। ये विवाद चल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
1: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 10 तक में हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको बताएंगे खामनेई को अब तक क्यों नहीं दफनाया गया। आप देखते रहिए 10 तक।
5: Better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: बहुत टाइड हो गई।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: आगे आगे
12: करेक्ट करेक्ट
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद
20: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: बाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: इस स्याह पड़े कमरे को देखिए, कौन कह सकता है कि ये किसी अस्पताल का आईसीयू हो सकता है। जो आईसीयू जिंदगी सुरक्षित करने के लिए होता है, वही आईसीयू आग का दरिया बन गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया, जिसमें 5 लोगों की जिंदगी भी खत्म हो गई। हादसे के बाद मौके पर डीएम पहुंचते हैं, कमिश्नर पहुंचते हैं, यहां तक कि स्थानीय विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े चेहरे की आंखें नहीं खुलती। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार न खुद मुजफ्फरपुर आना जरूरी समझते हैं, न किसी और को भेजते हैं, उल्टा जब उनसे सवाल होता है तो कन्नी काट कर निकल जाते हैं।
1: सर, मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर मिसल ला दिया है।
2: सर,
1: मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर मिसल ला दिया है।
0: निशांत कुमार को दिल्ली जाना था, साथ में संजय झा थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर जाकर हादसे की डिटेल लेना, पीड़ित परिजनों को सांत्वना देना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाने की जल्दी थी। इतनी जल्दी कि थोड़ी देर ठहर कर मीडिया के सवालों का ही जवाब दे देते, इतना ही बता देते कि हादसे पर उनका विभाग क्या एक्शन ले रहा है।
3: मुजफ्फरपुर में अस्पतालों में जो आग लगी है, अत्यंत ही दुखद घटना हुई है और इसमें कुछ लोगों की जाने भी गई है। आखिर किस कारण से ये आग लगी, किनकी गलती थी, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार में बैठे लोग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय सांसद से जब सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं।
0: निशांत कुमार तो खामोशी से निकल गए, लेकिन इस हादसे पर प्रतिक्रिया बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरे मंत्री की तरफ से आई।
4: सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही
5: है। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी नहीं, सरकार नहीं गई, आशीर्वाद लेगा इसका जानकारी और जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: अब ठीकरा तो अस्पताल पर ही फूटेगा, लेकिन इंतजाम दुरुस्त रहे ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती थी। रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक।
6: हमारे साथ संदीपन साहा है, उनसे बात करते हैं। आखिर क्या क्या फैसला हुआ है, थोड़ा हमें बताइए।
7: देखिए, हम लोगों ने आज एक चिट्ठी दिए थे स्पीकर को, 58 MLAs जो कि 80 विधायक जीते हैं, उसका 2/3 से भी ज्यादा, कि ऋतुव्रत बैनर्जी LOP और अखरुज जमान चीफ पीप, वो हम लोग स्पीकर को दिए थे, हमें वो मान्यता दी गई है। अभी ऋतुव्रत बैनर्जी एज अ LOP फंक्शन करेंगे और चीफ पीप के रूप में फंक्शन करेंगे अखरुज जमान। उसके साथ हम लोग का 4 डिप्यूटी लीडर रहेंगे, जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली शाह और मैं खुद। हम लोग विधानसभा के अंदर यही दल प्रिंसिपल अपोजिशन रहेगा और यही दल सब काम करेगा आने वाले समय में।
6: चाबी भी मिल गई है आपको आज।
7: चाबी भी LOP के घर के चाबी भी मिल गई।
6: तो ममता बनर्जी ही आपकी नेत्री हैं।
7: ममता बनर्जी हमें सलाह देगी, इतनी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो हमें सलाह देंगी और वो अगर सलाह देंगे तो हम लोग वो सलाह।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: आप देख रहे हैं दर्शक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत है आपका। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार रुका हुआ है। ईरानी मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द अली खामनेई को दफना दिया जाएगा। IRGC के अनुसार खामनेई को 21 जून के आसपास अंतिम विदाई दी जा सकती है, लेकिन सवाल यही है कि 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई की मौत और अमेरिका और इसराइल हमले में हुई। खामनेई की मौत को 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो अब तक उन्हें दफनाया क्यों नहीं गया? क्या ईरान को किसी हमले का उस समय डर है?
0: क्यों खामेनेई को अब तक दफनाया नहीं गया? क्या बेटे मुश्तबा से जुड़ा है कोई बड़ा राज? क्या हमले का डर है या फिर वजह कुछ और? क्या 21 जून को खमनेई को दफनाया जाएगा? ताबूत में अली खमनेई का आखिरी राज? अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई की मौत हुई। इसी हमले में अली खमनेई के बेटे मुश्तबा खमनेई भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पिता के निधन के बाद सर्वसम्मति से मुश्तबा खमनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अली खमनेई को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया। ऐसा क्यों है, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। हालांकि एक बार फिर ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 21 जून के आसपास ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई को दफनाया जाएगा। सवाल यही है कि अली खमनेई का अंतिम संस्कार क्यों अब तक टलता रहा है? बड़ी बात यह है कि अली खमनेई के शव को कहां रखा गया है, इसे लेकर अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक खमनेई के शव को किसी गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। मार्च में अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखने की तैयारी थी। अचानक अंतिम दर्शन के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद कई ऐसे मौके आए जब खमनेई को दफनाए जाने की खबरें आईं। एक बार फिर अली खमनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द खमनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खमनेई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह के परिसर के पास दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का पूरा आयोजन IRGC के सुरक्षा इंतजामों के बीच किया जाएगा। खमनेई के अंतिम दर्शनों के लिए करीब 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार पूरे 3 दिन तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक अंतिम दर्शनों के लिए खमनेई के शव को तेहरान में रखा जाएगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें इमाम रजा के दरगाह परिसर में दफनाने की तैयारी है। कई बड़े शहरों में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से IRGC ने ये नहीं बताया कि जनाजा कब होगा, लेकिन कहा कि ये इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत में हो सकता है, जो 21 जून के आसपास पड़ता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खमनेई को दफनाने के फैसले में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इसराइल के हमले का डर। IRGC को लगता है कि सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में कई तरह के सुरक्षा जोखिम शामिल हैं, खासतौर से अंतिम संस्कार के दौरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। खमनेई के अंतिम संस्कार में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। अंतिम संस्कार में IRGC और सेना के टॉप कमांडर मौजूद रहेंगे। ईरान को डर है कि सेना की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। ये हमले के लिए अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे मुफीद वक्त होगा। खमनेई का अंतिम संस्कार पहले 4 मार्च को होने वाला था, लेकिन युद्ध की वजह से इसे टाल दिया गया था। ईरान के डर की वजह भी है, क्योंकि शांति वार्ता के बीच भी अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
11: I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
0: सुरक्षा कारणों से खमनेई के अंतिम संस्कार को रोका गया। यही वजह है कि सार्वजनिक रूप से मुश्तबा खमनेई सामने नहीं आए हैं। पिता की मौत के बाद मुश्तबा खमनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक उनकी ना तो कोई तस्वीर सामने आई है, न ही कोई वीडियो। हाँ, ईरानी मीडिया में मुश्तबा खमनेई के लिखित बयानों को जरूर पढ़ा और छापा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अली खमनेई के अंतिम संस्कार में हुई देरी की एक वजह मुश्तबा खमनेई की खराब सेहत भी हो सकती है। 8 मार्च को अली खमनेई के बेटे मुश्तबा खमनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। मुश्तबा ही अली खमनेई के वारिस हैं। सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुश्तबा अभी तक सामने नहीं आए हैं।
12: सिर्फ ईरान के सरकारी न्यूज चैनलों पर उनके संदेश को पढ़कर सुनाया गया है। यही वजह है कि मुश्तबा खामिनई को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। द सन, न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट में यही दावा किया गया कि मुश्तबा 28 फरवरी को इसराइल के हमले में जिंदा बच गए, लेकिन जख्मी हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो कोमा में हैं और उनका एक पैर काटना पड़ा।
10: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी और पीस डील का प्रयास हो रहा था, और अब कहां सीज फायर टूटने की नौबत आ रही है। शुरुआत इसराइल ने लेबनान पर हमलों से की और अब ईरान कुवैत पर कहर बरपा रहा है। जी हां, ईरान ने एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, 63 लोग घायल हुए, एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई। तो क्या अब ईरान और अमेरिका युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है? देखिए,
12: अब संपूर्ण सीज फायर नहीं महायुद्ध होगा। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन से हमले, महायुद्ध की चिंगारी। व्हाइट हाउस की धमकी, ईरान का वक्त खत्म हो रहा है। ईरान की खुली चुनौती, देखते हैं आगे क्या होता है। मिडल ईस्ट में बारूदी धमाकों से फिर दहल उठी दुनिया। कुवैत पर ईरान के हमलों के बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही दोनों के बीच हिंसक झड़प लगातार हो रही है, लेकिन हवाई हमले बंद हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि वो फिर से युद्ध शुरू करें और इसीलिए वो हफ्तों या शायद महीनों तक छोटी मोटी झड़पों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बार बार हो रहे हमलों ने ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया है और इस संघर्ष विराम के लंबे समय तक टिकने की संभावना पर संदेह खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर जो नया बयान दिया है वो भी अजीबोगरीब है। जब उनसे पूछा गया कि सीज फायर की उनकी क्या परिभाषा है तो उन्होंने कहा, दुनिया के उस हिस्से में जब गोलीबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
13: Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
12: और इस बीच IRGC नेवी ने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्ध बोट को निशाना बनाने का दावा किया है। उसने वीडियो जारी किया है जिसमें एक गुप्त लोकेशन से ट्रक के जरिए मिसाइल दागी जा रही है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है जो एक युद्ध पोत पर है और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था। ईरान के मुताबिक ये उसके कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले का जवाब है। ईरान के इस दावे को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है और किसी भी अमेरिकी युद्ध पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैत और बहरीन में ईरान का कोहराम, ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले। ईरान कुवैत और बहरीन में भी कहर बरपा रहा है। उसने कुवैत और बहरीन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। इस दौरान उसके हमले की चपेट में कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 भी आया। बड़ी बात यह है कि इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एयरपोर्ट स्टाफ के अलावा कुछ पैसेंजर भी शामिल हैं। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। कुवैत के रक्षा मंत्री ने इसे ईरान का जघन्य अपराध बताया है। कुवैत ने इस हमले का CCTV फुटेज जारी किया है जो दिखाता है कि ड्रोन हमला कितना भयानक था। कुवैत ने इस हमले के बाद ईरान के 2 राजनयिकों को निकाल बाहर करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो उसके केशव द्वीप पर अमेरिका के हमले का जवाब था। ईरान ने इस आरोप से इनकार किया कि कुवैती एयरपोर्ट पर उसने किसी नागरिक सुविधा या नागरिक को नुकसान पहुंचाया है। ईरान का दावा है कि कुवैती एयरपोर्ट को अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल के फेल हो जाने से नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी कहा है कि ईरान ने जानबूझकर और सोच समझकर एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। कुवैत पर हमले का वीडियो नंबर एक, आपको एक एक कर सारे वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो देखिए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक आत्मघाती ड्रोन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से टकराता है और भीषण आग के साथ काले धुएं का गुबार आसमान में उठता है। कुवैत ने इसे ईरानी हमला बताया है। वहीं वीडियो में दिख रहा ड्रोन ईरानी शाहिद ड्रोन होने का अनुमान है। कुवैत पर हमले का वीडियो नंबर दो, अब दूसरा वीडियो देखिए, जो उस पार्किंग लॉट के बाहर का है जहां से पैसेंजर टर्मिनल पर हुए हमले के बाद उठता धुआं और करीब से देखा जा सकता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत के साथ सीसीटीवी कैमरा भी हिल गया। उसी दौरान वहां खड़ी कई कारों में से एक कार धमाका होते ही तेजी से बाहर की ओर निकली। इस वीडियो में दहशत को साफ देखा जा सकता है। कुवैत पर हमले का वीडियो नंबर तीन, और अब तीसरा वीडियो देखिए, जिसमें सबसे खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पैसेंजर लॉबी का वीडियो है। इसकी छत से ड्रोन के टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अंदर उसकी तबाही साफ साफ नजर आई। छत का हिस्सा टूट कर नीचे गिरता दिखा। इमारत के भीतर सब कुछ तहस नहस हो गया। अंदर धूल और धुएं का गुबार भर गया। लोग दहशत में भागे। एक शख्स इस धूल धुएं के गुबार के बीच भागता दिख रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC ने कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों को लेकर ईरान की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। GCC ने इसे खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के हालिया हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी है। दोनों तरफ से एक दूसरे को सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान में समझौता होगा कि नहीं। सूत्रों की माने तो इस शनिवार या रविवार तक कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन बात वही ईरान और अमेरिका की अपनी अपनी शर्तों पर अटकी हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से सीज फायर तोड़ने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ समझौते की भी। तो क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर हमले की धमकियां इसलिए दे रहे हैं ताकि डील पे मोल भाव ठीक से हो सके? आज तक ब्यूरो।
10: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं रूस के 2026 सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी भी शामिल हुई। ऐसे समय में जब AI पत्रकारिता समेत कई क्षेत्रों को नया रूप दे रही है, उद्योग जगत के नेताओं के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को कमजोर किए बिना AI के लाभों का उपयोग कैसे किया जाए। ये मुद्दा इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में चर्चा का केंद्र बना, जहां विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। और इसी बीच इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने भी बताया कि AI और मानवीय हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाना समय की आवश्यकता है। देखिए,
14: One of the main reasons why I think that you should have the patience with me is because India is right on top of every table with consumers engaging with AI. As a population, we are one of the largest, and also the Indian population trusts AI-generated information more than anywhere else in the world. So we really are sort of one of the biggest consumers of AI. We could also be the ones that drive AI application on top of the models that have been built out by big tech right now. As a media company in India, we're doing a lot of experimentation with AI ourselves. So going towards the lazy journalists and the lazy anchors. We have tried to clone our very own anchors with their permission and use them in prime time, and it's gone very well. Even their family was asking the anchor, you told me you're on holiday, but I see you on prime time on TV, even though we had put AI anchor there. So it was an interesting experiment. But like you said, not everyone could catch that there was something missing. Some people caught it, that the emotion wasn't there or the life was not in it. But, you know, it passed as an experiment quite well. The other one we tried as an opposite to the lazy journalist is to create an entire subsection called Handmade by Editors and Reporters, and also something called Eyewitness, like a separate section where reporters and journalists now are pushed forward to creating ground reports or eyewitness accounts and just focusing on what they saw, what they heard, rather than a more sort of vanilla report. So it's very much the human experience of being in that situation, whether it's a big political meeting or a natural calamity or even war. They are things that viewers are wanting, and more of that is served to them. And I feel that this really goes against moderation and calibration that a newsroom brings to journalism and to the information that is given out to the audience. I sort of call it the French fries and salad formula, right? Like if you ask a child, he will always ask for French fries, but you can't always give him French fries. You have to mix the salad in between. And newsrooms do that. Algorithms do not do that because they are not based on values of calibration and moderation. They are based on values of profit and engagement. The other piece that you said, how to use AI responsibly, I think one of the things we use in our newsroom is something called the AI sandwich, which is that you start with a human, you have AI in between to increase efficiency, effectiveness, and even maybe attractiveness in language that young children would like and make it more sparkly, like the gentleman from Rambler said. But then it again ends with a human touch or a human print so that the final approval remains with human beings.
10: दर्शक मैं आज के लिए बस इतना ही. आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि.
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
15: Better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
17: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
16: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
18: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: गुरुग्राम की इस कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कोठी है सीए विवेक अग्रवाल की। दिल्ली के होटल की आग में विवेक अग्रवाल समेत परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विवेक अग्रवाल के 80 साल के पिता राधेश्याम अग्रवाल मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। गुरुग्राम से आने जाने में परेशानी से बचने के लिए परिवार के लोग इस होटल में रुके थे। अपनी मां प्रेमलता अग्रवाल, पत्नी तर्जनी, बेटी जीविशा उर्फ एंजल, वारिया उर्फ पर्ल के साथ रुके थे। होटल की आग में चारों की जान चली गई। यही नहीं, होटल में विवेक के ननिहाल पक्ष से 3 लोग राजस्थान से पहुंचे थे, उनकी भी इस अग्निकांड में मौत हो गई।
1: विवेक अग्रवाल जी कल या इससे एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल गए थे अपने पिता से मिलने के लिए, और आना जाना ना करना पड़े गुड़गांव से दिल्ली, परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए उस होटल में रहे जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विवेक अग्रवाल की मौसी भी उस होटल में मौजूद थी।
0: पड़ोसी सदमे में है, यकीन नहीं हो रहा कि खुश मिजाज मिलनसार अग्रवाल परिवार अब उनके बीच नहीं रहा।
2: बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे और सबसे मिलनसार, और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा।
3: मैं पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं, और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे।
0: दिल्ली के अग्निकांड में कुल 21 लोगों की जान गई, जिनमें 12 विदेशी और 9 भारतीय हैं। इन 9 भारतीयों में 8 लोग गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के थे। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: मालवीय नगर होटल अग्निकांड की आग सरकार तक पहुंची तो मंत्री और अधिकारी सभी एक्शन में आ गए। खुद आशीष सूद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से पूछताछ की और कड़े एक्शन का वादा किया। अब दिल्ली सरकार उन संस्थानों पर नकेल कसने का दावा कर रही है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिन पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज MCD, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग की टीम एक साथ जांच के लिए निकलेंगे।
3: हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
2: दिल्ली में 702 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर अब सरकार एक्शन की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा सरकार हर अग्निकांड के बाद ऐसी ही बातें करती है, लेकिन 21 मौत पर जवाबदेही तय करनी होगी।
4: फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी।
2: दिल्ली के मालवीय नगर की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। अब इस मामले में सियासत गरमाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: एक फोन कॉल और साजिश नाकाम। कराची से आए कॉल से मिला सुराग। कॉल से खोला हमले के प्लान का राज। दाऊद इब्राहिम के प्लान पर पानी। करीब 1 महीने पहले कराची से आए कॉल को IB ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद कॉल की डिटेल को दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया गया। कॉल में इंटरसेप्ट हुई बातचीत ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा था। आनंद फानंद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल CP अनिल शुक्ला की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को कराची से रची गई साजिश का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा गया। जांच टीम के पास सबसे बड़ी लीड एक मोबाइल नंबर था जिस पर कराची से फोन आया था। जैसे ही जांच टीम के हाथ उस आतंकी तक पहुंचे, साजिश का पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने की तफ्तीश के दौरान एक बात साफ हो गई कि सभी आतंकियों को कराची में बैठा मुन्ना झिंगाड़ा निर्देश दे रहा था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी गुर्गा है। पूरा ऑपरेशन करीब 1 महीने तक चला। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में अब तक 8 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पर झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई। सामने 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी के तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह में मिला है मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा बस चंद दिन है इनके पास। परिवार ने तय किया कि आखिरी घड़ी में पूरा परिवार इनके करीब रहेगा, और करीब रहने के लिए ही इन्होंने करीब के एक होटल में कमरे ले लिए। बदकिस्मती से ये वही होटल था जिसमें आग लगी, और एक ही परिवार के आठ लोग इस आग में अपनी जान गंवा बैठे। पर मौत का खेल देखिए, पहले आग से मारा, फिर इनकी चिता को भी वही आग दी गई।

मालवीय नगर के इस होटल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इसी मैक्स अस्पताल में 75 साल की एक मौत दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे चुकी थी। इस दस्तक की खबर डॉक्टर घर वालों को दे चुके थे। घर वाले आखिरी घड़ी में साथ रहने की तमन्ना लिए अपने घरों से इसी अस्पताल से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर मौजूद इस होटल में आ ठहरे, पर मौत का खेल देखी जिस होने वाली मौत का गवाह बनने पूरा परिवार यहां आकर इस होटल में ठहरा था, वो अब भी मैक्स अस्पताल के आईसीयू में मौत की आखिरी दस्तक का इंतजार कर रहे हैं, यानी जिंदा है, जबकि उन्हें देखने आए पूरे परिवार को बिना दस्तक दिए मौत अपने साथ ले गई।

0: ये गुरुग्राम में मौजूद 75 साल के राधे श्याम अग्रवाल का घर है। 5 साल पहले तक राधे श्याम परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। 5 साल पहले वो यहाँ आकर बसे थे। राधे श्याम का इकलौता बेटा 47 साल का विवेक अग्रवाल एक सीए था और मल्टीनेशनल कंपनी में सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस अफसर के तौर पर काम करते थे। 30 मई को विवेक अग्रवाल अपने पिता राधे श्याम अग्रवाल को साकेत के इसी मैक्स अस्पताल लेकर आए थे। उनकी हालत खराब थी, फेफड़े में इन्फेक्शन था। राधे श्याम को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। 2 जून को डॉक्टरों ने विवेक को बताया कि राधे श्याम के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास अब बस गिनती के दिन बचे हैं, लिहाजा वो उन्हें घर ले जा सकते हैं ताकि आखिरी घड़ी में वो परिवार के साथ रहे। लेकिन विवेक ने घर ले जाने की बजाय आखिरी घड़ी तक बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ही रखने का फैसला किया। अब चूंकि ये पता नहीं था कि मौत कितने घंटे या कितने दिन बाद दस्तक देगी, लिहाजा विवेक अपनी माँ 70 साल की प्रेमलता, पत्नी 42 साल की तर्जनी और छोटी बेटी 16 साल की पल के साथ 2 जून को ही मालवीय नगर के इस होटल में आकर ठहर गए। ये होटल विवेक ने इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ से मैक्स का रास्ता पैदल भी सिर्फ 5 मिनट का था।
1: विवेक अग्रवाल की डेथ हुई, उनके फादर एडमिट आईसीयू में।
2: अच्छा,
1: तो गुड़गांव रहते हैं वो।
2: हाँ।
1: तो उन्होंने सामने ले लिया कि भी आना जाना पड़ता है तो उससे बेहतर है कि यहाँ रह लेंगे।
2: हाँ, हाँ।
1: और कल ही वो आप कुछ लोग बाहर से आए थे।
2: हाँ।
1: और आपको बोले चलो यहाँ रुक जाते हैं।
2: हाँ।
1: सवेरे मिलके तो चले जाएंगे।
2: हमें
1: थोड़ी पता था कि रात में यहाँ पर ये सब तांडव हो जाएगा, सवेरे हो जाएगा
2: आपके।
0: चूंकि डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लिहाजा 2 जून की शाम को ही विवेक ने अपने सारे रिश्तेदारों को इसकी खबर दे दी। विवेक की बड़ी बेटी 20 साल की एंजल बेंगलुरु में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। विवेक ने उसे भी उसके दादा की हालत के बारे में बताया। अब धीरे धीरे रिश्तेदार दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके थे। 2 जून की रात तक प्रेमलता की 52 साल की बहन कमला, 56 साल का भाई अशोक और कमला के पति झावेरी भी अजमेर के करीब किशनगढ़ से दिल्ली आ चुके थे। 2 जून की रात परिवार के सातों लोग इसी होटल में अलग अलग कमरों में रुके हुए थे। अब 3 जून की सुबह हो चुकी थी। सुबह सुबह 7 बजे के करीब विवेक की बड़ी बेटी एंजल फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आ चुकी थी। वो भी सीधे इसी होटल में आकर अपनी मम्मी पापा के साथ रुक जाती है। अब अग्रवाल परिवार के कुल 8 लोग इस होटल में थे। फिर 3 जून की सुबह 8:30 से 9:30 का वो मनहूस वक्त आता है जब इस होटल में अचानक आग लग जाती है। जब पहली बार आग का धुआं शायद कमरे में पहुंचा था तब विवेक को पता चल चुका था। विवेक ने फौरन दिल्ली में रहने वाले अपने कजन को फोन किया। उसने बताया कि जिस होटल में वो रुका है वहां आग लग गई है। उस कजन ने फौरन उसी होटल के करीब कोटला मुबारकपुर में रहने वाले अपने दूसरे कजन को फोन किया। फोन पर खबर सुनते ही कजन अपनी पत्नी के साथ फौरन होटल की तरफ भागा। विवेक ने जब फोन किया था तब सुबह के ठीक 9:45 थे। विवेक के रिश्तेदारों के मुताबिक उन्हें होटल तक पहुंचने में करीब 45 मिनट लगे। उनका कहना था कि किसी तरह जब वो होटल के करीब पहुंचे तब ठीक उसी वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची थी। चूंकि होटल जिस जगह पर है वो रास्ता चारों तरफ से संकरा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां आसानी से पहुंच ही नहीं सकती थी। तब तक आस पड़ोस के लोगों की मदद से होटल के बाहर गद्दा डालकर कुछ लोगों को ऊपर से कूदने को कहा गया। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी चेहरा अग्रवाल परिवार के किसी सदस्य का नहीं था। जब होटल की आग बुझा ली गई तब बदहवास रिश्तेदार अपनों को ढूंढने होटल के अंदर पहुंचे। अंदर कई लाशें तो ऐसी थी जिसकी पहचान भी मुमकिन नहीं थी। एक रिश्तेदार के मुताबिक विवेक की पत्नी तर्जनी की लाश वो सिर्फ इसलिए पहचान पाए क्योंकि उसने जो सेवर पहन रखे थे वो उन सब का जाना पहचाना था। बाद में सभी घायलों और लाशों को पास के 3 अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया, कुछ मैक्स में, कुछ एम्स ट्रॉमा सेंटर में और कुछ सफदरजंग अस्पताल में। रात तक राधे श्याम अग्रवाल के जो रिश्तेदार मैक्स में उन्हें देखने आ रहे थे, अब सुबह वही रिश्तेदार मैक्स एम्स और सफदरजंग में घायलों और मुर्दों के बीच उन आठ अपनों को ढूंढ रहे थे।
2: हमारे वहाँ आठ छह नाइट में रुके हैं, दो मॉर्निंग में वोल्वो से आया, ढोलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे आठ के आठ मर लिए, दो हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। एक बेटी और एक पोती देवती मेरी दो है।
3: तो कितने साल की है, क्या
2: बता दिया यार, कब पता से बताए क्या।
3: फोर्टी
2: टू ईयर्स की रजनी अग्रवाल है, एक उसकी बरिया है 18 साल की, एक है जिविशा अग्रवाल 20 ईयर्स। वो बैंगलोर से कल ही 4 बजे बुलाया था हमने।
0: उधर मैक्स के आईसीयू में और भी अजीब हाल था। सुबह से राधे श्याम को देखने न उनकी पत्नी, न बेटा, न बहू, न पोतियां, कोई नहीं आया। आंसू छुपाते कुछ रिश्तेदार जरूर राधे श्याम के करीब पहुंचे। शाम होते होते डॉक्टर, पुलिस और सरकार घायलों और लाशों की गिनती पूरी कर चुके थे। अफसोस, 21 लाशों में अकेले 8 लाशें इस एक अग्रवाल परिवार की ही थी। राधे श्याम की पत्नी प्रेमलता, बेटा विवेक अग्रवाल, विवेक की पत्नी तर्जनी, बड़ी बेटी एंजल, छोटी बेटी पर, विवेक के मामा कमल गोयल, मामी झावेरी और बुआ कमला। जब ये खबर गुरुग्राम पहुंची तो कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था।
4: हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता। इसकी बीवी और दो बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से और बहुत ही हमारा जो है ना सबका सौहार्दपूर्ण यहाँ पे माहौल।
5: करते क्या थे सर?
4: सभी पड़ोसी ये सीए थे।
5: और फैमिली, इनकी वाइफ जो है वो क्या करती थी?
4: वाइफ पहले बिजनेस करती थी, बच्चे पढ़ते थे दोनों, और वाइफ अब जो है ना बच्चों की पढ़ाई की वजह से घर पे ही बच्चों को संभाल रही थी। और ये तो बहुत ही दुखद समाचार, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज।
6: बहुत ही अच्छे व्यक्ति, धन्य ही थे वो और सबसे मिलनसार। और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूंगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी तक। ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ होगी।
5: परिवार में और कोई नहीं है सर? मैंने देखा मकान में कोई है नहीं, घर पे कोई है नहीं मौजूद। क्या क्या क्या सिर्फ अपने फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे?
6: हाँ, उनके बीवी बच्चे और उनके पिताजी और माँ, वो सब यही रहते थे। अब वो बताते हैं कि सभी सब ऐसे हादसे में शिकार हुए। तो मुझे अभी तक ये नहीं है, बाकी अब यहाँ सब लोग वह कह रहे हैं, अभी हम पता करेंगे और अगर क्या है, कहाँ तक सभी या कोई बच्चा अभी बचा हुआ है क्या है। तो बस मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना बड़ा हादसा मेरे पड़ोस में पहली दफा हुआ है। वाइफ को क्या, वाइफ भी बस गिरने को थी, मगर बड़ा बुरा लग रहा है कि कैसे कैसे हुआ। चलो एक आदमी कोई बीमार है, पिताजी है, तो बात अलग थी। तो मैं चाहूंगा कि भगवान अभी भी कहीं अगर कुछ है तो उसमें उनकी जान बच जाए किस तरह से।
0: विवेक अग्रवाल की पत्नी तर्जनी 2023 में मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी थी। तर्जनी मॉडलिंग भी किया करती थी। फिलहाल वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। विवेक और तर्जनी की छोटी बेटी पर्ल ने अभी कुछ वक्त पहले ही 10वीं में 97% नंबर लाए थे। बड़ी बेटी एंजल बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। चूंकि विवेक परिवार का एक लौता बेटा था, इसलिए अब इस घर में कोई बचा ही नहीं। उधर मैक्स के आईसीयू में 75 साल के राधे श्याम अग्रवाल अब भी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि उनकी आखिरी घड़ी में साथ रहने के लिए उनका जो परिवार गुरुग्राम से दिल्ली आया था, वो सब अब इस दुनिया से ही जा चुके हैं। शायद जीते जी राधे श्याम अग्रवाल को ये सच कोई बताएगा भी नहीं। गुरुवार को गुरुग्राम के शमशान में अजीब मंजर था। कतार में अर्थियां थी, लाइन से चिताएं। एक भरे पूरे परिवार को जिस आग ने मार डाला, अब दोबारा उनकी चिता को आग दी जा रही थी।

आग बेशक इस होटल में लगी हो, लेकिन इसकी आग से न दिल्ली सरकार खुद को बचा सकती है, न एमसीडी और न ही फायर ब्रिगेड। असल में इन सब की कुंभकर्णी नींद और दीमक की तरह चाट चुकी इनकी लालची आदतों ने उन्हें किस लोगों की जान ले ली जो बस सुबह सुबह नींद से जागे थे। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये होटल कब बना, कैसे बना, होटल बनाते वक्त किन किन नियमों का पालन हुआ नहीं हुआ, होटल का मालिक कौन, इन सारे सवालों पर सबकी है। गुनहगार पकड़ भी लिए जाएंगे, होटल सील भी कर दिया जाएगा, बहुत हुआ तो बुलडोजर से गिरा भी दिया जाएगा, पर क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर कोई आग नहीं लगेगी, फिर कोई जान नहीं जाएगी। अगर सच में ऐसा होता तो 97 के उपहार में जो आग लगी थी और उस आग की तपिश में दिल्ली समेत पूरा देश जब तप गया था, उसके बाद तो दिल्ली में फिर ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए था। पर जब तक लालच का दीमक लालची अफसरों और कर्मचारियों को चाटता रहेगा, या बुझने वाली नहीं। चार मंजिला ये बिल्डिंग तो इस वक्त इसलिए सबकी नजरों में खटक रही है क्योंकि इसने एक साथ 21 लोगों को मार डाला। बस इसीलिए अब इस बिल्डिंग की कुंडली निकाली जा रही है। सरकारी दस्तावेज निकाल कर बताया जा रहा है कि हमने तो इसे सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत दी थी, पर इसने 25 कमरे बना लिए। हमने तो 2 मंजिल बनाने के लिए कहा था, इसने तो 4 मंजिल बना डाला। उधर फायर ब्रिगेड कह रही है कि इन्होंने तो हमसे एनओसी ही नहीं लिया, यानी सारी गलती बस इसे एक बिल्डिंग और बिल्डिंग के मालिक की है। सरकारी डिपार्टमेंट और उनके अफसर सब मासूम है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग या होटल चंबल के बीहड़ में बनी थी, जहाँ कभी किसी सरकारी बाबू ने जाकर इसे देखा ही नहीं, इसीलिए पता ही नहीं चला कि कब 6 कमरा 25 कमरे में बदल गया। 2 मंजिल जादू से 4 मंजिल हो गए। सारी गलती सब इसी बिल्डिंग वाले की है, पर असल सच कुछ और है। दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें अलग अलग एजेंसियां देखती हैं, मसलन एमसीडी, एनडीएमसी, फायर ब्रिगेड और दिल्ली सरकार। अब जरा इन तमाम एजेंसियों के कारनामे देखिए। दिल्ली में लगभग 3800 से 4000 छोटे बड़े होटल, लॉज, क्लब और नाइट क्लब हैं। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब या नाइट क्लब के पास ही फायर डिपार्टमेंट का एनओसी है, यानी कुल 2-3% होटल या लॉज को फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाकी के 97-98% होटल या लॉज लालच और रिश्वत के सर्टिफिकेट पर चल रहे हैं। इमारतों में लालच का दीमक कैसे घुसता है, चलिए इसका पूरा खेल भी आपको समझाता हूँ। नियम कहता है कि दिल्ली की हर वो इमारत जिसकी ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा हो, उसे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी अगर उस इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से कम है तो एनओसी की जरूरत नहीं, और बस इसी ऊंचाई और नीचाई से खेल शुरू होता है। दिल्ली में जितने भी होटल या गेस्ट हाउस या लॉज है, उन्हें पता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा वो इमारत इस तरह बनाते हैं कि ऊंचाई 12 मीटर से कम। ऐसे जाहिर है उन्हें कोई एनओसी चाहिए ही नहीं। यही शुरुआती नक्शा वो एमसीडी और बाकी एजेंसियों के सामने रखते हैं। उस नक्शे में बाकायदा एंट्री, एग्जिट, सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की सभी अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं, पर सिर्फ कागजों पर, क्योंकि बाकी का काम नोटों वाले कागज से पूरा हो जाता है। एक बार नक्शा पास हुआ फिर क्या, वही 10-11 मीटर वाली बिल्डिंग 12 मीटर कब पार कर जाती है कोई देखने ही नहीं आता। सबूत आपके सामने है, आग और धुआं उगल।

0: लेकिन ये तो इस कहानी का सिर्फ एक पहलू था। जब लोगों ने उसी ऊंचाई पर महिला की पीठ पर साड़ी के सहारे बंधे उसके मासूम बच्चे को देखा तो जैसे हर किसी की सांसें अटक गईं। आनन फानन में शासन प्रशासन को इसकी इत्तला दी गई और अगले ही पल पुलिस से लेकर जिला प्रशासन और यहां तक कि एसडीआरएफ के लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे। मगर सबसे बड़ी चुनौती थी महिला तक अपनी बात पहुंचाने की और उसे शांतचित तरीके से टावर की ऊंचाइयों से नीचे उतारने की, क्योंकि इस मिशन में हुई एक मामूली सी चूक भी महिला के साथ साथ उसके छोटे बच्चे की जिंदगी छीन सकती थी। अब पुलिस वालों ने महिला को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की।
1: अरे बहन जी, नीचे आइए। बहन जी, आपको जो भी दिक्कत है, सभी लोग यहाँ पे आपकी परेशानी सुनने के लिए आए हुए हैं। आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, कृपया आप नीचे आए। अगर आप तक हमारी बात पहुँच रही तो हाथ हिला के हमको बताएं कि आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है। क्या आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है? बहन, आवाज जाता है? हाँ, तो एक से ही नीचे आओगी तो आपकी आवाज हमको सुनाई देगी।
0: लेकिन पुलिस की शुरुआती कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ और महिला अपनी जगह से टस से मस नहीं। ऐसे में कुछ देर के इंतजार के बाद पुलिस वालों ने फिर से कोशिश की। अब गोंडा के सीओ सिटी आनंद राय हाथ में माइक लेकर मोर्चा संभालते हैं और सबसे पहले महिला से यही पूछते हैं कि क्या वो नीचे आकर पुलिस को अपनी बात बताना चाहती है या फिर वो चाहती है कि पुलिस वाले उसकी बात सुनने के लिए खुद ही ऊपर चले आए।
1: आप मत आइए, कहिए तो हम आए आप तक आपकी बात सुनने के लिए। बताइए, हम आए? अगर आप कहेंगी तो हमारे में से कोई आएगा वहां पे आपकी बात सुनने के लिए। बताइए, आप हाथ से आवाज तो आपकी नहीं आ रही है, हाथ हिला के बता दीजिए हमारी तरफ से कोई जाएगा आपकी बात सुनने के लिए।
0: लेकिन जमीन से कम 100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस महिला का कोई भी जवाब नीचे नहीं पहुंचता है और तब सीओ सिटी महिला से अपनी बात रखने का दूसरा सुझाव देते हैं। सुझाव ये कि वो इशारे से अपना फोन नंबर पुलिस को बताए ताकि फोन पर पुलिस उससे बात कर सके और अगर वो चाहे तो सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर उनसे बात कर ले, यानी 112 नंबर पर कॉल करें।
1: है तो एक बार आप नंबर बताने की कोशिश करिए उंगली से, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, फिर आपको फोन करते हैं उसी पे। आपकी सारी समस्या सुनी जाएगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। कोई एप्लीकेशन या कागज या कोई किसी चीज पे अगर आपका नंबर हो तो आप नीचे उसको गिरा दें, हम उस पर बात करेंगे आपसे।
2: आप अपना नंबर मोबाइल इससे बताइए, हमारे नंबर पे, आपके नंबर पे।
1: पुलिस वालों का कोई नंबर आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो 112 पे फोन करिए, 112 112। अगर आपके पास फोन है तो 112 पे फोन करिए, हम आपसे बात करेंगे।
0: आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद महिला की पुलिस से बात होती है और तब सामने आती है एक ऐसी कहानी जो शासन प्रशासन की संवेदनहीनता की पोल खोलती है। थाना तरबगंज के तिवारी पुरवा की रहने वाली इस महिला का अपना अलग ही दर्द है। महिला 4 बच्चों की माँ है लेकिन पति से अनबन के चलते वो अलग रहती है। लेकिन इससे भी आगे की कहानी ये है कि इस महिला को झांसे में लेकर उसी के गांव का एक शादीशुदा शख्स पहले उसका लंबे समय तक शोषण करता है और फिर उसे धोखा देकर भाग निकलता है। हद तो ये है कि महिला अपने इस दगाबाज आशिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाने के साथ साथ तमाम बड़े अफसरों के चक्कर लगाती है मगर आशिक गिरफ्तार नहीं होता और तब हालात से हार कर वो कुछ ऐसा करती है जो उसे कतई नहीं करना चाहिए। वो अपने 5 साल के छोटे से बेटे को साड़ी के सहारे अपनी पीठ से बांधकर सीधे टावर की ऊंचाई पर चढ़ जाती है ताकि वो पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच सके।
3: आज सुबह तकरीबन 10 बजे हमें सूचना मिली कि एक महिला अपने 5 वर्षीय बच्चे के साथ टावर पे चढ़ गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पुलिस और फायर सेफ्टी के सीएफओ साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे। मैं भी यहाँ मौके पे आया, एडिशनल एसपी पूर्वी साहब भी मौके पे पहुंचे। हम लोगों ने महिला से संपर्क साधने की कोशिश की, लाउडहेलर के माध्यम से हमने अपना मोबाइल नंबर महिला तक पहुंचाया, उसके थ्रू हमारी महिला से बात हुई। महिला से वार्ता के क्रम में उसने जो भी अपनी बातें रखी उस क्रम में हमने उसकी जो

0: डिमांड थी उस पर बात की। पूरा प्रकरण ये है कि महिला तरबगंज थाने की तिवारी बाजार की रहने वाली है, वो पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका अपने पति से विवाद हो गया है और वो अपने पति के साथ अभी नहीं रहती है। उसका उसी गांव के या अगल बगल के किसी गांव के राम अकबाल नामक व्यक्ति से संपर्क था जिनके साथ वो रहना चाहती है। उस महिला की डिमांड, वो भी शादीशुदा है, क्योंकि उस महिला की डिमांड थी कि वो उसके साथ रहे और उसके साथ खान खर्चा उसका जो भी है वो उठाए।
1: महिला कहती है कि या तो उसके आशिक को गिरफ्तार कर पुलिस उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे या फिर उसे अपने साथ रखने के लिए आशिक को राजी कराए। फोन पर सीओ उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा देते हैं और तब महिला नीचे आने की हामी भरती है। इस बीच पुलिस दिल्ली में मौजूद महिला के प्रेमी से संपर्क साधने में भी कामयाब हो जाती है और प्रेमी फोन पर ही महिला को अपने साथ रखने पर राजी हो जाता है, जिसके बाद मसला हल होने की उम्मीद बंध जाती है। लेकिन महिला का अकेले नीचे उतरना खतरनाक है, लिहाजा पुलिस के बड़े अफसर नीचे से 2 पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ के कुछ लोगों को पानी की बोतल और बिस्किट के साथ महिला के पास ऊपर भेजते हैं। पुलिसकर्मी सादे लिबास में है। इस चिलचिलाती गर्मी में लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा समय से टावर पर डटी महिला और उसके बच्चे को अब पानी पिलाया जाता है। ऊपर भी उसे समझाने बुझाने का सिलसिला चलता रहता है और तब महिला धीरे धीरे बचाव कर्मियों के साथ नीचे उतर आती है।
0: क्योंकि जो राम अकबाल है वो यहाँ मौके पे नहीं है, वो दिल्ली में किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इस वजह से अभी उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। जैसे ही राम इकबाल से बात हुई है, महिला से हमने उसकी बात कराई है, दोनों आपस में उन्होंने वार्ता करी है, उस वार्ता के क्रम में दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हुए हैं। उसी के क्रम में एसडीआरएफ की मौजूदगी में हमने अयोध्या से एसडीआरएफ फोर्स बुला ली थी। तमाम फोर्स और सबके सहयोग से महिला और बच्चे को सकुशल उतार लिया गया है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई जाँच के उपरांत की जाएगी।
1: अब सवाल यह है कि क्या इस वाकये को टाला जा सकता था और क्या इसके पीछे पुलिस की लापरवाही एक बड़ी वजह रही, तो हमने पुलिस से ये सवाल भी पूछा। सुनिए जवाब क्या मिला।
0: देखिए ये चीजें अभी इस पर अभी हमारा फोकस नहीं था, ये सारी चीजें अभी पता करके अग्रिम विधि कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया जाए।
1: बहरहाल पुलिस वालों की सूझबूझ से इस मामले की हैप्पी एंडिंग तो हो गई, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक महिला के कदम धरती पर नहीं पड़े थे, मौके पर मौजूद तमाम लोगों की सांसें अटकी हुई थी। अंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक।
2: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
5: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पर झटका। टीएमसी से बागी नेता। ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तय था टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई। सामने 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी के तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह में मिला है मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज।

नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महायुति ने एमएलसी चुनाव में 6 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। 17 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन विपक्ष के 6 कैंडिडेट्स ने नाम वापस ले लिया और महायुति की झोली में निर्विरोध जीत डाल दी। अब विपक्ष कह रहा है कि महायुति पैसों को पानी की तरह बहाकर लोकतंत्र और चुनावों का मजाक बना रही है, जबकि बीजेपी ऐसे आरोपों को विपक्ष की हताशा करार दे रही है।

0: महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में महायुति ने विपक्ष के साथ खेला कर दिया। दरअसल एमएलसी चुनाव के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। कुल 17 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन वोटिंग से पहले ही महायुति ने 6 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर भगवा परचम लहरा दिया। महाराष्ट्र में विपक्ष को एमएलसी चुनाव में जोर का झटका लगा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के बागी उम्मीदवारों ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस लेकर महायुति को बोनस दे दिया है। अब 17 एमएलसी सीटों के लिए नॉमिनेशन वापस लेने की डेडलाइन भी खत्म हो गई है। 17 सीटों में 6 सीटें पहले ही महायुति के खाते में जा चुकी है। अब महायुति और एमबीए के बीच सीधी लड़ाई 11 सीटों पर होगी। हालांकि महायुति के पास यहां भी ज्यादा संख्या बल है, जिससे चुनाव से ठीक पहले एमबीए बैकफुट पर दिख रहा है। अब देखिए महायुति किन किन सीटों पर निर्विरोध जीती है। जीत रविंद्र फाटक शिवसेना, नाम वापस लिया अभिजीत पवार एनसीपीएसपी। रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, जीत अनिकेत तटकरे एनसीपी, नाम वापस लिया बाल माने शिवसेना यूबीटी से। पुणे, जीत विक्रम काकड़े एनसीपी से, नाम वापस लिया श्रीकांत पाटिल एनसीपीएसपी और बागी सुनील टिंगरे। चंद्रपुर वर्धा गढ़चिरौली, जीत अरुण लखानी बीजेपी, नाम वापस लिया शैलेश अग्रवाल कांग्रेस। यवतमाल, जीत दुष्यंत चतुर्वेदी शिवसेना, नाम वापस लिया साहेबराव कांबले कांग्रेस। अहिल्यानगर, जीत प्राजक्त तनपुरे बीजेपी, नाम वापस लिया करण सासाने कांग्रेस। हालांकि महायुति को भी 2 सीटें नासिक और जलगांव में अंदरूनी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। वो अपने 15 उम्मीदवारों को भी एक साथ नहीं रख सके, क्योंकि उनमें से 6 ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए। इससे एक बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। एमबीए नेताओं ने सत्ताधारी गठबंधन पर मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पैसा फेंक कर तमाशा देखने का आरोप लगाया।
1: महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून आम्ही सगळे उमेदवार उडवलेले आहेत, कुठे घातपातानी, कुठे विश्वासघातानी, तर कुठे थेट स्वरूपामध्ये पैसा फेक तमाशा देख या अनुषंगाने ही निवडणूक अनपोज करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महायुती लागलेली आहे। महायुतीच्या अंतर्गत असणारी जी धुसमूस आहे, हिचा केव्हाही स्फोट होऊ शकतो, म्हणून विरोधात कोणीच ठेवायचं नाही अशा स्वरूपाची एकंदरीत व्यूहरचना ही सत्ताधाऱ्यांनी आणि विशेष करून भारतीय जनता पक्षांनी केली असल्याचं आढळून येते। मुळात हे सिलेक्टिव मतदार आहे, ही काही सार्वत्रिक निवडणूक नाही, आणि मुळात या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेला माणूस हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून निवडून आलेला आहे।
2: ज्याच्याकडे पैसे आहे मतदार विकत घेण्यासाठी, तोच ही निवडणूक चांगल्या प्रकारे लढू शकतो। कार्यकर्त्यांची ही निवडणूक राहिलेली नाही, कार्यकर्त्यांची निवडणूक राहिली आहे का? अजिबात नाही। त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती आता कोण संकटमोचक, कोण अमुक मोचक, हे काय राहिले? कसले संकटमोचक? की माझ्या माणसाला निवडून आणायचं आहे, तू 100-150 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तो मतदारांना 5-5, 10-10, 20-25, 25-25 लाख रुपये देणार आहे।
3: बघा आता शिवसेनेची अवस्था उभाठाची किती वाईट झालेली आपण बघतात। एक सुद्धा माणूस त्यांचा निवडून येणार नाही। त्यांना असं वाटतं विधानसभा विधान परिषद म्हणजे काय, काही कामाची नाही आहे। महापालिका ठरले, एक तिकीट त्यांना यश आलं नाही, जिंकता आलं नाही, महापौर करता आलं नाही, तर तेच म्हणतायत काय करायचं इथे, ते तेच म्हणतायत हे काय कामाची आहे। आत्ता आत्ता निवडणुका झाल्यात नगरपरिषदांच्या नगरपालिकांच्या, तिथे काय राहिलं त्यांचं? म्हणजे जे तिथे हरतायत त्या तिकीट त्यांना असं वाटतं हे काही कामाचंच नाही आहे, अशा पद्धतीने ते बोलतायत। पण आता लोक स्वीकारायला तयार नाही, मतदार त्यांना स्वीकारायला तयार नाही।
0: अब सोलापुर में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम एनसीपी शरद पवार गुट के बीच हो गया है। एमबीए के प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की कथित एकजुटता एक्सपोज हो गई है।
4: तो कहानी साफ है, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 18 जून को होने हैं, लेकिन पिक्चर की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष पैसा फेंक तमाशा देख का आरोप लगाते हुए बिलबिला रहा है, तो वही महायुति ने वोटिंग से पहले ही 17 में से 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। अब देखना यह होगा कि बाकी बची 11 सीटों पर क्या महाविकास आघाड़ी पलटवार कर पाती है, या फिर महायुति इस खेल में बाजी मार जाती है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: मॉनसून का मौसम शुरू होने से पहले ही मुंबई में जल जमाव की समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। पहली बारिश में ही अंधेरी सबवे में पानी भर चुका था, जिसके बाद आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली बीएमसी का काम ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठाकरे पीएमसी घोटाले में व्यस्त थे और अब वो जल भराव की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
6: देरी सबवे में पानी आज नहीं भर रहा है, पिछले अनेक वर्षों से भर रहा है, पिछले 25 वर्षों में भी भर रहा था। जिन्होंने आज विजिट की या स्टेटमेंट किया वो 25 वर्ष क्या कर रहे थे, ये मेरा उनको सवाल है। और अंधेरी सबवे की टोपोग्राफी एक अजीब टोपोग्राफी है, इसके पानी भरने के रोकने के लिए महानगर पालिका ने जो इसके लिए सोल्यूशन लाए थे उसमें 3 होल्डिंग पॉन्ड और एक ड्रेन भरड़ावाड़ी कलवट तक ये सोल्यूशन लाया था, लेकिन ये सोल्यूशन लाने के बाद भी आज साधारणतः 22 दिन सबवे बंद होता है। 500 करोड़ रुपया खर्चा करके मुंबई करो का उन्होंने ये कहा कि हम 10 या 12 दिन तक इसको ला सकते हैं, 100% सोल्यूशन उसका मिल नहीं रहा है। तो मुंबई करो के 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वहां पर 10 दिन आप लोगों को अपने कैमरे लेकर जाना पड़ेगा भरा हुआ अंधेरी सबवे बताने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई करो के पैसे के साथ ये न्याय नहीं होगा। इसीलिए हमने प्रशासन को कहा है कि वो इसमें फिर से एक बार तपासणी करे, री इन्वेस्टिगेशन करे, री इवेल्युएशन करे, टेक्निकल इवेल्युएशन और फिजिबिलिटी इसकी चेक करे और फिर नया सोल्यूशन 100% जिससे अंधेरी सबवे में पानी नहीं जमेगा ऐसा सोल्यूशन वो लेकर आए। और इसीलिए हमने उस प्रस्ताव को फिर से भेजकर उसको रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा है। एक महीने में वो हमें प्रेजेंटेशन देंगे और एक महीने के बाद जो हमें वो सुझाव देंगे उन सुझाव के ऊपर विचार विनिमय करके उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन करके हम उसके ऊपर जो सोल्यूशन निकालेंगे।
5: तो जिस तरह दिल्ली के एक होटल में अग्निकांड में 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद से आज तक संवाददाता अलग अलग शहरों में जाकर होटल्स का रियलिटी चेक कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। आज हमारी टीम ने मुंबई के कई होटल्स में जाकर देखा अगर हादसा हुआ तो क्या वहां उससे निपटने के जरूरी इंतजाम हैं।
7: दिल्ली में सिस्टम और नाकामी की लापरवाही से 21 लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी में दिल्ली में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, उसमें 13 लोग विदेशी नागरिक भी हैं। आगे ऐसे हादसे ना हो इसलिए आज तक की टीम अलग अलग शहरों में होटलों में जाकर रियलिटी चेक कर रही है। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह दक्षिण मुंबई के बेलार्ड स्ट्रीट के पास डॉल्फिन नाम के होटल में पहुंचे। इस 4 मंजिला इमारत में पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था है, साथ ही इसी बिल्डिंग में लड़कों का एक हॉस्टल भी है। जब कैमरे के बिना उनसे बात की गई तो होटल के मैनेजर या रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि हमें कितने कमरों की जरूरत है, लेकिन जब उन्हें बताया कि हम रियलिटी चेक कर रहे हैं तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और हमें होटल से बाहर जाने को कह दिया।
8: इस वक्त हम मौजूद हैं बलार्ड स्ट्रीट दक्षिण मुंबई में, आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन नामक एक होटल है, यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि क्या इनके पास परमिशंस है, किस तरीके से कोई वॉयलेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं। अंदर चलेंगे, आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक आपके होटल के बारे में ये जानना है कि
9: अंदर अलाउड नहीं है। नहीं
8: कितने कमरों की परमिशन है आपके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉल्फिन नामक एक होटल है, बलार्ड स्ट्रीट के पास है और यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पहले कमरे देने की बात हुई, बट बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं बातचीत करने के लिए और यहाँ से चले गए।
7: लेकिन होटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और रिसेप्शन एरिया में आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे।
8: आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही एंट्री और एग्जिट भी दिखाई दे रही है, एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। पुराना होटल है और यहाँ पर हमें जब हमने विदाउट कैमरा बात करने की कोशिश की थी उन्होंने बताया कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी चलता है, आपको कितने कमरे चाहिए उसके बारे में बात हुई। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ काम चल रहा है और फिर जब हमने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो जो स्टाफ है उसने यहाँ पर मना कर दिया।
7: इसके बाद हमारी टीम दक्षिण मुंबई के ही पीडी मेलो रोड पर बने पेवेलियन डॉर्मेट्री पहुंची। सीएसएमटी टर्मिनस और इंदिरा डॉक्स के पास के इलाके में ऐसी कई डॉर्मेट्री हैं जो काम के सिलसिले में या थोड़े समय के लिए रुकने वाले लोगों को बेड देती है। ये डॉर्मेट्री ऐसी इमारत में बनी है जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और बीएमसी से मिली मंजूरी के अनुसार इस डॉर्मेट्री में लगभग 20 बेड है। देखिए यहाँ रियलिटी चेक में क्या निकला।
8: हम इस वक्त हैं पेविलियन डॉर्मेटरी रूम्स जो कि पी डेमेलो रोड पर स्थित है और वहां के जो मैनेजर हैं स्टाफ हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए दिल्ली में आग लगी होटल में, उनको 6 कमरे की परमिशन थी, उन्हें ज्यादा कमरे बना के रखे थे, फायर एनओसी नहीं था, फायर के रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे थे। आपके डॉर्मेटरी में क्या सब रूल्स फॉलो हो रहे?
10: जी जी, हमारे पास सब सेफ्टी है
8: और फायर सेफ्टी पूरा प्रिकॉशन है।
10: जी, जी फायर सेफ्टी हमारे पास है
8: और एंट्री और एग्जिट
10: जी सब सेफ्टी हमारे पास है।
8: एंट्री और एग्जिट के 2 गेट
10: है। जी जी जी, दो गेट है
8: और जितना आपको अलाउ है बेड रखने का उतना ही रखते हैं।
10: उतने हमारे पास उतने बेड है।
8: कितना अलाउड है आपको?
10: 20
8: 20 ही रखते हैं।
10: जी जी 20 रखते हैं।
8: पीएमसी और फायर चेकिंग के लिए आती है?
10: आती है।
8: और आपका नाम?
10: फिरतू चौरसिया, PHIRTOO, फिरतू चौरसिया।
8: फिरतू चौरस
10: जी।
8: तो ये थे फिरतू चौरसिया जो कि पेविलियन डॉर्मेटरी संभालते हैं। आप देख सकते हैं ये है पेविलियन डॉर्मेटरी, PDMLO रोड पर स्थित है। फायर बॉक्स और फायर कंटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा एंट्री और एग्जिट, मतलब ये एक एंट्री है और पीछे की तरफ है एग्जिट, तो पीछे की तरफ एक एग्जिट है ऐसा ये बोल रहे हैं। और फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोग चेक करवाते रहते हैं? फायर सेफ्टी सिस्टम
10: हर महीने चेक होता है
8: ऐसा इनका कहना है।
7: इस डॉर्मेटरी के स्टाफ ने दावा किया कि यहाँ BMC और फायर डिपार्टमेंट की टीम नियमित समय पर आकर सुरक्षा इंतजामों को जांचती है। हमने अंदर जाकर ये जानने की कोशिश की कि अगर यहाँ आग लग जाए तो स्टाफ कैसे यहाँ रुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। देखिए आगे क्या हुआ।
8: तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन रखा हुआ है,
2: फायर एमरजेंसी गेट,
8: इमरजेंसी गेट है ये, बट इसको लॉक करके रखा है आपने?
10: नहीं सर, लॉक इसलिए है, एसी चालू है ना।
8: अच्छा
10: जी सर,
8: नहीं बट ये खुला रखना पड़ता है, तो इसको खुला रखना है। तो ये इमरजेंसी गेट तो इनके पास है, इन्होंने लॉक रखा हुआ है, बोल रहे हैं एसी है इसीलिए, बट इमरजेंसी गेट पीछे का दिखाई दे रहा है। पीछे एक गेट है, आगे एक गेट है और ये रहा फायर सेफ्टी सिस्टम।
7: सच तो ये है कि दिल्ली हो या मुंबई, अभी भी हजारों ऐसे होटल नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं जिसमें ना तो फायर के एनओसी है और ना ही इमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम। कई जगह तो बेसमेंट में ही कमरे बना दिए जाते हैं। सवाल है कि आखिर सरकार या प्रशासन समय रहते ऐसे अवैध तरीके से बनाए गए होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि हम हादसों के बाद ही अलर्ट मोड पर आते हैं? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि 83,000 शाखाओं और 60,00,000 स्वयं सेवकों का संगठित होकर एक दिशा में काम करना अभूतपूर्व है। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि मेरी भारत के युवाओं से अपील है कि भारत में बनाएं, भारत के लिए बनाएं, भारत में रहकर पूरी दुनिया के लिए बनाइए। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का भविष्य जिस कंधे पर है वो हिंदू समाज संगठित हो रहा है और जागृत हो रहा है।
11: मुझे कई अवसरों पर भागवत जी से मिलने और उनसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हर मुलाकात में उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका अटूट समर्पण मुझे हमेशा प्रेरित करता है। हर संवाद के बाद भारत के भविष्य को लेकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उनके विचारों में जो स्पष्टता है, उनके संकल्प में जो दृढ़ता है और देश सेवा के प्रति उनकी जो निष्ठा, वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले भागवत जी ने मुझे कहा कि संघ को समझने के लिए उसे भीतर से देखना होगा। परहैप्स ये सच बात है, लेकिन बाहर से देखने पर भी दर्शकों की मेहनत से खड़े किए गए इस विशाल संगठन को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
12: समाज की संगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्र का उद्धार होगा। हिंदू भारत के लिए दायित्वशील है, रिस्पॉन्सिबल है। संगठित हिंदू समाज की शक्ति अपने इस धर्म का, जो सबको जोड़कर चलाता है, सबको आगे ले जाता है, सबको उन्नत करता है, जो जोड़ने वाला तत्व शरीर मन बुद्धि में आत्मा के रूप से जाना जाता है, व्यक्ति समाज और सृष्टि में परमात्मा के रूप में जाना जाता है, वही अर्थ काम को बांधकर मोक्ष के तरफ चलाने के लिए धर्म के रूप में जाना जाता है। हमारा देश धर्म प्राण देश है। उस अपने धर्म का संरक्षण करते हुए अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न, परम बहुल संपन्न बनाना है।
5: फिल्म प्रोड्यूसर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष रहे प्रहलाद निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी दिनों से बीमार थे। प्रहलाद निहलानी का अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर हुआ, जिसमें पहुंचे थे अभिनेता गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, फरहान अख्तर समेत कई और भी सितारे। उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।

0: गोविंदा को विरार के छोकरे से सुपरस्टार बनाने वाले और उन्हें करियर का पहला ब्रेक देने वाले फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी नहीं रहे। फिल्म प्रोड्यूसर और CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष रहे पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उन्होंने बुधवार देर रात 3 बजे आखिरी सांस ली। पहलाज निहलानी का अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज शमशान में हुआ, जिसमें पहुंचे कई सितारों ने उन्हें याद किया।
1: पहलाज जी ने बहुत दुख की बात है, इसलिए कि बहुत साथ में काम किया, घर के तालुकात थे हमारे, बहुत ही दिलदार आदमी थे, बहुत ही पसंद थे, कमाल इंसान थे, फिल्मों का बेहद शौक था। हाथी और छोला शबनम मैंने उनके साथ बनाई थी, बहुत
2: पहली फिल्म छोला शबनम उन्होंने मुझे दी थी और वहीं से मेरा एक कमर्शियल करियर शुरू हुआ था। और उसके बाद जिस तरह से मेरा करियर बना, वो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका थी पहलाज जी की और पहलाज जी की फिल्म की, इसलिए भी नहीं भूल सकता। और उस जैसे शख्सियत हमारे इंडस्ट्री में कम ही हैं जो लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, जो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और दुख दर्द में साथ रहते हैं।
3: देखिए, हमारे उम्र के नौजवान लोगों की पहली पसंद जो गिने हुए इस प्रकार के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उसमें बहुत जिनको हम कह सकते हैं पसंदीदा इस प्रकार के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहलाज जी रहे। 9 बार लगातार सिल्वर हिट देना, अपने आप में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और 100-150 के करीब हिंदी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन में से भी उन्होंने अपना एक विक्रम स्थापित किया, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है उनके जाने से हमारे पूरे इंडस्ट्री को बहुत क्षति पहुंची है।
0: गोविंदा ने पहलाज निहलानी के साथ आंखें, शोला और शबनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। साल 1986 में उन्होंने फिल्म इल्जाम बनाई, जिसमें गोविंदा को पहला ब्रेक मिला। गोविंदा निहलानी के अंतिम दर्शन करके लौटे तो भावुक दिखे।
4: आदरणीय पहलाज निहलानी जी हमारे नींव के पत्थर थे। मैं और मुझ जैसे कई ऐसे कलाकार जो गरीबी के दौर से ऊपर आए, उसमें आपका सहयोग रहा और देश में कम से कम एक आध दर्जन ऐसे कलाकार रहे होंगे। ये आदरणीय पहलाज निहलानी जो है, आप सहयोग और साथ साथ में जैसे ज़मीन से आसमान पे पहुंचाने का जो एक चंद्रमा का कार्य होता है, वो ऊपर वाले ने दिया। और वो मैं बहुत प्रफुल्ल सिंधी समाज का और आदरणीय पहलाज जी का प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम जैसे कई लोग ऐसे आर्टिस्ट जो आज वर्ल्ड में हम फेमस हुए, वो ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुए, मैं प्रणाम करता हूँ।
0: निहलानी ने 1980 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म निर्माता के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म हथकड़ी 1982 में रिलीज हुई, जिसके बाद 1985 में आंधी तूफान आई। उनकी चर्चित फिल्मों में आंखें, अंदाज, तलाश, आग ही आग, रंगीला राजा और जूली टू शामिल हैं। फिल्म अभिनेत्री और सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूनम ढिल्लो ने भी निहलानी को याद करते हुए उनके निधन पर दुख जताया।
5: इट इज़ वेरी शॉकिंग, इट इज़ वेरी हर्टफुल, क्योंकि वो बहुत सालों के उनके साथ दोस्ती है। ओवर मुझे लगता है 30-40 साल तक तो होगी हमारी दोस्ती। अक्सर मिलते थे, इनफॉर्मली मिलते थे, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था, बट स्टिल आई वुड कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड, क्योंकि वेरी ऑफन वी यूज टू मीट। एंड आई वुड से कुछ हद तक शत्रुघ्न सिन्हा जी की वजह से उनसे ज़्यादा मिलना जुलना रहता था, बिकॉज वो बहुत करीबी थे। एंड आई वुड से दैट पहलाज जी बहुत लॉयल फ्रेंड थे, वो दोस्ती निभाना जानते थे, और उनकी वाइफ भी इक्वली वार्म एंड फ्रेंडली थी। तो सालों से जब किसी को देखते हो, उनसे मिलते जुलते हो, उनके लिए इज्जत करते हो, यू रियली फील द लॉस।
0: पहलाज निहलानी 2015 से 2017 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चीफ रहे। कई लोगों ने उन पर फिल्मों से हिंसक और इंटीमेट सीन बेवजह छोटे करने के आरोप लगाए थे और इसके चलते उनका कार्यकाल विवादित रहा था। नीलानी ने शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब में कथित तौर पर 69 कट लगाने के लिए कहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CVFC के फैसले को गलत बताया और फिल्म सिर्फ एक कट के साथ रिलीज हुई थी। 2017 में सरकार ने उन्हें हटाकर गीतकार प्रसून जोशी को CVFC का नया चेयरमैन बनाया था। अनीता ब्रिटो, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: पेट्रोल डीजल बचाने के लिए जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कार पूलिंग की अपील की है, तब से मुंबई आने जाने के लिए कार पूलिंग के लिए रजिस्टर करने वाले लोगों की संख्या में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए एक एप्लीकेशन लिफ्ट ले लो काफी सुर्खियों में है।
10: फ्यूल के प्राइसेस जैसे ही बढ़े, एक चीज नोटिस की गई है, वो है कार पूलिंग, जो एक बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार पूलिंग की तरीके इस बार जो है वो बेहतर हो गए हैं। कार पूलिंग लोग ज्यादा करने लगे हैं। आइए, आखिर कार पूलिंग में कोई इंसान कैसे करता है और कितनी बचत होती है, आइए जानते हैं मकरंद परांच पे, जो थाने में से आप हैं लेकिन आप आते हैं रोज मुंबई के अंधेरी इलाके में, तो कार पूलिंग से कितना फर्क पड़ा है और आप इसमें कार पूलिंग में कैसे आए?
11: पहले तो मैं, जब पेट्रोल प्राइसेस स्टेडी थे फॉर 3-4 ईयर्स, तो मैं कार से ट्रैवल करता था अकेला, तभी इतना एक्टिव नहीं था कारपूल के ग्रुप में। बट अभी रिसेंटली जो 2-3 बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उसके बाद इट्स एक्चुअली पिंचिंग। सो 103 रुपये से 108 रुपये, फिर 108 से 111 रुपये हुए, तो इट्स स्टार्टेड पिंचिंग। सो वाया मेरे को लिफ्ट ले लो, वो जो ग्रुप है उसका रेफरेंस मिला, तो वो जो एडमिन है उसने मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया, पर अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं साथ में कारपूल में।
10: तो हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करते हैं? मतलब जैसे आप अपने घर से निकलते हैं और दफ्तर, मतलब हर पिछले 4 साल से जैसे आपने कहा कि आप घर से निकलते थे ऑफिस आते थे, तो ये एक आपका फिक्स रूट था, अब कैसे, क्या ये बदला है?
11: नहीं, रूट तो सेम ही है, बदलाव इतना ही आया है कि पहले काफी समय में अकेला आता था, अभी लोग साथ में आ रहे हैं मेरे साथ। तो जब अकेला आता था तो अकेला बोर होता था आदमी, कुछ करने को नहीं था, अभी आप लोग आते हैं, गपशप होती है, इंटरेक्शन होती है, तो इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट।
10: तो उनको पिकअप करने जाना होता है या वो आते हैं आपकी गाड़ी के रूट पर, कैसे काम करता है?
11: नहीं, दो लोग हैं, वो मेरे को थोड़ा डिटोर करना पड़ता है 10 मीटर का, तो वो मिल जाते हैं, बाकी जो दो लोग हैं वो उनके ऑन द वे ही है, तो इट इज़ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस।
10: तो फिर पैसे कैसे शेयर करते हैं आप लोग और आपकी बचत कितनी हो पा रही है?
11: इट्स फिक्स रेट्स है ग्रुप के, जहाँ पे पैसेंजर को बोला गया कि अगर आपको इस रूट से यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरे को उतने पैसे मिल जाते हैं उसके।
12: कारपूलिंग का जो इंक्रीज़ है, जो ट्रेंड इंक्रीज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है वो। जब हमारे 10th, आई स्टिल मतलब अभी भी याद है कि 10th मई था शायद, वो स्पीच में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लाइन सेंटेंस डाला था कि कारपूलिंग यूज़ करें, एंड उसके बाद से जब पेट्रोल के हाइक्स आए प्राइसेस में, तो उसके बाद जितना हमारे रजिस्ट्रेशन है अराउंड 30-40% ऑन डेली बेसिस तो बढ़े हैं।
10: 30-40%
12: बढ़ गया है डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, तो लाइक 150-200 रजिस्ट्रेशन ऑन डेली बेसिस होते हैं।
10: कार लिफ्ट लेने वाले ज़्यादा हैं या फिर कार एक्चुअली जो कार जो है
12: कार अगर कार ओनर्स और लिफ्ट टेकर्स का रेशियो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई। सामने 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज। पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज।

दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। सभी मंत्रियों के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। अनधिकृत निर्माण और अवैध संचालन, सख्त कार्रवाई के आदेश। आज भी सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद जली एमसीडी और जागी एमसीडी और एनओसी की जांच की जा रही है। हादसे वाले होटल के पास एमसीडी का सिर्फ टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था। 31 मार्च को खत्म हो चुका था लाइसेंस। चार दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस आरोप मुख्य आरोपी और होटल के मालिक लवकेश, होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश जारी। दिल्ली अग्निकांड में मारे गए गुरुग्राम के एक ही परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। रिश्तेदारों ने मुखाग्नि दी। दिल्ली अग्निकांड के बाद यूपी के कई शहरों में दमकल विभाग की कार्रवाई। गाजियाबाद में एफआईआर विभाग ने 150 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों में कमी का नोटिस थमाया। आगरा में भी होटल और रेस्टोरेंट में फायर विभाग का चेकिंग अभियान। 3-स्टार और 5-स्टार होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण, एनओसी की भी जांच। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नोएडा में भी फायर विभाग अलर्ट पर। होटल्स के लिए 7 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान शुरू। पश्चिम बंगाल में ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। ऋतुव्रत ने अपने गुट को बताया असल तृणमूल। ममता और टीएमसी पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष का तंज का। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का टूटना तय था। हमारे लिए सभी दरवाजे बंद। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से पुलिस में शिकायत। राजद्रोह का मामला दर्ज। बांग्लादेशी विद्रोही छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोप के भारत भागने की कही गई थी बात। मॉनसून सत्र में फिर से परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी से बातचीत की खबर। बिल के नए मसौदे का इंतजार। आज असम में 12 नए मंत्री लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जारी किए हैं सभी नाम। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। कांग्रेस से भड़के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन। बताया धोखेबाज पार्टी का। विधानसभा चुनावों के बाद हम नहीं भूल सकते उनकी करनी को। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी में तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। जमीनी नेताओं को तरजीह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन। बेंगलुरु के साथ मौजूद होंगे राहुल गांधी। सीएम पद संभालने के बाद बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व सीएम डी देवराज की प्रतिमा को डीके शिव कुमार ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में 17 सीटों में से 5 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत तय। विपक्षी उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया था। अहमदाबाद में योगासन विश्व चैंपियनशिप का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार। एकजुट होता है मन, शरीर और आत्मा। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह। संघ प्रमुख मोहन रावत के साथ आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद थे। संघ के कार्यक्रम में बोले कुमार मंगलम बिरला, 83,000 शाखाओं और 60,00,000 स्वयंसेवकों का संगठित होकर एक दिशा में काम करना अभूतपूर्व है। उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड में महिलाओं को संगठित कर रहा है स्वरोजगार। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद आधारित उद्यमों से जुड़ने का अभियान। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है बढ़ावा। एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख के इनामी कमलेश बिंद का शव पहुंचते ही गाजीपुर में बवाल। शव देखकर परिजन, महिलाएं और ग्रामीण आक्रोशित हुए। पुलिस के साथ झड़प। भारत की टी20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बिगड़ गया मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ तेज मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पेड़ गिरे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी खराब हुआ मौसम। भीषण आंधी और तेज बारिश के साथ लोगों में दहशत। नोएडा में भी टूटा है मौसम का कहर। तूफानी हवाओं के साथ उखड़ गए पेड़। तेज बरसात के बाद सड़कों पर पानी। हरियाणा के सोनीपत में तेज हवाओं और बारिश से गिर गया है तापमान। गर्मी से जूझ रहे लोगों को बदले हुए मौसम से राहत। उत्तराखंड के चमोली में 5,807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुप्तखाल ट्रैकिंग पर जोशीमठ लौटा इस साल का पहला ट्रैकिंग दल। बर्फबारी और खराब मौसम की चुनौती को किया पार। एमपी के सिडनी में बाल बाल बचे कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह। बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद कार में लगी थी आग। मुरैना में युवती से दुष्कर्म के मामले में डेप्यूटी कलेक्टर गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोप हैं। मोगा में पुलिस ने कत्ल की गुत्थी को सुलझाया। डेरे के संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 29 मई को हुई थी हत्या। ग्वालियर के एक होटल कर्मचारी के साथ मारपीट। खाने का ऑर्डर लेने में देरी करने को लेकर बवाल हुआ। कई राउंड फायरिंग। अलवर में अवैध तरीके से शराब सप्लाई का खुलासा। 220 पेटी शराब से भरी हुई गाड़ी जब्त की गई। 3 की गिरफ्तारी।
इंदौर में विवाद के बाद पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नू सीएचसी में फिर से मारपीट, कर्मचारियों पर हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। लखनऊ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, नाबालिग लड़कियों को बेला फुसलाकर राजस्थान में बेचने का कर रहे थे काला धंधा। मथुरा में 8 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस से परेशान युवक ने जमकर हंगामा किया, बाइक जब्त होने के बाद गुस्से में आया। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में युद्ध विराम को लेकर पेश की अपनी परिभाषा का, दुनिया के उस हिस्से में युद्ध विराम का मतलब होता है तब जब आप अधिक संयमित तरीके से गोलीबारी कर रहे होते हैं। मध्यपूर्व में छिड़े युद्ध पर अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का चौंकाने वाला खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप तोड़ सकते हैं ईरान के साथ चल रहा युद्ध विराम। IRGC नेवी ने ओमान सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर किया हमले का भी दावा, वीडियो जारी करके कहा अमेरिकी युद्धपोत पर मौजूद अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को बनाया गया था निशाना। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने ईरानी लोगों से किया अपील, कहा हमें दुश्मन की साजिश को एकता और आपसी भरोसे से खत्म करना होगा। हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते को दी है सहमति, अमेरिका की मध्यस्थता वाले इस युद्ध विराम समझौते को लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने बताया था स्थायी शांति के लिए आखिरी मौका। रूसी सरकार ने यूरोप और नेटो देशों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा नेटो सर्बिया के चारों ओर कस रहा है अपना शिकंजा। अमेरिका ने नेटो संगठन से निकलने के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा ट्रंप प्रशासन का नेटो से हटने का कोई इरादा नहीं, नेटो देशों के रक्षा बजट को बढ़ाने की अपील की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के होलियात्स्क इलाके पर कब्जे करने का बड़ा दावा किया है, कहा रूसी सेना ने बड़ी संख्या में मार गिराए हैं यूक्रेनी ड्रोन्स। रूसी विदेश मंत्रालय ने आर्मेनिया के साथ रिश्तों में आई दरार पर बड़ी बात कही, पश्चिमी देशों के समर्थक माने जाने वाले आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने दोबारा चुनाव लड़ने के दौरान संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में शिक्षा सुधार और ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ कर डाली। महंगाई से बिगड़े बजट के बाद लोगों ने कपड़ों समेत लाइफस्टाइल खरीदारी को घटा दिया, 2 महीने में फैशन सेक्टर की बिक्री 30% तक घटने के बाद ब्रांड्स ने समय से पहले 40% तक डिस्काउंट शुरू किया। अप्रैल में कुल 17 टन सोने की खरीद के साथ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने फिर से गोल्ड खरीदना शुरू किया, पोलैंड और चीन के सेंट्रल बैंक अप्रैल में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार बने। केवल 1% गाड़ियां इथेनॉल पर चलाने से देश को 195 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने E85 ईंधन को पेट्रोल से सस्ता और आसान बनाने का ऐलान किया। देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और सरकार की भारी खरीद के बावजूद मंडियों में गेहूं के भाव तेजी से टूटे, सरकारी स्टॉक के बढ़ने और कम निजी खरीदारों से किसानों की आमदनी पर भारी असर। 1 अक्टूबर 2026 से NCR के उत्तर प्रदेश के सभी 8 जिलों में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा, सरकार ने प्रदूषण को रोकथाम पर सख्त कदम उठाने का फैसला लिया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि मेरे भारत में घुसपैठियों का क्या काम है। ये घुसपैठिए संसाधनों पर डाका डालने के साथ देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने गुजरात से 500 से ज्यादा घुसपैठियों को दबोचा है, जबकि 500 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सिर्फ अहमदाबाद के चंडोला इलाके से करीब 300 संदिग्धों को दबोचा गया है, जिनमें से 166 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग पिछले कई सालों से फर्जी पहचान पत्र बनाकर हिंदू नाम और पहचान के साथ रखकर लोगों के बीच छिपे हुए थे। आज आपको बताएंगे कि आखिर घुसपैठियों का ये पूरा सिंडिकेट और बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है। यूपी का खोड़ा और दिल्ली का उस्मानपुर हमारी अगली खबर। फासला सिर्फ कुछ किलोमीटर का, लेकिन इंसाफ और समाज के गुस्से का अंतर आसमान पाताल जैसा। दोनों जगह 17 साल के दो मासूम लड़कों को उनके ही दोस्तों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों ने खोड़ा में कड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, लेकिन उस्मानपुर में सन्नाटा है। आखिर क्यों, आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको युद्ध विराम यानी सीज फायर की एक नई और क्रांतिकारी परिभाषा बताएंगे। सौजन्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गोलियां तमीज और सलीके से चलाई जाएं, तो वो सीज फायर ही कहलाएंगी, यानी आप पर गोली चलेगी लेकिन संयमित तरीके से। दर्द तो होगा पर वो शांतिमय दर्द होगा। दुनिया त्राहिमाम कर रही है और यहां साहब फुल स्केल वॉर और मासूम सीज फायर का फर्क समझा रहे हैं। खुद अमेरिकी संसद को उन पर भरोसा नहीं रहा, पर वो दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि गोलियां संभल कर चल रही है। इसके साथ आपको बताएंगे कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति का भारत दौरा कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। जिस देश से हम एक बूंद तेल भी नहीं खरीद रहे थे, वहां से अब हर दिन हम 4,17,000 बैरल कच्चा तेल मांग रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि हुक्मरानों के लिए इतना आसान है यह कह देना, एक लाइन का आदेश जारी करना, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन क्या इनके बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इन परीक्षाओं के लिए अपनी रातों की नींद गिरवी रख देते हैं। मध्य प्रदेश की आकांक्षा चतुर्वेदी ने सिस्टम के इसी धोखे से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। एक गरीब पिता ने लोन लेकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा था, पर पेपर माफियाओं ने सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन आज सबसे पहले ये कल्पना कीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी पहचान का पूरा ढांचा ही झूठ पर खड़ा है, जो इस देश के नागरिक ना होकर भी इस देश के सारे संसाधनों की लूट खसोट कर रहे हो और इन्हीं संसाधनों का आपके लिए एक सूखा हो। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई घुसपैठिया अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में कैसे आया, बल्कि आज सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, लेकिन कुछ सालों के भीतर उसके पास आधार कार्ड भी आ जाता है, राशन कार्ड भी आ जाता है, बैंक खाता खुल जाता है, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाता है, बिजली पानी का कनेक्शन मिल जाता है, वो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी भी बन जाता है, तो ये सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता। ये पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल बन जाता है, क्योंकि सीमा पर पार करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद पहचान, दस्तावेज, सुविधाएं और लाभ प्राप्त करना एक प्रक्रिया। और जब ये पूरी प्रक्रिया सफल हो जाती है, तब हमें ये पूछना पड़ता है कि आखिर इस देश में इन घुसपैठियों का क्या काम है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद शहर से आई हैं, जहां सिर्फ 24 घंटे में कुल 290 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 166 संदिग्धों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हो चुकी है। इनमें 41 पुरुष हैं, 95 महिलाएं और 30 बच्चे। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घुसपैठिए कैसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैल चुके हैं, और शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई मोहल्ला होगा जहां इनकी मौजूदगी ना हो। अहमदाबाद के जिस इलाके से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम, उस मोहल्ले का नाम है चंडोला। चंडोला में अवैध झुग्गियां हैं और अवैध मकान ज्यादा हैं, जहां से ये लोग आज से नहीं
बल्कि पिछले 3-4 सालों से यहां पर रह रहे थे। और क्राइम ब्रांच का दावा है कि इनमें 80% घुसपैठ ये 5 से 6 साल पहले भारत में आए थे। अब ये गुजरात तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा जैसे तमाम शहरों में कुल 501 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इतने ही संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। इसे फिर से सुन लीजिए कि पिछले सिर्फ 24 घंटे में ही गुजरात में 500 घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया है और 500 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर हमारी पुलिस घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ऐसा कोई अभियान चलाए तो सैकड़ों हजारों घुसपैठिए एक ही शहर और राज्य में आपको मिल जाएंगे। और ये एक बिजनेस मॉडल के तहत भारत में रह रहे हैं, जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है। गुजरात में जिन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में यह पता चला कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ये लोग सीमा कर पार करके भारत में दाखिल हुए थे। भारत में दाखिल होने के बाद इनकी मुलाकात कुछ एजेंट से कराई गई। जिनका काम क्या था? इन एजेंट्स का काम था इनके फर्जी आधार का फर्जी पहचान पत्र बनवाना। इनमें भी कई लोगों के पहचान पत्र हाल के दिनों में बदले गए। और इन्हें जानते हैं कैसे बनाया गया? इन्हें AI, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया, जिसे लोगों के असली आधार कार्ड की कॉपी लेकर AI की मदद से उनमें तस्वीर ही बदल दी गई। और ज्यादातर मुस्लिम घुसपैठियों ने अपना हिंदू नाम रख लिया। हिंदू बनकर ये आपके और हमारे बीच आसानी से घुल मिल गए और अलग अलग शहरों में काम भी करने लगे, जैसे दुकानों पर हेल्पर की नौकरी करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी का काम, किसी घर में बावर्ची बन जाना या ऐसे ही दूसरे काम करना, फिर भारत के अलग अलग शहरों में पैसा कमाकर उसे बांग्लादेश भेजना अपने बाकी परिवार वालों के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये भारत में जो भारतीयों के लिए गरीब वंचितों के लिए जो लाभार्थी स्कीम्स हैं, जो अलग अलग पैसा दिया जाता है चाहे महिलाओं को या फिर अन्य स्कीम्स में, वो पैसा भी लेने लगते हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में जो बांग्लादेशी रह रहे थे वो मोबाइल ऐप से पैसे पहले पश्चिम बंगाल में एक एजेंट को भेजते थे और फिर ये एजेंट इन पैसों को बांग्लादेश में उनके घर तक पहुंचाता था। और इसके लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था जिसे अंगड़िया कहते हैं। अंगड़िया एक तरह की कुरियर व्यवस्था है जिसमें कैश और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और यहां भी यही हो रहा था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में अब तक ऐसे सिंडिकेट खुलेआम काम कर रहे थे जिन पर कोई अंकुश ही नहीं था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर ये घुसपैठिए भारत में पैसे कमाते हैं और पैसे कमाकर बांग्लादेश भेज रहे हैं, तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था और आपके हक की चोरी नहीं है? क्या ये चोरी रुकनी नहीं चाहिए? किसी भी देश की संप्रभुता सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बचती, वो उसके रिकॉर्ड से भी बचती है, उसकी जनगणना से भी बचती है, उसकी नागरिक पहचान प्रणाली से भी बचती है। और इसीलिए अवैध घुसपैठ का सवाल केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये न्याय का भी सवाल है। क्योंकि हर वो लाभार्थी या फिर हर वो लाभ जो किसी घुसपैठियों तक पहुंचता है

0: दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि ये हमारे संसाधनों को लूट रहे थे, दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि ये भारत का पैसा बांग्लादेश भेज रहे थे, और दोबारा हमें ये ना सुनना पड़े कि घुसपैठियों का मुद्दा एक एजेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप खुद देखिए।
1: कल रात ये ऑपरेशन शुरू किया गया जो कि आज सुबह तक जारी रहा, और खास करके तस्वीरों में महिला पुरुष समेत बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन सभी की बात करें तो लंबे समय से ये लोग अहमदाबाद के खास करके चंडोला के आसपास इलाकों में रहा करते थे, लेकिन चंडोला में जब मेगा ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाई गई उसके बाद से सीधे तौर पर अगर कहें तो अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में ये लोग रहा करते थे। खास करके कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो कि स्पा में रहती थी, कुछ रेड्स में जो पकड़े गए वो पीजी सेंटर्स में रहते थे, रेंट पे रहते थे, और कई सारे लोग मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लोग गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तौर पर पहचान हो चुकी है, ऐसे में अब इन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करके सभी को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब ऐसे कई सिंडिकेट्स चलते रहे जो कटमनी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाते थे। कटमनी का मतलब है कि ये लोग किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाना हो, अगर उस सरकारी लाभ की योजना में नाम जोड़ना हो, मंजूरी दिलाना हो, भुगतान जारी करवाने के बदले लोगों से कमीशन लिया जाता है या उस कमीशन का हिस्सा, मतलब जो आपको लाभ मिल रहा है, मान लीजिए आपको 1500, जैसे बंगाल में था महिलाओं को 1500 मिल रहा है, तो उसमें से एक हिस्सा ये लोग मांगते थे और इन पर कोई अंकुश नहीं था। मतलब हम आपको 1500 दिलाएंगे, उसमें से आप 800 हमें दे दो या 500 हमें दे दो, कट मनी इसको कहा जाता था बंगाल में। लेकिन अब जानते हैं ये सारे लोग छिपकर खुद को पश्चिम बंगाल की जनता से बचा रहे हैं, और आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जो ममता बनर्जी के पतन का असली कारण भी दिखाती है। ये तस्वीरें टीएमसी नेता शाहिदुल मियां की है जिन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों से कटमनी मांगी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद जब लोगों ने इसका विरोध किया, कटमनी वापस लौटाने के लिए कहा, तो ये टीएमसी नेता अपने घर में पलंग के नीचे जाकर छिप गए हैं। देखिए इनको, इसे लगा कि यहां से इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ये जनता के गुस्से से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस टीएमसी नेता को पकड़कर इनकी परेड निकाली गई। जनता घर में घुस गई और फिर वीडियो बनाने लगी और पलंग के नीचे से इनको निकलना पड़ा, और इससे ये बुलवाया गया कि अब ये कभी किसी भी परिवार से कट मनी नहीं मांगेगा। देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने सरकार इसलिए बदली क्योंकि वहां लोग इस कटमनी गैंग और इस सिंडिकेट राज से त्रस्त थे, और ये वही सिंडिकेट माफिया है जिसने थोड़े से लालच के लिए बेहिसाब बांग्लादेशियों को भारत में बसा दिया और उन घुसपैठियों के फर्जी पहचान

0: बनवा दिए। और सोचिए, ममता बनर्जी की सरकार ने इस सिंडिकेट को रोका क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। यह हमारे देश में ही हो सकता है जहां पैसों के लालच और फिर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए घुसपैठ की बीमारी को इतना बड़ा बना दिया गया कि अब यह भयानक रूप में नजर आती है। और आपको यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। साल 2025 में देश की राजधानी दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजा गया। गुजरात में पिछले साल 450 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए जिन्हें उसी वक्त सत्यापन कराने के बाद डिपोर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार का भी अनुमान है कि पूरे राज्य में लगभग 10 लाख बांग्लादेश घुसपैठिए हैं और 3000 रोहिंग्या मुस्लिम हो सकते हैं जिनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2025 में 4 घुसपैठिए अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए। मई 25 में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। बहुत लंबी लिस्ट है। महाराष्ट्र में अकेले देखिए, साल 2025 में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया और इस कार्रवाई के बाद भी फरवरी 2026 में जोगेश्वरी से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। जबकि हरियाणा में 17 मई 2025 को नूह से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। 20 मई 2025 को रेवाड़ी शहर जहां से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए और जुलाई 2025 में फरीदाबाद से 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए जिन्हें सरकार ने डिपोर्ट करने का दावा किया। लेकिन फिर भी जानते हैं इस पूरे मामले में बड़ी चुनौती क्या है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डिपोर्ट करने के लिए तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां इन घुसपैठियों को लेकर रुख बहुत सहज नहीं दिखाई देता। जैसे कर्नाटक में पिछले 2 सालों में 320 घुसपैठिए पकड़े गए जिनमें 219 को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन कांग्रेस घुसपैठ को बीजेपी का एजेंडा मानती है जबकि खुद कर्नाटक से इतने घुसपैठियों को भेजा गया है, आप देख रहे हैं। केरला में जनवरी 2025 में 27, मार्च 2025 में 2 और अक्टूबर 2025 में 1 घुसपैठिया पकड़ा गया। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसकी संभावना ज्यादा थी कि केरलम में और भी घुसपैठिए हो सकते हैं जिनकी जांच के लिए सघन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन केरलम में भी लेफ्ट सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कई विपक्षी दलों का लगता है कि अगर उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की तो इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन आज हम पूछते हैं कि क्या घुसपैठियों को भारत से भगाने में कोई भी वोट बैंक आड़े आना चाहिए और क्या हम घुसपैठ के मुद्दे को धर्म से अलग रख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं क्योंकि खैर इस मामले में भारत को आज जापान से सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण होता है और इसके बाद जब इन पर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे विपक्षी नेता सामने आकर ये कहते हैं कि जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, असहिष्णुता हो गई है। कहते हैं कि क्या इस देश में मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। एक पूरी तस्वीर जो आपके सामने है वो आप देख रहे हैं। अब ये सुनकर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शायद सही नहीं सरकार कर रही है और अगर मस्जिद सरकारी जमीन पर बन गई है तो उसे हटाने की क्या जरूरत है, बन गई है तो ठीक है। यानी हमारे देश में ऐसे मामलों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, कानून को कहीं साइड में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको जापान से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जापान की है जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है और वहां कोई ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम धर्म का मामला है। वहां हर कोई यही बात कह रहा है कि नियम सबके लिए बराबर है, अवैध निर्माण ही रहेगा, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल। जापान के साइतामा प्रांत में कावागुए नाम का एक छोटा सा शहर है जहां 3 अप्रैल को एक मस्जिद का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किया पाकिस्तान के राजदूत ने और इसका नाम रखा गया मस्जिद रमजान। अब जिस जगह ये मस्जिद बनाई गई वहां आसपास सब्जियों के खेत हैं, रिहायशी इलाका है और जापान की सरकार ने इस जगह को अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में रखा है। अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी तरह के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध होते हैं और जंगल, खेती की जमीन, पर्यावरण को बचाकर रखा जाता है। लेकिन यहां इस मामले में कुछ मुसलमानों से सोचा कि वो नियमों का उल्लंघन करके मस्जिद बनाएंगे तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि यह तो एक धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था का मामला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत सोच रहे थे, अगर ये भारत में होते किसी सरकारी जमीन पर यही सोचकर अवैध ढांचा खड़ा करते तो शायद यही होता। लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि ये जापान में इन्होंने ऐसा कर दिया। और सबसे बड़ा फ्रॉड सुनिए, इस अवैध मस्जिद का उद्घाटन पाकिस्तान के राजदूत ने किया और जब जांच हुई तो ये पता चला कि जापान में जिस कंपनी ने ये जमीन खरीदकर मस्जिद बनवाई है उस कंपनी के मालिक भी पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके कहने पर ही पाकिस्तान के राजदूत वहां उद्घाटन करने आए। लेकिन यहां जापान के लोगों की भी सराहना करनी होगी जिन्होंने अपने देश के कानून की रक्षा के लिए खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग की, बात को सामने लगा। लोग छोरी छिपे इस इलाके में आए, उन्होंने अपने फोन से वीडियो बनाकर इस अवैध मस्जिद के बारे में पूरे जापान को बताया, ये देखिए। और जब ये मामला सरकार को पता चला तो वहां पता है क्या कहा गया, वहां ये कहा गया कि ये मामला मस्जिद होने का है ही नहीं, ये मामला अवैध निर्माण का है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, और नियमों के उल्लंघन का है और ये उल्लंघन सभी के लिए बराबर है जिनमें धर्म के नाम पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। देखिए
1: ये ऐसी जगह है जहां आसपास कुछ नहीं है, ये देखकर आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि इसमें घुसना कहां से है। ये मस्जिद देखिए, इसके गेट पर इस्लामिक सा डिजाइन है, समस्या मस्जिद बनाने में नहीं है, समस्या है इसका अवैध होना। ये इस ट्रक को देखिए, ध्यान से देखिए, इस पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं है। अब अंदर खड़ी कार पर नजर डालिए, लैंड क्रूजर खड़ी है, सोचिए कितनी महंगी गाड़ी है और किसकी है, और ये लोग क्या करते हैं किसी को नहीं पता।
0: कानून की किताब में अवैध निर्माण के सामने ये नहीं लिखा होता कि ये नियम केवल गैर धार्मिक इमारतों पर लागू होगा। कानून की ताकत और उसका महत्व ही उसकी समानता में है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है और ये किसी भी धर्म से पहले आता है। और इसीलिए हमें लगता है कि जापान की तरह हमारे देश में भी कानून को सही रूप से अपनाने की जरूरत है। कोई भी अवैध निर्माण, उसे धर्म के नाम पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसे इस बात पर संरक्षण कतई नहीं मिलना चाहिए कि उसकी धार्मिक पहचान का लेबल लगा दिया गया है। तो फिर कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाएगी ना। और हमारे देश में बहुत बार यही होता है, जबकि जापान या बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां बहस इस बात पर नहीं होती कि नियम तोड़ने वाला कौन से धर्म का है, बहस इस पर होती है कि नियम तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। भारत को भी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसके कानून का कैसा वहां पर काम चल रहा है। वो इस बात से तय होती है कि क्या वो उन कानूनों को बिना राजनीतिक तुष्टिकरण और विशेष धार्मिक डिस्काउंट के लागू कर सकता है। और जिस दिन हमारे देश में ऐसा होने लगेगा, देश में अवैध निर्माण की चर्चा धर्म से हटकर कानून की चर्चा बन जाएगी, उस दिन शायद हम कानून के शासन के एक कदम और करीब होंगे। और इसके लिए हमें जापान का मॉडल अपनाना होगा। हालांकि यहां जापान में आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वहां की संस्कृति का इस्लामीकरण किया जा रहा है। साल 2000 में जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 20,000 थी, लेकिन 2023 आते आते 4,20,000 हो गई, यानी इसमें ऐतिहासिक रूप से 2000% की वृद्धि हुई। इसी तरह साल 2000 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थी, लेकिन आज ये 164 हो गई हैं और इनमें भी 1000% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कह रहे हैं और इसके आगे शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के उस्मानपुर और गाजियाबाद के खोड़ा की घटना में वो कौन सा अंतर है जो चीख चीख कर आपसे कुछ कहना चाहता है। खोड़ा वो जगह जहां 28 मई को बकरीद के मौके पर 5 आरोपियों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की ये कहते हुए हत्या कर दी थी कि क्या उसने बकरीद पर बकरे को हलाल होते देखा है। ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उबाल लेकर आई। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी मोहम्मद असद का एनकाउंटर हुआ, उसके अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस चिपका दिया गया, इलाके के 3 मदरसों को अवैध बताकर सरकार ने सील कर दिया और कई हिस्ट्री शीटर अपराधियों से थाने में शपथ कराई गई कि वो भविष्य में कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। लेकिन इसी घटना के सिर्फ 2 दिन बाद 1 जून को दिल्ली के उस्मानपुर में इसी तरह का हत्याकांड हुआ, जैसे खोड़ा में 17 साल के सूर्य को उसके दोस्तों ने बाहर बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। ठीक उसी तरह उस्मानपुर में 17 साल के अभिषेक को उसके ही कुछ दोस्तों ने घर से बाहर बुलाकर चाकू से गोद दिया, उसे जान से मार दिया। अब ये दोनों घटनाएं एक ही तरीके से हुई। दोनों घटनाओं में मरने वाले लड़कों की उम्र 17 साल, दोनों को दोस्तों ने मारा। लेकिन खोड़ा की घटना में यूपी सरकार की तरफ से इतने सारे एक्शन हुआ, जबकि राजधानी दिल्ली की घटना बाकी दूसरी घटनाओं की तरह कहीं नीचे दब गई और इसकी किसी ने कोई बात नहीं की। जानते हैं क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि इस घटना में खोड़ा की तरह मारने वाले लोग मुस्लिम नहीं थे, ये गैर मुस्लिम थे। और शायद इसी वजह से इन दोनों घटनाओं में इतना बड़ा अंतर दिखा। और यह अंतर सिर्फ सरकारों की कार्रवाई का नहीं है, यह अंतर हमारे समाज की सोच का भी है। हमारा समाज खोड़ा की घटना पर ज्यादा आहत दिखा, लेकिन उस्मानपुर की घटना के बारे में मालूम नहीं। उस्मानपुर में 1 जून को 17 साल के अभिषेक की हत्या हुई। हत्या जिन 7 से 8 लड़कों ने किया, वो अभिषेक के पहले दोस्त हुआ करते थे। बाद में उनके बीच कुछ विवाद हुआ। 1 जून को इन लड़कों ने अभिषेक को उसके घर से बुलाकर गली में उसकी हत्या कर दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो आया है, उसमें आरोपी लड़के साफ नजर आ रहे हैं। और इनकी उम्र जानते हैं कितनी है? आज इसीलिए हमने ये सोचा कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको यह खबर दिखानी बहुत जरूरी है। इनकी उम्र है 12 से 16 साल। ये सारे लड़के जो आपको दिख रहे हैं, खोड़ा में 17 साल के सूर्य की मां बिलक बिलक कर रो रही थी। ठीक वैसे ही इस मामले में भी 17 साल के अभिषेक की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन यह घटना लोगों को उतना नहीं चुभ रही जितनी खोड़ा की चुभी। आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब हमारा समाज भी अपराध की घटनाओं में ऐसे फर्क करेगा? आज सवाल है कि अगर नाबालिग बच्चे, 12 से 16 साल के बच्चे हथियार उठाकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो हमें कितना चिंतित होना चाहिए? और सोचिए, अगर ऐसा है तो समाज के तौर पर हमारे लिए कितना बड़ा संकट है। सूर्य की हत्या इतनी गंभीर थी कि हमने आपको दिखाया उस दिन, पूरी खबर दिखाई। उसे तो मारने से पहले उसके दोस्त ने कहा था कि तुमने बकरीद पर कभी बकरा हलाल होते देखा है, और फिर मार दिया। लेकिन यह घटना भी उतनी ही गंभीर है, उतने ही मुश्किल सवाल लेकर सामने आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आरोपियों को धर्म के चश्मे से ना देखें तो घटनाएं एक जैसी हैं। दोनों घटनाओं में चिंता यही है कि हमारे युवा अपराध के लिए हिंसक प्रवृत्ति आखिर क्यों अपना रहे। अभिषेक, अगर आप देखें तो नाबालिग लड़के दोस्ती में एक दूसरे का खून क्यों कर रहे हैं, ये सोचने के बजाय आज इन दोनों घटनाओं को बांट दिया गया है और प्रतिक्रिया जिस तरह की आ रही है वो हम आपको दिखा ही रहे। खैर, अगली खबर का आप रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर आ रही है। आखिर क्या है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम किसी भी समय टूट सकता है और इसकी पहल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कर सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ने अब अमेरिकी जहाजों और नौसेना पर एक भी हमला किया तो वो इस सीज फायर को खत्म कर देंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने सीज फायर के दौरान ईरान पर हवाई हमले नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो इसकी इजाजत भी दे सकते हैं और ये युद्ध कागजी सीज फायर से निकलकर उसी रूप में आ सकता है जो रूप 7 अप्रैल से पहले पूरी दुनिया ने देखा था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। ये दावा भी एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सीज फायर की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अब सुनिए, उनका कहना है कि अगर गोलीबारी, हम बात गोलीबारी की कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर गोलीबारी संभल कर और संयमित तरीके से की जाए तो उनकी नजर में वो सीज फायर ही है। ये सीज फायर का नया डेफिनेशन वो गढ़ रहे हैं, सुनिए।
2: How do you define cease fire?
3: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, cease fire is when you're shooting in a more moderate manner.
0: इस बयान के बाद दुनिया पूछ रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर ऐसा है तो 2029 तक वो दुनिया को कैसे कैसे युद्ध और सीज फायर दिखाएंगे। और यहां ये भी सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसकी बात को अब तक पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती आई है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अमेरिका के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते और वहां की मीडिया को भी इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बयानबाजी का दुनिया क्या करे? इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान युद्ध के कारण त्राहिमाम हो रहा है। भारत में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.74 रुपए है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अभी सीज फायर है, इसलिए संभल कर, संयमित तरीके से गोलियां चल रही हैं, और जब सीज फायर नहीं होगा तो फुल स्केल वॉर लड़ा जाएगा। और इस बात से अमेरिका के नेता भी आशंकित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति को सीमित करना है। इस प्रस्ताव को न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिला है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि अब तो अमेरिका की संसद को भी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास नहीं है और संसद उन्हें कानून के जरिए युद्ध लड़ने से रोकना चाहती
4: है।
5: Concurrent resolution directing the President pursuant to Section 5C of the War Powers Resolution to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
0: इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें एक गुप्त लोकेशन से ट्रंक के जरिए मिसाइल दागी जा रही है, और ईरान का दावा है कि उसने समुद्र में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो ईरानी इलाके के पास आ रहा था। ये देखिए।

खैर, हॉर्मूज संकट के बीच वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट डेलजी रोड्रिगेज 5 दिनों के भारत दौरे पर आई हैं और ये वही वेनेजुएला है जिसके कच्चे तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रातों रात गिरफ्तार करवा लिया था। उन्हें अमेरिका ले आया था और पिछले कई दिनों से भारत में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और ये दौरा भी इसीलिए हो रहा है। लेकिन आज हम आपको इन दावों का पूरा सच बताएंगे और ये भी विश्लेषण करेंगे कि हॉर्मूज संकट में वेनेजुएला और भारत एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: अब एक एक करके वो आंकड़े देखिए और इन तमाम तथ्यों को समझिए जो वेनेजुएला और भारत के तेल संकट को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पहली बात तो यह है कि संकट की घड़ी में भी भारत का तेल आयात अभी कम नहीं हुआ है। मई महीने में भारत ने प्रतिदिन 50 बैरल कच्चे तेल का आयात किया है, जो पिछले महीने से लगभग 11.2% ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि भारत पहले से भी अब तेल खरीदने में बढ़ोतरी कर रहा है, ताकि देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट ही ना रहे। अब दूसरे ग्राफिक्स पर आइए। यह दावा पूरी तरह गलत है कि भारत ने वेनेजुएला को रशिया के कच्चे तेल का विकल्प बना लिया है। अब भी भारत जिन तीन देशों में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, उसमें पहले स्थान पर रशिया है, जो प्रतिदिन 23 लाख बैरल कच्चा तेल हमें दे रहा है। दूसरे स्थान पर यूएई है, जो 4,40,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। और तीसरे स्थान पर वेनेजुएला है, जो 4,17,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला से हम पहली बार कच्चा तेल खरीद रहे हैं। 2014 से पहले वेनेजुएला भारत का कच्चा तेल निर्यात करने वालों में तीसरे स्थान पर था। 2019 तक हम वेनेजुएला से सालाना 1,60,00,000 कच्चा तेल आयात कर रहे थे। अब यह भी देख लीजिए कि वेनेजुएला के तेल से भारत को फायदा क्या है। हॉर्मूज संकट के कारण भारत के पास कच्चे तेल का बफर स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जो पहले कमी आ रही थी। फरवरी में यह 10,70,00,000 बैरल था, फिर मार्च में यह कितना हो गया, मार्च के महीने में आप देख रहे हैं यह 9,50,00,000 बैरल हुआ। अप्रैल महीने में तेल का यही बफर स्टॉक और कम होकर 9,10,00,000 रह गया। और इसका मतलब यह था कि भारत अपने बफर स्टॉक में जमा तेल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे यह कम हो रहा था। लेकिन वेनेजुएला और रशिया से तेल खरीदने के कारण इसमें इजाफा, और मई महीने में यह 9,60,00,000 बैरल हो गया, यानी 50,00,000 बैरल तेल हमारे बफर स्टॉक में बढ़ गया। अब जो लोग ये पूछते हैं कि वेनेजुएला का तेल भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में खरीद रहा है, उनका सच भी जान लीजिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को रशिया के तेल से सस्ता पड़ रहा है। रशिया हमें ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर कच्चा तेल बेच रहा है, जबकि वेनेजुएला हमें इसी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर प्रति बैरल $5 से $8 का डिस्काउंट दे रहा है। और जानते हैं इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे इंडियन बास्केट में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। अप्रैल महीने में यह प्रति बैरल $114.48 का था, मई महीने में $106.23 का हुआ। और अब जानते हैं वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने के कारण जून महीने में इंडियन बास्केट में कच्चा तेल का जो बैरल है वो $98 का हो गया है। फायदा किसे? भारत को। और सोचिए, जब वेनेजुएला का तेल हमें सस्ता मिल रहा है और इससे इंडियन बास्केट को भी तेल सस्ता हो रहा है, तो हम वेनेजुएला से तेल क्यों ना खरीदें? और यहां तो हम बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। एक दौर वो भी था जब रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला होकर टैरिफ तक लगा रहे थे, लेकिन हमने तेल खरीदा रशिया से। और सवाल यही था कि हमें अपने हित देखने हैं, भारत का हित देखना है। भारत वहीं से तेल खरीदेगा और वहां से तेल खरीदेगा जहां जहां से भारत को फायदा है। हमारी तेल रिफाइनरीज में वेनेजुएला का गाढ़ा तेल रिफाइन करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी हम वेनेजुएला से कम तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला से तेल लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है। और इसी वजह से वेनेजुएला की राष्ट्रपति रोड्रिगेज का यह 5 दिनों का भारत दौरा बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली के होटल में लगी आग की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से अग्निकांड की एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे भयानक आग लग गई। 5 मरीजों के मारे जाने की खबर है और करीब 20 से ज्यादा मरीजों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। 5 फ्लोर के इस प्राइवेट अस्पताल का आईसीयू वार्ड टॉप फ्लोर पर है। यहां गंभीर रूप से बीमार 15 मरीजों को रखा गया था। आईसीयू में रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क गई। इसे बुझाने की कोशिश बहुत देर से की गई, जिसकी वजह से पास में ही लगा एयर कंडीशनर आग की चपेट में आ गया। आग लगने पर एयर कंडीशनर में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे वार्ड में बहुत तेजी से आग फैल गई। इसके बाद अस्पताल के निचले फ्लोर्स पर काला धुआं भरने लगा, जिससे अन्य वार्ड्स में मौजूद मरीजों, उनके अटेंडेंस को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल में मौजूद आम लोगों और मरीजों के अटेंडेंस से जल्दी जल्दी सबको बाहर निकाला, जिससे कई मरीजों की जान तो बची लेकिन आईसीयू में रखे गए मरीजों की निगरानी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज कर रहे थे। जिन पांच मरीजों की मौत हुई दुर्भाग्य से, उन्हें बचाने कोई नहीं गया था। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में समय लगा। जल्दी ही उन्होंने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे तोड़े, मरीजों को बचाया। हादसे के बाद कई मरीजों के गायब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि इस हादसे में ज्यादा लोग मारे गए हैं लेकिन प्रशासन जानबूझकर संख्या कम बता रहा है। हालांकि अस्पताल जो प्रशासन के मुताबिक बाहर निकाले गए कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है जिनकी जानकारी जल्दी ही उनके परिवार वालों को दी जाएगी। हादसे में हुई मौतों को लेकर अलग अलग दावे हैं। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 है। फायर ब्रिगेड की टीम के दावे के मुताबिक तकरीबन 10 शवों को बाहर निकाला गया है। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा है। मरीजों के अटेंडेंस ने आरोप लगाया है कि रात 3 बजे ज्यादातर मरीज सो रहे थे। ऐसे में जब आग की खबर फैली तो अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय सबसे पहले भागे। उन्होंने मरीजों को ना तो जानकारी दी ना ही उन्हें निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा आरोप यह है कि जब आग भड़की तो अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ना अलार्म बजा, ना वाटर स्प्रिंकलर काम किया। इसके अलावा अस्पताल की छत पर जाने वाला रास्ता, इमरजेंसी एग्जिट का मेन गेट बंद था, उससे मरीजों, उनके तिमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हमारे देश में इमारतों की आपातकालीन व्यवस्थाओं को बहुत हल्के में लिया जाता है। दिल्ली का होटल हो, मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, आलम वही है लापरवाही का। और इस वजह से लगता है जैसे इंसान को, इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम बेकार था। आग लगी तो वो फेल हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी नहीं गिरा। दिल्ली के होटल में इमरजेंसी गेट जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब आज सोचने को हम मजबूर हैं कि इमरजेंसी गेट के नाम पर जो दरवाजा दिखाया भी जाता है वो वाकई काम करता है नहीं करता है, खुलता है नहीं खुलता है, लॉक रहता है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो लगाए जाते हैं उनसे पानी निकलता भी है या नकली स्प्रिंकलर्स बस दिखाने के लगा दिए जाते हैं? और तो और, बेसमेंट वाला गेट बंद। ठीक वैसे ही हादसे के वक्त मुजफ्फरपुर के अस्पताल का इमरजेंसी गेट बंद था। दिल्ली के होटल को 6 कमरों का लाइसेंस मिला, 25 कमरे चल रहे थे। मुजफ्फरपुर के अस्पताल के 13 बेड वाले आईसीयू में 15 से 20 मरीज रखे गए थे। इसलिए हादसे के बाद लोगों का निकालना मुश्किल हो गया। दिल्ली के होटल में वेंटिलेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी वेंटिलेशन ठीक नहीं था। आग लगी तो धुआं अस्पताल के हर फ्लोर और वार्ड में फैल गया। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में फायर सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता बरती जाती है। दुखद तो यह है कि आग लगने की घटनाओं के बाद सरकारी सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है जिसमें हादसे की जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं जाती, थोप दी जाती है। जैसे दिल्ली हादसे के बाद क्या हुआ? होटल के मालिक को फायर एनओसी ना लेने का दोषी बताकर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई, जबकि वो कई वर्षों से 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चला रहा था। जिस सरकारी सिस्टम को वो धोखा दे रहा था, उस सिस्टम ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। सच ये है कि हादसे का जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। ठीक वैसे ही मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हादसे को शॉर्ट सर्किट वाली आग बताकर रफा दफा करने की कोशिश हुई। ये नहीं पूछा जाएगा कि अस्पताल के आईसीयू में इतने मरीज कैसे थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम खराब क्यों था। और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इमरजेंसी गेट्स को बंद क्यों रखा गया। होना तो ये चाहिए कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को अस्पताल की सालाना फायर सेफ्टी जांच करनी चाहिए थी और सही ना पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। फायर सेफ्टी को लेकर हमारा पूरा सिस्टम संवेदनहीन हो चुका है। छोटे हो या बड़े, सभी शहरों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की किसी भी सोसाइटी की ऊंची इमारतों में अगर आप रहते हैं तो याद कीजिए कि पिछली बार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपकी सोसाइटी की सुरक्षा जांच कब की थी। आपको याद भी नहीं आएगा क्योंकि आग की दुर्घटनाओं में फायर डिपार्टमेंट अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित रह गया है और उसमें भी वो पूरी तरह से साधन संपन्न ही नहीं है। इसी वजह से अब इस तरह की दुर्घटनाओं में हम लोग मूक दर्शक बनकर रोते बिलखते इन तस्वीरों को देखते हैं, अफसोस जताकर रह जाते हैं। बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और इन पतली पतली सकरी गलियों में वो गाड़ियां घुस ही नहीं पाती हैं। देखिए,
1: क्या हुआ, क्या हुआ ऑपरेशन के साथ?
2: कहाँ
1: से आता भर्ती होने, कहाँ से
2: बताए पोस्ट वाले?

0: हम लोग 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, दो गाड़ी प्रस्थान किए, तीसरा चौथा पांचवा छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10-15 व्यक्ति मैंने मृत्यु एसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था, इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला हम लोग आए तो। लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं, हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअल्टी हुआ है।
1: मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर लाल दिया है,
2: तीन लोग की मौत हुई है सर।
3: कितना आसान होता है सरकार और सिस्टम के लिए एक लाइन का आदेश जारी करना, परीक्षा लीक हो गई है इसलिए इसे रद्द किया जाता है और फला तारीख को दोबारा परीक्षा होगी, बस एक नोटिफिकेशन और खेल खत्म। लेकिन क्या हुक्मरानों के बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इस एक परीक्षा के लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ लुटा देते हैं? मध्य प्रदेश की आकांक्षा, जिसकी उम्मीदों को सिस्टम के पेपर लीक ने इस कदर निगल लिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। एक किसान पिता जो लोन लेकर रसोईया बनकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहा था, आज वो अपनी बेटी को भी खोच बैठा है। ये मऊगंज की खबर है, मऊगंज के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसके दिल में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का जज्बा था। नीट की परीक्षा देकर जब वो लौटी तो उसकी आंखों में चमक थी, उसे भरोसा था कि 720 में से 650 नंबर तो पक्के हैं। व्हाइट कोट पहनने का सपना बस सच होने ही वाला था कि अचानक खबर आई, नीट का पेपर तो लीक हो गया।
4: मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का।
3: सोचिए उस 18-19 साल की बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या आघात हुआ होगा जब उसे लगा कि सालों की मेहनत कौड़ियों के भाव बिक गई। कुछ लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाते नहीं, लेकिन इस बेबस बाप को देखिए, उसने सब कुछ। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी पेशे से किसान है, लेकिन बेटी के डॉक्टर बनने के अरमानों को पंख लगाने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का लोन लिया। इतने से भी बात नहीं बनी तो अपनी खेती किसानी सब कुछ छोड़कर नागपुर चले गए, वहां एक निजी कोचिंग के पास खुद कुक यानी रसोईया की नौकरी करने लगे, दूसरों के लिए खाना बनाते रहे ताकि बेटी पढ़कर एक दिन उनका और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन बाहर है सिस्टम, चंद रुपयों के लिए ईमान बेचने वाले पेपर माफियाओं ने इस बाप का सब कुछ लूट लिया। रूंधे गले से कृष्ण चतुर्वेदी कह रहे हैं, वो हमेशा बोलती थी पापा देखना एक दिन बहुत नाम होगा हमारा। वो कहती थी कि मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, लेकिन तब जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, कितने सारे सपने दिखाकर वो चली गई। अब जब सपनों को पूरा करने वाला ही नहीं रहा तो क्या सपने और कैसी परीक्षा, दावे होते रहे, परीक्षाएं होती रही, क्या फर्क पड़ता है? अब जांच कमेटी बैठी है, फिर से परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक बेटी तो हार गई ना, उसे जिंदगी के इम्तिहान में इस सिस्टम ने फेल कर दिया। हर साल लाखों बच्चे दिन रात एक करते हैं, खाना पीना भूल कर सारी खुशियों को किताबों में दफन करके तैयारी करते हैं, लेकिन जब नतीजा आने का वक्त होता है तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आकांक्षा इस त्रासदी की पहली शिकार नहीं है, अगर यही रवैया रहा तो आखिरी भी नहीं होंगी। सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए दोबारा परीक्षाओं का ऐलान कर देती हैं, लेकिन उस मानसिक प्रताड़ना का क्या जो ये बच्चे झेलते हैं? लोन के बोझ तले दबे उस पिता के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? साल 2020 से 2024 तक 5 साल में 67,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन औसतन 40 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है, छात्रों का मरना आखिर किसी को दिखता क्यों नहीं? खैर, दोबारा नीट परीक्षा हो जाएगी, कोई ना कोई पास भी हो जाएगा, कोई डॉक्टर भी बन जाएगा, लेकिन मऊगंज के उस रसोइये पिता के घर में अब कभी रोशनी नहीं होगी।

0: कितने सारे सपने दिखा के चली गई। कारण कि जो मीडिया आज मेरे सामने बैठी है, मीडिया के इंतजार में कर रही वो दिन का, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए।
1: और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो थोड़ी हटकर है। गूगल को बनाने वाली कंपनी अल्फाबेट ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो दुनिया से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और जीका वायरस जैसी बीमारियों का नामो निशान मिटा सकती है। इन बीमारियों से हर साल दुनिया में करीब 7 लाख लोग मारे जाते हैं और भारत में सालाना 1000 लोग इन बीमारियों का शिकार बनते हैं। लेकिन अल्फाबेट ने जो इन्वेंशन की है उससे मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अल्फाबेट ने बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने वाले मच्छरों की फौज तैयार की है। कंपनी ने एआई और रोबोट्स की मदद से 3 करोड़ 20 लाख मच्छर तैयार किए हैं जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से मिलकर उनको बीमारी फैलाने से रोक देंगे। अल्फाबेट ने अमेरिकी सरकार, रिहायशी इलाकों में इन मच्छरों को छोड़ने की अनुमति मांगी है। लैब में इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों को पालने का काम भी इंसान नहीं बल्कि ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से किया गया है। ये सारी कवायद वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए की जा रही है। अल्फाबेट के इन मच्छरों की खासियत यह है कि ये इंसानों को नहीं काटते, यानी इनसे इंसानों को तो कोई खतरा नहीं है। कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इन मच्छरों में खास तरह का वोल्बाचिया वायरस डाला है। जब भी इस वायरस वाला मच्छर बीमारी फैलाने वाले अन्य मच्छर से मिलेगा तो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी कम होती जाएगी, जिससे धीरे धीरे मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में अगर इस प्रयोग की अनुमति मिलती है तो माना जा रहा है कि दुनिया के कई देश इन मच्छरों को अपने यहां जरूर लाना चाहेंगे ताकि वो मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर दें। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और शराफत और तहजीब के नकाब ओढ़कर बैठे थे, हवा जरा सी तेज क्या हुई, सबके किरदार बेपर्दा हो गए।

0: दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर एक, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर दो, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर तीन, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर चार, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी, और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा? क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था,
3: जो होटल जिसमें आग लगी 21 लोगों की मौत हुई उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी, क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
4: हां आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से तो, लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: यहाँ रहता है तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण तीन परिवार पूरे पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट है या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हाँ, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटी

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए,
1: हम देंगे। यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए, और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं, और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।

0: दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
1: अब सवाल ये है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
2: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच, यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है, जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
0: पटना के मुसल्लापुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
2: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
3: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
2: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
4: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
2: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
5: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है।

0: आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
1: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
0: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी पराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
2: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
3: कितने गोलियां लगी है इसके?
2: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
0: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
4: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
5: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
6: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
5: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
7: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
5: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
8: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
9: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
8: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
10: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
5: मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
4: बात करेंगे खाड़ी देशों में फैले तनाव के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। इसी बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
11: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
12: How do you define ceasefire?
13: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
11: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा लिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है वो।
3: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहा तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दे दिए,
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड को उठाकर ले जाती है और गोली कांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
4: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
5: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
4: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
6: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोली कांड में नया ट्विस्ट आता है और गोली कांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
7: ये देखिए विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम है कि विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान? रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
8: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, दो बदमाश रात में करीब 1:15 बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी।
9: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
8: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
10: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
11: कितनी गोलियां लगी है?
10: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
8: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
5: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
12: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
13: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
12: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
14: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
12: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
15: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
16: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
15: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
17: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
12: मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
4: हां आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए है। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल है, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंस धारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हाँ, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ?
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन के लिए
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग

0: 838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
1: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
2: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
3: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
5: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। 2 बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं जिनमें से 1 गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
6: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
5: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।

0: थोड़ा घूम रहा हूँ
1: भाई। वो तो हॉस्पिटल में है।
0: कितने गोलियां लगी है इसके?
1: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
0: बड़ा एहसान, तीन तीन चार चार करोड़ रुपए दुश्मन को दे रहा है ना, तो मरना ही है लास्ट में, इसको कौन सा दे रहा है।
2: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला आज तक।
3: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
4: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
5: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
4: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
6: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
4: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
7: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
8: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
7: आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
9: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
4: मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: बात करेंगे खाड़ी देशों में फैले तनाव के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। इसी बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
10: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
11: How do you define ceasefire?
12: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
10: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज। पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के टी20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरी?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। आप भैया कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए, ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ, आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज यही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंस धारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हाँ 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
2: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
6: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो?
6: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
7: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए,
1: हम देंगे। यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए, और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं, और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गई।
5: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
7: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
8: ये देखिए विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम पर कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
9: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
10: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं, उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे, दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का, वहां पहुंचाया गया।
9: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
11: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
12: कितनी गोलियां लगी है इसके?
11: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
9: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
6: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
13: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
14: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
13: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
15: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
13: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
16: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
17: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
16: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
18: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
13: मतलब ये है कि हर बीते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज। पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी, और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है, तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंस धारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए।
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल ये है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़ कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के

0: फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
1: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
2: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
1: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
3: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा, और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये कि विवाद चल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
1: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
5: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
6: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं, उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
5: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
7: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
8: कितने गोलियां लगी है इसके?
7: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
5: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला आज तक।
4: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।

0: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
1: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
0: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
2: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
3: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है,
4: तो उनके
0: मंत्री का ही है। मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मानकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा लिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी, क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जवरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग ना लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हों?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: के अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
9: भारत ने बनाया अग्नि 5, चाइना लगा चिल्लाने, काहे बनाया है तू तो?

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास करूं।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए।
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वो ही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
5: पटना के मुसल्लापुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
7: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
8: ये देखिए विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
9: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी।
10: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
9: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
11: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
12: कितनी गोलियां लगी है इसके?
11: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
9: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
6: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
13: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
14: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
13: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
15: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
13: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
16: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
17: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
16: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
18: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
13: मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
6: बात करेंगे खाड़ी देशों में फैले तनाव के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। इसी बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
19: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
20: How do you define ceasefire?
21: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
19: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के टी20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए, ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
4: हां आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज ही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहां रहता है।
3: तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लोकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंस धारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहाँ लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गयी। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है इस गाड़ी का, कांच टूटा हुआ है क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट है या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास करें।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, आप चारों ओर से गोली चल रहा था उस समय, कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए,
1: हम देंगे। यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है, मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड्स को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आा रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
5: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ

0: करती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
1: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
2: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा। और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशनानंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
4: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। 2 बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला बिस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी।
5: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
4: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
6: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
7: कितनी गोलियां लगी है इसके?
6: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
4: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधु के साथ असीम बस्सी, पंचकुला आज तक।
3: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
0: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
8: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
0: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है। खुद मुख्य

0: मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
1: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
2: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
3: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
2: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है, वो
4: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
0: मतलब ये है कि हर बीते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: बात करेंगे खाड़ी देशों में फैले तनाव के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। इसी बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
6: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
7: How do you define ceasefire?
8: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
6: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरी?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। आ भैया कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है। तो अथॉरिटीज आए, ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ, आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज यहीं रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लवकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लवकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंस धारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्षधाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई, 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गयी। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
2: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है इस गाड़ी का, कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
6: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो?
6: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
7: अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पासपोर्ट।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई, गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: किसको गोली चलने पे मजा आता है? आप चारों ओर से गोली चल रहा था उस समय, कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिए।
1: आप देंगे यहाँ पे, पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर।
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले।
3: सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे।
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वो ही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोलपट्टी खुल जाती है।
5: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
6: अब सवाल यह है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
5: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
7: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
8: ये देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और जब तक ये लोग अपना नौटंकी नहीं छोड़ेगा तब तक ये विवाद चलता रहेगा और ये इनका नौटंकी का परिणाम ये विवाद चल रहा है। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशन आनंद दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक का नाम कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
0: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
9: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, दो बदमाश रात में करीब 1:15 बजे बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं, जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
10: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं, उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे, दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज। फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का, वहां पहुंचाया गया।
9: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
11: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
12: कितनी गोलियां लगी है इसके?
11: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
9: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला, आज तक।
6: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
13: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
14: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
13: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
15: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
13: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
16: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
17: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
16: आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
18: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
13: मतलब यह है कि हर बीते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरे?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है, यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया।
2: ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहां शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है, जो लोग यहां रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। आप भैया कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है, ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे, और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए, एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है, होटल के ऊपर ताला बंद है, तो अथॉरिटीज आए ताला सील करें, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है।
1: सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा, क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलिशान कोठी में रहता था।
3: जो होटल जिसमें आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई, उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है। ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D-140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहाँ पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर आई थी?
4: हाँ आई थी सुबह।
3: लोकेश बजाज यही रहता है
4: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
3: यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है, जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी।
1: शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
3: लवकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं, ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था।
1: दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण MCD के जरिए होता है। MCD के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं, लेकिन MCD ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है, पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
0: अग्निकांड के एक गुनहगार को हिसाब जरूरी है कि उसका किया जाए, क्योंकि कई परिवार आज पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम में रहने वाली विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं है। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि परिवार के 8 लोग, जी हां 8 लोग मारे गए। आज एक घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार से अपील की है और कहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब एक एक दोषी को पकड़ा जाए।
1: एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में।
5: एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई जिनमें से 5 को अभी अभी यहां मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहां पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहां आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहां एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहां लाए गए हैं क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
1: हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जिविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा।
6: वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी, ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल परिवार, विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिशन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहां से ले जाए।
1: अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए।
7: हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए।
5: बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो?
7: नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे भारत के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर के बारे में। जी हां, खान सर की कोचिंग में फायरिंग का ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें वो बुरी तरह से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है।
8: आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं।

0: ये है फैजल खान, लेकिन पूरा भारत इन्हें खान सर के नाम से जानता है। खान सर को भारत के एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध शिक्षक, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार माना जाता है।
1: बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कर।
0: खान सर मुख्य रूप से बिहार के पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दावा करते हैं कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कठिन और जटिल विषयों को बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में समझाना इनका स्टाइल है।
1: ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।
0: क्योंकि पढ़ाने में खान सर रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
1: फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो।
0: खान सर का दावा ये भी है कि उन्होंने शिक्षा को व्यापार न मानकर एक हथियार बनाया है।
1: कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया,
0: उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और खान सर ऑफिशियल ऐप पर बहुत ही न्यूनतम फीस में कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति जैसे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने वाले खान सर एक ऐसे मुश्किल चैप्टर में उलझ गए हैं जिसमें उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
1: आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है।
0: खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलीकांड, अब क्या होगा अंजाम? दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई गोलीकांड की खुल गई सच्चाई। खान सर के दो गार्ड्स गिरफ्तार, कबूल ली गोली चलाने की बात। अब खान सर का क्या होगा? फायरिंग वाला चैप्टर भारी पड़ गया। क्या कोचिंग की लड़ाई में खान सर गोलीकांड पर फंस गए? यकीनन इस वक्त खान का भेजा घुमा हुआ होगा। कहां तो दो कोचिंग सेंटर में हुई क्रेडिट की लड़ाई में बड़े दावे के साथ खान सर ने चिल्ला चिल्ला कर दुनिया जहां को बता दिया कि उनके कोचिंग सेंटर में 10 राउंड गोलियां चली हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उनके बगल वाली कोचिंग ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने चलवाई है।
1: इसको गोली चलने पे मजा आता है, आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है।
2: सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन
1: हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन।
3: कौन हो सकता है इसके पीछे?
1: बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग दो दिन में उड़ा देंगे।
3: इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए?
1: बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है।
0: खान सर चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों पर बोलते रहे कि कम फीस में बढ़िया रिजल्ट देने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
1: अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर
4: क्या लगता है कौन क्या होगा?
1: बगल की कोचिंग वाले
3: सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी?
1: बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये।
3: अच्छा,
1: इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे
3: तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी?
1: बस की तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखते हैं।
0: खान सर को लगा कि कोचिंग के फायरिंग चैप्टर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रोशन आनंद को उलझा दिया और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी के बयान से खान सर थोड़ी देर में ही पलट गए और तो और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में भी फायरिंग की बात नहीं कही।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: लेकिन खान सर को नहीं पता था फायरिंग के चैप्टर में अब वो ही फंस गए हैं और उनके कोचिंग सेंटर में जो गोलियां चली उनका वीडियो बन चुका है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है खान सर की मुसीबत भी शुरू हो जाती है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही कोचिंग सेंटर में चलाई गोलियां। वायरल वीडियो में गोली चलाते हुए दिखे खान सर के बॉडीगार्ड। पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी है। सोशल मीडिया पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंचती है और उनके गार्ड को उठाकर ले जाती है और गोलीकांड के वायरल वीडियो से खान सर की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है।
2: सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में बीती रात आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में खान सर के ही दो गार्ड ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। अब खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो कार्रवाई की तलवार है वो फैसल खान पर लटकी हुई है।
5: अब सवाल ये है कि क्या खान सर को पता था कि उनके कोचिंग सेंटर में गोलियां उनके गार्ड्स ने ही चलवाई हैं? अब तक मुसीबत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद थे, अब खान सर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
0: 27 मई 2026 खान सर और रोशन आनंद के बीच यानी दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई 27 मई से शुरू होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली हुई और इसके बाद खान सर की कोचिंग की तरफ से उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया गया। वहीं रोशन आनंद की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने भी दावा किया कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा कामयाबी मिली है। खान सर और रोशन आनंद ने अपने अपने अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ने बढ़ चढ़कर पोस्टर भी लगाए, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और यहीं से विवाद भड़क गया। 2 और 3 जून की रात को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच में बवाल हो गया और तोड़फोड़ पत्थरबाजी से लेकर गोलियां चल गईं।
2: पटना के मुसल्लपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाने वाले फैसल खान और रोशन आनंद की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लेकिन 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली के जब नतीजे आए तो दोनों ने अपने कोचिंग संस्थान के ज्यादा छात्रों के सफल होने के दावे शुरू किए। 30 मई को पटना में दोनों ही कोचिंग संस्थानों और संचालकों की तरफ से अपने अभ्यर्थियों की सफलता का जश्न भी मनाया गया, लेकिन बात जब बिगड़ गई जब 3 जून की रात अपने अपने बैनर पोस्टर को लेकर के दोनों खेमे आमने सामने आ गए और नतीजा वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।
0: खुद खान सर ने कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के खिलाफ गोलियां चलवाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में फायरिंग की बात से पलट जाते हैं, लेकिन दो कोचिंग संचालकों के बीच एक गैंग वॉर जैसी तस्वीर सामने आती है और पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है।
6: बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत है।
0: 3 जून की सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर पर काफी स्टूडेंट्स जुट जाते हैं, जाम की स्थिति बन जाती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद खान सर ने स्टूडेंट से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन अगले दिन खान सर की कोचिंग पर गोलीकांड में नया ट्विस्ट आता है और गोलीकांड में खान सर के ही दो गार्ड को गिरफ्तार कर

0: नौटंकी का परिणाम है कि विवाद चल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। खान और रोशना नाल दोनों शिक्षक नहीं है, शिक्षक नाम पर कलंक है। आप एक समय झूठ बोलते हैं आप कि 8 राउंड गोली मेरे आग के सामने चली, सुबह सुबह पलट जाते हैं कि नहीं वो गेट खटखटा रहा था। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान। रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो, खान की भी।
1: अब पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है और कोचिंग संचालकों के वर्चस्व की लड़ाई में खान सर बुरे फंस चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको दहशत की तस्वीर दिखाते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स ने एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग की है।
3: ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दो बदमाश रात में करीब 1:15 बाइक से आते हैं और पंचकुला के सेक्टर 5 में स्विस लाउंज के बाहर इस आदमी पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग जान बचाकर गिरते पड़ते भागते हैं, लेकिन इन दोनों बदमाशों के निशाने पर पार्षद के रिश्तेदार रतन लुबाना है। रतन लुबाना पर ये 8 राउंड गोलियां बरसाते हैं जिनमें से एक गोली रतन को लगती है। रतन पर हमला करके ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक टीम इनका पीछा करती है। आगे के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई और बेला विस्टा चौक के पास पुलिस बदमाशों को घेर लेती है। ये पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगती है।
4: दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे। वहां पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहां पहुंचाया गया।
3: अब दोनों आरोपी भी लुधियाना का रहने वाला जसविंदर और होशियारपुर का रहने वाला हरप्रीत अस्पताल में है। रतन का भी इलाज चल रहा है। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग के हैं। इस हमले के बाद रतन लुबाना के परिजनों को पुर्तगाल के नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया।
5: भाई वो तो हॉस्पिटल में है।
6: कितनी गोलियां लगी है इसके?
5: भाई कुछ नहीं पता अभी तो।
3: अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये रतन लुबाना को क्यों मारना चाहते थे। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, पंचकुला आज तक।
2: केंद्र की सियासत के साथ ही यूपी में 27 के चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में रैली करके अपने चुनावी समर का आगाज कर दिया है। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नगीना के सांसद भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
1: समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये आरएलडी की हुंकार है। ये समाजवादी पार्टी का वो किला है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं जयंत चौधरी। 27 के समर की शुरुआत है ये। इधर जयंत तैयार हैं तो उधर बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर परिवर्तन रैली पर निकल पड़े हैं।
7: यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अब अपनी यात्रा के परे कैंडिडेट पर सीधा फोकस कर रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारना शुरू कर देगी।
1: समाजवादी पार्टी पहले ही बैठकें कर रही है और मुद्दों को धार दे रही है। बीजेपी भी एक कदम आगे है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बना रहे हैं।
8: हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
1: बीजेपी की ओर से भी साफ कहा जा रहा है कि यूपी में 27 का चुनाव बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी।
9: मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है।
10: तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में
9: आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता है। वो
11: नेतृत्व मुख्यमंत्री का ही है।
1: मतलब ये है कि हर बीतते दिन के साथ यूपी में सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। मुरादाबाद से समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: बात करेंगे खाड़ी देशों में फैले तनाव के बारे में, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। इसी बीच हमलों की नई तस्वीरें शांति की कोशिशों को झटका दे रही हैं।
1: ईरान के अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने समंदर में अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है, और वो ईरानी जल क्षेत्र के पास आ रहा था, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चला आ रहा युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो वो ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म करने पर सोच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जब गोलाबारी संभल कर की जाए तो उसे सीज फायर कहते हैं।
2: How do you define ceasefire?
3: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
1: अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के तनाव के बीच युद्ध विराम कैसे होगा, जिसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ने कांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने की मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। 21 मौत के बाद एनओसी की भी जांच। 4 दिन की पुलिस रिमांड में मुख्य आरोपी लवकेश। ममता को झटके पे झटका। टीएमसी से बागी नेता ऋतुव्रत के निलंबन को स्पीकर ने बताया गलत। मंत्री दिलीप घोष का तंज। भ्रष्टाचार पर बनी पार्टी का तैथा टूटना। इंडिया गठबंधन में दरार आई सामने। 8 जून को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके। कांग्रेस की मौजूदगी से नाराज पार्टी का फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमपी से तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम। कांग्रेस की लिस्ट में खड़गे पवन खेड़ा और मीनाक्षी नटराजन। भारत के T20 टीम के कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार यादव की जगह मिला मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के गुनहगार हैं कहां? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के कई घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदारों पर गाज क्यों नहीं गिरी?
1: हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने